मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। आज सोमवार है, सक संवत 1948 के आषाढ़ मास की प्रथम तिथि तदनुसार 22 जून सन 2026 प्रातः के 5:58 और 36 सेकंड हो रहे हैं। हमारी आज की प्रातःकालीन सभा के प्रसारण अब आरंभ होते हैं।

मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। सवेरे के 6 बजने को हैं। अब से कुछ ही पलों बाद आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी में समाचार रिले किए जाएंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: मोदी ने कहा है कि किसी भी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति उसके समुद्री सामर्थ्य पर काफी हद तक निर्भर करती है, इसलिए भारत अपनी समुद्री क्षमताओं को लगातार मजबूत कर रहा है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर स्वदेश निर्मित 3 युद्धपोतों को भारतीय नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने ये बात कही। इनमें अत्याधुनिक स्टील्थ फ्रिगेट INS दूनागिरी, संशोधक और अग्रय शामिल है।
1: भारत अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, नदी जलमार्गों का विस्तार कर रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है, सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 को वैश्विक उत्सव बनाने के लिए विश्व भर के लोगों का आभार व्यक्त किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये देखकर खुशी होती है कि योग सभी क्षेत्रों और विभिन्न देशों के लोगों को स्वस्थ जीवन तथा कल्याण की साझा खोज में एकजुट कर रहा है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि योग दिवस आने वाले समय में अधिक लोगों को दैनिक जीवन में योग अपनाने के लिए प्रेरित करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के श्योपुर स्थित कूनो राष्ट्रीय उद्यान का दौरा करेंगी। वे चीता पुनर्स्थापन परियोजना की प्रगति की समीक्षा करेंगी और चीतों की देखभाल करने वाले वन कर्मियों तथा स्थानीय लोगों से बातचीत करेंगी। राष्ट्रपति ने कल चीता कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का दौरा किया। इस दौरान अधिकारियों ने उन्हें बताया कि इस समय देश में 52 चीते हैं, जिनमें 49 कूनो राष्ट्रीय उद्यान में है। भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की 2 दिवसीय बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में साइबर सुरक्षा, डिजिटल खतरों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े जोखिमों तथा अन्य गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। प्रतिनिधि आतंकवादी रोधी सहयोग और सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी के सुरक्षित उपयोग से जुड़े मुद्दों पर की भी समीक्षा करेंगे। बैठक में भारत, ब्राजील, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स के 11 सदस्य देशों के सुरक्षा प्रमुख भाग लेंगे। चीन के विदेश मंत्री वांग यी भी इसमें शामिल होंगे। नीट यूजी पुनर्परीक्षा कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच सम्पन्न हो गई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया कि देश भर के 5,440 जबकि विदेश के 14 केंद्रों पर 20 लाख से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। ये परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी सहित 13 भाषाओं में आयोजित की गई। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कक्षा 12वीं के अंकों के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के परिणाम जारी करने शुरू कर दिए हैं। बोर्ड के अनुसार 87% से अधिक आवेदनों के परिणाम घोषित किए जा चुके हैं, जबकि शेष परिणाम जल्द ही जारी किए जाएंगे। तमिलनाडु के पेरिया पालियम स्थित सी फूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव के कारण 7 लोगों की मौत हो गई और 70 से अधिक श्रमिक प्रभावित हुए हैं। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 6 विकेट से हरा दिया। मैनचेस्टर में ग्रुप ए मुकाबले में भारत के 159 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए दक्षिण अफ्रीका ने 5 गेंद शेष रहते 4 विकेट पर 161 रन बना लिए। दक्षिण अफ्रीका की मारिजान केप ने नाबाद 81 रन की शानदार पारी खेली और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। फीफा फुटबॉल विश्व कप में ग्रुप जी के मुकाबले में ईरान और बेल्जियम के बीच मैच बिना किसी गोल के ड्रॉ रहा। वहीं ग्रुप एच में स्पेन ने सऊदी अरब को 4-0 से हराकर अगले दौर में जगह बनाई। आज ग्रुप एच में उरुग्वे और केप वर्डे के बीच मुकाबला 2-2 गोल से बराबर रहा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 6:05 हो रहे हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना। श्रोताओं, कार्यक्रम वंदना में आपका हार्दिक स्वागत है। इस प्यारी सी सुबह में आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज सोमवार है और सोमवार प्रिय होता है शिव जी को, यानी शंकर भगवान को। और शंकर भगवान के खेल भी बहुत निराले हैं। वो अजब अजब रूप धरते हैं और अपने भक्तों का कल्याण करते हैं। तो आइए सुनते हैं ये प्यारा सा भजन कुमार विशु के स्वर में।

कुमार विशु की आवाज़ में अभी आप ये शिव भजन सुन रहे थे। कार्यक्रम का अगला भजन आइए अब आपको सुनवाते हैं अनूप जलोटा के सुर में। श्रोताओं, ये संसार, ये जग 2 दिन का मेला है। इसमें लोग आते हैं, अपना कर्तव्य निभाते हैं और चले जाते हैं। इस संसार में आने का एक मकसद होता है कि व्यक्ति को अपने अस्तित्व की जांच करना, यानी अपने अच्छे कर्मों द्वारा मोक्ष की प्राप्ति करना।

दो दिन का जग में मेला, सब चला चली का खेला। जी हाँ श्रोताओं, ये संसार दो दिन का मेला है, इसमें लोग आते हैं और चले जाते हैं। अभी आप ये प्यारा सा भजन सुन रहे थे अनूप जलोटा के स्वर में। कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं भाई रविंदर सिंह रागी के स्वर में ये शब्द। श्रोताओं, ये संसार एक बहुत ही व्यायामशाला है। यहाँ पर सब अपने अपने धर्म की पूजा करते हैं, लेकिन सबका एक रास्ता है, मोक्ष की प्राप्ति। तो आइए अब चलते हैं उस वाहेगुरु के दरबार में और अरदास लगाते हैं

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे भाई रविंदर सिंह रागी की आवाज में ये शब्द, और अब चलते हैं नात की ओर। सखावत हुसैन खान का गाया ये नात आप सुनेंगे अभी। श्रोताओं, उस परवरदिगार के हम सब नेक बंदे हैं, वो हमेशा अपनी रहमतों की वर्षा हम पे करता रहता है। तो आइए हम सब उस निगहबान उस परवरदिगार के दर पर चलते हैं और अपने दोनों हाथों की झोली फैलाकर उससे अपनी रहमतों की भीख मांगते हैं।

सखावत हुसैन खान के स्वर में अभी आप ये नात सुन रहे थे। और श्रोताओं, कार्यक्रम वंदना के अंत में आइए अब आपको सुनवाते हैं अनुराधा पोडवाला और साथियों के स्वर में ये शिव आरती।

अनुराधा पोडवाला और साथियों के स्वर में अभी आप ये शिव आरती सुन रहे थे। इसी के साथ ही भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना अब यहीं पर संपन्न होता है। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। प्रातः के 6:30 हो रहे हैं। प्रस्तुत है सतीश भाटिया।

शोक संताप और ग्लानि के सागर में डूबते उतराते सुमंत्र ने सारा दिन अयोध्या नगरी के बाहर एक पेड़ की छांव में बैठकर बिताया। जब शाम का अंधकार घिरने लगा तो उन्होंने नगर में प्रवेश किया। महामंत्री का अकेले वापस आना सुनकर रनिवास व्याकुल हो गया। राजमहल प्रेतों के निवास स्थल जैसे लगने लगे। सुमंत्र को मौन तथा व्याकुल देखकर रानी कौशल्या उन्हें अपने महल में लिवा ले गईं। वहां का दृश्य अत्यंत हृदय विदारक है। आभूषण रहित मलिन राजा दशरथ धरती पर पड़े हैं। वाणी के नाम पर हा राम, हा लक्ष्मण, हा जानकी मात्र यही शब्द सुनाई पड़ते हैं। सुमंत्र ने जय जीव कहकर प्रणाम किया तो राजा ने उठकर उन्हें हृदय से लगा लिया।

महेंद्र कपूर और मिताली बी सिंह की आवाज में अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान का आज का प्रसंग। संगीत निर्देशन सतीश।

0: भाटिया का था। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज पर। यह आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। प्रातः के 6:40 हो रहे हैं। प्रस्तुत है आज का चिंतन।
1: शिक्षा मात्र व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, वो आस्था है जिसे आपके पूर्वजों और समकालीनों ने आपको सौंपा है। ज्ञान को कोई एक व्यक्ति बिना सहायता के केवल अपने बूते पर प्राप्त नहीं कर सकता। ज्ञान का हमारा वर्तमान कोष पिछले हजारों वर्षों के दौरान प्राप्त अनुभवों का ही संचित सुफल है। आने वाली पीढ़ी हमारे अनुभवों और विचारों से उसी तरह सीखेगी जैसे हमने सीखा। हमारे साधन शोध या शक्ति सीमित नहीं है। अगर हम अपने साधनों और शक्तियों को मिला लें तो उससे निकलने वाली ऊर्जा हमारी सब समस्याओं का हल कर देगी। दुर्भाग्यवश सामूहिक और सहकारी प्रयास करने की भावना का हम में अभाव है और हम में से हर एक व्यक्तिगत रूप से अपना स्वार्थ सिद्ध करने में लगा है। बेहतर होगा कि हम सहकारी प्रयास की एक प्रक्रिया को जन्म दें, एक ऐसी व्यवस्था जिसमें हर व्यक्ति स्वेच्छापूर्वक इस आस्था के साथ हिस्सा लेता है कि इसी में उसका अपना और देश का भला निहित है। लोगों के मन में मिलजुल कर काम करने का भाव जाग जाए, वे उसके लाभ समझें, उनमें अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने की क्षमता आ जाए, यही सच्ची क्रांति है। महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा के आधार पर ही समाज को खड़ा करना चाहते थे। ये मिलजुल कर काम करने से ही संभव था। गांधी जी का लक्ष्य था कि व्यक्ति पूर्ण स्वतंत्र हो। इसके साथ साथ वो ये भी मानते थे कि व्यक्ति को ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे दूसरों को हानि पहुंचे। हर व्यक्ति को अपने को दूसरों की सेवा में लगा देना चाहिए। ये स्वर नियंत्रण इतना सशक्त होना चाहिए कि वो दुर्लभतम मन स्थिति में भी पथ से डिग न सके। ये स्वयं सिद्ध तथ्य है कि त्याग की भावना संक्रामक होती है। सामूहिक बलिदान से व्यक्तिगत बलिदान कहीं अधिक कठिन है। एक सैनिक अपने चारों ओर लोगों को साहस पूर्वक मौत से जूझते देश के लिए बलिदान होते देखता है तो स्वयं भी वैसा ही करने को तत्पर हो जाता है। महात्मा गांधी ने यही प्रयोग करके स्वाधीनता के लिए लोगों को बड़े से बड़ा बलिदान करने के लिए तैयार कर दिया था। हमारे सामाजिक संगठन में क्रांतिकारी सुधार आवश्यक हैं। नए समाज में हर कोई पूर्ण रूप से स्वतंत्र होगा और कोई भी दूसरे का दमन शोषण नहीं करेगा। कोई भूखा नहीं होगा, वस्त्र और आवास की समस्याएं नहीं रह जाएंगी। एक ऐसा समाज होगा जहां आदमी दिल लगाकर काम करेगा। अंतरराष्ट्रीय संघर्ष नहीं होंगे। लोगों के बीच आपसी मतभेद भी समाप्त हो जाएंगे। मनुष्य का हर कर्म पूरी मानवता की भलाई और कल्याण की दिशा में लगेगा। ऐसा समाज कुछ कुछ काल्पनिक भी लग सकता है, लेकिन इस बात के हजारों प्रमाण मिल जाएंगे कि मनुष्य अपने व्यक्तिगत और क्षणिक लाभ प्रलोभनों से ऊपर उठकर समाज के अन्य लोगों के लिए चरम बलिदान भी देता आया है। जिनके मन में ये सेवा भाव विद्यमान है, उन्हें चाहिए कि दूसरों के हृदय में भी ये भाव भरने का पूरा पूरा प्रयास करें। इस विचार से गांधी जी ने देश के विभिन्न भागों में आश्रम बनाए थे जहां लोग अपनी इच्छा अनुसार मुक्त भाव से रहते थे। हमें चाहें तो उन आश्रमों जैसा जीवन अपनाएं या अपने विचारों के अनुसार जीवन बिताएं। मार्ग चाहे कोई भी हो, किंतु इतना निश्चित है कि इसके मूल में सेवा, बलिदान और आत्मसंयम की भावना होनी चाहिए।
0: ज्ञान। अभी आप ये चिंतन सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 6:45 हो रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम काव्यधारा, जिसमें आज हम आपको सुनवा रहे हैं अलका गुप्ता का ये काव्य पाठ।
2: आपके समक्ष अपनी रचनाएं प्रस्तुत करती हूँ। त्याग।

मजहबी उन्माद पर ओढ़ कर आतंक चोला, पावनी कैसे कहूँ, कौम जो बन

0: काव्यधारा कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे अलका गुप्ता का ये काव्य पाठ। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। प्रातः के 6:55 होने को हैं। आपसे कुछ ही पलों बाद आकाशवाणी दिल्ली से समाचार रिले किए जाएंगे, पहले संस्कृत में उसके बाद हिंदी में।
1: इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका साधना शर्मा। अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अवदत् यत् आधुनिके विश्वस्मिन् सामुद्रिक शक्तिः राष्ट्रस्य सामरिक प्रभावस्य प्रमुखा आधारा अस्ति।

0: कोल कातायां श्यामा प्रसाद मुखर्जी जलपोत स्थात्रे तेन स्वदेश निर्मिता त्रयः नौ सैनिक पूताः आईएनएस दुनागिरी आईएनएस संशोधक आईएनएस अग्रयश्च भारतीय नौ सेनायै समर्पिताः।
1: आईएनएस विक्रांत से लेकर आज तक की यात्रा केवल नए युद्ध पोतों की यात्रा नहीं है, यह भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता की यात्रा भी है। इनका निर्माण भारत में हुआ है, इनकी डिजाइन भारत में तैयार हुई है, इनके निर्माण में भारतीय उद्योगों की प्रतिभा लगी है और यही नए भारत की सबसे बड़ी ताकत है।
0: तीन उक्तं यत् एतेषां पोतानां निर्माणे द्विशताधिकाः सूक्ष्म लघु मध्यमोद्यमाः योगदानम् अकुर्वन्। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सांप्रतिक वर्षस्य अन्ताराष्ट्रिय योग दिवसस्य वैश्विक उत्सव रूपेण आयोजनार्थं विश्वस्य जनान् प्रति कृतज्ञतां व्यक्तवान्। तेन उक्तं यत् योगः विभिन्नेषु देशेषु समाजेषु च स्थितान् जनान् स्वास्थ्य कल्याणयोः समान लक्ष्ये संयोजयति। प्रधानमंत्री एतत् विश्वस्य कृते प्रेरणादायकम् अस्ति इति अवदत्। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः कुनो राष्ट्रिय उद्यानस्य भ्रमणं करिष्यति। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः मध्यप्रदेशस्य कुनो नेशनल पार्क इत्यस्य राष्ट्रिय उद्यानस्य भ्रमणं करिष्यति। सा प्रोजेक्ट चीता इति योजनायाः प्रगतेः समीक्षां करिष्यति तथा च व्याघ्रपालकैः वन कर्मचारिभिः स्थानीय जनैश्च सह संवादं करिष्यति। अधिकारिणाम् अनुसारेण भारते सम्प्रति पञ्चशताधिकाः व्याघ्राः सन्ति, तेषु अधिकांशतः कुनो राष्ट्रिय उद्याने वसन्ति। भारतम् अद्यारभ्य नवदिल्ल्यां ब्रिक्स राष्ट्राणां राष्ट्रिय सुरक्षा परामर्शदातॄणां द्विदिवसीय सम्मेलनस्य आयोजनं करोति। अस्य अध्यक्षताम् अजीत डोभालः करिष्यति। नीट यूजी षड्विंशत्युत्तर द्विसहस्र पुनर्परीक्षा सुदृढ सुरक्षा व्यवस्थायां सुसम्पन्ना। राष्ट्रिय परीक्षा अभिकरणस्य अनुसारेण देशे विदेशे च स्थितेषु चत्वारिंशत् अधिक चतुश्शतोत्तर पञ्चसहस्र परीक्षा केन्द्रेषु लक्षशः अभ्यर्थिनः सहभागिनः अभवन्। दिव्यांग अभ्यर्थिभिः सह सर्वेषां परीक्षार्थीनां सुविधार्थाः विशेष व्यवस्थाः अपि कृताः। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड इत्यनेन द्वादश श्रेण्याः उत्तर पुस्तिका सत्यापनस्य पुनर्मूल्यांकनस्य च परिणामः क्रमशः प्रकाशितः। मण्डलेन प्राप्तेषु उक्तं यत् प्राप्तेषु आवेदनपत्रेषु सप्ताशीत्यधिक शतं प्रतिशतं परिणामः घोषिताः सन्ति, अवशिष्ट परिणामः अपि शीघ्रमेव चरणबद्धरीत्या प्रकाश्यन्ते। छात्राः स्व आवेदनस्य स्थितिं डिजी लॉकर पटले परीक्षितुं शक्नुवन्ति। मण्डलेन निष्पक्षतां शुद्धतां च सुनिश्चित्य सर्वाः प्रक्रियाः सावधानतया सम्पन्नाः इति उक्तम्। छात्राः मिथ्या प्रचारेषु सामाजिक माध्यमेषु प्रसारितान् अप्रमाणित सन्देशान् च न विश्वसन्तु इति केवलं सीबीएसई इत्यस्य आधिकारिक सूचनाः एव अनुसरन्तु इति परामर्शः दत्तः। तमिलनाडु राज्यस्य पेरियापालम क्षेत्रे स्थितायां समुद्री खाद्य निर्यात समवाये अमोनिया वायोः स्रवण घटनायां सप्त जनाः मृताः, सप्तत्यधिकाः श्रमिकाश्च प्रभाविताः जाताः। घटनास्थले उत्थार चिकित्सा कार्याणि निरन्तरं प्रचलन्ति। राष्ट्रिय आपद्मोचन बलस्य तथा रासायनिक जैविक परमाणु आपदा विशेष दलानां च सदस्याः त्वरितं आपद उत्थार अभियानम् आरब्धवन्तः। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजयः उच्चस्तरीय अन्वेषणस्य आदेशं दत्त्वा त्रिसदस्यीयां समितिं नियुक्तवान्। फीफा विश्व कप चषके केप वर्डे उरुग्वे च अनयोः दलयोः स्पर्धा तत्र द्वि-द्वि अंकेन समतायाम् अभवत् इति वार्ता।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि किसी भी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति उसके समुद्री सामर्थ्य पर काफी हद तक निर्भर करती है, इसलिए भारत अपनी समुद्री क्षमताओं को लगातार मजबूत कर रहा है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर स्वदेश निर्मित 3 युद्ध पोतों को भारतीय नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने ये बात कही। इनमें अत्याधुनिक स्टेल्थ फ्रिगेट INS दूनागिरी, संशोधक और अग्र शामिल हैं।
1: भारत अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, नदी जल मार्गों का विस्तार कर रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है, सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 को वैश्विक उत्सव बनाने के लिए विश्व भर के लोगों का आभार व्यक्त किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये देखकर खुशी होती है कि योग सभी क्षेत्रों और विभिन्न देशों के लोगों को स्वस्थ जीवन तथा कल्याण की साझा खोज में एकजुट कर रहा है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि योग दिवस आने वाले समय में अधिक लोगों को दैनिक जीवन में योग अपनाने के लिए प्रेरित करेगा। भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 2 दिवसीय बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में साइबर सुरक्षा, डिजिटल खतरों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े जोखिमों तथा अन्य गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। प्रतिनिधि आतंकवाद रोधी सहयोग और सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी के सुरक्षित उपयोग से जुड़े मुद्दों की भी समीक्षा करेंगे। बैठक में भारत, ब्राजील, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स के 11 सदस्य देशों के सुरक्षा प्रमुख भाग लेंगे। चीन के विदेश मंत्री वांग यी भी इसमें शामिल रहेंगे। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी आज से UGC नेट जून 2026 की परीक्षा शुरू करेगी। ये राष्ट्रीय स्तर की पात्रता परीक्षा कंप्यूटर आधारित टेस्ट मोड में इस महीने की 30 तारीख तक प्रतिदिन 2 पारियों में आयोजित की जाएगी। UGC नेट परीक्षा उन अभ्यर्थियों के लिए आयोजित की जाती है जो जूनियर रिसर्च फेलोशिप JRF और सहायक प्रोफेसर के पदों तथा PhD पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पात्रता प्राप्त करना चाहते हैं। NEET UG पुनर्परीक्षा कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच संपन्न हुई। NTA ने बताया कि देश भर के 5,440 जबकि विदेश के 14 केंद्रों पर 22 लाख से अधिक अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हुए। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कक्षा 12वीं के अंकों के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के परिणाम जारी करने शुरू कर दिए हैं। बोर्ड के अनुसार 87% से अधिक आवेदनों के परिणाम घोषित किए जा चुके हैं जबकि शेष परिणाम जल्द ही जारी कर दिए जाएंगे। तमिलनाडु के पेरिया पालयम स्थित सी फूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव के कारण 7 लोगों की मौत हो गई और 70 से अधिक श्रमिक प्रभावित हुए हैं। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 6 विकेट से हरा दिया। मैनचेस्टर में ग्रुप ए मुकाबले में भारत के 159 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए दक्षिण अफ्रीका ने 5 गेंद शेष रहते 4 विकेट पर 161 रन बना लिए। दक्षिण अफ्रीका की मारिजान कैप ने नाबाद 81 रन की शानदार पारी खेली और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर महिला और पुरुष क्रिकेट दोनों में 200 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाली पहली खिलाड़ी बन गई हैं। और इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। सवेरे के 7:05 हो रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा, जिसमें आज हमारी जानकारी का विषय है उच्च रक्तचाप, कारण, लक्षण और उपचार।
4: साधारण भाषा में ये मतलब है कि खून जब हमारे धमनियों में दौरा कर रहा है तो उसका इन ब्लड वेसल्स या धमनियों की दीवार पे कितना दबाव पड़ रहा है उसको जो है लेमैन की भाषा में जो है हम रक्तचाप कहते हैं। और अगर ये एक खास लिमिट से ऊपर चला जाए तो इसको हम हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। 140/90 मिलीमीटर मरकरी से अगर ये ऊपर रिकॉर्ड हो तो इसको हम हाई ब्लड प्रेशर गिनते हैं। और अगर ये 120/80 से लेकर 140/90 के बीच में हो तो उसको हम प्री हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर से पहले वाली स्थिति कहते हैं।
5: डॉक्टर साहब, जब कोई व्यक्ति मान लीजिए उच्च रक्तचाप से पीड़ित है तो इसको किस तरह से नियंत्रित किया जा सकता है?
4: इसमें ऐसा है कि जब आपका जो है 2-3 बार रिकॉर्ड करने के बाद ये पाया जाए कि ब्लड प्रेशर जो है बढ़ा हुआ है यानी कि 140/90 से ऊपर है तो उसको हम कहते हैं कि व्यक्ति जो है हाई ब्लड प्रेशर से पीड़ित है। उसके लिए जो है वो डॉक्टरी सलाह की आवश्यकता है, जैसे कि आप एक्सरसाइज कर सकते हैं या आप स्मोकिंग अगर करते हैं तो स्मोकिंग बंद कर दें, साल्ट जो है उसकी जो जिस मात्रा में आप खाते हैं उसको जो है आप कम कर देते हैं और स्ट्रेस वगैरह को कम करने के लिए जो है उपाय जो है बताए जाते हैं। तो ये उन सब लोगों के लिए हैं जो कि हाई ब्लड प्रेशर से पीड़ित होते हैं, मगर उसके साथ उनको जो है ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए दवाइयां डाली जाती हैं, जो उनको एक बार ये सुनिश्चित हो जाए कि वो हाई ब्लड प्रेशर से पीड़ित हों तो उनको सारी उम्र भर जो है चलाना होता है। मगर इन सबसे ज्यादा ये जरूरी है कि जो एक आम आदमी है ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनका अगर वो ध्यान रखे तो वो ब्लड प्रेशर को ऊपर बढ़ने से रोक सकते हैं, क्योंकि अगर ब्लड प्रेशर ऊपर हो तो इससे जो है हमारे शरीर में तरह तरह की समस्याएं पैदा हो सकती हैं, जिस तरह दिल का दौरा पड़ने का खतरा बढ़ जाता है, दिमाग में खून की नाली फट सकती है जिससे पक्षाघात हो सकता है या आदमी की मृत्यु हो सकती है, किडनी फेलियर हो सकता है और आदमी को बाद में उसकी जो लाइफ की एक्सपेक्टेंसी है वो बहुत कम हो सकती है। उसके लिए बहुत जरूरी है कि ब्लड प्रेशर को जो है 140/90 से नीचे रखा जाए। और जो आदमी इससे पीड़ित नहीं भी हो तो वो इस तरह की अपनी जीवन शैली को बनाए या उन चीजों को करें जिससे इस ब्लड प्रेशर को एक निर्धारित मात्रा से ऊपर बढ़ने से जो है रोका जा सके। देखिए, इसमें ऐसा है कि आप डेली बेसिस के ऊपर कुछ थोड़ी बहुत जो है अगर एक्सरसाइज करें तो उससे आपको जो है ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में जो है काफी सहायता मिल सकती है। आप रोज जो है वॉक पर जा सकते हैं। अगर आप रेगुलर बेसिस के ऊपर एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपके अंदर जो हाई ब्लड प्रेशर होने का जो खतरा होता है वो 20% से लेकर 50% तक जो है कम हो जाता है। इसीलिए जो है लाइट एक्टिविटीज या हल्के मात्रा की जो एक्सरसाइजेज हैं रोज अगर आप करेंगे तो उससे वजन मेंटेन रहने के अलावा ब्लड प्रेशर ऊपर बढ़ने का जो है खतरा भी जो है कम होता जाएगा। अगर कोई भी आदमी जो है हाई ब्लड प्रेशर से पीड़ित है तो उसको जो है अपने खाने में नमक जो है वो कम मात्रा में लेना है, यानी कि कुछ लोगों को आदत होती है कि डाइनिंग टेबल पे बैठे हुए हैं तो वो अपने खाने के अंदर जो है वो एक्स्ट्रा नमक जो है छिड़कते रहते हैं या अचार वगैरह जिनके अंदर जो है नमक बहुत हाई मात्रा में होता है उसका वो सेवन करते हैं। तो इन सब चीजों का जो है आपको ध्यान रखना चाहिए कि कोई आप एक्स्ट्रा नमक नहीं डालें, अचार वगैरह से परहेज करें, और कम मात्रा में अगर आप नमक लेंगे तो उससे आपके ब्लड प्रेशर को कम होने में जो है काफी मदद मिलेगी। धूम्रपान है वो ब्लड प्रेशर के एंगल से जो है बहुत ही घातक है। अगर आप एक सिगरेट भी पी लेंगे तो उसके आधे घंटे तक जो है आपका जो ब्लड प्रेशर है वो काफी जो है बढ़ा रहता है, और जो रोज ही बहुत जो है सिगरेट पीते हैं या बीड़ी का सेवन करते हैं तो इससे ब्लड प्रेशर जो है वो काफी बढ़ जाता है। और बाद में जो है जिन लोगों को आगे ही ब्लड प्रेशर हो तो उनको उस ब्लड प्रेशर की और कॉम्प्लिकेशंस होने का खतरा जो है बहुत बढ़ जाता है। अगर आप शराब बहुत ज्यादा पीते हैं उसका भी जो है आपके ब्लड प्रेशर पर प्रभाव पड़ता है। नमक जो है उसका कम सेवन करना है, शराब का भी जो है आपको कम मात्रा में सेवन करना है, और जो लोग सिगरेट पीते हैं या बीड़ी पीते हैं तो उनको इसको बिल्कुल छोड़ देने की कोशिश करनी चाहिए। इसके अलावा ऐसा देखा गया है कि खाने में कुछ और भी चीजें होती हैं जिनका रहना जरूरी होता है या जिनके ज्यादा होने से जो है नुकसान हो सकता है। तो इसमें ये कहा गया है कि अगर आपका खाना जो है उसके अंदर जो है पोटाशियम की मात्रा जो है अगर थोड़ी ज्यादा हो तो वो आपको जो है उसका फायदा पहुंच सकता है। पोटाशियम जो है वो फलों में, सब्जियों में, डेयरी फूड में या मछलियों में जो है वो अच्छी मात्रा में जो है पाया जाता है। तो अगर
3: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा, मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर। यह आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। प्रातः के 7:10 हो रहे हैं। अब हमारे किसान भाई सुनेंगे अपना दैनिक कार्यक्रम खेती की बातें।
6: किसान भाइयों नमस्कार। किसान भाइयों खेती की बातें कार्यक्रम में आपका स्वागत है। किसान भाइयों आज हम इस कार्यक्रम के अंतर्गत चर्चा कर रहे हैं गर्मियों में कुक्कुटों की देखभाल के संबंध में। किसान भाइयों गर्मियों का मौसम चल रहा है, साथ ही साथ देखो आने वाला मौसम बरसात का है और भाई अब मानसून भी आने की तैयारी सी लगभग हो ही गई है, लेकिन भाई जो गर्मी का मौसम होता है वो भैया हमारी मुर्गियों के लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण होता है। किसान भाइयों अधिक तापमान उनके स्वास्थ्य और अंडा उत्पादन साथ ही साथ वृद्धि पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। भाइयों इस मौसम में हमारे जो कुकुट होते हैं मुर्गियां होती हैं उनकी विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है। किसान भाइयों सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि मुर्गियों को हमेशा स्वच्छ और ताजा ठंडा पानी पिलाना चाहिए। गर्मी में पानी की खपत बढ़ जाती है। भाइयों जो पानी के बर्तन होते हैं, यदि हमारा छोटे स्तर पर हमारा मुर्गी पालन व्यवसाय है तो भाई जो बर्तन होते हैं उनको दिन में लगभग 2-3 बार साफ करना चाहिए, साथ ही साथ उनमें ताजा साफ सुथरा पानी भरना चाहिए और हो सके तो भैया जो वो पानी वाले बर्तन है वो छायादार स्थान पर हमें रखने चाहिए। किसान भाइयों दूसरी बात आती है यदि हमारा ऑटोमेटिक प्लांट है तो भैया आप उस ऑटोमेटिक प्लांट में ताजा पानी सुबह से लेकर शाम तक चलाते रहें ताकि हमारी जो मुर्गियां हैं वो समय समय पर ताजा पानी पीती रहें। किसान भाइयों जो मुर्गियों का मुर्गी घर होता है भैया उसमें पर्याप्त वेंटिलेशन यानी के हवा आने जाने की व्यवस्था होनी चाहिए। गर्म और बंद वातावरण में मुर्गियां जल्दी तनावग्रस्त हो जाती हैं। किसान भाइयों जो कुकुट घर होता है उस पर भैया जो छत होती है वो अधिकतर हमारे किसान भाई जो हमारे मुर्गी पालक हैं वो भैया टीन की बनाते हैं, लेकिन भैया अगर हो सके तो सीमेंट की जो चादर आती है उसकी आप बनाएं, साथ ही साथ छप्पर की यदि बनाते हैं तो बहुत अच्छा होता है। किसान भाइयों आप उस पर यदि आप टीन सेट बनाते हैं तो उस पर आप घास या टाट या अन्य कोई ऐसी सामग्री डाल दें ताकि भैया वायुमंडल का टेम्परेचर जमीन तक आने में थोड़ा सा तापमान कम किया जा सके। किसान भाइयों मुर्गियों को आराम उस मुर्गी घर में मिल सके। किसान भाइयों गर्मियों में संतुलित और पौष्टिक आहार मुर्गियों को देना चाहिए, उनकी देखभाल रखनी चाहिए। भोजन सुबह जल्दी या शाम को दें जब तापमान अपेक्षाकृत कम हो। किसान भाइयों आहार में विटामिन खनिजों की पर्याप्त मात्रा होनी चाहिए। पशु चिकित्सक की सलाह से इलेक्ट्रोलाइट्स और विटामिन सप्लीमेंट आप दे सकते हैं। किसान भाइयों मुर्गियों में हीट स्ट्रेस के लक्षणों का ध्यान रखें, साथ ही साथ मुंह खोलकर उनको तेज सांस लेना, पंख फैलाकर सुस्ती या भोजन कम खाना ऐसे लक्षण दिखाई देने पर तुरंत ठंडा पानी उपलब्ध कराएं। किसान भाइयों मुर्गी जो घर होता है उसमें भैया आप नियमित साफ सफाई की व्यवस्था रखें। किसान भाइयों जो मुर्गियों की बीट होती है उसकी साफ सफाई करें, साथ ही साथ उसमें नमी किसी तरह की मुर्गी घर में ना हो, हमें जो बीट होती है उसकी सफाई करते रहना चाहिए। साथ ही उसमें भैया मुर्गी घर में चूना जो होता है चूने का भैया बुरकाव करते रहना चाहिए, उसको साफ सुथरा करते रहना चाहिए ताकि भैया वहां पर किसी तरह की कोई बैक्टीरिया ना पनप सके और बैक्टीरियल इन्फेक्शन हमारी मुर्गियों को ना हो जाए। गंदगी और नमी से रोग फैलने का खतरा अधिक बढ़ जाता है, तो साफ सुथरा वातावरण मुर्गियों को स्वस्थ रखने में मदद करता है। किसान भाइयों मुर्गी जो होती हैं बहुत ही सेंसिटिव होती हैं, उनको आप नियमित देखभाल करते रहें। उचित पानी की व्यवस्था हमारी मुर्गियों के देखभाल में हमें रखनी चाहिए, साथ ही छायादार वातावरण यदि हो सके तो जहां हम मुर्गी घर बना रहे हैं वो यदि पेड़ों के नीचे हो तो बहुत ही अच्छा होता है। किसान भाइयों मुर्गी पालन करते हैं वो 3 प्रकार से करते हैं, एक तो भैया अंडे के लिए, दूसरा भैया अंडों से बच्चे निकालने के लिए और तीसरा भैया मांस के लिए। तो किसान भाइयों आप जिस व्यवसाय में भी हो, जिस व्यवसाय भी आप तीनों में से कर रहे हैं तो इस तरह से आप अपनी जो मुर्गियां हैं उनकी देखभाल करें। किसान भाइयों आज तो हम अपनी बात को यहीं पर विराम देते हैं, कल फिर खेती एवं अन्य विषयों से जुड़ी जानकारी के साथ अवश्य उपस्थित होंगे। किसान भाइयों नमस्कार।
3: अभी हमारे किसान भाई सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम खेती की बातें। आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। प्रातः के 7:15 हो रहे हैं। प्रस्तुत है हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के प्रमुख कार्यक्रमों के विषय में संक्षिप्त जानकारी। आज रात्रि 9 बजकर

30 मिनट पर आप सुनेंगे कार्यक्रम पब्लिक स्पीक। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से रिले किया जाएगा। सुगम संगीत कार्यक्रम में आज संध्या 7:32 पर सुनिएगा अमिता अग्रवाल के गाए भजन। लोकगीतों के कार्यक्रम धरती गाती है में आज प्रातः 9:25 पर हम आपको सुनवाएंगे विजेंद्र कुमार की आवाज में कुछ रागनियां।

लोकगीतों के कार्यक्रम लोकधारा में आज दिन में 1:45 पर सुनिएगा चंद्रदत्त सोयाल के गाए गढ़वाली लोकगीत। आज दिन में 12:05 पर आप सुनेंगे शिशिर कानाधर चौधरी का राग मुल्तानी पर वायलिन वादन। तबले पर आपके साथ संगत करेंगे संत राम। श्रोताओं के पत्रों और व्हाट्सएप मैसेज पर आधारित फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम गीत तुम्हारे का समय रहेगा आज प्रातः 10:00।

0: कार्यक्रम परिवार जगत आप सुन सकते हैं आज दिन में 1:15 पर, जिसमें आज आप सुनेंगे कैसे रखें गर्मियों में स्वास्थ्य का ख्याल, इस विषय पर चर्चा। जानकारी क्रम में सुनिएगा नदियों का प्रदूषण और संरक्षण। साथ ही एक लघु नाटिका भी हम आपको सुनवाएंगे, जिसका विषय रहेगा जल है तो कल है। इस लघु नाटिका में प्रतिभागी कलाकार होंगे प्रमोद सिंह, वर्षा अग्रवाल, अक्षय त्यागी और ज्योति पाल। नई फिल्मों के गीतों का आनंद आप ले सकते हैं आज दिन में 2:30 पर। मेरा सपना उन्नत भारत कार्यक्रम में आज संध्या 5 बजे जानकारी का विषय रहेगा उड़ान योजना और पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। कृषि जगत कार्यक्रम में आज संध्या 6:05 पर हमारे किसान भाई सुनेंगे आमों के बागों में फल तुड़ाई में सावधानी, इस विषय पर चर्चा। साथ ही एक भेंटवार्ता भी हम आपको सुनवाएंगे, जिसका विषय रहेगा आयुष्मान भारत योजना, जिसमें आप सुनेंगे डॉक्टर निर्मल CHO नांगलसोती से नरेश पाल सिंह की बातचीत। तो श्रोताओं, ये थी जानकारी हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के प्रमुख कार्यक्रमों के संदर्भ में। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। प्रातः 7:18 हो रहे हैं।
1: भगवान से डरो, मैं किसी के प्रति बुरा भाव न रखूं, मैं किसी के अन्याय के समक्ष झुकू नहीं, मैं असत्य को सत्य से जीतूं और असत्य का विरोध करते हुए मैं सभी कष्टों को सह सकूं। महात्मा गांधी।
2: मन का धर्म है मनन करना, मनन में ही उसे आनंद है, मनन में बाधा प्राप्त होने से उसे पीड़ा होती है। रविंद्रनाथ ठाकुर।
1: अपने ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा यकीन करना मूर्खता है, सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। APJ अब्दुल कलाम।
2: जैसे सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है, बरसात सबके लिए बरसती है, उसी तरह विद्या वृष्टि सब पर बरकरार होनी चाहिए। महात्मा गांधी।
1: आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं, सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। APJ अब्दुल कलाम। निरंतर विकास जीवन का नियम है और जो व्यक्ति खुद को सही दिखाने के लिए हमेशा अपनी रूढ़िवादिता को बरकरार रखने की कोशिश करता है, वह खुद को गलत स्थिति में पहुंचा देता है। महात्मा गांधी।
2: मानव का दानव होना उसकी हार है, मानव का महामानव होना उसका चमत्कार है और मनुष्य का मानव होना उसकी जीत है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
3: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं विकास राय। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महोबा और हमीरपुर में विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास, कहा डबल इंजन सरकार की नीतियों से विकास की राह पर तेजी से अग्रसर है बुंदेलखंड।

0: के साथ मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने झांसी में आयोजित कार्यक्रम में किया योगाभ्यास। प्रदेश के 59 जिलों में नीट यूजी की पुनर्परीक्षा शांतिपूर्वक हुई संपन्न, करीब 3.5 लाख अभ्यर्थी हुए शामिल। और प्रदेश के अधिकांश जिलों में पड़ रही भीषण गर्मी से जनजीवन हुआ प्रभावित, अगले 3-4 दिन तक गर्मी से राहत के नहीं है आसार। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि नए भारत की तर्ज पर उत्तर प्रदेश ने भी अपनी नई और विशेष पहचान बनाई है। डबल इंजन सरकार की नीतियों से बुंदेलखंड विकास की राह पर तेजी से अग्रसर है। मुख्यमंत्री कल बुंदेलखंड के महोबा में 697 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 88 विकास परियोजनाओं और हमीरपुर जिले में 636 करोड़ से अधिक लागत की 75 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। महोबा जिले की आध्यात्मिकता, ऐतिहासिकता और वीरता की चर्चा करते हुए कहा कि महोबा गुरु गोरखनाथ की साधना स्थली है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों के सहयोग से गोरखगिरी पर्यटन स्थल के नए केंद्र के रूप में स्थापित हुआ है। श्री योगी ने कहा कि गोरखगिरी में रोपवे लगाया जाएगा और इसे एडवेंचर टूरिज्म के केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि बुंदेलखंड का विकास राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। इस क्रम में विभिन्न विकास योजनाओं से बुंदेलखंड को आच्छादित किया गया है। श्री योगी ने कहा कि जल्द ही बुंदेलखंड मिसाइल हब के तौर पर भी जाना जाएगा।
1: उत्तर प्रदेश की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर में बनी हुई मिसाइल ने साबित करके दिखाया और उसका हब हम चाहते हैं आने वाले समय में हमारा महोबा बने, हमीरपुर बने, चित्रकूट बने, झांसी बने, ऊर्जा के केंद्र के रूप में विकसित हो। और इसलिए विकास की योजनाओं को लेकर के औद्योगिक निवेश के लिए भी हम लोगों ने एक औद्योगिक क्लस्टर यहाँ विकसित करने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। करबई बांध के जिन किसानों ने जमीन दी थी, वर्षों से की भूमि का पैसा नहीं मिला था, उसको निस्तारित करके उसका भुगतान की कार्रवाई को संपन्न किया गया।
0: मुख्यमंत्री ने कहा कि बुंदेलखंड में जल समाधान, संरक्षण, पर्यटन की संभावनाओं और कनेक्टिविटी बेहतर करने के लिए डबल इंजन सरकार काम कर रही है। इस अवसर पर महोबा के विकास को समर्पित लघु फिल्म भी दिखाई गई। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर देश ही नहीं दुनिया भर में योगाभ्यास के कार्यक्रम आयोजित किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मुख्य समारोह से देश की अगुवाई की। श्री मोदी ने योगाभ्यास कर योग को दिनचर्या का अनिवार्य हिस्सा बनाने का संदेश दिया।
2: योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है। इसलिए योग के विषय में युक्त चेष्टस्य कर्मसु कहा गया है, यानी हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका बोध।
0: प्रदेश में भी योग दिवस के अवसर पर सभी जिलों में कार्यक्रम आयोजित किए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुंदेलखंड के झांसी में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए और योगाभ्यास कर निरोगी रहने का संदेश दिया।
3: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की पूरे प्रदेशवासियों को हृदय से बधाई देता हूँ। हम सब आभारी हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने भारत की परंपरा को, भारत की विरासत को वैश्विक मान्यता देकर के भारत के 140 करोड़ भारतवासियों को दुनिया के अंदर गौरव के साथ आगे बढ़ने और उसकी नींव पर एक विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए हम सबके लिए एक विजन प्रस्तुत किया।
0: इस अवसर पर लखनऊ के जनभवन में महिला योग सत्र आयोजित किया गया, जिसमें राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के नेतृत्व में महिलाओं ने योगासन, प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास किया। उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य प्रयागराज और ब्रजेश पाठक लखनऊ में योग दिवस पर हुए कार्यक्रमों में सम्मिलित हुए। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। प्रदेश

0: के 59 जिलों में आयोजित नीट यूजी की पुनर्परीक्षा कल शाम शुचिता के साथ शांतिपूर्वक रूप से संपन्न हो गई। एक रिपोर्ट।
1: देश के विभिन्न जिलों में बनाए गए परीक्षा केंद्रों पर करीब 3.5 लाख अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। ये मेडिकल प्रवेश परीक्षा उत्तर प्रदेश सहित देश के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में आयोजित की गई। इस परीक्षा में 22 लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल हुए। इससे पहले 3 मई को हुई नीट की परीक्षा कथित पेपर लीक विवाद की वजह से रद्द कर दी गई थी। NTA ने परीक्षा को पारदर्शी, शांतिपूर्ण और नकलविहीन तरीके से कराने के लिए सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए थे। सभी केंद्रों पर CCTV कैमरों से हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही थी। केंद्रों पर मजिस्ट्रेट और पर्याप्त सुरक्षा बल तैनात थे। समाचार कक्ष से फजल इनाम।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाने का आह्वान करते हुए कहा है कि मौसम की अनिश्चितता और मानसून की संभावित अनियमितता को देखते हुए प्रत्येक प्रदेशवासी को जल संचयन एवं जल संरक्षण के प्रयासों से जुड़ना होगा। उन्होंने कहा कि पानी की एक भी बूंद व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। कैच द रेन अभियान को और अधिक प्रभावी ढंग से संचालित किया जाए तथा वर्षा जल संचयन को व्यापक जन भागीदारी से जोड़ा जाए। उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य कल प्रयागराज में खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों और खेल संगठनों के पदाधिकारियों द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। इन सभी से संवाद करते हुए श्री मौर्य ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है और इस दिशा में कई योजनाएं जारी हैं। उन्होंने खिलाड़ियों और खेल संगठनों के पदाधिकारियों को आश्वस्त किया कि वह खिलाड़ियों के सहयोग के लिए तैयार हैं ताकि प्रयागराज सहित सभी जिलों के खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना सकें। केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उस दावे का खंडन किया है जिसमें कहा गया था कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 6,550 रुपये के प्रोसेसिंग शुल्क पर 10 लाख रुपये तक का ऋण दिया जा रहा है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इसे पूरी तरह से फर्जी बताया है। राज्य सरकार ने आदिवासी बाहुल्य सोनभद्र जिले में 257 करोड़ रुपए लागत से 86 किलोमीटर लंबी सड़कों का जाल बिछाने का फैसला किया है। जिलाधिकारी चर्चित गौड़ ने जानकारी देते हुए बताया कि सड़क निर्माण के संबंध में जल्द ही सर्वे और टेंडर प्रक्रिया संपन्न कराकर सड़क निर्माण का कार्य शुरू करा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इन सड़कों के बन जाने से सीमावर्ती 4 राज्यों से कनेक्टिविटी बेहतर हो जाएगी। इस कनेक्टिविटी से उद्योगों के लिए कच्चे माल और तैयार उत्पादों की ढुलाई में लोगों को आसानी होगी। प्रदेश के अधिकांश जिलों में इस समय भीषण गर्मी पड़ रही है। कई जिलों का अधिकतम तापमान 40 डिग्री से अधिक रिकॉर्ड किया जा रहा है। गर्मी के चलते जनजीवन प्रभावित हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार गर्मी का यह सिलसिला अगले 3-4 दिन तक जारी रहेगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश में महीने के अंत तक मानसून के पहुंचने की संभावना है। उत्तर प्रदेश में बढ़ते तापमान और लू की स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने बेसिक शिक्षा परिषद से जुड़े स्कूलों और मान्यता प्राप्त स्कूलों में ग्रीष्मकालीन अवकाश को 24 जून तक बढ़ा दिया है। इसे लेकर शासन से जारी निर्देश के अनुसार अब तक हर साल गर्मियों की छुट्टियां 20 मई से 24 जून तक रहेंगी और नियमित शैक्षणिक गतिविधियां 25 जून से शुरू होंगी। हालांकि शिक्षक, शिक्षा मित्र, प्रशिक्षक और गैर शिक्षण कर्मचारी 22, 23 और 24 जून को स्कूलों में उपस्थित रहेंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महोबा और हमीरपुर में विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, डबल इंजन सरकार की नीतियों से विकास की राह पर तेजी से अग्रसर है बुंदेलखंड। उत्साह के साथ मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने झांसी में आयोजित कार्यक्रम में किया योगाभ्यास। प्रदेश के 59 जिलों में नीट यूजी की पुनर्परीक्षा शांतिपूर्वक हुई संपन्न। करीब 3.5 लाख अभ्यर्थी हुए शामिल। और प्रदेश के अधिकांश जिलों में पड़ रही भीषण गर्मी से जनजीवन हुआ प्रभावित। अगले 3-4 दिन तक गर्मी से राहत के नहीं है आसार। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है।

0: ज्येष्ठ लोगों का सम्मान।
1: असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
2: मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 7:31 हो चुके हैं। प्रस्तुत है ज्ञान और मनोरंजन से भरा कार्यक्रम सूरज के साथ साथ।

सूरज की हर पहली किरण हर सुबह ये संदेश देती है, गिर पड़ो तो उठो, थमने लगो तो फिर से चलो, और हार जाओ तो फिर से एक नई शुरुआत करो। क्योंकि सूरज भी तो रोज उगता है और रोज ही अंधकार में डूब जाता है, अगले दिन उम्मीद की ये किरण बनने के लिए। जी हाँ श्रोताओं, हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि किसी ने कहा है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। इसी उम्मीद की पहली किरण के साथ कार्यक्रम सूरज के साथ साथ में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमारे सभी श्रोताओं को रविकांत वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। और देखिए श्रोताओं, एक बार फिर जानकारी और मनोरंजन का खजाना लेकर आ चुके हैं हम आपके साथ। और श्रोताओं, आज है 22 जून और आज हम आपसे चर्चा करेंगे मानसून में सावधानी और जल संचयन के बारे में। श्रोताओं, आज का ये दिन पृथ्वी के वर्षावनों के महत्व, उनकी जैव विविधता के संरक्षण और उन्हें विलुप्त होने से बचाने के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। आज आप सब जानते ही हैं कि इतनी भीषण गर्मी के बाद मानसून का आगमन होने ही वाला है, जो कहीं कहीं वर्षा से होने वाली हानियों का कारण भी कहलाता है। भूस्खलन, बाढ़ जैसी स्थिति, मिट्टी का कटाव, ऐसी प्राकृतिक समस्याएं हैं जो मानसून के आने पर अपना भयावह रूप दिखाती है। और श्रोताओं, वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि मानसून आने पर चिपचिपी गर्मी, बारिश के बाद तेज चिलचिलाती धूप का हमारे स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जिसमें हमें कई सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे मानसून में गंदे पानी से होने वाली तमाम फंगस बीमारियों आदि से बचने के लिए सबसे ज़रूरी है अपने निवास स्थान और आसपास की सफाई का विशेष ध्यान रखें। कूड़ा सड़क पर ना फेंकें, क्योंकि बारिश के पानी के साथ वही कूड़ा नाली नालों में अटक कर गंदे पानी से इकट्ठा होकर उसका कारण बनता है और इससे तमाम बीमारियों का जनित होता है। बासी भोजन ना करें, बिजली के खंभों से दूरी बनाए रखें, बिजली के उपकरणों को बारिश के पानी में भीगने ना दें, नहीं तो उनमें करंट आने की संभावना होती है। पानी उबालकर या फिल्टर का पानी ही पिएं, क्योंकि इन दिनों पानी से अधिकांश संक्रामक रोग फैलते हैं, जिनमें उल्टी, दस्त, हैजा, बुखार, टाइफाइड, फंगल इन्फेक्शन आदि। और श्रोताओं, क्यों ना मानसून में इस बारिश के पानी को भविष्य के लिए बचाएं, ताकि विश्व में जलापूर्ति बनी रहे। अपनी छतों पर, आंगन में पानी का टैंक बनाकर बारिश का पानी संचित करें और उसे पुनः उपयोग में लाएं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम अपनाएं, बारिश के पानी को पुनः पृथ्वी को वापस लौटाने की कोशिश करें। इसे बिना किसी नुकसान पहुंचाए भूमि में फिर से संचित करें, जिससे पृथ्वी में वाटर लेवल में बढ़ोतरी होगी। इस मानसून में अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें और आकाशवाणी नजीबाबाद यानी हमसे जुड़े रहें।

0: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
1: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
0: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
1: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
0: बुकिंग है तो संपर्क करें 870-001-4242 पर।
1: 870-001-4242।
2: श्रोताओं, गीत संगीत और संदेश के बाद कार्यक्रम सूरज के साथ साथ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और अब आपको लिए चलते हैं इतिहास के उन पन्नों की ओर जहां दर्ज है आज की तिथि यानी 22 जून की कुछ खास जानकारियां। श्रोताओं, आपको बताते हैं कि 22 जून सन 1939 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था। उनका उद्देश्य भारतीय कांग्रेस के भीतर अपने विचारों और नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए इस ब्लॉक की स्थापना करना था। आज ही के दिन यानी 22 जून सन 2016 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो ने एक बड़ा इतिहास रचते हुए एक ही रॉकेट PSLV-C34 से 20 उपग्रह सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में लॉन्च किए थे। और आज ही के दिन यानी 22 जून सन 1990 को शीत युद्ध के प्रतीक बर्लिन के प्रसिद्ध चेकपॉइंट चार्ली को ध्वस्त कर दिया गया था। ये बिंदु शीत युद्ध के दौरान पूर्वी बर्लिन और पश्चिमी बर्लिन के बीच का सबसे प्रसिद्ध क्रॉसिंग पॉइंट था।

श्रोताओं, बात करते हैं उन महान व्यक्तियों की जिन्होंने आज ही के दिन जन्म लिया और इतिहास के पन्नों में अमर हो गए। श्रोताओं, बात करें प्रसिद्ध भारतीय फिल्म अभिनेता और खलनायक अमरीश पुरी की, तो आज ही के दिन यानी 22 जून सन 1932 को नवाशहर पंजाब तत्कालीन ब्रिटिश भारत में इनका जन्म हुआ था। आज ही की तिथि यानी 22 जून सन 1950 को जन्म हुआ था जाने माने भारतीय सिनेमा अभिनेता टॉम अल्टर का। ये हिंदी सिनेमा, टेलीविज़न और रंगमंच के एक दिग्गज अमेरिकी मूल के भारतीय अभिनेता थे। इन्हें नीली आंखों वाले साहब के नाम से भी जाना जाता था। इनका जन्म मसूरी उत्तराखंड में हुआ था। इनका वास्तविक नाम थॉमस बीच अल्टर था। अनीता पॉल दुरई, जो कि एक भारतीय बास्केटबॉल टीम की पूर्व कप्तान है, इनका जन्म भी आज ही की तिथि यानी 22 जून सन 1985 को चेन्नई तमिलनाडु में हुआ था। इन्हें वर्ष 2018 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड और वर्ष 2021 में पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। श्रोताओं, अब आपको बताते हैं कि किन किन महान हस्तियों ने आज ही की तिथि को इस संसार से हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह दिया था। भारत के प्रसिद्ध कवियों में गिने जाने वाले जगन्नाथ रत्नाकर का निधन भी 22 जून सन 1932 को हरिद्वार उत्तराखंड में हुआ था। भदंत आनंद कौशलायन, जो कि एक प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान, समाज सुधारक, लेखक तथा पाली भाषा के मूर्धन्य विद्वान माने जाते हैं, इनका निधन भी आज ही की तिथि यानी 22 जून सन 1988 को हुआ था। और हिंदी भाषा साहित्य की प्रगतिशील काव्यधारा के प्रमुख कवि केदारनाथ अग्रवाल का निधन भी आज ही की तिथि 22 जून सन 2000 को हुआ था। इनकी याद में केदार शोधपीठ की ओर से हर वर्ष एक साहित्यकार को लेखनी के लिए केदार सम्मान से सम्मानित किया जाता रहा है। श्रोताओं, आज आप देख रहे हैं कि प्रतिवर्ष भीषण गर्मी का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। निरंतर गर्मी का पारा बढ़ने से सामान्य जीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। प्रत्येक मौसम, चाहे वो गर्मी हो, जाड़ा हो या बरसात, अपने नियत समय पे ना तो आता है और ना ही जाता है। गर्मी के मौसम में भीषण गर्मी से लोग मारे जाते हैं। निरंतर बढ़ती एसी की संख्या ने वातावरण में अत्यंत तीव्रता ला दी है। जाड़ों में लोग कड़कड़ाती ठंड से अपनी जान गंवा देते हैं। इसी तरह बरसात हो तो भीषण बाढ़ के प्रभाव से नदियों का जलस्तर बढ़ जाता है। गाँव के गाँव, तमाम सभ्यताएं जल प्रवाह में जलमग्न हो जाती है। अनगिनत जानमाल की हानि प्रतिवर्ष देखने को मिलती है। श्रोताओं, कहीं तो लगता है कि इन समस्याओं का कारण हम ही हैं। हमने नदियों का रास्ता संकरा कर दिया। घनी आबादी को रहने के लिए आवास हेतु जंगल काट दिए। वन्य जीवों के निवास स्थान छीन लिए। प्रकृति से इतनी छेड़छाड़ की कि अब प्रकृति अपना रौद्र रूप दिखाकर उसका बदला लेती है तो हम चीख पुकार कर ईश्वर को याद करते हैं। कहीं ना कहीं तो दोष हमारा ही रहा है जो जीवनदायिनी प्रकृति इस तरह बदला ले रही है। विकास के नाम पर मानव हरियाली की ही जड़ को खत्म करता जा रहा है। कहीं ना कहीं हम विनाश की ओर बढ़ते जा रहे हैं और इस विनाश से बचने का एक ही उपाय है, वो है वृक्षारोपण। जी हाँ श्रोताओं, हमें प्रकृति का श्रृंगार, हरियाली उसे लौटानी होगी, तभी मानव जीवन का कल्याण संभव हो सकता है। प्रत्येक व्यक्ति अगर एक पेड़ भी लगाए, चाहे वो जीवन में केवल एक ही पेड़ लगाए, उसके लगाए उस पेड़ से उसके आने वाली संतान का कल्याण संभव है। प्रकृति तो बड़ी दयालु है श्रोताओं। आपने देखा होगा, एक पेड़ जीवन भर हमें फल, फूल, छाया, लकड़ी यानी अपना सर्वस्व हमें दे देता है, और हमने क्या किया था, केवल एक बीज लगाया था और उसकी कुछ समय देखभाल की थी, लेकिन वो पेड़ हमें अपना सर्वस्व दे देता है। हमें ही नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ी को भी धन्य कर देता है। इसलिए श्रोताओं, जन्म दिवस पर, खास अवसरों पर माता पिता के नाम पर एक वृक्ष जरूर लगाएं और उसे अपने पुत्र की भांति प्यार करें। ये आपकी संतान आपको जीवन भर खुशियाँ देती रहेंगी। एक पेड़ लगाकर तो देखो श्रोताओं, आपका जीवन खुशियों से भर ना जाए तो कहना। आपका लगाया गया ये वृक्ष कई पीढ़ियों को आपकी याद भी दिलाता रहेगा।

0: अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं?
1: तो इंतजार किस बात का,
0: अभी बुक कराइए अपना विज्ञापन आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
1: विज्ञापन बुकिंग कराने के लिए आज ही संपर्क करें।
0: हमारा मोबाइल नंबर है 8865845809।
1: नंबर एक बार फिर सुन लीजिए 8865845809।
0: और हमारा ईमेल आईडी है
1: akashwaninajibabad@gmail.com।
0: तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और बुक कराइए अपना विज्ञापन आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
2: श्रोताओं, गीत संगीत और संदेश के बाद अब समय आ गया है कि आपको आज के चंद अखबारों की अहम सुर्खियों से रूबरू करवा दिया जाए। तो बात करते हैं अमर उजाला अखबार की सुर्खियों की। तो अमर उजाला अखबार लिखता है, और लगभग सभी अखबारों ने कल योग दिवस के इस खबर को प्रमुखता दी है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने कल योग दिवस पर कहा कि योग से खुलेगा शांति का मार्ग, यह बेहतर दुनिया के लिए जरूरी है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी की प्रारंभिक जांच के बाद कई अधिकारी अयोध्या में ही ठहरे, विस्तृत जांच का बढ़ेगा समय, SIT आज सौंपेगी रिपोर्ट। लेबनान पर हमले से ईरान और अमेरिका में तनातनी, ट्रंप ने फिर दी हमले की धमकी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री स्टारमर का इस्तीफे का बड़ा दबाव, एंडी हो सकते हैं ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री।

भारत और सिंगापुर में एबीएस समूह की 1023 करोड़ की संपत्तियां जब्त। गोवा में अवैध लौह अयस्क खनन मामले में ईडी की बड़ी कार्यवाही। और महिला टी20 विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका ने भारतीय टीम को 6 विकेट से हराया। अब बात करते हैं श्रोताओं दैनिक जागरण अखबार की। दैनिक जागरण अखबार लिखता है कि पहाड़ों में बारिश के आसार, मैदानी इलाकों में गर्मी और उमस बरकरार। पीएम मोदी ने कोलकाता में कल 35,000 लोगों के साथ किया योग अभ्यास। पहाड़ से मैदान तक योगमय हुई दुनिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि बुंदेलखंड होगा मिसाइल निर्माण का हब। देश भर में 17.5 लाख पुरुष सरपंचों को मिलेगी महिला सुरक्षा की ट्रेनिंग। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दिसंबर तक हो जाएगा भारत ईयू के बीच एफटीए। अब श्रोताओं बात करते हैं हिंदुस्तान अखबार की। तो हिंदुस्तान अखबार की अहम सुर्खियां हैं, 1000वें फीफा विश्व कप मैच में जमकर चली जापानी तलवार। जापान ने एक तरफा मुकाबले में ट्यूनेशिया को 4-0 से हराया। स्विट्जरलैंड में अमेरिका ईरान के बीच बातचीत फिर से शुरू। देश भर में बिना बाधा संपन्न हुई नीट की परीक्षा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश में कहीं भी पानी संकट न उत्पन्न हो। उन्होंने मानसून और भूजल संरक्षण की समीक्षा की। तो श्रोताओं ये तो थी आज के चंद अखबारों की सुर्खियां। और श्रोताओं अब बात करते हैं फिल्मी दुनिया के विलेन कहे जाने वाले अमरीश पुरी की। तो चरित्र अभिनेता मदन पुरी के छोटे भाई अमरीश पुरी हिंदी फिल्मों की दुनिया के एक प्रमुख स्तंभ रहे हैं। और आज यानी 22 जून को इस महान फिल्म अभिनेता की जन्मतिथि है। इनका जन्म 22 जून सन 1932 को नवांशहर पंजाब तत्कालीन ब्रिटिश भारत में हुआ था। अभिनेता के रूप में निशांत, मंथन और कई फिल्मों में भूमिका जैसी फिल्मों में अपनी पहचान बनाने वाले अमरीश पुरी ने बाद में खलनायक, मिस्टर इंडिया, राम लखन, त्रिदेव, नगीना, गांधी, फूल और कांटे, दामिनी, करण अर्जुन, कोयला जैसी बेहतरीन फिल्मों में विलेन के रूप में अपनी अलग ही पहचान बनाई है। इन्होंने कई भाषाओं में फिल्मों में काम किया। इन्होंने फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में बाबूजी का किरदार बड़ी ही सुंदरता से निभाया। अमरीश पुरी ने फिल्म के हर दौर में बखूबी अभिनय किया, चाहे वो मिस्टर इंडिया का मोगैम्बो खुश हुआ संवाद हो या फिर दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे का जा सिमरन जा जी ले अपनी जिंदगी ये वाला संवाद हो, ये लोगों के दिलो दिमाग पर हमेशा छाए रहे। अमरीश पुरी ने अपना फिल्मी कैरियर वर्ष 1960 के दशक में रंगमंच की दुनिया से अपने अभिनय कैरियर की शुरुआत की थी। इनकी सबसे पहली फिल्म वर्ष 1971 में प्रेम पुजारी थी। 1987 में मिस्टर इंडिया में मोगैम्बो की भूमिका में ये लोगों के जहन पर छाए रहे। 1990 के दशक में इन्होंने दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म, घायल और विरासत जैसी फिल्मों में अपनी सकारात्मक भूमिका से लोगों का दिल जीत लिया। तो आइए हम सब भी सुनते हैं अमरीश पुरी पर फिल्माया ये प्यारा सा गीत।

0: साथ साथ। अभी आप सुन रहे थे ज्ञान और मनोरंजन से भरा कार्यक्रम सूरज के साथ साथ, मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। सवेरे के 8 बजने को हैं। आपसे कुछ ही पलों बाद आकाशवाणी दिल्ली से समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मजबूत समुद्री क्षमता किसी भी देश के आर्थिक और रणनीतिक प्रभाव में निर्णायक है और भारत इस ओर अग्रसर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मध्य प्रदेश के कोनो राष्ट्रीय उद्यान के दौरे पर हैं, चीता परियोजना की समीक्षा की। भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 2 दिवसीय बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी आज से यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा का आयोजन करेगी। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा, स्विट्जरलैंड में प्रतिनिधिमंडलों की बैठक के बाद ईरान वार्ता में प्रगति। और पुरुष हॉकी में भारत ने FIH प्रो लीग रॉटरडम चरण के अपने अंतिम मैच में नीदरलैंड को 3-2 से हराया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि किसी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति में समुद्री क्षमता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और भारत इसे मजबूत बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। कोलकाता में कल स्वदेश निर्मित 3 नौसैनिक पोतों दूनागिरी, संशोधक और अग्रय को नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है और केवल हथियारों का खरीदार देश बनकर नहीं रहना चाहता।
2: आज भारत रक्षा क्षेत्र में केवल खरीदार बनकर नहीं रहना चाहता। हमारी सैन्य शक्ति दुनिया के लिए बाजार नहीं बन सकती। मेरी शक्ति की, सामर्थ्य की पहचान मेरी आत्मनिर्भरता पर है।
1: श्री मोदी ने कहा कि समुद्री सामर्थ्य के बिना कोई भी देश वैश्विक शक्ति नहीं बन सकता। विकास, सुरक्षा और समृद्धि का सीधा संबंध समुद्र से है। श्री मोदी ने कहा कि INS विक्रांत से शुरू हुई आत्मनिर्भरता की यात्रा को इन नए पोतों के शामिल होने से और गति मिलेगी।
2: INS विक्रांत से लेकर आज तक की यात्रा केवल नए युद्ध पोतों की यात्रा नहीं है, यह भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता की यात्रा भी है। इनका निर्माण भारत में हुआ है, इनकी डिजाइन भारत में तैयार हुई है, इनके निर्माण में भारतीय उद्योगों की प्रतिभा लगी है और यही नए भारत की सबसे बड़ी ताकत है।
1: प्रधानमंत्री ने बताया कि पिछले कुछ वर्षों में 40 से अधिक युद्धपोत और पनडुब्बियां नौसेना में शामिल की गई हैं।
2: भारत निर्माता बनना चाहता और जिस दिन निर्माता होगे ना, उस दिन हम निर्णायक भी होंगे। बीते वर्षों में 40 से अधिक मेड इन इंडिया युद्धपोत और पनडुब्बियां नौसेना में शामिल हुई है। वर्तमान में भी 45 बड़े नौसैनिक प्लेटफॉर्म निर्माणाधीन है। यह केवल संख्या नहीं है, यह भारत की औद्योगिक क्षमता का प्रमाण है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 को वैश्विक उत्सव बनाने के लिए विश्व भर के लोगों का आभार व्यक्त किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि यह देखकर खुशी होती है कि योग सभी क्षेत्रों और विभिन्न देशों के लोगों को स्वस्थ जीवन तथा कल्याण की साझा खोज में एकजुट कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान का दौरा किया। उन्होंने भारत के प्रमुख पहल चीता पुनर्वास परियोजना की प्रगति की समीक्षा भी की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज सुबह कूनो नेशनल पार्क में सफारी की। इसके बाद वे कूनो के चीता कमांड एवं कंट्रोल सेंटर का दौरा कर चीता परियोजना से जुड़ी प्रदर्शनी का अवलोकन किया था। अधिकारियों ने उन्हें बताया कि वर्तमान में भारत में 52 चीते हैं। उन्हें चीतों की निगरानी और ट्रैकिंग व्यवस्था के बारे में भी जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2022 में अपने जन्मदिन पर नाम्बिया से लाए गए 8 चीतों को कुनो नेशनल पार्क में छोड़कर भारत की महत्वाकांक्षी चीता पुनर्स्थापन परियोजना की शुरुआत की थी। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना से भी चीते लाए गए। संरक्षण और प्रजनन के प्रयासों के कारण अब कुनो में चीतों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिसे परियोजना की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी न्यूज, भोपाल।
1: भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 2 दिवसीय बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल बैठक की अध्यक्षता करेंगे। एक रिपोर्ट।
4: इस दौरान साइबर सुरक्षा, डिजिटल खतरों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े जोखिमों तथा अन्य गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। प्रतिनिधि आतंकवाद रोधी सहयोग और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के सुरक्षित उपयोग से जुड़े मुद्दों की भी समीक्षा करेंगे। बैठक में भारत, ब्राजील, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स के 11 सदस्य देशों के सुरक्षा प्रमुख भाग लेंगे। चीन के विदेश मंत्री वांग यी भी इसमें शामिल होंगे। ये चौथी बार है जब भारत ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। इस वर्ष भारत की अध्यक्षता का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास का निर्माण। समाचार कक्ष से मैं ब्रिगनैनी पांडे।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की UGC नेट जून 2026 परीक्षा आज से शुरू होगी। ये राष्ट्रीय स्तर की पात्रता परीक्षा कंप्यूटर आधारित टेस्ट CBT माध्यम से 30 जून तक प्रतिदिन 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। UGC नेट परीक्षा उन अभ्यर्थियों के लिए आयोजित की जाती है जो जूनियर रिसर्च फेलोशिप JRF, सहायक प्रोफेसर के पदों और PhD पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पात्रता प्राप्त करना चाहते हैं। नीट UG पुनर्परीक्षा कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच संपन्न हुई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया कि देशभर के 5,440 जबकि विदेश के 14 केंद्रों पर 22 लाख से अधिक अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हुए। इस बीच NTA ने नीट UG पुनर्परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने के दावे को खारिज किया है। सोशल मीडिया पर प्रसारित एक वीडियो में प्रश्न पत्र टेलीग्राम पर लीक होने का दावा किया गया था। NTA ने कहा है कि परीक्षा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सफलतापूर्वक आयोजित की गई है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कक्षा 12वीं के अंकों के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के परिणाम जारी करने शुरू कर दिए हैं। बोर्ड के अनुसार 87% से अधिक आवेदनों के परिणाम घोषित किए जा चुके हैं जबकि शेष परिणाम जल्द ही जारी किए जाएंगे। पश्चिम बंगाल विधानसभा में आज भाजपा सरकार अपना पहला पूर्ण बजट पेश करेगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली सरकार के इस बजट पर सभी का ध्यान है। 19वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 कल शाम संपन्न हो गया। मुंबई में आयोजित समापन समारोह को संबोधित करते हुए महाराष्ट्र के राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा ने महोत्सव को गैर काल्पनिक सिनेमा के लिए विश्व के सबसे प्रतिष्ठित समारोहों में से एक बताया। हमारी संवाददाता ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता वर्ग में पोलैंड के वृत्तचित्र सिल्वर ने सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र के लिए प्रतिष्ठित गोल्डन कॉन्च पुरस्कार जीता।
5: अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता विभाग में माया सॉन्ग को सर्वश्रेष्ठ एनिमेशन फिल्म के लिए सिल्वर कॉन्च और अंडर द स्नो को सर्वश्रेष्ठ लघु कथा फिल्म का सिल्वर कॉन्च दिया गया। राष्ट्रीय प्रतियोगिता विभाग में आर्मस्ट्रांग फ्रॉम अंगलम्मन कोविल स्ट्रीट को सर्वश्रेष्ठ एनिमेशन फिल्म का सिल्वर कॉन्च मिला। वहीं स्मॉल क्लाउड को सर्वश्रेष्ठ लघु कथा फिल्म और वाई को सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फिल्म का सिल्वर कॉन्च प्रदान किया गया। दी ओल्ड बुल नोज और वंस न्यू को सर्वश्रेष्ठ छात्र फिल्म का पुरस्कार मिला जबकि द लास्ट शेल्टर को विकसित भारत वंदे मातरम के 150 वर्ष भारत एक्ट 2026 विषय पर बनी सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म का पुरस्कार दिया गया। इसी के साथ मिफ 2026 का समापन हुआ। अंकिता आप्टे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि ईरान के साथ वार्ता में प्रगति हो रही है। स्विट्जरलैंड में ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों पर अमेरिका और ईरान के वरिष्ठ प्रतिनिधिमंडलों के बीच बातचीत जारी है। एक रिपोर्ट।
6: लेक ल्यूर्सन के निकट बर्गनस्टॉक रिजॉर्ट में बंद कमरे में हो रही इस वार्ता से पहले जेडी वेंस ने कहा कि अब तक की बातचीत के उत्साहजनक परिणाम सामने आए हैं और आगे भी प्रगति की उम्मीद है। वार्ता का मुख्य केंद्र ईरान का परमाणु कार्यक्रम है। इसके साथ ही इसराइल और लेबनान के बीच युद्ध विराम बनाए रखने सहित क्षेत्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर भी चर्चा जारी है। जेडी वेंस ने कहा कि हाल के कूटनीतिक प्रयासों से सकारात्मक परिणाम मिले हैं और क्षेत्र में शांति तथा स्थिरता बनाए रखने के लिए अमेरिका लगातार प्रयासरत है। पश्चिम एशिया में तनाव कम करने और कूटनीतिक समाधान की दिशा में इस वार्ता पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की नजर बनी हुई है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नागरिक अलंकरण वर्ष 2026 के दूसरे समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर हम अपनी विशेष श्रृंखला पीपुल्स पद्म ऑन आकाशवाणी के तहत 15 विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं।
7: हम लिख के गया ऐसा करते करते लेखक का एक दर्जा मिल गया।
8: सोना घाटी की पहाड़ी, पहाड़ी को देखा तो उस पहाड़ी पर एक भी पेड़ नहीं था, वृक्ष विहीन पहाड़ी हो गई थी, झाड़ियाँ कुछ बची थी और वहाँ पर 8,000 से ज्यादा हमने जल संरचनाएं बनाई।
9: समाज से तुलना के लिए हम सोचा, समाज जागरण के लिए, आदमी के लिए हम सोचा क्या करना है और क्या नहीं करना है।
10: मेरे मन माया कि हम इनको आत्मनिर्भर करना है तो इनको साक्षरता बनाना है, इनको शिक्षा देना है।
1: ये विशेष कार्यक्रम आज और कल प्रातः 9:10 पर आकाशवाणी गोल्ड से प्रसारित होंगे, जिन्हें न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में अपर केंद्रीय आयुक्त पूर्णेंदु भूषण वर्मा इस परिचर्चा में भाग लेंगे। पुरुष हॉकी में भारत ने कल रॉटरडैम में FIH प्रो लीग के अपने अंतिम मुकाबले में नीदरलैंड्स को 3-2 से हराकर शानदार जीत दर्ज की। भारत की ओर से जुगराज सिंह, अभिषेक और राजेंद्र सिंह ने गोल किए। मौसम विभाग ने असम और मेघालय में आज मूसलाधार बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तराई वाले इलाकों और सिक्किम में भी आज तेज वर्षा की संभावना है। मौसम विभाग ने बताया कि बिहार, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, माहे, कोंकण, गोवा और लक्षद्वीप में कल तक तेज बारिश का अनुमान है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
11: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठों पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के भव्य आयोजन और कड़ी सुरक्षा के बीच फिर से नीट परीक्षा कराए जाने के समाचार छाए हुए हैं। वीर अर्जुन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कथन को शीर्ष समाचार बनाया है। शांति का मार्ग प्रशस्त कर सकता है योग। कोलकाता में योग दिवस समारोह के दौरान एक प्रतिभागी की मदद करते हुए प्रधानमंत्री की तस्वीर भी अखबार में प्रमुखता से प्रकाशित है। दैनिक जागरण ने इस खबर को शीर्षक दिया है, पहाड़ से मैदान तक योगमय हुई दुनिया। सियाचिन ग्लेशियर की बर्फीली ऊंचाइयों और पानी की गहराइयों में योग करते सैनिकों के चित्र भी ध्यान आकर्षित करते हैं। पंजाब केसरी और दैनिक भास्कर ने क्रिकेट खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी की तस्वीरों को पहले पन्ने पर सबसे ऊपर छापते हुए उनकी उपलब्धियां बयां की हैं। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, वैभव क्रिकेट की दुनिया का अजूबा। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, नीट देने 2,00,000 अभ्यर्थी पहुंचे। दैनिक जागरण बताता है कि देश विदेश के 5,454 केंद्रों पर यह परीक्षा हुई और गड़बड़ी की कोई सूचना नहीं है। परीक्षा में भाग ले रहे उम्मीदवारों को कोई कठिनाई ना हो इसलिए प्रधानमंत्री मोदी के हवाई अड्डे पर 45 मिनट प्रतीक्षा करने को भी अखबार ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। जनसत्ता ने पहलगाम हमले की जांच के सामने आए कुछ तथ्यों को सचित्र प्रकाशित करते हुए खबर को शीर्षक दिया है, सीमा पार से आए ड्रोन ने गिराए थे हथियार।
1: और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मजबूत समुद्री क्षमता किसी भी देश के आर्थिक और रणनीतिक प्रभाव में निर्णायक है और भारत इस ओर अग्रसर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान के दौरे पर हैं, चीता परियोजना की समीक्षा की। भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की दो दिवसीय बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी आज से यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा आयोजित करेगी। और पुरुष हॉकी में भारत ने FIH प्रो लीग रॉटरडैम चरण के अपने अंतिम मैच में नीदरलैंड्स को 3-2 से हराया। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
12: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सायरा मुज्तबा। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेज स्ट्रॉन्ग मैरिटाइम कैपेबिलिटी इज डिसाइडिंग फैक्टर फॉर अ कंट्रीज इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस एंड इंडिया इज प्रिपेयरिंग फॉर इट। President Draupadi Murmu visits Kuno National Park in Madhya Pradesh, reviews progress of Project Cheetah. India to host two-day meeting of BRICS National Security Advisors in New Delhi today. National Testing Agency to commence UGC NET June 2026 examination from today. U.S. Vice President J.D. Vance says Iran talks making progress as delegations meet in Switzerland. And in men's hockey, India beat Netherlands 3-2 in the last match of FIH Pro League Rotterdam leg. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has said that a strong maritime capability is the deciding factor for a country's economic and strategic influence, and India is preparing for it. He said a country with maritime capabilities is strong and has more economic and strategic influence.
2: भारत आज अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए आज भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, नदी जलमार्गों का विस्तार कर रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है, सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
12: Prime Minister Modi made these remarks after commissioning three indigenously built Indian Navy platforms, INS Dunagiri, INS Sanshodhak and INS Agra at the Shyama Prasad Mukherjee port in Kolkata yesterday. Designed by the Navy's Warship Design Bureau and built by Garden Reach shipbuilders and engineers, the vessels are intended to strengthen combat operations, hydrographic surveying and anti-submarine warfare.
2: जब समुद्री विरासत की बात होती है तो बंगाल का नाम स्वाभाविक रूप से सामने आता है। यह भारत के समुद्री संपर्कों की भी महत्वपूर्ण भूमि रही है। हुगली की धाराओं ने इतिहास को बदलते हुए देखा है, व्यापार के नए अध्याय देखे हैं, विकास की नई यात्राएं देखी है और संयोग देखिए, ये पोर्ट बंगाल के ही सपूत देश के पहले उद्योग मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर है।
12: Prime Minister Modi has expressed gratitude to people around the world for making the International Day of Yog 2026 a global celebration. The Prime Minister said it is encouraging to see yog bringing together people from all walks of life across nations in the shared pursuit of wellness and good health. He expressed hope that the day would inspire more people to make yoga a part of their daily lives in the times to come. President Draupadi Murmu visited Madhya Pradesh's Kuno National Park yesterday and reviewed the progress of Project Cheetah, India's flagship initiative to reintroduce the species in the wild after its extinction in the country. During the visit, the president toured the park's cheetah management area and was briefed by officials on the status of the project. Kuno, the country's first cheetah reintroduction site, has been developed under Project Cheetah because of its suitable habitat, adequate prey base and relatively low human disturbance. More from our correspondent.
3: President Draupadi Murmu went on a safari at Kuno National Park this morning. The president will also interact with the members of the Saharia tribe working as cheetah mitras, cheetah trackers, local forest personnel and tourist guides to learn about their experiences and role in the project. Earlier on Sunday, President Murmu visited the Cheetah Command and Control Center at Kunu. The president viewed an exhibition related to the cheetahs project. Officials informed her that India currently has 52 cheetahs, of which 49 are in the Kunu National Park, while 3 have been shifted to the Gandhi Sagar Wildlife Sanctuary. She was also briefed about the monitoring and tracking system used for the animals. Prime Minister Narendra Modi launched India's ambitious cheetah reintroduction project in 2022 by releasing 8 cheetahs into Kunu National Park on his birthday. Subsequently, more cheetahs were brought from South Africa and Botswana. Abhinav Goyal, Akashvani News, Bhopal.
12: India will host the two-day BRICS National Security Advisors meeting in New Delhi beginning today. National Security Advisor Jeetu Bhal will chair the meeting. A report.
13: During the meeting, the National Security Advisors and heads of delegation of BRICS member countries will exchange views on the theme, Non-Traditional Security Challenges Confronting the World Today. They will discuss the rapidly evolving nature of national security challenges as well as the role of new technologies in emerging security threats. The National Security Advisors and heads of delegation will also review the outcomes of the recently held BRICS Joint Working Groups on Counter-Terrorism and on Security in the Use of Information and Communication Technologies. Rishu Jaiswal, Akashvani News, Delhi.
12: The National Testing Agency or NTA will commence the UGC NET June 2026 examination from today. We have a report.
14: The national level eligibility test will be conducted in computer-based test CBT mode until 30th of this month in two shifts each day. The UGC NET is conducted for candidates aspiring to qualify for the Junior Research Fellowship JRF, assistant professor positions and admission to PhD courses. The NTA has advised candidates to download their admit cards and carefully verify all examination details. It said that candidates must check their examination date, shift, timing and allotted examination center before the exam day. Moreover, persons with disabilities or persons with benchmark disabilities candidates have been advised to visit their allotted centers in advance to familiarize themselves with the location and facilities. Chirag Jha, Akashwani News, Delhi.
12: The NTA has refuted claims of a video circulating on social media that the NEET UG 2026 re-examination question paper was leaked on Telegram before the examination. In a social media post, NTA said that the examination was conducted successfully under comprehensive security and surveillance. It further said that manufacturing and deliberately circulating such misinformation to defraud or alarm students is a serious offence. NTA said that it is taking action against those responsible for originating this content with the support of Indian Cybercrime Coordination Center and law enforcement agencies. The Central Board of Secondary Education or CBSE has commenced the release of Class 12 verification of issues observed and re-evaluation outcomes. The status of applications can be checked at results.digilocker.gov.in. A report.
15: The CBSE said in a statement that the outcomes are being released in a phased manner, with over 80% of the total applications received was declared yesterday. The outcomes of the remaining applications will be made available in phases and the entire process is expected to be completed soon. CBSE has assured students that every application has been processed through a robust, transparent and carefully monitored system to ensure fairness and accuracy. Students have been advised not to believe rumors or unverified social media posts and to rely only on official CBSE communications for authentic information. With Suparna's report, Komudi Parikh, Akashvani News, Delhi.
12: In West Bengal, anticipation is high as the BJP government prepares to present its first full-fledged budget today in the assembly. For Chief Minister Shubhendu Adhikari, this marks the first major test of promises made during the election campaign. With the centre pledging massive financial support and the advantage of a double-engine government, expectations among citizens are soaring. This is Akashvani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at EIR News Alerts. And for details of these stories and more, log on to our website www.newsoneir.gov.in. and download the News on AIR app. Welcome back. You're listening to Morning News. President Draupadi Murmu will present Padma Awards for the year 2026 at the second civil investiture ceremony tomorrow. On this occasion, we bring 15 special programs as part of our series, People's Padma on Akashvani.
16: I've been working for the last 25 years on traditional Siddha-based ethno-veterinary medicine to counteract some of the issues affecting the livestock production in India.
17: But as a country, we need microprocessors that should be indigenously developed.
18: Award is an acknowledgement to the great teamwork from DRDO and industries, inspection agencies.
12: In these episodes, listeners will get an insight into the work and life of Padma Awardees. These programs will be broadcast today and tomorrow on 100.1 Akashvani Gold. They can also be heard on News on AIR app and News on AIR official YouTube channel. So stay tuned to Akashvani today and tomorrow from 9:10 a.m. onwards. The 19th Mumbai International Film Festival, or MIFF 2026, concluded last evening. Addressing the closing ceremony held in Mumbai, Maharashtra Governor Jishnu Dev Verma hailed MIFF as one of the most prestigious festivals in the world for non-fiction cinema. Polish documentary Silver bagged the prestigious Golden Conch for Best Documentary in the international competition section. More from our correspondent.
19: The best films across various categories were honored with 18 awards by Maharashtra Governor Jishnu Dev Verma, Additional Secretary, Ministry of Information and Broadcasting, Mr. Prabhat, and others. In the international competition section, Maya's Song won the Silver Conch for Best Animation Film and Under the Snow received the Silver Conch for Best Short Fiction Film. In the national competition category, the Silver Conch for Best Animation Film was awarded to Armstrong from Angalamman Kovil Street. The Silver Conch for Best Short Fiction Film went to Small Clouds, while Y won the Silver Conch for Best Documentary Film. The Old Bull Nose, or Once New, won the award for Best Student Film, while The Last Shelter

0: नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, नदी जलमार्गों का विस्तार कर रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है, सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
1: वजीरआजम ने यह राजधानी मुल्क ही में तैयार किए गए जंगजू जहाज दूनागिरी, जायजा लेने वाले जहाज संशोधक और गहरे पानी में सरगर्मियां अंजाम देने वाले आबदोस चिकन बहरी जहाज एग्रे को कल बहरिया के कामकाज में शामिल करते हुए किया। इन जहाजों को बहरिया के जंगजू जहाज तैयार करने वाले ब्यूरो ने डिजाइन किया है और इनकी तामीर गार्डन रिसर्च शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने की है। इन बहरी जहाजों का मकसद जंगी सरगर्मियों को मुस्तहकम बनाना, समंदर के जायजे लेना और आबदोस शिकन कार्रवाइयां अंजाम देना है।
0: जब समुद्री विरासत की बात होती है तो बंगाल का नाम स्वाभाविक रूप से सामने आता है। यह भारत के समुद्री संपर्कों की भी महत्वपूर्ण भूमि रही है। हुगली की धाराओं ने इतिहास को बदलते हुए देखा है, व्यापार के नए अध्याय देखे हैं, विकास की नई यात्राएं देखी है और संयोग देखिए, ये पोर्ट बंगाल के ही सपूत देश के पहले उद्योग मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर है।
1: वजीरआजम मोदी ने दुनिया भर के लोगों का शुक्रिया अदा किया है कि उन्होंने योग के 2026 के बैन अलाक्वामी दिन को एक आलमी तकरीब की शक्ल दी। वजीरआजम ने कहा कि ये बात हिम्मत अफजा है कि योग की वजह से दुनिया के मुल्कों में जिंदगी के सभी शोबों के लोग तंदुरुस्ती और अच्छी सेहत के लिए यकजा हो रहे हैं। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि इस दिन से मजीद लोगों को तहरीक मिलेगी और वो योग को आने वाले वक्त में अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनाएंगे। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू ने कल मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क की सैर की। उन्होंने चीता प्रोजेक्ट की पेशरफ्त का जायजा लिया जो मुल्क में चीतों के खत्म हो जाने के बाद जंगल में इनकी बाजाबादकारी के लिए भारत का एक अहम कदम है। सदर जमहूरिया ने अपने दौरे में चीतों के बंदोबस्त के इलाके का दौरा किया। उन्हें अफसरों ने इस प्रोजेक्ट की मौजूदा सूरत हाल की जानकारी दी। कूनो मुल्क की पहली ऐसी जगह है जहां चीतों की बाजाबादकारी की गई है। इस जगह को प्रोजेक्ट चीता के तहत तैयार किया गया है क्योंकि ये इनके लिए एक मुनासिब और वाफर शिकार वाली जगह है। इसके अलावा यहां इंसानी मुदाखलत भी निस्बतन कम होती है।
2: सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज कूनो नेशनल पार्क की सफारी का दौरा किया। उन्होंने सहारिया कबीले के अरकान से भी बातचीत की जो चीता प्रोजेक्ट के तहत चीता मित्रों, चीता ट्रैकर्स, मकामी जंगलाती अमले और सयाहों के गाइड्स के तौर पर काम कर रहे हैं। इससे पहले इतवार को सदर जमहूरिया ने कूनो में चीता कमान और कंट्रोल मरकज का दौरा किया था और चीता प्रोजेक्ट से मुतालिक एक नुमाइश देखी थी। अफसरों ने उन्हें बताया कि भारत में फिलहाल 52 चीते हैं जिनमें से 49 चीते कूनो नेशनल पार्क में हैं। तीनों चीतों को गांधी सागर जंगलाती तहफुज गांव में मुंतकिल कर दिया गया है। सदर जमहूरिया को मवेशियों पर नजर रखने और उनकी ट्रैकिंग के निजाम के बारे में जानकारी दी गई। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने चीतों की बाजाबादकारी का प्रोजेक्ट 2022 में शुरू किया था जिसके लिए उन्होंने अपने यौम पैदाइश पर कूनो नेशनल पार्क में नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को लाकर बसाया था। इसके बाद जनूबी अफ्रीका और बोत्सवाना से मजीद चीते लाए गए। भोपाल से अभिनव गोयल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर।
1: भारत आज नई दिल्ली में शुरू होने वाली ब्रिक्स कौमी सलामती के मुशीरों की 2 रोजा कॉन्फ्रेंस की मेजबानी के फराइज अंजाम देगा। कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल कॉन्फ्रेंस की सदारत करेंगे जिसमें इस ब्लॉक के 11 रुकन मुल्कों के सलामती से मुतालिक सरबराहान शिरकत करेंगे। इनमें भारत, ब्राजील, चीन, मिस्र, एथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, सऊदी अरब, जनूबी अफ्रीका और मुत्तहिदा अरब अमारात शामिल हैं। एक रिपोर्ट।
3: कॉन्फ्रेंस में सभी अरकान आज दुनिया को दरपेश सलामती के गैर रिवायती चैलेंजेस के मौजू पर तबादले ख्याल करेंगे। साथ ही वो कौमी सलामती को दरपेश खतरात की नौइयत पर बातचीत करेंगे और सलामती के उभरते हुए खतरात में नई टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर भी तवज्जो मरकूज करेंगे। वफूद साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल खतरात और मस्नूई ज़हानत से पैदा होने वाले खतरात पर भी गौरखोज करेंगे। सभी रुकन ममालिक के कौमी सलामती के मुशीर और वफद के सरबराहान इंफॉर्मेशन और मवासिलाती टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर सिक्योरिटी और इंसदाद दहशतगर्दी से मुतालिक ब्रिक्स की वर्किंग ग्रुप्स की हालिया मीटिंग के नतीजे का जायजा भी लेंगे। भारत की सदारत का मरकजी मौजू

लता मंगेशकर के स्वर में अभी आप सुन रहे थे फिल्म असली नकली का ये प्यारा सा गीत। गीत लिखा था शैलेंद्र ने और इस गीत के लिए धुन तैयार की थी शंकर जयकिशन ने।

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल। देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गोल्डन हिट्स, और अब लिए चलते हैं आपको कार्यक्रम के अगले गीत की ओर, जिसे हमने लिया है फिल्म जीने की राह से। आवाज है मोहम्मद रफी की, शब्द रचना आनंद बख्शी की है, और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: चंदन का एहसास।
1: ये कहानी है एक नर्स और उसके अंतर्मन की।
2: आगे सैलरी?
3: हाँ।
2: नहीं झुमके ना, पहले बचत,
3: पहले झुमके।
2: सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो, और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री।
3: लेकिन झुमकों का क्या,
2: जाते हो कि
3: हाँ?
2: लगाओ इंजेक्शन,
4: आरबीआई कहता है।
1: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
5: श्रोताओं, कार्यक्रम गोल्डन हिट्स में अब आपको सुनवाते हैं मुकेश की आवाज में ये प्यारा सा गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म उपकार से। शब्द रचना कमर जलालाबादी की है और इस गीत को संगीत से सवारा है कल्याण जी आनंद जी ने।

मुकेश की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे फिल्म उपकार का ये गीत। और श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म जीवन मृत्यु से। आवाज़ें हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने और इस गीत के लिए संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: झिलमिल सितारों का आंगन होगा। ये प्यारा सा गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी के युगल स्वर में। फिल्म का नाम था जीवन मृत्यु। और श्रोताओ, अब चलते हैं कार्यक्रम के अगले गीत की ओर, जिसे हमने लिया है लता मंगेशकर और अमित कुमार के युगल स्वर में। फिल्म का नाम है आखिर क्यों। गीत लिखा है इंदिवर ने और इस गीत के लिए संगीत दिया है राजेश रोशन ने।
1: दुश्मन

लता मंगेशकर और अमित कुमार के युगल स्वर में अभी आप सुन रहे थे फिल्म आखिर को का ये प्यारा सा गीत। और श्रोताओ, अब बढ़ते हैं कार्यक्रम के अंतिम गीत की ओर, जिसे हमने लिया है फिल्म वक्त से। आवाज है आशा भोसले की, गीत लिखा है साहिर लुधियानवी ने और इस गीत के लिए धुन तैयार की है रवि ने।

आशा भोसले की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे फिल्म वक्त का ये गीत। और श्रोताओं, इसी गीत के साथ ही कार्यक्रम गोल्डन हिट्स अब यहीं पर संपन्न होता है। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्स पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। सवेरे के 9:15 होने को हैं। अब से कुछ ही पलों बाद आकाशवाणी लखनऊ से जिले की हलचल प्रसारित की जाएगी।

0: जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए कुशीनगर और मिर्जापुर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं कुशीनगर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है डॉक्टर विवेक कुमार पांडे का।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीते दिनों कुशीनगर जिले के तमकुही राज में आयोजित एक कार्यक्रम में तमकुही राज व फाजिलनगर विधानसभा क्षेत्रों की 424 करोड़ की लागत वाली 278 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण किया। इस अवसर पर आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए श्री योगी ने अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि पिछली सरकारों ने यहां जनता से कोई सरोकार नहीं रखा। यहां बुनियादी सुविधाओं का अभाव था, युवाओं के रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं थी। 25 साल पहले यहां जंगल पार्टी का आतंक था, इंसेफेलाइटिस से पूरा जिला प्रभावित था, मुसहर समुदाय में भूखमरी थी, लेकिन डबल इंजन की सरकार आने के बाद कुशीनगर जिले की तस्वीर बदल गई है। उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि यह तभी संभव हुआ है जब आपने अपना अच्छा जनप्रतिनिधि चुना है। उन्होंने कहा कि अब फाजिलनगर को पावागढ़ के नाम से जाना जाएगा, हम इसकी मान्यता देने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट कुशीनगर से शीघ्र ही उड़ान शुरू होगी तथा इसी सत्र से कुशीनगर में महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में पढ़ाई शुरू जाएगी। उन्होंने कहा कि वे जल्द ही जिले की अन्य विधानसभाओं में भी जनसभा करेंगे।
2: भगवान महावीर से नाम होगा, भगवान महावीर के साथ 24वें तीर्थंकर के साथ पावागढ़ का नाम और पावागढ़ की परंपरा और पावागढ़ की संस्कृति के साथ जुड़ करके देश और दुनिया आपके पास आएगी। अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित कैसे होती है सनातन धर्मावलंबियों से ज्यादा कौन जानता है।
1: इससे पहले उन्होंने विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को चेक और प्रमाण पत्र सौंपा। जनसभा को क्षेत्रीय सांसद शशांक मणि त्रिपाठी, गोरखपुर के सांसद रवि किशन तथा अन्य स्थानीय विधायक गण ने संबोधित किया। बाद में कुशीनगर स्थित निर्माणाधीन महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का निरीक्षण किया। इस अवसर पर उनके साथ प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, जनप्रतिनिधिगण तथा वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने निर्माण कार्यों के प्रगति की समीक्षा करते हुए कार्यदायी संस्था को गुणवत्ता एवं समयबद्धता के साथ विश्वविद्यालय का निर्माण पूरा करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि लगभग 450 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित हो रहा यह विश्वविद्यालय पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसानों, कृषि वैज्ञानिकों तथा युवाओं के लिए आधुनिक कृषि शिक्षा, अनुसंधान एवं नवाचार का प्रमुख केंद्र बनेगा। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय का उद्देश्य किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों से जोड़ना, खेती की लागत कम करना, उत्पादन बढ़ाना तथा किसानों की आय में गुणात्मक वृद्धि सुनिश्चित करना है। प्रदेश सरकार के कारागार मंत्री एवं कुशीनगर जिले के प्रभारी मंत्री दारा सिंह चौहान ने कुशीनगर में सांसद विजय दुबे एवं राज्यसभा सांसद आरपीएन सिंह व विधायक गण के साथ केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आयोजित प्रेस वार्ता में जन कल्याणकारी योजनाओं, विकास कार्यों एवं सुशासन की उपलब्धियों को साझा किया।
3: पीएम किसान सम्मान निधि योजना, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, लखपति दीदी योजना, 3 करोड़ से अधिक महिलाओं को इसका फायदा मिल रहा है। हमारी जो लखपति दीदी हैं, वो अपने सरकार से मुख्यमंत्री जुआ योजना के अंतर्गत जो उनको लोन मिलता है, अपने तो रोजगार पाए, दूसरे को भी रोजगार देने का काम करते हैं।
1: इस अवसर पर जिला मुख्यालय पर सूचना विभाग द्वारा केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर विभागीय उपलब्धियों संबंधी तथा विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई विकास प्रदर्शनी और स्टॉलों का उन्होंने उद्घाटन व अवलोकन किया। प्रदर्शनी के माध्यम से आम जन को सरकार की योजनाओं एवं उपलब्धियों की जानकारी प्रदान की गई है। राज्य महिला आयोग की सदस्य जनक नंदिनी की अध्यक्षता में कुशीनगर जिले की हाटा तहसील में महिला उत्पीड़न की समस्याओं पर महिला जनसुनवाई का आयोजन किया गया। सुनवाई के दौरान कुल 23 आवेदन सामने आए, जिसे संबंधित विभागों को निस्तारण हेतु भेजा गया। महिला आयोग की सदस्य ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हाटा, आंगनबाड़ी केंद्र, वृद्धाश्रम व वन स्टॉप सेंटर का औचक निरीक्षण किया। कुशीनगर जिले में जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय में विदाई सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें जनपद में अपना कार्यकाल पूरा करने के उपरांत अवकाश प्राप्त विंग कमांडर आलोक सक्सेना ने अपना प्रभार नवागत अधिकारी अवकाश प्राप्त कर्नल डॉक्टर सुधाकर त्यागी को अपना कार्यभार सौंपा। इस अवसर पर उपस्थित पूर्व सैनिकों पुष्प मालाएं भेंट कर विंग कमांडर सक्सेना को भावभीनी विदाई दी। अपने संबोधन में उन्होंने सभी पूर्व सैनिकों एवं कार्यालय स्टाफ का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि कुशीनगर में उनका कार्यकाल अत्यंत सुखद एवं यादगार रहा है तथा सभी का भरपूर स्नेह, सहयोग और सम्मान प्राप्त हुआ है।
0: कुशीनगर जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं मिर्जापुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है SM सभा का।
4: कालीन और पर्यटन के लिए पहचान रखने वाला मिर्जापुर अब औद्योगिक विकास के नए दौर में प्रवेश करने जा रहा है। जिले में 78,148 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्ताव पहुंचा हुआ है। इन निवेशों से न सिर्फ उद्योगों का विस्तार होगा बल्कि 13,000 से ज्यादा युवाओं को रोजगार का अवसर मिलेगा। जिले को अब तक 192 निवेश प्रस्ताव मिले हैं। इनमें से 104 परियोजनाओं को ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के लिए चयनित किया गया है। इनमें 25,625 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है। प्रदेश की योगी सरकार ने हरियाली बढ़ाने के लिए जन सहभागिता सुनिश्चित करते हुए पौधारोपण का महाअभियान की अभी हाल में ही शुरुआत की है। प्रदेश सरकार का प्रयास है कि अभियान के तहत रोपे गए पौधों को 100% सुरक्षित रखा जाए और आम जन को पौधारोपण के प्रति ज्यादा से ज्यादा जागरूक भी किया जाए। इसी कड़ी में मिर्जापुर जनपद में पौधारोपण अभियान को तीज त्योहारों और संस्कृति से जोड़ते हुए विभिन्न प्रकार के वनों की स्थापना के साथ ही विशिष्ट प्रकार के आयोजन भी किए जाएंगे, जिससे आम जन पौधारोपण के साथ साथ उनकी सुरक्षा के लिए भी जागरूक हो सके। वृक्षारोपण अभियान 2026 के तहत जिले में कुल 87,50,015 पौधे रोपने का लक्ष्य रखा गया है। प्रभागी वनाधिकारी राकेश कुमार ने बताया कि पौधारोपण महाअभियान 2026 के तहत जिले में हरियाली का दायरा बढ़ाने के लिए मानसून में 5 वनों व 2 वाटिकाओं की स्थापना वन विभाग व अन्य विभागों द्वारा की जाएगी। इनमें मुख्य रूप से महर्षि चरक औषधि वन स्थापित किया जाएगा, जहां स्वास्थ्य के लिए लाभकारी जड़ी बूटियों और औषधि पौधों का रोपण होगा। इसके अलावा समरस वन, समृद्धि वन, कपिल वन एवं ऊर्जा वन भी बनाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि 15 अगस्त के अवसर पर जनपद के बरकछा में वंदे मातरम वाटिका की स्थापना की जाएगी, जहां पर स्वतंत्रता सेनानियों के प्रिय पौधों का रोपण किया जाएगा। 28 अगस्त को रक्षाबंधन के पावन पर्व के अवसर पर मणिहान रेंज में कप्फा झरना के पास रक्षाबंधन वाटिका की स्थापना की जाएगी, जहां पर भाई बहन मिलकर फलदार पौधों का रोपण करेंगे। इसके अलावा उद्यान विभाग की ओर से आम भंडारा का भी आयोजन किया जाएगा। इस आयोजन के जरिए लोगों को फलदार पौधे रोपने के लिए जागरूक भी किया जाएगा। इसी तरह ग्राम विकास विभाग द्वारा प्रत्येक विकास खंड में सहजन का भंडारा कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस आयोजन के तहत आम जनों को रोपने के लिए सहजन के पौधे भी उपलब्ध कराए जाएंगे। इस आयोजन का उद्देश्य सहजन के औषधि गुणों से आम जन को रूबरू कराते हुए ज्यादा से ज्यादा पौधारोपण के लिए जागरूक करना है। केंद्र में भाजपा की मोदी सरकार के 12 साल पूरा होने पर मिर्जापुर के प्रभारी मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी गत दिनों मिर्जापुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जिला पंचायत के सभागार में प्रेस वार्ता की और मोदी सरकार के कामों को गिनाया। कहा, भारत के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश का विकास हो रहा है। देश के अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति को सरकार के योजनाओं का लाभ मिल रहा है।
5: आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सबसे लंबे समय तक चुने हुए प्रधानमंत्री के रूप में काम करने का रिकॉर्ड बनाया है। देश के सबसे अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति को सरकार की योजनाओं का लाभ मिले, इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने काम किया, जिसका नतीजा है कि 25 करोड़ से अधिक लोग गरीबी रेखा से बाहर हुए हैं। किसानों की आमदनी बढ़ाना, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना, युवाओं को रोजगार देने वाला बनाना, निवेश को नई ऊंचाई पर ले जाना सरकार की प्रमुख प्राथमिकता रही है।
4: केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने गत दिनों मिर्जापुर के BLJ ग्राउंड में जिला प्रशासन एवं सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा लगाई गई विकसित भारत प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। केंद्रीय राज्य मंत्री द्वारा विकसित भारत प्रदर्शनी व जनपद के विभागों द्वारा लगाई गई विकास प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। प्रदर्शनी में केंद्र सरकार की 12 वर्ष की योजनाओं की उपलब्धियों एवं प्रदेश सरकार की 9 वर्ष की उपलब्धियों तथा स्थानीय उपलब्धियों और मिर्जापुर के विकास कार्यों को दिखाया गया था। केंद्रीय राज्य मंत्री स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा रसायन भारत सरकार अनुप्रिया पटेल ने देवरी ब्लॉक हलिया मिर्जापुर में भूमि पूजन कर हरबरा MP बॉर्डर तक मार्ग चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य शुभारंभ किया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि चौड़ीकरण व उच्चीकरण इन दिनों कार्यों के शुभारंभ की आवश्यकता बहुत लंबे समय से महसूस की जा रही थी, इसके लिए हम निरंतर प्रयासरत भी थे। उत्तर प्रदेश सरकार के ऊर्जा एवं नगर विकास मंत्री AK शर्मा गत दिनों विंध्याचल धाम पहुंचकर मां विंध्यवासिनी का विधि विधान से दर्शन पूजन किया, विकास और जन कल्याण की कामना की। दर्शन के उपरांत AK शर्मा ने विद्युत विभाग के कार्यों के पर प्रकाश डाला और पत्रकारों के सवालों का जवाब दिया।
6: स्मार्ट मीटर जो है वो प्रीपेड मोड में नहीं बल्कि पोस्ट पेड मोड में चल रहे हैं और कहीं कोई मीटर को लेकर की समस्या नहीं है। गर्मी का सीजन है, थोड़ा लोड बढ़ने से कई बार ट्रिपिंग होती है, लेकिन पहले की अपेक्षा बहुत ज्यादा बिजली आ रही है। विंध्याचल जैसे जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ अगर 20 घंटे बिजली आ रही है और 2-4 मिनट के लिए कहीं किसी की आंधी आती है, तूफान आता है, उसमें बिजली की व्यवस्था में थोड़ा विक्षेप होता है, नहीं तो सामान्य रूप से ग्रामीण क्षेत्र में भी 20 घंटे कम से कम बिजली और शहरी क्षेत्रों में तो 24 घंटे बिजली हम देने का।
0: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
7: जिले की हलचल। इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे कुशीनगर और मिर्जापुर जिलों की हलचल।
8: मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 9:25 हो रहे हैं। प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम धरती गाती है, जिसमें आज हम आपको सुनवा रहे हैं विजेंद्र कुमार की गाई कुछ रागनियां। तो लीजिए, प्रस्तुत है कार्यक्रम की ये पहली रागनी

0: आकाशवाणी नजीबाबाद से प्रत्येक मंगलवार को
1: शाम 6:05 पर कृषि जगत कार्यक्रम में सुनिए
0: गुणवत्ता युक्त बासमती धान उत्पादन हेतु
1: बासमती निर्यात विकास प्रतिष्ठान मोदीपुरम मेरठ द्वारा
0: साप्ताहिक आयोजित कार्यक्रम

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम धरती गाती है, जिसके अंतर्गत आज हम आपको सुनवा रहे हैं विजेंद्र कुमार की गाई कुछ रागनियां।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम धरती गाती है, जिसके अंतर्गत आज हम आपको सुनवा रहे हैं विजेंद्र कुमार की गाई कुछ रागनियां।

श्रोता, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम धरती गाती है, जिसके अंतर्गत हम आपको सुनवा रहे हैं विजेंद्र कुमार की आवाज में कुछ रागनियां। तो लीजिए, पेश है कार्यक्रम की ये अंतिम रागनी

0: विजेंद्र कुमार के स्वर में अभी आप सुन रहे थे ये रागनी। इसी के साथ ही कार्यक्रम धरती गाती है अब यहीं पर संपन्न होता है। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। सवेरे के 10 बज रहे हैं। प्रस्तुत है श्रोताओं के पत्रों और व्हाट्सएप मैसेज पर आधारित फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम गीत तुम्हारे। श्रोताओं, कार्यक्रम गीत तुम्हारे में आपका हार्दिक स्वागत है। आज आपके साथ हूं मैं रविकांत वर्मा और मेरे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं
1: हमारे सभी श्रोताओं की रेडियो साथी श्वेता भट्ट। और श्रोताओं, दिल से करते हैं आप सभी का अभिनंदन स्वागत कार्यक्रम गीत तुम्हारे में।
0: आप सभी को हम दोनों की ओर से प्यार भरा नमस्कार।
1: और श्रोताओं, अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं हमसे कार्यक्रम से और जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ और सुनना चाहते हैं अपनी पसंद का कोई भी गीत, तो जुड़ जाइएगा मैसेज के माध्यम से हमारे साथ लाइव प्रोग्राम में और लिख भेजिएगा अपना नाम, पता और पसंद का गीत हमारे आकाशवाणी व्हाट्सएप नंबर पर, जिसके लिए नंबर है 9457078288।
0: और देखो श्वेता जी, आपने यहाँ नंबर बताया और हमारी स्क्रीन पे कितने सारे मैसेज भी आने लगे
1: जी,
0: है ना?
1: बिल्कुल
0: श्रोताओं, तो देखते हैं पहला मैसेज किनका है।
1: बिल्कुल, इंतजार रहता है कि कब हम कार्यक्रम गीत तुम्हारे शुरू करें और अपने श्रोताओं के मैसेजों को साझा करें। तो कार्यक्रम में ये पहला मैसेज हमें भेजा है,
0: लिखने वाले हैं टाउनशिप सेक्टर 8 भिलाई से बेगम अनुश्री प्रदीप, राजश्री और प्रमिला प्रदीप, रायगढ़ से जानवी डोमिन, पिंकी और दीपा डोमिन,
1: और डोंडी लोहारा से आप हैं फर्जी हरिशंकर बेलदार और फर्जू प्रभा रानी, जेल रोड रायगढ़ से आप हैं उमा राज और उमा राज के साथ हैं जगदीश राज।
0: ये मैसेज हमारे पास आया है रामनगर रोड शांति नगर इंदौर से, लिखने वाले हैं खुशी खर्चे, ब्रोनो, गणेश, कार्तिक, संजना, परी, ललिता, स्वाति, प्रयाग और मालती चौधरी। और इसी गीत के लिए जो हम सुनवाने जा रहे हैं उसके लिए हमारे पास फरमाइश आई है एहसान अली बागपत यूपी से।
1: बिल्कुल, और कार्यक्रम के पहले गीत के लिए हमें मैसेज किया है मालियान सरधना मेरठ से अनिल जैन, जैन साहब, सयम जैन, मुस्कान और मास्टर जिव्यम, और इसी गीत को सुनने के लिए फरमाइश हमें भेजिए करूला मुरादाबाद से अयूब खान, ईरम गुड़िया, शुएब खान, नावेद खान, और सिंधौली मीरगंज बरेली से आप हैं जिशान वारसी, इमरान शेख और रेहान शेख।
0: जसपुर रोड ग्राम दूलापुर

0: बिजनौर से ये हमें मैसेज करते हैं महबूब दुकानदार, साहिबा महबूब और अल्पिशा परवीन।
1: ये एक और मैसेज हमें मिला है कनेरा मोहल्ला पटियाला से, मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन पलक, करण, कितु, निहारिका और वंश बत्ता का।
0: जिला अमरोहा नई बस्ती फतेह खालसा से बहारुल हसन सिद्दीकी, मोहम्मद आलम सिद्दीकी, शिफान सिद्दीकी, यूसुफ सिद्दीकी, अनाबिया सिद्दीकी, बेटी अलीशा सिद्दीकी, शकील सिद्दीकी, वहीम सिद्दीकी, मोहम्मद यासीन अंसारी और इन्हीं के साथ इस गीत को सुनना चाहते हैं सुदेश चौहान।
1: गांधीबाग ककोला से फरमाइश कर रहे हैं रमेश कटंकर, वैशाली कटंकर और कार्तिकी। सरोज चौक अमरावती से कमरुला ठेकेदार और तस्नीम बेगम। सहारनपुर से फरमाइश की है राधा रामदेव, अभिषेक रामदेव और अर्पणा नामदेव ने।
0: और ये पत्र के माध्यम से हमारे पास ये पत्र आया है शाही मार्केट से होरा जिला बिजनौर से आसिफ चौधरी, अराफात चौधरी, कादिर चौधरी और बेगम रिहाना चौधरी का।
1: ग्राम लसूड़िया पता तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ मध्य प्रदेश से फरमाइश की है मैसेज के माध्यम से गोविंद, वैष्णव, दिव्या, सुमन, कोमल, परी, कृतिका, रमेश चंद्र डांगी ने।
0: एरोड्रम थाना लक्ष्मीबाई अनाज मंडी रोड वंदना नगर इंदौर से ही हमें पत्र भेजा है। लिखने वाले हैं राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न खर्चे, ललिता खर्चे, गणेश खर्चे, कार्तिक, मालती और कुमारी देविका चौधरी ने।
1: गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, चेतिक बिरक और मीका बिरक।
0: इसी गीत को सुनना चाहे ग्राम गधारोना से मदनगिरी, विमलागिरी, बलरामगिरी, भारतगिरी, मधुगिरी, सोनिया, गोविंद, सिमरन, वंशिकागिरी और रमनगिरी, साथ में दिव्यागिरी। तो श्रोताओ आइए आप सभी की पसंद पर सुनते हैं मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर के स्वर में फिल्म चोर मचाए शोर का ये प्यारा सा गीत। गीत और संगीत है रविंद्र जैन का।

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: श्रोताओं, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का कार्यक्रम गीत तुम्हारे में। और अभी आप सुन रहे थे फिल्म चोर मचाए शोर का ये प्यारा सा गीत, जो हमारा कार्यक्रम का पहला गीत था। कार्यक्रम के अगले गीत के लिए हमारे पास ये मैसेज आया है। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, जयतेक बिरक और मीका बिरक का।
2: और इस गीत को सुनना चाहते हैं कस्बा उगेती बदायूं से देवेंद्र कुमार गुप्ता, धीरज कुमार गुप्ता, पंकज बजाज, प्रिंस कुमार गुप्ता, प्रशांत कुमार गुप्ता और कार्तिक गुप्ता।
1: शिवाजी चौक राजिम छत्तीसगढ़ से अनिल कुमार, अंजुलता, आदित्य कुमार और कृष श्रीवास्तव भी इस गीत को सुनना चाहते हैं। अमरपुरा पेंड्रा से दीपक कुमार, रोशन कुमार, बंशीलाल, रेखा देवी, श्वेता देवी, सुरुचि देवी, दिशा और लवी श्रीवास्तव।
2: नैनीताल माल रोड से पास्टर प्रेम, प्रिमरोज, हैरी, इमैनुअल, ट्रेसा, शैली, प्रीतम, जॉन, शेफाली, सना, जैसी और एनी।
1: ग्राम दूल्हापुर जिला मुरादाबाद से लिखने वाले हैं मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान और नरगिस खातून।
2: और कार्यक्रम के अगले गीत के लिए हमें फरमाइश की है पट्टी महर बड़ौत यूपी से परमानंद कश्यप, बिमलेश कश्यप, आरन कश्यप, पालीराम भगत, आयुष, आदित्य, राजेश, उमा और इनके मम्मी पापा।
1: मोहल्ला धर्मदास चौक बाजार नजीबाबाद जिला बिजनौर से ये हमें मैसेज भेजा है और इस गीत को सुनना चाहा है रूपा वर्मा, तनु वर्मा, सुरेंद्र वर्मा, प्रभा वर्मा, विशाल वर्मा, आराध्या, अगम्य, शिवांश वर्मा, पूजा वर्मा, माही वर्मा, प्रिया वर्मा, स्वाति वर्मा और तुषार वर्मा ने।
2: और कार्यक्रम के अगले गीत के लिए फरमाइश है करणवीर हाउस बठिंडा से प्रेम सिंह जौड़ा, मंजीत कौर जौड़ा, करणवीर, करण, विपिन।

0: दर दीपेंदर, सिमरन, एकम, दमन और अभिजीत का।
1: चौक बाजार नजीब आवाज जिला बिजनौर से राजेंद्र कुमार, सौरभ कुमार, अनिमेश कुमार और इनके परिवार के सभी सदस्य भी इस गीत को सुनना चाहते हैं।
0: और इसी गीत के लिए फरमाइश की है वंदना नगर इंदौर से संतोष रेखा रघुवंशी, शोभा भूपेंद्र रघुवंशी, बबीता सुरेंद्र रघुवंशी, पूजा विकी रघुवंशी, स्वाति प्रयाग चौधरी, मालती चौधरी, गणेश कार्तिक खर्चे, संचना परी खर्चे और ललिता नारायण खर्चे ने। और श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत है फिल्म हमराज से महेंद्र कपूर की आवाज़ में, शब्द रचना है साहिर लुधियानवी की और संगीत है रवि का।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे महेंद्र कपूर के स्वर में फिल्म हमराज का ये गीत।
1: और श्रोताओं, कार्यक्रम की तुम्हारे में अगली पेशकश है फिल्म हीरा पन्ना से, जिसमें आवाजें हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की, गीत लिखा है अनंत बख्शी ने और संगीत है आरटी परमन का। और इस गीत को सुनने वाले सभी ख्वाहिशमंद श्रोता हैं मनकारा मंदिर बीडीए कॉलोनी करकैना बरेली उत्तर प्रदेश से, पनीलाल सागर, बेनी सिंह मासूम, धर्मवीर मनमौजी, आशीष कुमार सागर, अमर सिंह, हितेश, रूबी भारती, एकता भारती, रचना भारती, दिव्या भारती, ममता चौधरी, ओमवती भारती, खनक, नकुल, नैन्सी और सारांश। और इसी गीत को सुनने के लिए हमें मैसेज के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हैं टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा और स्वीटी छाबड़ा।
0: ग्राम जुजहला थाना शिवाला कला बिजनौर से ये हमें मैसेज करते हैं राशिद अंसारी, परवीन जहां, निशात आयशा, आलिया, शायना महवेश, मोहम्मद अफान और अदीना नूर। सब्जी मंडी नजीबाबाद जिला बिजनौर से विष्णु अग्रवाल, रानी अग्रवाल और इनके परिवार के सभी सदस्य हैं।
1: मोताला महाराष्ट्र से जुड़े हैं हमारे साथ विजय सुरंकर, रतनमाला, आरती गौरी और ओम कुमार सुरलकर।
0: साहिबाबाद जिला गाजियाबाद से विजय वर्मा, मंजू वर्मा, अर्पित वर्मा और वैष्णवी वर्मा भी इस गीत को सुनना चाहते हैं।
1: और ये पत्र के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हैं नारकली बाजार जगराओं से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, आशीष मल्होत्रा, गव्या और सुच्चा पाठक।
0: राज पैलेस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन, मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, रितेश कृष्णा, पीहू स्वर्णकार और समस्त स्वर्णकार परिवार।
1: राहुल नगर अमरावती से हमें फरमाइश भेजी है सिद्धार्थ गुराने, अर्चना गुराने, हिमभूषण गुराने, प्रणय प्रसिद्धि और महेश गुराने ने।
0: ग्राम नंगला उपवन नजीबाबाद जिला बिजनौर से ठाकुर विजयपाल सिंह, जबर सिंह, जयपाल सिंह, राहुल, सचिन, सविता, नोनी, लालू, नमन, केजल, अजीत, रघुवीर और इनके परिवार के सभी सदस्य भी इसी गीत को सुनना चाहते हैं। हल्द्वार जिला बिजनौर से माही, कामिनी, उपासना, आस्था, प्रिया और इनके मम्मी पापा भी इसी गीत को सुनना चाहते हैं।
1: शेरवानी स्कूल गंज डुंडवारा से हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं आफ्ताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबना अंसारी और आलिया अंसारी। और आप हैं मजनू का टीला से कमल बालूजा, सागर बालूजा, मधु बालूजा और उमंग मलिक के साथ आकांक्षा मलिक।
0: मोहल्ला अफगानान शेरकोट जिला बिजनौर से नदीम बाकी, कलीम बाकी, अजीम बाकी, अदीम बाकी, अब्दुल गनी और अलमीर जदनत इसी गीत को सुनना चाहते हैं। तो क्यों ना श्रोताओं, सुनवा दिया जाए आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत लता मंगेशकर और किशोर।

0: लता मंगेशकर और किशोर कुमार को अभी आप सुन रहे थे फिल्म हीरा पन्ना से। गीत लिखा था आनंद बख्शी ने और संगीत था आरटी परमन का। श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म प्रेम कहानी से, जिसमें आवाजें हैं लता मंगेशकर और मुकेश की, शब्द रचना है आनंद बख्शी की और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। तो रविकांत जी, कार्यक्रम में अगली फरमाइश हमें किसने
1: हाँ
0: भेजी
1: बिल्कुल,
0: है?
1: देखिए आप यहाँ नाम बता रहे थे और यहाँ लगातार मैसेज आ रहे थे,
0: जी
1: है ना। ये मैसेज आया है राजकोट गुजरात से, रश्मि झरना और भरत कुमार का। और ये अगला मैसेज हमारे पास आया है, जो आया है विलेज एंड पोच राहु नंगली से। लिखने वाले हैं आचार्य सत्यवीर सिंह, अलका चौहान, अक्षित चौहान, भूमिका चौहान और राघव चौहान का। और इस गीत के लिए मैसेज हमें किया है
0: दाऊद सराय सहारनपुर से, अनवर साबरी, सन्नो साबरी, मुदस्सर साबरी, मुजाकिर साबरी, जाकिर अंसारी, उनके परिवार के सभी सदस्य।
1: व्हाइटफील्ड बेंगलुरु से, भारत भूषण, अंजू श्रीवास्तव, दिव्यांशु भूषण, संस्कृति पौरुष और रामगढ़ कैंट से महेंद्र मोदी और कुलदीप कंवल भी इसी गीत को सुनना चाहते हैं। और श्वेता जी, हम देख रहे हैं कि हमारे श्रोता लगातार हमारे पास मैसेज भेज रहे हैं ना,
0: जी
1: और लगातार बार बार भी मैसेज भेज रहे हैं
0: जी
1: ना तो देखते हैं ये अगला मैसेज कहाँ से आया है।
0: ये अगला मैसेज है झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीता भाटिया, रजत भाटिया और मयंक भाटिया का।
1: और ये मैसेज हमारे पास आया है नजीबाबाद से, लिखने वाले हैं, हाँ सॉरी, पूना जंक्शन मस्तानपुरा से, अनंता भगत, अरुणा भगत, चेतन भगत और सुलोचना भगत।
0: कोल सिटी बरका काना से हमें फरमाइश कर रहे हैं मैसेज के माध्यम से अफजाल ताज, शाहिन सुल्ताना, सोनू तस्नीम, निप्पी साहनी और मोहम्मद अफजल मलिक।
1: और ये मैसेज हमारे पास अभी अभी आया है और पढ़ते हैं इसे। गंज ढुंडवारा से लिखने वाले हैं मोहम्मद कलीम अंसारी, जहीरा जहीरा बेगम, मोहम्मद अयान अंसारी, मोहम्मद उस्मान अंसारी, यासीन हाशमी और शमसुल कमर राही। ये
0: और
1: मैसेज हमारे पास आया है।
0: इसी गीत को सुनने के लिए अगला मैसेज हमें भेजा है मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान, सलमान, इरफान, इसरार और नरगिस खातून ने।
1: ये बरका काना झारखंड से, अफजाल ताज, शाहिन सुल्ताना, सोनम तस्मीन, निप्पी साहनी और इनके परिवार के बहुत सारे सदस्यों ने भी हमारे पास मैसेज किया है।
0: ये दूसरी बार मैसेज किया
1: हाँ, तभी तो हम कह रहे हैं कि श्रोता हमारे पास लगातार मैसेज भेज रहे हैं।
0: बिल्कुल
1: पार्थ रेडियो क्लब छत्रपति संभाजीनगर से, राजेश सावले पाटिल, राजदीप राजेश और राशि राजेश, श्रीमती शीतल राजेश भी इसी गीत को सुनना चाहते हैं। और ये कहाँ से आया है मैसेज?
0: ये है खेल बाजार पानीपत से फरमाइश कर रहे हैं इसी गीत के लिए नरेश मल्होत्रा, नीटू, लक्ष्य मल्होत्रा, कोयल मल्होत्रा और पापा जी नानक चंद मल्होत्रा। शिवाजी कॉलोनी रोहतक से आप हैं पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का, टुकू भाविक सिक्का।
1: चकला बाजार समाना शहर पंजाब से ही हमें मैसेज करते हैं पप्पू राजा दिलखुश, संगीता रानी, पप्पू महक दिलखुश, सुनीता रानी, आरजू पप्पू दिलखुश, हसमुख लाल, बुलबुल शक्ति दिलखुश, संजीव बंटी जिंदल और पूरा खुश दिल परिवार। और ये मैसेज हमारे पास आया है और इन्होंने लिखना है, ये जैन मंदिर वाली गली कुरावली से, राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन अंसारी, नौरीन अंसारी, आसना अंसारी और मोहम्मद कैफ अंसारी।
0: और अगली फरमाइश हमें भेजी है मधुबनी बिहार से शोभी कांछा, मुखिया जी, हेमलता सज्जन, मनोज सज्जन, लक्की सज्जन, मोहित सज्जन, परी सज्जन, सरोज सज्जन, स्तुति सज्जन, नैतिक सज्जन, सोनाक्षी सज्जन, अर्चना सज्जन, विवेक और मास्टर एस के सज्जन ने।
1: मोहल्ला हलवायान शेरकोट जिला बिजनौर से, मोहम्मद वक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजदा रानी और हिना कौसर भी इसी गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद हैं।
0: और ये एक और फरमाइश हमें मिली है जिला खांडवा ग्राम लाहौरी से राजेश कुमार धनजे, राहुल कुमार धनजे, विशाल कुमार धनजे, शीला धनजे, गायत्री धनजे, खुर्दी रोड मानपुर से फरमाइश कर रहे हैं विजय वैद, रानी वैद, महिमा वैद, नीतू वैद और इनके परिवार के सभी
1: और
0: सदस्य।
1: श्वेता जी, ये मैसेज हमारे पास आए, देखिए कितना सुंदर मैसेज इन्होंने भेजा है, फूल बने हुए हैं।
0: जी
1: कुड़ी सेक्टर 5 सूर्यनगरी जोधपुर राजस्थान से, लिखने वाले हैं रमेश चंद चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी गर्वी और बेबी बॉय हिमाक्ष।
0: और ये एक और मैसेज हमें मिला है आकोट से विनायक बड़े, श्रीमती

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म प्रेम कहानी में लता मंगेशकर और मुकेश को। और कार्यक्रम का अगले गीत के लिए हमारे पास फरमाइश भेजी है और इन्होंने लिखा भी है कि हमें शामिल अभी तक क्यों नहीं किया है, तो इनकी ये शिकायत दूर हो गई होगी। कर लेते हैं इन्हें शामिल। परी महल कासगंज से आबाद खान, नबील खान, आरफा खान, इल्मा खान, एम असलम सैफी, मास्टर जाहिद अली, मीरा सराय बदायूं से।

0: आफरीन खान और जमीर खान इनके परिवार के बहुत सारे सदस्य।
1: और ये फरमाइश हमें भेजी है भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी, विष्णु साहू, अंकिता, अमृता और लोकेश जोशी ने।
0: बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से तुलसी मस्कीन, बीना मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य मस्कीन, मेघा मस्कीन। चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना, किशु, रिधान और इनके परिवार के बहुत सारे सदस्य इसी गीत को सुनना चाहा है।
1: जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज, रिफाकत, मोहम्मद रिहान, समरीन परवीन और माहिना नूर ने।
0: लाल माता सुदामा नगर रटलाई जिला झालावाड़ राजस्थान से हर्षिता, रामेश्वर, परमेश्वर, मीनाक्षी, श्रीमती मनोहर बाई बागरी और प्रभुलाल बागरी।
1: और इसी गीत को सुनने के लिए हमें फरमाइश की है छत्तीसगढ़ से ही द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और जावेंद्र कुमार वर्मा ने। ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबर राही, महराज जहां जुड़े हमारे साथ आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से।
0: श्रोता संघ ग्राम हिंगड़ी अलोट जिला रतलाम एमपी से जगदीश धाकड़, नायमा, श्रीमती रंजूबाई धाकड़, युवराज सिंह धाकड़ और शिवांगी धाकड़।
1: नई दिल्ली से जॉन सीना, बी आर टेलर, सुमन और सरिता। डीएलएफ कॉलोनी रोहतक से महेश, महेंद्र शाह, जितेक शाह और मानसी शाह। और इसी गीत को सुनना चाहते हैं उज्जैन एमपी से विनोद मूड़त, नेहा जैन, दीपक, मयंक, चेतन और दिलीप सिंह पवार। आगरा से सरिता चौरसिया, सुमित, अबीर और सुजाता।
0: और इसी गीत को सुनने के लिए हमारे पास ये मैसेज आया है और लिख भी रहे हैं कि हम भी लाइन में हैं। क्यों नहीं भाई, लाइन में हैं तो आपको जरूर शामिल
1: बिल्कुल,
0: किया जाएगा, है ना श्वेता जी? तो चलिए इन्हें शामिल करिए।
1: ये है मोहल्ला बरादरी। महमूद खान रामपुर से, भाई रफत साहब, सईद भाई मंसूरी, राशिद भाई मंसूरी, असद भाई और फिरोजा मुस्कान और असफर अली के साथ नगमा नाज मंसूरी।
0: और ये मैसेज हमारे पास आया है ग्राम जेवरा हिसार से वीरेंद्र, भैमाण, सुरेंद्र, शमशेर, मनोज और इनके परिवार के बहुत सारे सदस्य। भेजने वालों के नाम है। ये अगला मैसेज हमारे पास आया है मीरमपुर बेगा तहसील नजीबाबाद जिला बिजनौर से मोहम्मद कैफ, मोहम्मद सैफ, कासिम पेंटर, डॉक्टर विजय, मोहम्मद रऊफ, अनस शेख और मोंटी भाई।
1: और ये अगला मैसेज हमें भेजा है हिंदुस्तान रेडियो मित्र, कन्ने बुजुर्ग, परेला, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश से बिजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी विश्वकर्मा, सोनाली विश्वकर्मा, सोनम विश्वकर्मा के साथ आशीष विश्वकर्मा ने। और अगला मैसेज
0: उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका खोरवाल और भानु प्रकाश भी इसी गीत को सुनना चाहते हैं। और ये अगला
1: और
0: मैसेज कहाँ से आया है श्वेता
1: हमारे
0: जी?
1: साथ जुड़े हैं नाला सुपारा मुंबई से मोहम्मद आसिफ शेख, बेगम रूमा, माहिरा शेख, नोमान शेख, सुलेमान शेख और शेख मोहम्मद कलीम।
0: और ये मैसेज आया है ग्राम जिला मुरादाबाद ग्राम दूल्हापुर उत्तर प्रदेश से। लिखने वाले हैं मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलबीर सिंह। और ये इसी गीत के लिए अंतिम मैसेज हमारे पास आया है अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से रिजवान खान, आयशा, सबीहा, अनस और रेहान। और श्वेता जी ये बताइए कौन सा गीत ये सुनना चाहते हैं?
1: जी, कार्यक्रम का अगला गीत हम अपने सभी श्रोताओं को सुनवा रहे हैं फिल्म नींद हमारी ख्वाब तुम्हारे से, जिसमें आवाजें हैं मोहम्मद रफी और आशा भोसले की, गीत लिखा है राजेंद्र कृष्ण ने और संगीत है मदन मोहन का।
0: श्वेता जी एक बात बताऊं, ये गीत तो मुझे भी बहुत पसंद है। लगता है श्रोताओं की और हमारी जो पसंद है वो
1: मिलती
0: एक
1: जुलती
0: जैसी है।
1: है।
0: हाँ, तो चलिए सभी श्रोताओं
1: चलिए
0: के साथ सुनते हैं प्यारा सा गीत।

0: कभी तेरा दामन ना छोड़ेंगे हम। ये प्यारा सा गीत आप सुन रहे थे नींद हमारी ख्वाब तुम्हारे फिल्म से। आवाज़ें थी मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की। और अगले गीत के लिए कौन कौन फरमाइश हमें भेज रहे हैं श्वेता जी?
1: अगले गीत के लिए हमें फरमाइश भेजी है मलेट पटेल नगर मलोट पंजाब से रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया और आरजू जाजोरिया ने।
0: इसी गीत के लिए फरमाइश भेजी है फूलगांव निजामाबाद तेलंगाना से एम ए वहीद रुमानी और इनके साथी। अगला मैसेज हमारे पास आया है मगनपुर झारखंड से अब्बास आलम, अमजद अली, लाडली बेबी निशा और सभी इनके मित्रगण।
1: और इसी गीत के लिए हमारे पास फरमाइश भेजी है यादव मोहल्ला सनावत मध्य प्रदेश से दिलीप मालाकार, योगेश मालाकार, सुनीता मालाकार और मुस्कान मालाकार, साथ ही जितेंद्र धर्मेंद्र मालाकार ने। करूला मुरादाबाद से फरमाइश किया है यूब खान, इरम गुड़िया और शुएब खान ने।
0: इसी गीत को सुनना चाहे नाज पैलेस अजमेर शरीफ से हमें मैसेज करते हैं सैयद आलम हाशमी, गुलनाज हाशमी, सलमा नाज, असद अरहम और मोहम्मद आलम हाशमी। दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा, कुणाल मेहरा और इनके बहुत सारे परिवार के सदस्य भी इसी गीत को सुनना चाहते हैं। गुजरात गांधीनगर ग्राम से प्रवीण सोनी, पूजा पायल, जूली और जगदीश जोहरी भी इसी गीत को सुनना चाहते हैं।
1: और इसी गीत के लिए हमें पत्र के माध्यम से फरमाइश की है रेलवे कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन राजस्थान से जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जेएस नायर और शोभा नायर।
0: राजधानी रायपुर से नीलू मेघ नीलम, डॉक्टर वंदना कुमार और बिट्टू कुमार भी इसी गीत को सुनना चाहते हैं।
1: गोला बाजार बक्सर से फरमाइश कर रहे हैं श्रद्धानंद आर्य, अभियानंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित और मोहित। और महादेव घाट अमलेश्वर से आप हैं डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारनी, सूरज, ज्योति, रेयांश और कुड़िया ठाकुर।
0: शेरकोट बिजनौर से निजामुद्दीन, रऊफ अहमद, मोहम्मद असलम और मोहम्मद हन्नान, महक और रिमझिम भी इसी गीत को सुनना चाहते हैं।
1: और ये अगला फरमाइश हमें भेजी है दिल्ली शहर मोरी गेट से कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी और आकाश कुमार। श्री गंगानगर से बजरंग लाल शर्मा, जसपाल सिंह सिद्धू, जगमोहन सिंह अरनेजा और नरेश कुमार शर्मा ने।
0: नई बस्ती गंज डुंडवारा से मोहम्मद यासीन अंसारी, नाजमा बेगम हाशमी और तौफीक हाशमी, तैमूर हाशमी और कलीम अंसारी।
1: और ये एक और पत्र के माध्यम से हमें फरमाइश की है गंज डुंडवारा से मोहम्मद फारूक शेख, फिरासत हुसैन, मुनव्वर लल्ला, पप्पू पिछली वाले, शमा परवीन शेख, अलकमर बेगम, अफसाना महजबी, नसीन बेगम, आरहान शेख और अलीशान शेख ने। आदर्श नगर मलोट पंजाब से फरमाइश कर रहे हैं राजेश शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी, सौरभ, शाइना और निवान शर्मा।
0: तो श्रोताओ आइए आप सभी की पसंद पर सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी के स्वर में फिल्म उम्मीद का ये प्यारा सा गीत। गीत लिखा है शकील बदायूनी ने और इस गीत के लिए धुन दी है रवि ने।

0: मोहम्मद रफी को अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे फिल्म उम्मीद में। इस गीत को लिखा था शकील बदायूनी ने और संगीत था रवि का। श्रोताओं, कार्यक्रम का अंतिम गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म प्यार का सागर से, जिसमें आवाजें हैं मोहम्मद रफी और आशा भोसले की। गीत लिखा है प्रेम धवन ने और संगीत एक बार फिर से रवि का। और इस गीत को सुनने के लिए हमें फरमाइश की है मैसेज के माध्यम से एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोध, निखिल कांगड़ा, तन्वी बोध, अंकित कांगड़ा।
1: और इस गीत को सुनना चाह है ग्राम कुम्हार हेड़ा सहारनपुर से सैयद मसरूर, शाइना हसन, अक्षा, नाजिया, आफिया इब्राहिम और आदिब।
0: ग्राम और पोस्ट छितावर से हमें फरमाइश कर रहे हैं, छितावर किरतपुर से हमें फरमाइश कर रहे हैं अमित धीमान, मुकेश धीमान, अमिता, प्रिंसी, खुशबू, आनंद किशोर धीमान, भगवत प्रसाद, जयप्रकाश मिस्त्री, आरव, आफिया, अक्षत, अक्षिता और रेम्स कृष्णन।
1: फरूखाबाद साहबगंज चौराहा यूपी से सुरेश चौरसिया, श्रीमती सरोज चौरसिया, सुबोध चौरसिया, सलोनी, संजू लल्ला चौरसिया, पवन गौड़ और योगेंद्र नायक भी इस गीत को सुनना चाहते हैं।
0: मोहाली पंजाब से बब्बल मल्होत्रा, ओम प्रकाश मल्होत्रा और इनके परिवार के सभी सदस्य भी
1: अहमदपुर खैगांव खंडवा से कैलाश फूलमाली, दीपक फूलमाली, समर फूलमाली और वैदिका फूलमाली। लाल कुर्ती रुड़की कैंट से राजेश वर्मा, मंजू वर्मा, निशांत वर्मा, कौशिकी वर्मा, दीपाली वर्मा, युवान और आर के राजा भी इसी गीत को सुनना चाहते हैं। और ये मैसेज हमारे पास आया है, इनका पत्र भी हम ले चुके हैं और कोई बात नहीं, इनका मैसेज भी पढ़ देते हैं। शाही मार्केट सिहोरा जिला बिजनौर से आसिफ चौधरी, बेगम रिहाना, अराफात चौधरी, आदिब चौधरी और कादिर चौधरी। और श्रोताओं, इस गीत के लिए जो हमें मैसेज किया है
0: ये है रघुवीर नगर से दिलावर खान, हसीना बानो, एलिजा नायाब और लड्डू। और ये पत्र के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हैं चंद्रनगर सहारनपुर से सुरेश नारंग, आशु, सोनाली, प्रतीक और कृषिव, कोटवा नारायणपुर, बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय, भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, पूजा परिहार और उनके परिवार के सभी सदस्य, विलेज एंड पोस्ट राहुल नगली से आचार्य सत्यवीर सिंह, अलका चौहान, भूमिका चौहान और इनके परिवार के सभी सदस्य।
1: जनकपुरी सहारनपुर से ही हमें मैसेज करते हैं, लिखने वाले हैं जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी डिकेस्ट्रो, पर्ल डिकेस्ट्रो और विलिस डिकेस्ट्रो। ये यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खड़से और विनोद खड़से भी इसी गीत को सुनना चाहते हैं। और ये मैसेज हमारे पास आया है, लिखने वाले हैं जिला पश्चिम सिंहभूमि चाईबासा झारखंड से शिवा गोप, प्रेम गोप, संगीता गोप, लिपि गोप और दीपाली गोप। इसी गीत को सुनना चाहा है कलानौर से नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा, नितिन और मयंक शर्मा। रेलवे रोड गंज डुंडवारा से मोहम्मद कलीम जख्मी, भुवन प्रकाश गौतम, डॉक्टर दबीरुल हसन, बेगम शबनम अनमार, नाजमा बेगम नाज और भाभी सरिता गौतम। और ये हमें मैसेज किया है,
0: ये है कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जौड़ा, सीटी दीवाना और इनके परिवार के सभी सदस्य। और एक और फरमाइश हमें मिली है ग्राम जहानाबाद नजीबाबाद से मोहम्मद जावेद, मोहम्मद जुनैद, मोहम्मद जैद, अक्षरानी, इंशा, अरीबा, नाबिया, आयरा और इनके परिवार के सभी सदस्य। लुधियाना पंजाब से अमरजीत कौर, परमजीत कौर, बिहारी कॉलोनी महासुमुंद से वली उल्ला फकीर, डब्लू उल्ला फकीर, परवीन आसमा, बुलंद शहर से बद्रू वली अंसारी, फर्जू वली अंसारी और इनके परिवार के सभी सदस्य।
1: और ये अंतिम मैसेज हमारे पास आया है इस गीत को सुनने के लिए सहारनपुर से सोनाली, आशा नारंग और सुरेश नारंग। तो आइए श्रोताओं, आप सभी की पसंद पर सुनते हैं कार्यक्रम का ये अंतिम गीत मोहम्मद रफी और आशा भोसले के युगल स्वर में। फिल्म का नाम है प्यार का सागर।

तो श्रोताओं, इस गीत के साथ ही कार्यक्रम गीत तुम्हारे अब यहीं पर संपन्न करने की मुझे यानी रविकांत वर्मा को अनुमति दीजिए। कार्यक्रम में आगे आपके साथ बनी रहेंगी श्वेता भट्ट जी।

अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत तुम्हारे। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। पूर्वाहन के 11 बज रहे हैं। प्रस्तुत है चित्रपट संगीत। स्वागत है हमारे सभी श्रोताओं का आज के चित्रपट संगीत में।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम का ये पहला गीत आपने सुना फिल्म दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म से, जिसमें आवाजें थी आशा भोसले और अभिजीत की, गीत लिखा था आनंद बख्शी ने और संगीत था जतिन ललित का।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे?
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424।
1: ओ 8700001424। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424 पर।
0: एक बार फिर से स्वागत है हमारे सभी श्रोताओं का आज के चित्रपट संगीत कार्यक्रम में, और कार्यक्रम में अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म दिल तो पागल है से। आवाज़ है आशा भोसले की, गीत लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत है उत्तम सिंह और नदीम श्रवण का।

आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से इस समय हमारे श्रोता सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रपट संगीत, और कार्यक्रम में अगला गीत श्रेया घोषाल और अरिजीत सिंह की आवाजों में फिल्म हैप्पी न्यू ईयर से। गीत लिखा है इरशाद कामिल ने और संगीत है विशाल शेखर का।

श्रोताओं, चित्रपट संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से, और कार्यक्रम में अगला गीत हमने लिया है फिल्म दामिनी से, जिसमें आवाज़ें हैं कुमार सानू और साधना सरगम की। गीत लिखा है समीर ने और संगीत है नदीम श्रवण का।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अंतिम गीत आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म करण अर्जुन से। शब्द रचना है इंडीवर की और संगीत है राजेश रोशन का।

अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम चित्रपट संगीत। ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। समय 11:30 और लीजिए प्रस्तुत है NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
1: सभी श्रोताओं को आपके साथी अजीत का नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत आप सबका उमंग कार्यक्रम में। तो श्रोताओं, आइए सबसे पहले सुनते हैं हमेशा की तरह आज का सुंदर विचार, जिसे हमें भेजा है बड़ा बम चौक खंडवा से ममता मार्कंडेय और संजय मार्कंडेय जी ने। बड़ा खूबसूरत लिखा है। लिखते हैं, आर्थिक स्थिति मजबूत हो या ना हो, लेकिन खुश रहने के लिए मानसिक स्थिति का मजबूत होना और सकारात्मकता बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद मार्कंडेय जी आपके सुंदर विचार के लिए। सच है श्रोताओं, प्रसन्न रहने का सबसे बड़ा तरीका है सकारात्मक भाव को बनाए रखना। और आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है बनबघेरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से योगेश सारवा, आशा सारवा, नीरज, नीलेश, अंजलि और रोशनी सारवा जी का। दूसरा संदेश हमें मिला है डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार देव, डॉली, बेबी, पूजा, पुष्कर, लेहान और जिज्ञासा के साथ साथ विराट तामुरिया, तेजस्वी और गौरव तामुरिया जी का। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिम्पल देवांगन का। अगला संदेश हमें मिला है भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता और कमला देवी गुप्ता जी का। और आइए सुनते हैं संदेश भेजने वाले कुछ और श्रोताओं के नाम। तो अगला संदेश हमें मिला है ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निघत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अबान और अब्बासी परिवार के सभी सदस्य। अगला संदेश हमें मिला है रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से खिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू और शुभम साहू के साथ साथ सेजल साहू जी का। और अब बारी है श्रोताओं पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की। तो सुनिए हमारा पहला प्रश्न जो कि हमने आपसे पूछा था। हमारा प्रश्न था, एक लोहे की सुई पानी में डूब जाती है लेकिन लोहे का बना हुआ जहाज पानी में नहीं डूबता, ऐसा क्यों? तो इसका उत्तर जान लेते हैं। इसका उत्तर है, लोहे की सुई पानी में इसलिए डूब जाती है क्योंकि उसका घनत्व यानी डेंसिटी पानी के घनत्व से अधिक होता है। इसके विपरीत लोहे का जहाज बहुत बड़ा और अंदर से खोखला होता है, जिससे उसका औसत घनत्व पानी से कम हो जाता है और वो अपने भार से अधिक पानी को हटाकर तैरता रहता है। हमारा अगला सवाल था कि लोकटक झील में तैरते हुए द्वीप किस चीज से बने हैं? इसका उत्तर है, लोकटक झील में द्वीप मिट्टी, घास और कई ऑर्गेनिक पदार्थों से बने हैं जिन्हें फुमदी कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न था, मानसरोवर झील के पास की

झील। तो श्रोताओ, ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है, सूर्य एक गैस का गोला है जो हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना है। ये दोनों गैसें ठंडी होती हैं, तो फिर सूर्य से गर्मी कैसे पैदा होती है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए। सूर्य एक गैस का गोला है जो हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना है। ये दोनों गैसें ठंडी होती हैं, तो फिर सूर्य से गर्मी कैसे पैदा होती है? 8800440559 है हमारा IVRS नंबर, और audio@ciet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन पतों पर हमें प्रश्नों के उत्तर और संदेश भेज सकते हैं। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप ताजा जानकारी के लिए CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। और अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सबसे पहले सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। शीर्षक है राग सिंदूरा। इस कार्यक्रम में राग सिंदूरा की स्वरमालिका, आरोह, अवरोह, थाट और गायन समय के बारे में विस्तार से बताया गया है। श्रोताओं, संगीत विद्यार्थियों और शिक्षकों के साथ साथ ये कार्यक्रम सामान्य श्रोता वर्ग के लिए भी उतना ही उपयोगी है। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम राग सिंदूरा।

राग सिंदूरा। राग सिंदूरा की उत्पत्ति काफी ठाट से हुई है। इसे राग सैंधवी भी कहा जाता है। इसमें कोमल गंधार यानी कोमल ग और कोमल निषाद यानी कोमल नी के अलावा सभी स्वर शुद्ध प्रयोग किए जाते हैं। इसके आरोह में गंधार और निषाद अर्थात ग और नी ये दोनों वर्ज स्वर हैं तथा अवरोह में सातों स्वर प्रयोग किए जाते हैं। इस प्रकार इसके आरोह में पांच और अवरोह में सात स्वरों के प्रयोग होने के कारण इस राग की जाति औड़व संपूर्ण है। इसका वादी स्वर षडज यानी स है, संवादी स्वर पंचम यानी प है। इसका गायन समय रात्रि का दूसरा प्रहर है। राग सिंदूरा के आरोह अवरोह और पकड़ इस प्रकार हैं। सबसे पहले सुनिए आरोह।

थे राग सिंदूरा की स्वर मालिका जो तीन ताल मध्य लय में निबद्ध है। इसमें 16 मात्राएं होती हैं। पहले प्रस्तुत है राग सिंदूरा की स्वर मालिका की स्थाई।

अभी आपने राग सिंदूरा की स्वरमालिका सुनी। अब प्रस्तुत है इसी स्वरमालिका पर आधारित एक रचना। बोल हैं, कल कल नदिया बहती जाती। सबसे पहले सुनते हैं इस रचना की स्थाई।

0: और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सीमित मत रहिए। श्रोताओं, ये कार्यक्रम प्रेरक प्रसंग श्रृंखला की एक कड़ी है, जिसके द्वारा बताया गया है कि हमारे पास अनंत संभावनाएं हैं, लेकिन हमारी नकारात्मक सोच ही हमें सीमित कर देती है और इसी कारण हम पूरी कुशलता से कार्य नहीं कर पाते।
1: साथियों नमस्कार।
2: नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: आज हम आपको एक बहुत ही खूबसूरत कहानी बताने जा रहे हैं और हमें आशा ही नहीं लेकिन पूरा विश्वास है कि आपको ये कहानी जरूर पसंद आएगी। कहानी का शीर्षक है सीमित मत रहिए।
2: तो आइए साथियों, सबसे पहले पूछिए एक पहेली। जरा ये बताइए कि दुनिया का ऐसा कौन सा देश है जो दो महादेशों में पड़ता है? सोचिए, जरा बताइए तो।
1: अच्छा चलिए, हम ही बता देते हैं। यदि आपने रूस देश का नाम सोचा है तो बिल्कुल सही सोचा है। जी हाँ, वो देश है रूस। ये एशिया और यूरोप दोनों महादेशों में पड़ता है।
2: और हाँ, आपको हम ये भी बता दें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से ये दुनिया का सबसे बड़ा देश है। इसकी राजधानी है मॉस्को, जिसे रूसी भाषा में मस्कवा कहते हैं।
1: और यहाँ की मुद्रा है रूबल। तो हाँ साथियों, जो कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं वो कहानी है रूस की। तो मित्रों, हम बात कर रहे थे रूस देश की एक कहानी की। जैसा कि आपने सुना कि वहां बहुत जंगल है, एक बार उन जंगलों में आग लग गई।

0: हजारों हेक्टेयर की भूमि उससे प्रभावित हुई।
1: पेड़ पौधे तो जले ही, बहुत से पशु पक्षी भी इस विकराल आग की वजह से जलकर मर गए। लेकिन एक छोटा सा भालू का बच्चा किसी तरह से बचकर पास के एक गांव में पहुंच गया। वो भूखा था और घायल भी।
0: एक किसान ने जब उसे देखा तो उसे बड़ी दया आई, वो उसे अपने घर ले गया।
1: अब वो भालू का बच्चा वहां के पालतू जानवरों के साथ ही रहता, उन्हीं के साथ घूमता और खेलता।
0: वो उन्हीं में घुल मिल गया और जैसा दूसरे घरेलू पशु व्यवहार करते वैसा ही वो भी व्यवहार करने लगा।
1: लेकिन पूरे गांव में वो एक कौतूहल का विषय तो था ही, लोग उसे देखने के लिए उत्सुक रहते थे, खास तौर से बच्चे।
0: धीरे धीरे ये बात आसपास के इलाकों में भी फैलने लगी और लोग बड़ी संख्या में उस भालू को देखने आने लगे।
1: लेकिन साथियों, ऐसा कब तक चलता? जैसे जैसे वो भालू का बच्चा बड़ा होने लगा, उसकी हिंसक प्रवृत्ति दिखाई देने लगी।
0: वो किसान अब उसे छोड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि उस भालू को देखने के लिए बहुत से लोग उसके घर पर आने लगे थे।
1: साथियों, फिर जो हुआ वो बहुत ही दुखद था। उस किसान ने एक लोहे का पिंजरा बनवाया और भालू को उसमें बंद कर दिया।

0: साथियों, अब वही पिंजरा उस भालू की दुनिया हो गया। वो उसी में घूमता और आगे पीछे होता रहता था।
1: फिर जो बात हुई वो और भी दुखद थी। उस किसान ने जब देखा कि लोग बहुत बड़ी संख्या में वहां आते हैं, तो उसने उनसे पैसा लेना शुरू कर दिया।
0: लोग आते और उसे देखते, कुछ लोग डंडे या लोहे की छड़ भी लेकर आते और भालू को परेशान करते। भालू बहुत परेशान और बेचैन रहने लगा।
1: दोस्तों, जरा सोचिए, क्या उस किसान ने ये जो काम कुछ पैसों की खातिर किया, क्या वो ठीक था? क्या पशुओं के साथ ऐसा व्यवहार ठीक है? क्या उन्हें स्वतंत्र होकर अपने पर्यावरण में रहने का अधिकार नहीं है? ये सोचने की बात है। जब आप किसी चिड़ियाघर में घूमने जाते हैं, तो पशुओं के प्रति हमारा क्या रवैया रहता है?
0: ये बात धीरे धीरे वन विभाग तक पहुंची। पर्यावरण और वन विभाग के कर्मचारी आए और वे उस भालू को ले गए।
1: वो उसे एक बहुत बड़े जंगल में ले गए। उसका पिंजरा खोल दिया गया और उसे आजाद कर दिया गया।
0: वे देखना चाहते थे कि भालू इस नए वातावरण में कैसा व्यवहार करेगा।
1: उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब उन्होंने देखा कि वो भालू कहीं नहीं जा रहा था। वो वहां भी आगे पीछे घूम रहा था। उसके सामने स्वतंत्रता थी, उसके सामने विशाल विस्तृत जंगल था। वो जहां चाहता वहां जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। निरीक्षण में पाया गया कि वो बहुत समय तक वहीं आगे पीछे घूमता रहा। लेकिन प्रश्न ये है कि ऐसा व्यवहार वो क्यों कर रहा था?
0: बात स्पष्ट है। उस पिंजरे में बहुत लंबे समय तक रहकर उसने सीख लिया था, या यूं कहें उसे सिखा दिया गया था कि उसकी दुनिया बस इतनी सी है, वो आगे जा ही नहीं सकता।
1: हां दोस्तों, उसे शायद अब लगने लगा था कि इससे अधिक अब वो कहीं नहीं जा सकता। लंबे समय की पराधीनता, या कह लीजिए कि उसकी नकारात्मक स्थिति की वजह से वो मान चुका था कि उसकी दुनिया सीमित है और वो इसके आगे कुछ भी नहीं कर सकता।
0: बहुत धीरे धीरे उस भालू ने सीखा कि उसकी दुनिया इतनी सीमित नहीं है, बल्कि उसके सामने आजादी का असीमित संसार है।
1: मित्रों, क्या हम भी कई बार उसी भालू की तरह नहीं हो जाते? हमारे आपके साथ भी अक्सर ऐसा हो सकता है। नकारात्मक परिस्थितियों से हम

0: सीखने लगते हैं कि हम जितना कर रहे हैं उससे ज्यादा कर ही नहीं सकते। हो सकता है कि कभी किसी ने ऐसा कह दिया हो कि इससे अच्छा तुम कर ही नहीं सकते।
1: लेकिन मित्र, कोई कुछ भी कहे, कोई चाहे आपको बार बार याद दिलाता रहे कि आपसे कुछ नहीं होगा, आप स्वयं को याद दिलाइए कि आप में बहुत सी असीमित क्षमताएं मौजूद हैं और आप बहुत अच्छा कर सकते हैं।
0: तो विश्वास रखिए कि आप जितना कर रहे हैं उससे और भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। और हाँ, याद रखिए कि आपको अपनी तुलना किसी और से नहीं करनी है।
2: अभी आपने सुना कार्यक्रम सीमित मत रहिए, और अब इसी के साथ अपने साथी अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग।
4: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, जिसके प्रायोजक थे NCERT। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। समय दिन के 12 बजे हैं। आइए श्रोताओं, आपको संक्षिप्त जानकारी दे दें हमारे केंद्र से प्रसारित आज के प्रमुख कार्यक्रमों के संदर्भ में।

आज रात्रि 9:30 पर आकाशवाणी दिल्ली से सुनिएगा प्रोग्राम पब्लिक स्पीक, और अब से कुछ ही देर यानी दिन में 12:05 पर शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे शिशिर कानाधार चौधरी का वायलिन पर बजाया राग मुल्तानी।

मिड डे मेलोडी प्रोग्राम का आनंद लीजिएगा आज दोपहर 12:30 पर और दोपहर 1:15 पर बहनें सुनेंगी कार्यक्रम परिवार जगत, जिसमें होगी चर्चा कैसे रखें स्वास्थ्य का ध्यान गर्मियों में। साथ ही जानकारी होगी नदियों का प्रदूषण और संरक्षण के विषय में। और साथ ही श्रोता सुनेंगे लघु नाटिका जल है तो कल है, जिसमें प्रतिभागी कलाकार होंगे प्रमोद सिंह, वर्षा अग्रवाल, अक्षय त्यागी और ज्योतिपाल। लोक संगीत कार्यक्रम लोकधारा में दिन में 1:45 पर आज आप सुनेंगे चंद्रदत्त सुयाल के गाए गढ़वाली लोकगीत।

फिल्म संगीत नई फिल्मों से आप सुनिएगा आज दिन में 2:30 पर और शाम 5 बजे मेरा सपना उन्नत भारत क्रम में रहेगी जानकारी। उड़ान योजना और पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के विषय में युववाणी रोज की ही तरह शाम 5:15 पर, जिसमें आज का क्रम रहेगा बूझो तो जाने कुछ खास है आज, गपशप अड्डा, क्रैश कोर्स, पैसा वसूल, बूस्टर्स, साथ ही साथ गीत संगीत भी।

आज शाम 6:05 पर कृषि जगत कार्यक्रम में किसान भाई सुनेंगे चर्चा, आम के बागों में फल तोड़ाई में सावधानी, साथ ही भेंट वार्ता प्रसारित की जाएगी। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत नांगल सोती के CHO डॉक्टर निर्मल से बातचीत करेंगे नरेश पाल सिंह। और शाम 6:45 पर विविधा कार्यक्रम के अंतर्गत आज आप सुनेंगे श्री देवकी नंदन शर्मा की वार्ता, हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष।

छाया गीत का आनंद लीजिएगा शाम 6:55 पर, और सुगम संगीत कार्यक्रम में आज संध्या 7:32 पर आप सुनेंगे अमिता अग्रवाल के गाए भजन। गीत संध्या कार्यक्रम होगा शाम 8 बजे। साथ ही 8:30 पर आनंद लीजिएगा कार्यक्रम एक ही फिल्म से का। रात्रि 10 बजे फिल्म संगीत भूले बिसरे गीत, और रात्रि 10:30 पर होगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश।

आज रात्रि 9:30 पर आकाशवाणी दिल्ली से आप सुनेंगे प्रोग्राम पब्लिक स्पीक, और अब से कुछ ही देर यानी 12:05 पर शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत सुनिएगा शिशिर कानाधार चौधरी का वायलिन पर बजाया राग मुल्तानी। तो ये थी संक्षिप्त रूपरेखा हमारे केंद्र से प्रसारित आज के प्रमुख कार्यक्रमों के विषय में। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। समय दिन के 12:05 और लीजिए पेश है शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत शिशिर कानाधार चौधरी का वायलिन पर बजाया राग मुल्तानी। विलंबित वैद्रुत गत 3 ताल में निबद्ध है और तबले पर संगत कर रहे हैं संतराम।

शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे शिशिर कानाधार चौधरी का वायलिन पर बजाया राग मुल्तानी। विलंबित व द्रुत गत तीन ताल में निबद्ध थी और तबले पर आपके साथ संगत कर रहे थे संतराम। आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्स पर। समय दिन के 12:30 और आइए श्रोताओं अब आपको लिए चलते हैं प्रोग्राम मीड डे मेलोडी की ओर। स्वागत है हमारे सभी श्रोताओं का आज के मीड डे मेलोडी कार्यक्रम में। और कार्यक्रम का ये पहला गीत मधुश्री और ए आर रहमान की आवाजों में।

0: मिड डे मेलोडी कार्यक्रम का ये पहला गीत आपने सुना मधुश्री और एआर रहमान की आवाज़ों में। और श्रोताओं, इस गीत को लिखा था महबूब ने और संगीत था एआर रहमान का। कार्यक्रम का अगला गीत सुनने से पहले आइए सुनते हैं कुछ जरूरी संदेश।
1: प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल है शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
2: महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वर्ष 2026 हेतु प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार PMRBP के लिए नामांकन आमंत्रित किए गए हैं। ये प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार 18 वर्ष से कम आयु वर्ग के उन बच्चों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने बहादुरी, समाज सेवा, पर्यावरण संरक्षण, खेल, कला एवं संस्कृति तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियां प्राप्त की हों। सभी इच्छुक अभ्यर्थी एवं संस्थाएं योग्य बच्चों के नामांकन सिफारिशें केवल ऑनलाइन माध्यम से राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर भेज सकती हैं। पोर्टल है https://awards.gov.in। नामांकन भेजने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है। विशेष रूप से बालिकाओं, कमजोर वर्गों, अनुसूचित जाति, जनजाति तथा दिव्यांग बच्चों में से प्रतिभाशाली बच्चों को चिन्हित कर उनके नामांकन हेतु प्रोत्साहित किया जाए। अधिक जानकारी हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल अथवा संबंधित विभाग से संपर्क किया जा सकता है। सूचना समाप्त हुई।
0: एक बार फिर से स्वागत है हमारे सभी श्रोताओं का कार्यक्रम मिड डे मेलोडी में, जिसे आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से। और कार्यक्रम में श्रोताओं, अगला गीत हमने लिया है कविता कृष्णमूर्ति और शान की आवाज़ों में फिल्म दिल है तुम्हारा से। गीत लिखा है समीर ने और संगीत है नदीम श्रवण का।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मीठे मेलोडी आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से। और कार्यक्रम में अगला गीत आपको सुनवाते हैं अभिजीत और चित्रा सिंह की आवाजों में फिल्म तुम बिन से। गीत लिखा है फैज अनवर ने और संगीत है निखिल विनय का।

दिल ही दिल में इस फिल्मी श्रोताओं आप सुन रहे थे अभिजीत को और इस गीत को लिखा था समीर ने, संगीत था नदीम श्रवण का। कार्यक्रम में अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजों में, शब्द रचना इंडीवर की और संगीत एम एम करीम का, फिल्म है क्रिमिनल।

और श्रोताओं, कार्यक्रम मीट डे मेलोडी के अंत में आपको सुनवा रहे हैं फिल्म काइट्स का ये गीत, जिसे गाया है केके ने। गीत लिखा है नासिर फराज ने और संगीत है राजेश रोशन का।

और श्रोताओं, इसी गीत के साथ ही आज का मिड डे मेलोडी कार्यक्रम संपन्न करने की श्वेता को दीजिए इजाजत। आप बने रहें आकाशवाणी नजीबाबाद के साथ।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मिड डे मेलोडी। ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। समय दिन के 1 बजने को है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 2 दिन की बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान साइबर सुरक्षा, डिजिटल खतरों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े जोखिमों और अन्य गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। प्रतिनिधि आतंकवाद रोधी सहयोग और सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी के सुरक्षित उपयोग से जुड़े मुद्दों की भी समीक्षा करेंगे। बैठक में भारत, ब्राजील, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स के 11 सदस्य देशों के सुरक्षा प्रमुख हिस्सा लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में कोनो नेशनल पार्क में चीता मित्रों और सहरिया जनजाति के सदस्यों से बातचीत की। उन्होंने प्रोजेक्ट चीता में उनके योगदान की सराहना की। राष्ट्रपति ने कहा कि इस महत्वाकांक्षी संरक्षण कार्यक्रम की सफलता में स्थानीय समुदायों की सक्रिय भागीदारी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इससे पहले राष्ट्रपति ने कोनो नेशनल पार्क में सफारी की और चीता पुनर्वास परियोजना की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने चीता कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का दौरा किया। राष्ट्रपति ने प्रोजेक्ट चीता पर लगी प्रदर्शनी देखी और जानवरों की निगरानी, ट्रैकिंग और संरक्षण के लिए किए जा रहे उपायों के बारे में जानकारी ली। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर जलपाईगुड़ी के जल्दाबाड़ी में एक सड़क दुर्घटना में 2 और घायलों की मृत्यु होने से मृतकों की संख्या 6 हो गई है। मृतकों में 2 महिला और 1 बच्चा शामिल है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार उत्तर बंगाल राज्य परिवहन निगम की एक बस को पीछे से आ रही स्टेशनरी ट्रक ने टक्कर मार दी। पुलिस, जिला प्रशासन अधिकारी और स्थानीय निवासियों ने तुरंत बचाव और राहत अभियान शुरू किया। राज्य के परिवहन मंत्री आनंदमय बर्मन ने दुर्घटना स्थल और अस्पताल का दौरा किया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और 2 मंत्रियों ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। उत्तर प्रदेश में कुख्यात अपराधी ललन सिंह को कल रात सहारनपुर में उत्तर प्रदेश विशेष कार्यबल एसटीएफ ने मुठभेड़ में मार गिराया। उस पर 1,25,000 रुपए का इनाम था। पुलिस के अनुसार मुठभेड़ सरसावा नाकुर रोड पर हुई। एसटीएफ के अनुसार ललन सिंह और उसके साथी हत्या, बैंक डकैती, कैश वैन लूट और सरकारी हथियारों की चोरी जैसे कई संगीन अपराधों में शामिल थे। झारखंड में पिछले 24 घंटे में बिजली गिरने से लगभग 8 लोगों की मृत्यु हो गई और 12 से अधिक लोग घायल हुए हैं। बिजली गिरने की घटनाएं रामगढ़, गिरिडीह, खूंटी, देवघर, धनबाद और साहिबगंज जिलों में हुई हैं। बिजली गिरने की घटना में मरने वालों में सीपीआई के 1 नेता, 1 वार्ड सदस्य और 1 किसान तथा अन्य निवासी शामिल हैं। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर मंगोलिया पहुंचे। डॉ जयशंकर ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे भारत और मंगोलिया के बीच विशेष साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए सार्थक वार्ता की आशा करते हैं। इस यात्रा के दौरान विदेश मंत्री मंगोलिया के नेतृत्व के साथ मुलाकात करेंगे। वे मंगोलिया की विदेश मंत्री बी बत्तिसक के साथ वार्ता करेंगे। यात्रा के दूसरे चरण में विदेश मंत्री बुधवार और बृहस्पतिवार को दक्षिण कोरिया जाएंगे। वहां वे विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ चर्चा करेंगे। विदेश मामलों की स्थायी समिति ने सामरिक सीमा सुरक्षा और विदेश नीति मुद्दों की समीक्षा के लिए जम्मू कश्मीर और लद्दाख की 4 दिन की अध्ययन यात्रा शुरू की। सांसद शशि थरूर की अध्यक्षता में ये समिति सीमांत क्षेत्रों में सीमा प्रबंधन और सुरक्षा स्थिति का प्रत्यक्ष अवलोकन करेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 25 जून तक समिति जम्मू, श्रीनगर, करगिल और लेह की यात्रा करेगी। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज 0.5% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 360 अंक बढ़कर 77,163 पर और निफ्टी 105 अंक बढ़कर 24,118 पर कारोबार कर रहा था। मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कल तक पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, कर्नाटक, तेलंगाना, केरलम, गोवा, ओडिशा और पूर्वोत्तर के कुछ स्थानों पर तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। आज हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में तेज हवा तथा बादल गरजने के साथ वर्षा का भी अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar arrived in Mongolia today for an official two-day visit. In a social media post, Dr. Jaishankar shared this information and said that he is looking forward to fruitful engagements to advance the special partnership between India and Mongolia. During the visit, the External Affairs Minister will meet with the Mongolian leadership and hold discussions with his counterpart, Foreign Minister B. Batsetseg. On the second leg of his visit, the External Affairs Minister will visit South Korea on Wednesday and Thursday. President Draupadi Murmu today interacted with Cheetah Mitras and members of the Saharia tribe at Kuno National Park in Madhya Pradesh's Shivpur district. She appreciated their contribution to Project Cheetah and said the active participation of local communities is playing an important role in the success of the ambitious conservation program. Earlier, the president went on a safari in Kuno National Park and reviewed the progress of the cheetah reintroduction project. She also visited the Cheetah Command and Control Center, where she viewed an exhibition on Project Cheetah and was briefed on the monitoring, tracking and conservation measures being undertaken for the animals. India will host the two-day BRICS National Security Advisors meeting in New Delhi beginning today. National Security Advisor Ajit Doval will chair the meeting. A report.
3: During the meeting, the National Security Advisors and heads of delegation of BRICS member countries will exchange views on the theme Non-Traditional Security Challenges Confronting the World Today. They will discuss the rapidly evolving nature of national security challenges as well as the role of new technologies in emerging security threats. The National Security Advisors and heads of delegation will also review the outcomes of the recently held BRICS Joint Working Groups on Counter-Terrorism and on Security in the Use of Information and Communication Technologies. Richu Jaiswal, Akashvani News, Delhi.
2: In Uttar Pradesh, notorious criminal Lalan Singh, carrying a combined bounty of 1,25,000 rupees, was killed in an encounter with the Uttar Pradesh Special Task Force in Saharanpur last night. Police said the shootout took place on the Sarsawa Nakur Road. A resident of Samastipur district in Bihar, Lalan Singh was wanted in several serious criminal cases, including the shooting of a sub-inspector and robbery of his service pistol in Varanasi and a firing-cum-robbery case in Chandauli district. In Jharkhand, at least 8 people were killed and several others injured in multiple lightning strikes reported from different parts of the state during the past 24 hours. The incidents were reported from Ramgarh, Giridih, Khunti, Deoghar, Dhanbad and Sahibganj districts. The injured have been admitted to hospitals for treatment. Officials said that some of them are in serious condition. Meanwhile, authorities have advised people to remain alert during thunderstorms and adverse weather conditions. The India Meteorological Department, IMD, has issued a red alert for extremely heavy rainfall over Assam and Meghalaya today. IMD has also predicted heavy rainfall conditions at isolated places over sub-Himalayan West Bengal, Karnataka, Telangana, Kerala, Goa, Odisha and northeastern parts of the country till tomorrow. Similar conditions will also prevail over Bihar, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Lakshadweep, Puducherry and Karaikal during the day. The Met Department has also forecast thunderstorms accompanied by lightning and gusty winds over Haryana, Chandigarh, Delhi, Punjab, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Madhya Pradesh, Maharashtra, Andaman and Nicobar Islands, Jammu and Kashmir and Ladakh today. An explosion ripped through Qatar's key natural gas export infrastructure, injuring at least 54 people, while 18 others remain missing. According to official reports, the blast occurred in the Ras Laffan industrial area last night, one of the world's most important energy hubs. During ongoing efforts to resume operations at the facility following earlier disruptions linked to regional conflict, the incident triggered a major fire at the Barzan gas supply facility, prompting emergency response teams to rush to the site. Benchmark domestic equity indices were trading around 0.5% up in afternoon.

0: इलाकाई खबरें।
1: ये आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरों के साथ मैं आमिर हुसैन सिद्दीकी। वज़ीराला योगी आदित्यनाथ आज फिरोजाबाद में 658 करोड़ रुपए से ज्यादा लागत के 81 तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर वज़ीराला ने कहा कि फिरोजाबाद और अलीगढ़ तरक्की और लोगों को बाख्तियार बनाने के एक नए बाब का मुशाहिदा करेंगे। उन्होंने बताया कि फिरोजाबाद में 658 करोड़ रुपए से ज्यादा लागत की 81 तरक्यासी मंसूबों और अलीगढ़ में 462 करोड़ रुपए की लागत के 85 तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखा जाएगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के इस्तेफादा कुनिंदगान में घर की चाबियां तकसीम की जाएंगी और मुख्तलिफ स्कीमों के फायजीन को सर्टिफिकेट, चेक और आलात वगैरह भी तकसीम किए जाएंगे। वज़ीराला योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उत्तर प्रदेश ने न्यू इंडिया की मिसाल पर चलते हुए अपनी एक नई अलग पहचान बनाई है। डबल इंजन वाली हुकूमत की पॉलिसियों की बदौलत बुंदेलखंड तेजी से तरक्की की राह पर गामजन है। वज़ीराला ने महोबा और बुंदेलखंड में 697 करोड़ रुपए से ज्यादा लागत के 88 तरक्याती प्रोजेक्टों और हमीरपुर जिले में 636 करोड़ रुपए से ज्यादा के 75 तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखने के बाद मुनक्किद एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए ये बात कही। वज़ीराला ने कहा कि बुंदेलखंड की तरक्की रियासती हुकूमत की तरजीह है। इस सिलसिले में बुंदेलखंड में मुख्तलिफ तरक्याती स्कीमों का अहाता किया गया है। जनाब योगी ने कहा कि बुंदेलखंड जल्द ही मिसाइल हब के तौर पर भी जाना जाएगा।
2: उत्तर प्रदेश की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर में बनी हुई मिसाइल ने साबित करके दिखाया और उसका हब हम चाहते हैं आने वाले समय में हमारा महोबा बने, हमीरपुर बने, चित्रकूट बने, झांसी बने, ऊर्जा के केंद्र के रूप में विकसित हो। और इसलिए विकास की योजनाओं को लेकर के औद्योगिक निवेश के लिए भी हम लोगों ने एक औद्योगिक क्लस्टर यहाँ विकसित करने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। करबई बांध के जिन किसानों ने जमीन दी थी, वर्षों से की भूमि का पैसा नहीं मिला था, उसको निस्तारित करके उसका भुगतान की कार्रवाई को संपन्न किया गया।
1: गुज़िश्ता रोज बैनुल अक्वामी योगा डे जोश व खरोश के साथ मनाया गया। इस मौके पर न सिर्फ मुल्क बल्कि दुनिया भर में योगा पर प्रोग्राम मुनक्किद किए गए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कोलकाता के तारीखी रेड रोड पर मुनक्किद मरकजी बैनुल अक्वामी योगा डे की तकरीब में कौम की क़यादत की। जनाब मोदी ने योगा की मशक की और योगा को हमारे रोज़मर्रा के मामूलात का लाजमी हिस्सा बनाने का पैगाम दिया। रियासत में योगा डे के मौके पर तमाम अज़ला में प्रोग्राम मुनक्किद किए गए। वज़ीराला योगी आदित्यनाथ ने झांसी और बुंदेलखंड में मुनक्किद तकरीब में शिरकत की और लोगों को योगा के मशक करके सेहतमंद रहने की तरगीब दी। वज़ीराला योगी आदित्यनाथ ने पानी के तहफ़ुज़ को एक अवामी तहरीक बनाने पर जोर देते हुए कहा कि गैर यकीनी मौसम और मुमकिन मानसून की तब्दीलियों के पेश नज़र रियासत के हर बाशिंदे को पानी के तहफ़ुज़ के लिए कोशिशों में शामिल होना चाहिए। उन्होंने कहा कि पानी की एक बूंद भी ज़ाया नहीं होनी चाहिए। कैच द रेन मुहिम को ज़्यादा मौसर तरीके से लागू किया जाना चाहिए और बारिश के पानी को ज़खीरा करने को वसी पैमाने पर अवामी शिरकत से मुंसलिक किया जाना चाहिए। रियासती हुकूमत ने कबायली अक्सरियती ज़िले सोनभद्र में 257 करोड़ रुपए की लागत से 86 किलोमीटर सड़कों का जाल बिछाने का फैसला किया है। ज़िला मजिस्ट्रेट चर्चित गौड़ ने बताया कि सड़क की तामीर के लिए सर्वे और टेंडर का अमल जल्द मुकम्मल हो जाएगा और काम शुरू हो जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि इन सड़कों की तामीर से 4 सरहदी रियासतों के साथ रबते में बेहतरी आएगी। ये राबता सनतों के लिए खाम माल और तैयार मसनूआत की नकलो हमल में सहूलत फराहम करेगा। रियासत के बेशतर अजला में इस वक्त शदीद गर्मी पड़ रही है। कई अजला में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा रिकॉर्ड किया जा रहा है। गर्मी ने आम जिंदगी को दरहम बरहम कर दिया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक गर्मी की यह लहर आइंदा 3 से 4 रोज तक जारी रहेगी।

नमस्कार श्रोताओं, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और सुन रहे होंगे अपना पसंदीदा प्रोग्राम परिवार जगत। आज के कार्यक्रम में मैं हूँ आपकी साथी ज्योति। श्रोताओं, जैसे कि आप जानते हैं कि स्वस्थ शरीर हमारा सबसे बड़ा सुख है। यदि हम तन मन से स्वस्थ हैं तो समझ लीजिए कि दुनिया में सबसे सुखी हैं। कितना ही धन माया हमारे पास है लेकिन वो बिल्कुल बेकार है जब तक हम स्वस्थ नहीं हैं। हम यदि बीमार हैं तो सब धन बेकार है। और गर्मी के मौसम में और भी ज़रूरी हो जाता है कि हम अपना और अपने परिवार का खास ध्यान रखें। श्रोताओं, गर्मियों का मौसम अपने साथ तेज़ धूप, गर्म हवाएं, पसीना, निर्जलीकरण यानी डिहाइड्रेशन और कई प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं लेकर आता है। यदि इस मौसम में सही खान पान, पर्याप्त पानी और दैनिक दिनचर्या का ध्यान रखा जाए तो हम स्वयं को स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रख सकते हैं। श्रोताओं, गर्मियों का मौसम हो और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। तो इस मौसम में लू लगना, डिहाइड्रेशन, वायरल बुखार, फूड पॉइजिंग, त्वचा संबंधी समस्याएं जैसे घमूरियाँ, सनबर्न, आँखों में जलन होना और एलर्जी आदि समस्याएं हो जाती हैं। इन बीमारियों से हम और हमारा परिवार बचा रहे इसके लिए पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए। श्रोताओं, लगभग 2.5 लीटर से 3.5 लीटर तक पानी हम अपनी शरीर की आवश्यकता के अनुसार पी सकते हैं। एक साथ अधिक पानी पीने की बजाय हमें थोड़ी थोड़ी मात्रा में बार बार पीना चाहिए। श्रोताओं, बाहर जाते समय हमेशा पानी की बॉटल अपने साथ रखें ताकि कहीं भी जरूरत पड़ने पर हम पानी का उपयोग कर सकें। इसके अतिरिक्त शरीर को हाइड्रेट रखने के लिए नारियल पानी, नींबू पानी, छाछ, लस्सी, सादा या जरूरत पड़ने पर ORS पिएं, जो शरीर में पानी की कमी को दूर करता है। ताजे फलों का सेवन बिना चीनी मिलाए करना चाहिए। हल्का संतुलित भोजन करें। मौसमी फल जैसे तरबूज, खरबूजा, खीरा, ककड़ी, आम सीमित मात्रा में लें। श्रोताओं, इसके अतिरिक्त हरे पत्तेदार सब्जियां, दही और सलाद भोजन के साथ अवश्य लें। श्रोताओं, अंकुरित किए हुए अनाज भी हमारे शरीर को बहुत फायदा पहुंचाते हैं, इनका सेवन अवश्य करें। इस मौसम में बहुत जरूरी है घर का बना हुआ सादा भोजन जिसमें अतिरिक्त मिर्च, मसाला, तेल आदि ना हो, हम उसी का सेवन करें। इस प्रकार से हम अपने आप को इन सभी खाद्य पदार्थों का सेवन करके स्वस्थ बनाए रख सकते हैं। श्रोताओं, बहुत अधिक तला भुना भोजन और अत्यधिक मसालेदार भोजन का उपयोग बिल्कुल भी ना करें, यह हमें बीमार कर सकता है। हमें गर्मियों के मौसम में ताज़ा बना हुआ भोजन ही करना चाहिए। बहुत अधिक चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक्स, इन चीज़ों का भी सेवन करने से बचना चाहिए। ध्यान रहे, बाजार में मिलने वाले खुले कटे हुए फल बिल्कुल भी ना खाएं, क्योंकि इनमें मक्खी मच्छर बैठकर इन्हें दूषित कर देते हैं और बीमारी फैलाते हैं। इस मौसम में धूप अधिक तेज होती है तो डायरेक्ट धूप के संपर्क में आने से हमें बचना चाहिए। सुबह 11 बजे से शाम के 4 बजे तक घर से अगर जरूरी ना हो तो ना निकलें। हल्के रंग के और सूती कपड़े ही पहनें। टोपी, छाता और धूप का चश्मा उपयोग करें। दिन में कम से कम एक बार तो जरूर नहाएं। पसीने वाले कपड़े बदल दें। हाथों को साबुन से बार बार धोएं। स्वच्छ पानी और स्वच्छ भोजन का ही सेवन करें। श्रोताओं, बहुत जरूरी है रोज 7 से 8 घंटे की नींद लेना। अत्यधिक थकान से बचें। सुबह या शाम को हल्का व्यायाम अवश्य करें। ध्यान रखें, बच्चों और बुजुर्गों के लिए विशेष सावधानी की आवश्यकता होती है। उन्हें बार बार तरल पदार्थ और पानी देते रहें। तेज धूप में न जाने दें। चक्कर, बुखार, कमजोरी, उल्टी हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। और श्रोताओं, लू लगने पर ठंडी छायादार जगह पर ले जाएं। ठंडे पानी की पट्टियों से शरीर को ठंडा करें और ORS का घोल दें। तुरंत डॉक्टर की सलाह लें।
गर्मियों में मौसमी फल जरूर खाएं, जैसे तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी, लीची, संतरा, पपीता और बेल का शरबत हमारे पेट के लिए बहुत लाभदायक होता है। श्रोताओं, गर्मियों में थोड़ी सी सावधानी हमें कई गंभीर बीमारियों से बचा सकती है। पर्याप्त पानी पीना, पौष्टिक भोजन करना, स्वच्छता बनाए रखना, तेज धूप से बचे रहना, शरीर के संकेतों पर ध्यान देना स्वस्थ रहने के सबसे प्रभावी आदतें हैं। याद रखें, बचाव ही सबसे बेहतर उपचार है। तो श्रोताओं, ये तो बात थी कि गर्मियों के मौसम में हम अपने स्वास्थ्य का ध्यान कैसे रखें। बातें अभी और भी करेंगे, परंतु उससे पहले सुन लेते हैं कुछ जरूरी संदेश।

0: चैनल हर पल चंदन का एहसास।
1: ये कहानी है एक नर्स और उसके अंतर्मन की।
2: आ गए सैलरी?
3: हाँ।
2: नहीं झुमके ना, पहले बचत,
3: पहले झुमके।
2: सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो, और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री।
3: लेकिन झुमकों का क्या,
2: जाते हो कि लगाओ इंजेक्शन।
4: आरबीआई कहता है,
5: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
6: श्रोताओं, संदेशों के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम परिवार जगत में। श्रोताओं, हम बात कर रहे थे गर्मियों में अपने स्वास्थ्य की देखभाल कैसे करें विषय पर। गर्मियों में हमारे शरीर के लिए पानी बहुत ही आवश्यक होता है। श्रोताओं, पानी हमारे लिए ही जरूरी नहीं वरन समस्त जीव जंतुओं, पृथ्वी, पेड़ पौधे सभी के लिए आवश्यक होता है। श्रोताओं, नदियां प्रकृति का अमूल्य उपहार है। इन्हें जीवनदायिनी भी कहा जाता है क्योंकि ये हमें पीने का पानी, सिंचाई, बिजली उत्पादन, मत्स्य पालन और जैव विविधता का आधार प्रदान करती हैं। भारत की सभ्यता और संस्कृति का विकास भी नदियों के किनारे ही हुआ है, लेकिन आज औद्योगिकरण, शहरीकरण और जनसंख्या वृद्धि के कारण नदियां गंभीर प्रदूषण का सामना कर रही हैं। यदि समय रहते इनका संरक्षण के लिए प्रभावी कदम नहीं उठाए गए तो भविष्य जल संकट और पर्यावरणीय असंतुलन और गंभीर हो जाएगा। नदियों के संरक्षण के विषय में हम ढेर सारी बातें करेंगे, परंतु उससे पहले हम सुन लेते हैं ये लघु नाटिका, जल है तो कल है। हमारे जीवन में जल का क्या महत्व है, जानते हैं इस लघु नाटिका के माध्यम से, जिसमें प्रतिभागी कलाकार हैं प्रमोद सिंह, वर्षा अग्रवाल, अक्षय त्यागी और ज्योति। आइए सुनते हैं लघु नाटिका, जल है तो कल है।
7: ओहो, कितनी देर कर दी बच्चों ने तैयार होने में, जरा देखूं ये कर क्या रहे हैं।
8: मम्मी मम्मी मम्मी प्लीज चोटी बना दो, स्कूल के लिए देर हो रही है, मम्मी प्लीज।
9: ओहो, कितनी बार कहा है अपने काम अपने आप किया करो।
10: मम्मी मेरे कपड़ों पर परहेज कर दो, स्कूल के लिए लेट हो रहा हूँ।
9: लो ये एक और आ गया, इतनी बार कहा है बच्चे बड़े हो गए हैं अपने काम अपने आप कर लिया करो, अपने आप प्रेस कर और तू भी चोटी अपने आप बना।
8: मम्मी इतने लंबे बाल है कैसे बनाऊं?
10: मम्मी कल कपड़े भी तो धुले थे मैंने, अब मैं कैसे करूं? अब मैं प्रेस भी नहीं कर सकता एक साथ, मम्मी आप ही करके दो मेरे कपड़ों पर प्रेस।
9: नहीं नहीं, प्रेस अपने आप कर, मैं एक बार में एक ही काम तो कर सकती हूँ। उधर देख, रसोई में मेरी चाय बन रही है, दूध उबल रहा है और तुम्हारे लिए पराठे भी सेक रही हूँ। आ तेरी जल्दी से मैं चोटी बना देती हूँ,
8: जा अपने कपड़े प्रेस कर, मैं चोटी बनवा रही हूँ।
10: ठीक है, मैं कर लेता हूँ अपने कपड़ों पर प्रेस, मम्मी तो कभी करके ही ना देती।
8: मम्मी क्या कर रही हो, कैसे बाल खींच रही हो, अरे आराम से करो ना।
9: ओहो, तुम्हारे तो नखरे ही खत्म नहीं होते, सही तो बना रही हूँ, देखो जरा गैस पर रखी चाय भी उबल गई है।
10: मम्मी मेरे मोजे ना मिल रहे।
9: ओहो, जान खाली मेरी।
8: मम्मी आप बिना कुछ काम ठीक से नहीं करती हो, छोड़ो मैं अपने आप ही बना लूंगी।
11: अरे गुड्डू,
8: दादी दादी देखना प्लीज मेरी चोटी बना दो, मम्मी ने देखना कैसे बनाई है।
11: अरे जब इतने लंबे बाल तेरे से संभलना है तो तू क्यों पाल रखे इतने हैं, परेशानी तो होगी। कितनी बार कही कि अभी तू छोटी, ये बाल कटा के रखा कर।
8: अरे हा? दादी आप कह रही हो कि मैं छोटी हूँ, मम्मी कह रही थी तू बड़ी हो गई।
11: चल चल बोलना, तू इधर आला।
12: मगर ये तो बतायो बिट्टू कहाँ, ये कहाँ घूम रहा, ये भी तैयार हुआ ना हुआ भी स्कूल जाने को, ये यूं ही घूम रहा।
8: दादी वो ना अपने स्कूल की ड्रेस प्रेस कर रहा है, कल उसके कपड़े गंदे हो गए थे तो पहले उसने वो धोए फिर वो प्रेस करने चला गया।
11: भैया इस घर का क्या ही होगा, मैं तो बड़ी परेशान हो गई, कैसे माँ बाप हैं इनसे अपने बालकों के काम ना होते, हम पूरे कुनबे का करें थे बैठ के।
10: मम्मी नाश्ता, स्कूल के लिए लेट हो रहा है, कब तक बनेगा नाश्ता?
9: हाँ हाँ ये तुम्हारा टिफिन लगा दिया है, लो और जाओ। सुनते हो
8: मम्मी, मेरा बैग, मम्मी देखो कुछ भी नहीं मिल रहा ना, बोतल मिल रही है ना, कुछ मिल रहा।
9: हाँ हाँ दे रही हूँ सब दे रही हूँ, एक जान और 70 काम, सारे काम मुझे ही करने पड़ते हैं। अजी सुनते हो, कहाँ हो?
10: अरे क्या कह रही हो, हमेशा बोलती रहती हो, कुछ काम धाम कर लिया करो भाई।
9: जब पता है सुबह का टाइम है, बच्चों को स्कूल जाना है, इतना सारा काम है, सुनते क्यों नहीं हो कुछ?
10: तुम बच्चों का स्कूल का नहीं देख सकती क्या?
9: आप नहीं देख सकते क्या?
4: अरे मैं पूरे गांव को देख रहा हूँ, तुम बच्चों को भी नहीं देख सकते?
10: अब बीच में लड़ो मत दोनों, हमें स्कूल छोड़
8: जाएंगे, हम चले जाएंगे, हम चले जाएंगे, आप दोनों मत लड़ो।
9: बेटा बेटा यही छोड़ के आएंगे, ये इनका काम है, सारे घर संभालू मैं, ये इतना भी नहीं कर सकते कि बच्चों को बस तक छोड़ाए?
4: अरे बस बस करो ना, मुझे नहीं जाना कहीं बच्चों बच्चों को छोड़ने, खुद बच्चों को छोड़ के आओ।
9: क्यों, आज ऐसा क्या जरूरी काम है?
4: भाई जरूरी तो है ही, सारे काम जरूरी हैं, गांव के प्रधान हैं हम, ऐसे वैसे थोड़ा ही हैं।
9: अरे गांव के प्रधान तो हो, घर के भी कोई मुखिया हो या ना हो ये बता दो।
4: अरे हम तो पूरे गांव के मुखिया हैं, पूरे गांव की सुननी है, घर में तुम्हारी सुने, उधर गांव वालों की सुनते रहे।
8: पापा पापा मम्मी
11: दोनों क्यों सुबह सुबह तुम शुरू हो गए भाई?
4: अरे मम्मी
11: किन काम में उलझे रहे?
4: मम्मी आपको पता,
9: समझा लो इनको, रोज का यही नाटक रहता है।
4: अब सुन भी लोगे
11: तो गला ही बस।
10: अरे तुम दोनों के चक्कर में दादी खांसी आ गई, देख लो पानी पिला दो दादी को।
4: बात ऐसी है मम्मी जी, गांव वालों की कुछ समस्याएं हैं, गांव वाले आने वाले हैं, उनकी भी समस्याओं को सुनना है। ये महारानी क्या बच्चों को स्कूल तक नहीं छोड़ के आ सकती?
9: हाँ सारी जिम्मेदारी मेरी तो है, आपकी तो कोई जिम्मेदारी है ही नहीं, बस गांव को ही देख लो, अपने अपने रिश्तेदारों को देख लो, अपने आने वाले को देखो और गांव वालों को, इन बच्चों को कौन देखेगा ये बताओ जरा।
8: मम्मी पापा
4: अरे मुझे माफ करो भाई, तुम अपने बच्चों को देखो, मुझे अपने गाँव को देखो।
8: चल हम चल रहे हैं,
10: चलो चलो चलो हम चल रहे, लड़ते रहने दो।
11: अरे रुको रुको रुको तुम दोनों, नन्हा के नन्हे बच्चों को ऐसे ही भेज दे हैं बाहर को, रुको मैं चल रही थी, मैं छोड़ के आऊं।
10: ठीक है दादी,
11: आओ आओ चलो
8: चलो दादी, चलो
11: उठा,
8: चलो
11: उठा,
8: चलो
11: मैं अपने बैग उठा।
10: खाली है दादी, चलो
11: एक
10: चलो।
8: दादी आपसे एक बात बोलूं?
9: बोल। जब मैं आऊंगी ना स्कूल से शाम को ना, मुझे कहानी सुनाना, बहुत सुंदर सुंदर कहानी सुनाना, वो मत सुनाना घिसी पिटी सी बिल्कुल भी।
10: दादी मुझे बोर
9: हो गई मैं।
11: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, अभी तो तुम स्कूल जाओ, और जब तुम स्कूल से आओगे इतने मैं तुम्हारे लिए अच्छी सी कहानी सोच कर रखूंगी।
9: ठीक है।
11: और तुमने आज स्कूल में क्या क्या पढ़ा वो सब बताइयो मुझे आके।
10: दादी आज हम आपके पास ही सोएंगे फिर।
9: मैं भी आपके पास सुनूंगी दादी, और अच्छी अच्छी कहानी सुनाई हो।
11: अब देर हो रही स्कूल को।
9: ठीक है ठीक है, चलो चलो चलो चलो
11: जल्दी चलो जल्दी चलो
10: चलो चलो।
9: बताओ रोज का यही काम हो गया, मुझे तो घर के काम और ढोर डंगरों से फुर्सत नहीं मिलती, और एक ये है कि पता नहीं क्या ही काम करते हैं। अब बताओ बूढ़ी अम्मा को जाना पड़ता है बच्चों को छोड़ने के लिए।
4: अरे आओ आओ भाई, राम सिंह भाई तुम्हारा इंतजार कर रहा था, वो और लोग भी तो आने वाले थे, क्यों नहीं आए?
13: बस आ रहे हैं, अभी सब आ रहे हैं हमारे साथ।
4: अच्छा
13: चलो मित्र बातचीत करते हैं।
4: हाँ हाँ हाँ आओ राम सिंह।

0: बैठो भाई, बताओ भाई क्या बात थी। अरे बताओ भाई क्या बात थी, आप लोगों की समस्या सुनने के लिए भाई अब सुबह सुबह आज घर में भिराड़ हो गई।
1: अरे प्रधान जी, कुछ ना, बस अपनी समस्या को लेकर आए थे आपके पास। आसपास के गांव में पानी की बहुत समस्या हो रही है, कहीं हमारे गांव में भी पानी की समस्या ना हो जाए।
0: भाई बात तो आप सब लोगों की बहुत अच्छी है, चलो भाई करते हैं कुछ। भैया पानी के बिना तो कुछ भी नहीं है, कुछ हो ही नहीं सकता। चलो अच्छा फिर आप सब लोग मेरे साथ हो ना।
1: हाँ प्रधान जी, हम आपके साथ हैं।
2: हाँ।
0: हाँ भाई देखो सबके साथ रहने से ही काम होगा, और चलो फिर कुछ देखते हैं।
1: अरे प्रधान जी, सब कुछ समय से ही सोच लेना, जल्दी अच्छा होगा।
0: बिल्कुल भाई अच्छा ही होगा।
3: मैंने दाल चावल रोटी सब्जी यानी दोपहर का पूरा खाना तैयार कर लिया। ये अम्मा पता नहीं क्या हुआ, अभी तक बच्चों को लेकर नहीं आई, ये तो सुनते हैं नहीं। मैंने फिर अम्मा से ही कहा, जाओ बच्चों को तो लेते आओ, पता नहीं कहाँ रह गई।
4: अरे बहू, बच्चे स्कूल से आ गए, ले आई मैं इन्हें, ला एक एक गिलास पानी पिला दे सबको, बहुत ही
1: मम्मी
4: गला ही सूखा जा
1: खाना।
4: रहा।
5: हाँ, पानी भी पिलाती
4: प्यास
5: हूँ, खाना भी खिलाती हूँ, जरा सबर तो रखो।
4: लग रही है मम्मी,
5: हाँ, ला रही हूँ ला रही हूँ,
4: मम्मी।
5: जरा रुको तो। अरे ये क्या हुआ, आज तो नल में पानी ही नहीं आ रहा। अजी सुनते हो, देखो तो जरा ये नल में पानी क्यों नहीं आ रहा।
0: अरे महारानी जी, रोज रोज तुम्हारी ही तो सुनता हूँ, अब भी आप ही की सुन रहा हूँ, बताइए क्या बात है।
5: ज्यादा मजाक के मूड में मत आओ, मैं सही कह रही हूँ, मैंने सारे नल खोल के देख लिए लेकिन किसी में भी पानी नहीं है।
0: अच्छा,
5: हाँ
0: अरे ये गांव वाले भी कह रहे थे भाई, ये तो समस्या फिर हमारे गांव में भी खड़ी हो गई अब।
5: क्या, कौन सी समस्या?
0: अरे यही पानी की समस्या भाई, पानी पूरे गांव में नहीं है, गांव वाले बहुत परेशान है, इसके लिए तो कुछ करना पड़ेगा।
5: कैसी बात कर रहे हो आप?
0: चलो अच्छा ऐसे करते
4: मम्मी,
0: हैं, एक फोन करता हूँ अभी।
4: मम्मी पानी,
5: हाँ,
4: मम्मी
5: दे रही
4: पानी
5: हूँ दे रही
4: पानी
5: हूँ। अरे सुनो, दे रही हूँ। अरे तुम्हें
4: पानी।
5: परेशानी का नहीं पता, ये भी कह रहे हैं गांव में पानी नहीं है, घर में पानी नहीं है, और तुम पानी पानी लगे पड़े हो।
4: अरे
5: अभी
4: कोई
5: रुक
4: मुझे
5: तो
4: नहीं
5: जाओ।
4: बताएगा क्या हो गया, क्यों सो
2: पापा,
4: बचा रखा।
2: आप फोन करके पूछो ना कहीं।
0: हाँ बेटे बिल्कुल बिल्कुल, अभी जलकल विभाग को फोन करता ही हूँ।
1: अरे दादी, पानी की समस्या हो गई है गांव
4: हैं,
1: में पानी की।
4: मेटगी और करो, तुम सारा दिन पानी उड़ेल ले फिरो, तेरी माँ भी ना सुनती, वो
1: मेरी
4: सुबह से ही
1: माँ।
4: खड़ी हो जा बाल्टी उड़ेलने को, यूं कर जा। मैं कहूँ
0: अरे
4: ये मक्खे से गोलियां
0: मम्मी
4: चल रही
0: मम्मी
4: हैं,
0: सुन
4: उधर
0: लो,
4: क्या
0: परेशान
4: करूं।
0: होने की कोई जरूरत नहीं है, सब ठीक हो
4: अरे
0: जाएगा। मैं
4: ये
0: तो
4: मैं
0: अपने गांव वालों को भी
4: सोचा,
0: बतेरा समझाऊं। अग भाई ये जो सबमर्सिबल तुमने लगवा लिए, इसको भी बस बटन दबाया और वो चुर पानी को खोल के खड़े हो जाएंगे। भैया कभी कोई गाड़ी धोगा, कभी अपने कोई डंगर ढोरों को नहवावेगा, और यूं समझो पानी की बर्बादी। आज पी लो पानी, आज पीने के लिए भी नसीब ना हो रहा।
5: अम्मा को तो जरा सा समय चाहिए बहू की कमी निकालने का। देखो जरा
0: अरे बस चुप
5: कैसे
0: भी
5: कैसे।
0: हो जाओगे, पानी की समस्या तो है ही, एक समस्या ये और खड़ी कर देती है।
4: अरे पापा मम्मी, आप लोग परेशान मत हो, लो पापा
2: नहीं
4: ये रहा आपका फोन, और फोन करके पूछो कि पानी कब तक आ रहा
0: हाँ
4: है।
0: ला बेटे मैं फोन करता हूँ।
5: अजी क्या बात हुई, आपने तो कुछ बताया ही ना।
0: मेरी बात हो गई है जलकल विभाग से, वहां के अधिशासी अभियंता गांव में आने वाले हैं, और अब तो गांव-गांव में पानी की लाइनें बिछाई जा रही हैं, तो हमारे गांव में भी पानी की लाइन बिछने वाली है।
5: अरे ये तो बड़ी खुशी की बात है।
0: खैर कुछ दिनों की परेशानी है, यो भी दूर हो जाएगी। सुन रही हो मम्मी,
4: अरे सुन तो रही है, अब क्या होगा यो बता दे।
0: अब तो इन बालकों के पीने के पानी का इंतजाम करो, ये हमारी श्रीमती जी करेंगी।
5: अरे मैं कहां से करूं, आज तो मैंने एक एक गिलास भी पानी नहीं है, मुझे क्या पता ऐसा हो जाएगा, ये तो आपको बताना चाहिए पहले से।
4: बिट्टू तेरी बोतल में पानी है क्या?
6: ना
4: बहुत
6: पूछना
4: तेज
6: है।
4: प्यास लग रही है मुझे, बहुत तेज वाली।
2: ए गुड्डा गुड्डा। हाँ
0: हाँ
4: दादी,
2: अरे
4: हाँ
2: बिट्टू,
4: हाँ
2: हाँ
4: दादी
2: दादी,
4: बोलिए।
2: इधर को
5: जी
2: सुनो,
5: जी
2: मेरी
5: दादी
2: बात
5: जी जी
2: सुनो।
5: जी
2: पीछे आप चक में जो वो जहाँ पे वो मूली वो रखी
5: देखिए
2: मैंने,
5: अम्मा
4: हाँ
5: पता ना
4: हाँ
5: क्या
4: हाँ
5: बच्चों के
2: वहां
5: कान में
2: पे
5: कुसुर पुसुर कुसुर
2: एक
5: कुसुर
2: मैंने
5: करती
2: नीचे
5: रहती
2: घूंगड़ा
5: है।
2: दबा रखा, रोज उसमें मैं
5: है
2: पानी
5: ना
2: ले
5: दादी,
2: आऊं,
5: सच
2: और वो
5: में
2: पीने
5: तुमने
2: का
5: कहा पानी।
2: पानी है। अच्छा जा निकाल के
1: ए
2: ला।
1: दादी तुम भी पियोगी क्या?
2: अरे मैं भी पीऊंगी रे, मेरा तुम्हें लेने गई थी रे।
1: चल
2: ठीक,
1: दादी
2: मैं तो
1: लाते हैं,
2: अब आ
1: तीनों
2: रही हूँ ना,
1: पियेंगे आराम
2: मेरी
1: से,
2: अभी थक
1: मम्मी
2: गई। चल
1: पापा को भी दे
2: चल
1: देंगे,
2: चल चल
1: जिंदा
2: चल चल
1: चलो।
2: चल।
0: अरे बच्चों पी लिया पानी?
4: मम्मी पापा बहुत बोल रहे थे, आप दोनों पानी पी लो।
5: पानी ये कहाँ से आया बेटा?
4: अरे मम्मी आपको नहीं पता, हमारी दादी जादूगरनी है,
5: ला
4: बड़ी
5: बेटा।
4: जादूगरनी है, पता है मुझे, बोलने की जादूगरनी है ये।
2: अरे मम्मी पानी पियो।
5: कि आया कहाँ से ये तो बता, तेरी बोतल में होगा पानी की बोतल में।
4: बोतल में पानी नहीं था मम्मी, पानी था घड़े में, दादी ने ना घड़ा छुपा रखा था उसमें।
5: क्या
4: हाँ कहते हैं ना कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, दादी ने ऐसे ही बूंद बूंद से घड़ा भर रखा है अपना।
5: बेटा, मैं तभी तो कहूँ तुम अपनी दादी की बात सुना करो, तुम सुनते कहाँ हो।

0: है, पानी की लाइनें बिछने वाली हैं और पानी घर घर जाने वाला है।
1: अरे सुन ए बिट्टू के बाप, इधर कुआ।
0: क्या हुआ मम्मी?
1: अब यो पानी की लाइन वैन जो बिछेगी तो यो नान हो तेरी घर वाली हो, फिर पानी उड़ेल फिर है जो इतना,
0: उड़ेल
1: बताओ अबे
0: लेंगे।
1: जरा सीख लियो कुछ।
0: आप देखो मम्मी, उड़ेल लेंगे तो फिर इसी तरीके से पानी के लिए फिर
1: हाँ
0: रोवेंगे।
1: मेरी सास कहती जल है तो कल है, अरे यो सास की बात सुनाई कब है।
0: सुननी चाहिए।
2: ना ना अम्मा, अब तो मैंने सीख ले ली, अब तो मैं भी और मेरे बच्चे भी आपकी बात सुनेंगे, आपको पूरा मान सम्मान देंगे।
0: और एक बात और,
2: जी वो क्या?
0: वो ये है कि अब तुम भी मेरे साथ गांव वालों के बीच में जाकर गांव वालों को पानी के महत्व को समझाएंगे, बताएंगे कि पानी बहुत जरूरी है, इसकी बर्बादी नहीं करनी है।
2: बिल्कुल जी, जैसे अम्मा ने कहा है ना कि जल
0: जल
2: है
0: है
2: तो
0: तो
2: कल
0: कल है।
2: है। श्रोताओं, हमने लघु नाटिका सुनी, विषय था जल है तो कल है। श्रोताओं, हमने देखा, हमने सुना कि एक परिवार जो कि जल के लिए थोड़ी सी जल की परेशानी होने से कितना परेशान हो गया, और बाद में बूंद बूंद रखा हुआ पानी ही उनके काम आया। तो हमने ये सीख ली इस लघु नाटिका से कि हमें भी जल को बचाना चाहिए। और श्रोताओं, हम इस लघु नाटिका से पहले बात कर रहे थे अपने जल को बचाने की, अपनी नदियों को बचाने की। तो नदियों को हम बचाएं, उन्हें प्रदूषित होने से हमें बचाना चाहिए। श्रोताओं, नदियों को प्रदूषित होने के प्रमुख कारण हैं घरेलू सीवेज और गंदे पानी का बिना शोधन नदियों में छोड़ा जाना, उद्योगों से निकलने वाले रासायनिक और विषैले अपशिष्ट, कृषि में उपयोग होने वाले रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों का वर्षा के साथ नदियों में बह जाना, प्लास्टिक, पॉलिथीन और अन्य ठोस कचरों का नदियों में फेंका जाना, धार्मिक गतिविधियों के दौरान मूर्तियां, फूल माला और अन्य सामग्री का विसर्जन, अवैध रेत खनन और नदी तटों पर अतिक्रमण। श्रोताओं, नदी की प्रदूषण में के होने वाले दुष्प्रभाव की बात करें तो इसमें पीने योग्य जल की गुणवत्ता में गिरावट आ जाती है, जलीय जीवों और वनस्पतियों का विनाश होता है, जल जनित रोग जैसे हैजा, टाइफाइड और पेचिश आदि का खतरा बढ़ जाता है, जैव विविधता का ह्रास होता है, कृषि, मत्स्य पालन और पर्यटन पर नकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है, भूजल की गुणवत्ता पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो श्रोताओं, नदियों के संरक्षण के अगर हम उपाय की बात करें तो सभी शहरों और उद्योगों के अपशिष्ट जल का ट्रीटमेंट करके ही नदी में छोड़ा जाए, सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग को कम किया जाए और कचरे का उचित प्रबंधन किया जाए। श्रोताओं, नदियों पर बड़े पैमाने पर वृक्ष को रोपा जाए, जैविक खेती को बढ़ावा देकर रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग कम किया जाए। श्रोताओं, धार्मिक आयोजनों में पर्यावरण अनुकूल सामग्री का उपयोग किया जाए, अवैध रेत खनन और अतिक्रमण पर सख्ती से रोक लगाई जाए, लोगों में नदी संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाई जाए और जन भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाए। ये सभी कार्य करके हम अपनी नदियों को बचा सकते हैं। श्रोताओं, नदियों को स्वच्छ रखना केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं बल्कि प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। हमें नदियों में कचरा नहीं फेंकना चाहिए, जल का विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए तथा स्वच्छता और संरक्षण अभियानों में सक्रिय भागीदारी निभानी चाहिए। नदियां केवल जल का स्रोत नहीं बल्कि हमारे जीवन, संस्कृति और पर्यावरण की धरोहर है। उनका संरक्षण वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। यदि हम आज नदियों की रक्षा करेंगे तो कल नदियां हमारे जीवन की रक्षा करेंगी। आइए संकल्प लें, स्वच्छ नदी, स्वस्थ जीवन और सुरक्षित भविष्य। तो श्रोताओं, इतनी सारी जानकारी के बाद थोड़ा सा मनोरंजन हो जाए तो आइए सुन लेते हैं ये प्यारा सा गीत।

और श्रोताओं, समय हमें अनुमति नहीं दे रहा कि हम आपसे और ढेर सारी बातें करें। आप हमें पत्र लिखें और बताएं कि आपको आज का कार्यक्रम कैसा लगा। अपनी शिकायतें और सुझाव आप भेजें हमें इस पते पर, कार्यक्रम द्वारा के निदेशक आकाशवाणी नजीबाबाद, पिन कोड है 2467। और इसी के साथ अपनी साथी ज्योति को कार्यक्रम संपन्न करने की दीजिए अनुमति। श्रोताओं, नमस्कार।

अभी बहनें सुन रही थी कार्यक्रम परिवार जगत। ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्स पर। समय दिन के 1:45 और लीजिए प्रस्तुत है लोक संगीत कार्यक्रम लोकधारा, जिसमें आज आप सुनेंगे चंद्रदत्त सुयाल के गाए गढ़वाली लोकगीत। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये पहला गढ़वाली लोकगीत।

0: आकाशवाणी नजीबाबाद से प्रत्येक मंगलवार को
1: शाम 6:05 पर कृषि जगत कार्यक्रम में सुनिए
0: गुणवत्ता युक्त बासमती धान उत्पादन हेतु
1: बासमती निर्यात विकास प्रतिष्ठान मोदीपुरम मेरठ द्वारा
0: साप्ताहिक आयोजित कार्यक्रम।

आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से श्रोता इस समय सुन रहे हैं लोक संगीत कार्यक्रम लोक धारा, जिसमें आज हम आपको सुनवा रहे हैं चंद्रदत्त सुयाल के गाए गढ़वाली लोकगीत।

0: लोक संगीत कार्यक्रम लोकधारा में अभी आपने सुने चंद्रदत्त सुयाल के गाए गढ़वाली लोकगीत। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। दिन के 2 बजने को है। अब आप सुनेंगे दोपहर समाचार।
1: Is Akashvani and I am Valsa Williams with the midday news. The headlines. BJP government in West Bengal presents first full budget focusing on social welfare, infrastructure development and employment, announces a slew of women-centric schemes. BRICS National Security Advisors meeting begins in New Delhi to discuss emerging security challenges. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar arrives in Mongolia to hold meeting with his counterpart to deepen economic ties. IMD forecasts heavy to very heavy rainfall over Assam and Meghalaya today. And in FIFA World Cup, Egypt beat New Zealand 3-1 to secure first ever World Cup victory. In a major employment and welfare push, the BJP-led West Bengal government today presented its first full budget 2026-27, focusing on social welfare, infrastructure development and employment, and also announced a slew of women-centric schemes. Presented today by Finance Minister Swapan Dasgupta, has announced the recruitment for 1 lakh vacant posts across various state departments. 33% of these new positions will be reserved for women. We have a detailed report from our Kolkata correspondent.
2: The government proposed a 20% hike in DNS allowance for government and semi-government employees, teachers and teaching staff. Pensioners will also benefit from this increase, which will take effect from 1st October. Presenting a deficit budget of 6,070 crore, Finance Minister Swapan Dasgupta called it a roadmap for building a developed Bengal. He also revealed that the state's debt now stands at over 8 lakh crore rupees, making financial discipline a major challenge. The budget includes recruitment for 1 lakh vacant posts, 20,000 in the police force and 50,000 teachers. 33% of these jobs will be reserved for women, with an additional 10% reserved for Agniveers. Key allocations include rupees 36,000 crore for the Annapurna Yojana, over rupees 8,500 crore for agriculture, rupees 8,000 crore for food and supplies, rupees 7,000 crore for higher education, and nearly rupees 18,000 crore for home and health affairs. The government also announced salary hikes for para teachers, civic volunteers, and village police. Anganwadi and Asha workers will receive an additional rupees 5,000 monthly honorarium, while midday meal cooks will get rupees 1,000 more. Further measures include setting up a tea board for workers' welfare, Ayushman Bharat health cards for migrant laborers, and the One Nation One Ration scheme. In his speech, the finance minister pledged to build a corruption-free administration, promising citizens services that are simpler, more transparent and accountable. Shondipan Dasgupta, Akashvani News, Kolkata.
1: The BRICS National Security Advisors meeting is underway in New Delhi. The two-day meeting, being chaired by National Security Advisor Ajit Doval, brings together security chiefs from the bloc's 11 member countries. These include India, Brazil, China, Egypt, Ethiopia, Indonesia, Iran, Russia and Saudi Arabia, South Africa and the UAE. We have a report.
3: During the meeting, the national security advisors and heads of delegation of BRICS member countries will exchange views on the theme, non-traditional security challenges confronting the world today. They will discuss the rapidly evolving nature of national security challenges as well as the role of new technologies in emerging security threats. The national security advisors and heads of delegation will also review the outcomes of the recently held BRICS joint working groups on counter-terrorism and on security in the use of information and communication technologies. Rishu Jaiswal, Akashvani News, Delhi.
1: The gathering takes place as India holds the BRICS chairship for the fourth time in 2026, having previously led the grouping in 2012, 2016 and 2021. India's chairmanship operates under the theme Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, reflecting Prime Minister Narendra Modi's people-centric vision articulated at the 2025 Rio Summit. President Draupadi Murmu today interacted with Chita Mitras and members of the Saharia tribe at Kuno National Park in Madhya Pradesh's Shyopar district. She appreciated their contribution to Project Cheetah and said the active participation of local communities is playing an important role in the success of the ambitious conservation program. Earlier, the president went on a safari in Kuno National Park and reviewed the progress of the cheetah reintroduction project. She also visited the Cheetah Command and Control Center, where she viewed an exhibition on Project Cheetah and was briefed on the monitoring, tracking and conservation measures being undertaken for the animals. Officials informed the president that India currently has 52 cheetahs, including 49 in Kuno National Park, while 3 have been relocated to Gandhi Sagar Wildlife Sanctuary. She was also apprised of the tracking system, conservation initiatives and water facilities developed inside the forest for the cheetahs. Project Cheetah was launched by Prime Minister Modi in 2022 with the release of 8 cheetahs brought from Namibia into Kuno National Park. Subsequently, additional cheetahs were brought from South Africa and Botswana. The cheetah population in Kuno has been steadily increasing through sustained conservation and breeding efforts, marking a significant milestone in India's wildlife conservation program. The Parliamentary Standing Committee on External Affairs, chaired by Member of Parliament Shashi Tharoor, has begun a 4-day study visit to Jammu and Kashmir and Ladakh to review strategic border security and foreign policy issues. Our correspondent reports that the committee will visit Jammu, Srinagar, Kargil and Leh till the 25th of this month to gain first-hand insights into border management and the security situation in frontier areas. The panel is examining recent developments in India's bilateral relations, the suspension of the Indus Waters Treaty and threats posed by cross-border terrorism along the line of control and the international border. It is also focusing on India-China relations and the situation along the line of actual control in eastern Ladakh. BJP National President Nitin Naveen met renowned agricultural scientist and Padma Bhushan awardee Sardara Singh Jhol in Ludhiana today and held discussions on Punjab's agrarian crisis. Following the meeting, Mr. Naveen said it was a privilege to interact with a personality who has made immense contributions to the field of agriculture. He said he gained valuable insights on agricultural issues during his interaction with Sri Jhol and expressed confidence that his views and suggestions would prove beneficial for the nation.
4: I consider it a great honor to meet someone who truly understands the concerns and aspirations of farmers and is committed to helping them progress in the right direction. He has studied these issues extensively, and it is a privilege for me to have the opportunity to meet him.
1: In Uttar Pradesh, notorious criminal Lalan Singh, carrying a combined bounty of 1,25,000 rupees, was killed in an encounter with the Uttar Pradesh Special Task Force in Saharanpur last night. Police said the shootout took place on the Sarsawa-Nakur road. A resident of Samastipur district in Bihar, Lalan Singh, was wanted in several serious criminal cases, including the shooting of a sub-inspector and robbery of his service pistol in Varanasi, and a firing-cum-robbery case in Chandoli district. This is Akashwani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. Welcome back to the Midday News. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar arrived in Mongolia on a 2-day visit to further advance the special partnership between the two countries. In a social media post, Dr. Jaishankar shared this information and said he is looking forward to fruitful engagements. During the visit, the External Affairs Minister will meet with the Mongolian leadership and hold discussions with his counterpart, Foreign Minister B. Batsetseg. On the second leg of his visit, the External Affairs Minister will visit South Korea on Wednesday and Thursday. He will hold discussions with Foreign Minister Cho Hyun. He will also deliver the keynote speech at the Jeju Forum for Peace and Prosperity in Jeju on Thursday. In Colombia, right-wing candidate Abelardo de la Espriella has narrowly won Colombia's presidential election, defeating left-wing Senator Ivan Cepeda by a very small margin. According to preliminary results, with almost all votes counted, Dela Espriella received about 12.95 million votes, around 49.7% of the votes, while Cepeda received about 12.7 million, around 48.7% of the votes. The election marks a sharp shift in Colombia's politics after the presidency of Gustavo Petro, who was constitutionally barred from running again and backed Cepeda as his successor. An explosion ripped through Qatar's key natural gas export infrastructure, injuring at least 54 people, while 18 others remain missing. According to official reports, the blast occurred in the Ras Laffan industrial area last night, one of the world's most important energy hubs, during ongoing efforts to resume operations at the facility following earlier disruptions linked to regional conflict. The incident triggered a major fire at the Barzan gas supply facility, prompting emergency response teams to rush to the site. State energy giant Qatar Energy confirmed the incident, saying operations were underway to restart parts of the export terminal when the explosion took place. Officials have not yet confirmed whether the blast was accidental or linked to external factors. Global crude oil prices declined sharply by up to 3% today after talks between the United States and Iran concluded in Switzerland, easing concerns over supply disruptions and raising hopes of increased Iranian oil exports. International benchmark Brent crude fell more than 2% to around $79 a barrel, while U.S. West Texas Intermediate crude traded near $75 per barrel, a decrease of 3%. The decline came after senior U.S. and Iranian officials reportedly wrapped up the first round of talks aimed at extending a fragile ceasefire and reducing tensions in the region. The Intermeteorological Department, IMD, has issued a red alert for extremely heavy rainfall over Assam and Meghalaya today. IMD has also predicted heavy rainfall conditions at isolated places over sub-Himalayan West Bengal, Karnataka, Telangana, Kerala, Goa, Odisha, and northeastern parts of the country till tomorrow. Similar conditions will also prevail over Bihar, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Lakshadweep, Puducherry, and Karaikal during the day. The Met Department has also forecast thunderstorms accompanied by lightning and gusty winds over Haryana, Chandigarh, Delhi, Punjab, Himachal Pradesh. News just in. Keir Starmer has resigned as Prime Minister of the United Kingdom in a statement outside 10 Downing Street. He said every decision he has made in office has been about putting the country that he loves first. In the FIFA World Cup 2026, Egypt registered their first ever World Cup victory 3-1 over New Zealand in Vancouver this morning. Liverpool star Mohamed Salah scored his first goal of the tournament. With this win, Egypt took over the first place in Group G. Earlier, Cape Verde held Uruguay to a 2-2 draw in their Group H match in Florida today. Iran and Belgium also played out a goalless draw in their Group G clash in California last night. In today's fixtures, Argentina will take on Austria in Group J. The match will begin at 10:30 p.m. IST. In men's hockey, India defeated the Netherlands 3-2 in their last match of FIH Pro League Rotterdam leg yesterday. Jugraj Singh, Abhishek and Rajinder Singh scored the goals, helping India register the second win of the leg against the Dutch side. Stand-in captain Hardik Singh was named player of the match for his leadership and strong midfield performance. Benchmark domestic equity indices were trading around 0.5% up in the afternoon session today. The Sensex rose 375 points to 77,178, while the Nifty advanced 108 points to 24,121 when reports last came in. In the broader market on the National Stock Exchange, mid-cap 100 index added 0.3%, while the small-cap 100 index was trading 0.5% up a short while ago. And now before we end the bulletin, the headlines once again. BJP government in West Bengal presents first full budget focusing on social welfare, infrastructure development and employment, announces a slew of women-centric schemes. BRICS National Security Advisors meeting begins in New Delhi to discuss emerging security challenges. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar arrives in Mongolia to hold meeting with his counterpart to deepen economic ties. IMD forecasts heavy to very heavy rainfall over Assam and Meghalaya today. And in FIFA World Cup, Egypt beat New Zealand 3-1 to secure first ever World Cup victory. With that, we end the midday news.
5: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। सामाजिक कल्याण, अवसंरचना विकास और रोजगार पर ध्यान केंद्रित करते हुए महिलाओं के लिए कई योजनाओं की घोषणा। नई दिल्ली में आज से ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक शुरू। उभरती सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर मंगोलिया पहुंचे। आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने पर अपने समकक्ष से द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। और फीफा विश्व कप में मिस्र ने न्यूजीलैंड को 3-1 से हराकर विश्व कप में पहली जीत दर्ज की। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। रोजगार और जनकल्याण को बढ़ावा देते हुए राज्य के विभिन्न विभागों में 1,00,000 खाली पदों पर नियुक्ति की घोषणा की गई है। वित्त मंत्री स्वप्न दास गुप्ता ने बजट पेश करते हुए बताया कि नौकरियों में 33% पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। इनमें शिक्षकों और शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के लिए 50,000 पद और पुलिस विभाग में 20,000 नियुक्तियां शामिल हैं। अग्निवीरों के लिए आवश्यकता अनुसार 10% आरक्षण शुरू किया गया है। सिविक वॉलंटियर्स, होमगार्ड, ग्रीन पुलिसकर्मियों और एनवीएम कर्मचारियों का मासिक मानदेय ₹2,000 बढ़ाया गया है। कोलकाता क्षेत्र के लिए कल्याणी के पास एक नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का प्रस्ताव है। बजट में दो प्रमुख रक्षा केंद्रों के विस्तार और विकास में मदद के लिए हासीमारा एयरफोर्स स्टेशन को 25 एकड़ और कलाईकुंडा एयरफोर्स स्टेशन को 37 एकड़ जमीन सौंपने का प्रस्ताव भी है। एक रिपोर्ट।
6: राज्य सरकार ने सरकारी अर्ध सरकारी कर्मचारी, शिक्षक और शिक्षा कर्मियों के लिए 20% महंगाई भत्ते में वृद्धि की घोषणा की है। महंगाई भत्ता बढ़ के 38% हो जाएगा। यही सुविधा पेंशन भोगियों को भी मिलेगा। वित्त मंत्री ने बताया कि ये दर 1 अक्टूबर से लागू होगी। वित्त मंत्री ने बताया कि वर्तमान में राज्य पर कुल ऋण 8,15,891 करोड़ रुपए की है। इस कारण सामाजिक परियोजनाओं और वित्तीय शासन की बीच संतुलन बनाए रखना सरकार की सबसे बड़ी परीक्षा है। बजट में अन्नपूर्णा योजना के लिए 36,000 करोड़ रुपए की प्रावधान किया गया है। पार्श्व शिक्षक का वेतन ₹5,000 बढ़ाया गया है। आंगनवाड़ी कर्मी और आशा कर्मियों के लिए मासिक मानदेय में ₹5,000 की वृद्धि की गई है। चंदीपन दासगुप्ता के साथ काश्मीर नाहर, आकाशवाणी समाचार, कोलकाता।
5: तमिलनाडु विधानसभा में आज कर्नाटक की प्रस्तावित मेकेदातु बांध परियोजना पर चर्चा हुई। AIADMK, PMK और CPM सहित विपक्षी दलों ने आशंका जताई कि इस परियोजना से कावेरी जल बंटवारे पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और तमिलनाडु के हित प्रभावित हो सकते हैं। राज्य सरकार ने परियोजना के विरोध में अपना रुख दोहराते हुए कहा कि वो तमिलनाडु के जल अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार ने मेकेदातु जल न्यायाधिकरण के गठन की मांग से जुड़े विधानसभा के सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव का भी उल्लेख किया। ओडिशा में विधानसभा अध्यक्ष सुरमा पाढ़ी ने मार्च में राज्यसभा चुनाव के दौरान बीजू जनता दल, बीजेडी और कांग्रेस की क्रॉस वोटिंग के आरोपी विधायकों को अयोग्य ठहराने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है। अध्यक्ष ने कहा कि दलबदल विरोधी कानून के अंतर्गत याचिकाओं में गंभीर प्रक्रियात्मक कमियां और सबूतों का मानक अभाव था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में कुनो नेशनल पार्क में चीता मित्रों और सहरिया जनजाति के सदस्यों से बातचीत की। उन्होंने प्रोजेक्ट चीता में उनके योगदान की सराहना की। राष्ट्रपति ने कहा कि इस महत्वाकांक्षी संरक्षण कार्यक्रम की सफलता में स्थानीय समुदायों की सक्रिय भागीदारी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। एक रिपोर्ट। राष्ट्रपति ने कूनो नेशनल पार्क में सफारी की और चीता पुनर्वास परियोजना की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने चीता कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का दौरा किया। उन्होंने प्रोजेक्ट चीता पर लगी प्रदर्शनी देखी और जानवरों की निगरानी, ट्रैकिंग और संरक्षण के लिए किए जा रहे उपायों के बारे में जानकारी ली। अधिकारियों ने राष्ट्रपति को बताया कि भारत में अभी 52 चीते हैं, जिनमें 49 कूनो नेशनल पार्क में हैं, जबकि 3 को गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य में स्थानांतरित कर दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ष 2022 में प्रोजेक्ट चीता की शुरुआत की थी। उन्होंने नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा था। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना से और चीते लाए गए। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
7: नई दिल्ली में ब्रिक्स के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों एनएसए की बैठक चल रही है। 2 दिन की इस बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल कर रहे हैं। बैठक में समूह के 11 सदस्य देशों के सुरक्षा प्रमुख भागीदारी कर रहे हैं। इन देशों में भारत, ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं। बैठक का मुख्य विषय वर्तमान समय में गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियां हैं। इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरों के तेजी से बदलते स्वरूप और उभरते सुरक्षा जोखिमों में नई तकनीकों की भूमिका पर चर्चा की जाएगी। गृह राज्य मंत्री बंडी संजय कुमार ने देश के विकास में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ की अहम भूमिका पर जोर दिया है। नई दिल्ली में आज सीआईएसएफ के मुख्यालय के इमारत के भूमि पूजन और ई उद्घाटन समारोह में उन्होंने कहा कि सीआईएसएफ के जवान देश की तरक्की को सुरक्षित रखने वाले आर्थिक सैनिक के तौर पर काम करते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर मंगोलिया पहुंचे। डॉ जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे भारत और मंगोलिया के बीच विशेष साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए सार्थक वार्ता की आशा करते हैं। इस यात्रा के दौरान विदेश मंत्री मंगोलिया के विदेश मंत्री बी बत्सिसक के साथ वार्ता करेंगे। यात्रा के दूसरे चरण में विदेश मंत्री बुधवार और बृहस्पतिवार को दक्षिण कोरिया जाएंगे। यात्रा के दौरान डॉ जयशंकर वहां के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ चर्चा करेंगे। वे बृहस्पतिवार को जेजू में शांति और समृद्धि के लिए जेजू फोरम पर मुख्य भाषण भी देंगे। विदेश मामलों की स्थायी समिति ने सामरिक सीमा सुरक्षा और विदेश नीति मुद्दों की समीक्षा के लिए जम्मू कश्मीर और लद्दाख की 4 दिन की अध्ययन यात्रा शुरू की। सांसद शशि थरूर की अध्यक्षता में यह समिति सीमांत क्षेत्रों में सीमा प्रबंधन और सुरक्षा स्थिति का प्रत्यक्ष अवलोकन करेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 25 जून तक समिति जम्मू, श्रीनगर, करगिल और लेह की यात्रा करेगी। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर जलपाईगुड़ी के जलदाबाड़ी में एक सड़क दुर्घटना में 2 और घायलों की मृत्यु होने के बाद मृतकों की संख्या 6 हो गई है। मृतकों में 2 महिला और 1 बच्चा भी शामिल है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और 2 मंत्रियों ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। उत्तर प्रदेश में कुख्यात अपराधी ललन सिंह को कल रात सहारनपुर में उत्तर प्रदेश विशेष कार्यबल एसटीएफ ने मुठभेड़ में मार गिराया। उस पर 1,25,000 रुपए का इनाम था। झारखंड में पिछले 24 घंटे में बिजली गिरने से लगभग 8 लोगों की मृत्यु हो गई और 12 से अधिक लोग घायल हुए हैं। बिजली गिरने की घटनाएं रामगढ़, गिरिडीह, खूंटी, देवघर, धनबाद और साहिबगंज जिलों में हुई है। बिजली गिरने की घटना में मरने वालों में सीपीआई के 1 नेता, 1 वार्ड सदस्य, 1 किसान और अन्य निवासी शामिल हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज लुधियाना में प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक और पद्म भूषण से सम्मानित सरदारा सिंह जोहल से मुलाकात की। श्री नवीन ने उनके साथ पंजाब के कृषि संकट पर चर्चा की। बैठक के बाद श्री नवीन ने कहा कि श्री जोहल के साथ बातचीत के दौरान कृषि के मुद्दों पर अमूल्य जानकारी प्राप्त हुई।
8: मैं मानता हूं कि ऐसी शख्सियत जिसने किसानों की भावनाओं को समझा, कृषि को समझा और कृषि को कैसे एक सही रूप से आगे बढ़ाया जाए, इस चीज को उन्होंने एक रिसर्च के रूप में देखा है, तो निश्चित रूप से ऐसे शख्सियत से मिलना मेरे लिए भी सौभाग्य का विषय है।
7: केंद्रीय सूचना और प्रसारण तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन आज शाम 2 दिन के मध्य प्रदेश दौरे पर भोपाल पहुंच रहे हैं। डॉक्टर मुरुगन कल देवास जिले की कन्नौज तहसील के डोकाकोई जाएंगे।
5: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में अपर केंद्रीय आयुक्त पूर्णेंदु भूषण वर्मा परिचर्चा में हिस्सा लेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @TIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर एक बयान में प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा कि पद पर रहते हुए उन्होंने जो भी फैसले किए उनमें देश को सबसे पहले रखने की बात ही मुख्य रही है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर में 0.5% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 375 अंक बढ़कर 77,178 पर, जबकि निफ्टी 108 अंक बढ़कर 24,121 पर कारोबार कर रहा था। स्विट्जरलैंड में अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता समाप्त होने के बाद आज कच्चे तेल की वैश्विक कीमत में 3% तक की गिरावट दर्ज की गई। इससे आपूर्ति बाधा को लेकर चिंताएं समाप्त होने और ईरान के तेल निर्यातों में वृद्धि की आशा बढ़ गई है। पश्चिम एशिया में नाजुक संघर्ष विराम को बढ़ाने तथा तनाव को कम करने पर केंद्रित पहले दौर की वार्ता के समापन की खबर अमेरिका और ईरान के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दिए जाने के बाद ये गिरावट आई है। ताइवान की सेना ने 5 दिवसीय तत्काल युद्ध तत्परता अभ्यास शुरू किया है। इस अभ्यास का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि किसी भी आपात स्थिति में सैन्य बल तुरंत और प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया दे सकें। ताइवान के रक्षा मंत्रालय के अनुसार इस अभ्यास के जरिए सैन्य इकाइयों की शांतिकाल से युद्धकालीन संचालन में तेजी से बदलाव करने की क्षमता को मजबूत किया जाएगा। यह अभ्यास ऐसे समय में हो रहा है जब हाल के वर्षों में चीन ने ताइवान के आसपास अपना सैन्य अभ्यास और गतिविधियां बढ़ा दी हैं। फीफा विश्व कप 2026 में मिस्र ने आज सुबह वैंकूवर में न्यूजीलैंड पर इस विश्व कप में 3-1 से अपनी पहली जीत दर्ज की। लिवरपूल के स्टार खिलाड़ी मोहम्मद सलाह ने टूर्नामेंट में अपना पहला गोल किया। इस जीत के साथ मिस्र ग्रुप सी में पहले स्थान पर पहुंच गया है। आज ग्रुप जे में अर्जेंटीना का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। मैच रात 10:30 बजे से शुरू होगा। मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कल तक पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, कर्नाटक, तेलंगाना, केरलम, गोवा, ओडिशा और पूर्वोत्तर के कुछ स्थानों पर तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। बिहार, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, लक्षद्वीप, पुदुचेरी और कार्यकाल में भी दिन के दौरान ऐसी स्थिति रहेगी। आज हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में तेज हवा तथा बादल गरजने के साथ वर्षा का भी अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, विदर्भ और तेलंगाना में कल तक लू चलने की संभावना है। हरियाणा के राखीगढ़ी पुरातात्विक स्थल से खुदाई में मिले मानव कंकाल अवशेषों को उन्नत वैज्ञानिक अध्ययन के लिए भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण को सौंप दिया गया है। ये प्रक्रिया भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण के बीच हाल ही में हुए समझौता ज्ञापन के अंतर्गत की गई है। करीब 550 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला राखीगढ़ी सिंधु सरस्वती सभ्यता की सबसे बड़ी ज्ञात बस्ती माना जाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि इन कंकालों के अध्ययन से सिंधु सरस्वती सभ्यता के लोगों के जीवन, स्वास्थ्य और सामाजिक संरचना से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त हो सकेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का एक लेख साझा किया। इस लेख में कानूनी व्यवस्था को मजबूत करने, न्याय की प्रक्रिया को आसान बनाने और नागरिकों के लिए सरकारी सेवाओं को अधिक सुलभ बनाने की सरकार की कोशिशों का उल्लेख किया गया है। अपने लेख में श्री मेघवाल ने कहा कि न्यायिक संस्थान एक पुल की तरह काम करते हैं जो हर हितधारक को न्याय की व्यापक खोज और सामूहिक भलाई के साथ विश्वास, अपनापन और जुड़ाव की भावना विकसित करने में मदद करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सफलता इस बात का प्रमाण है कि योग न केवल विश्वभर में लाखों लोगों को शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने में मदद कर रहा है, बल्कि उन्हें सकारात्मक जीवन जीने के लिए प्रेरित भी कर रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। सामाजिक कल्याण, अवसंरचना विकास और रोजगार पर ध्यान केंद्रित करते हुए महिलाओं के लिए कई योजनाओं की घोषणा। नई दिल्ली में आज से ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक शुरू। उभरती सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर मंगोलिया पहुंचे। मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। और फीफा विश्व कप में मिस्र ने न्यूजीलैंड को 3-1 से हराकर विश्व कप में पहली जीत दर्ज की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर। समय अपराह्न के 2:30 और आइए अब सुनते हैं फिल्म संगीत नई फिल्मों से। नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम नई फिल्मों से में।

श्रोताओं, कार्यक्रम का ये पहला गीत आपने सुना अरिजीत सिंह की आवाज में, फिल्म थी जीनियस। गीत लिखा था कुमार ने और संगीत था हिमेश रेशमिया का। और नई फिल्मों से कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से। और कार्यक्रम में अगला गीत आप सभी के लिए विशाल मिश्रा की आवाज में, फिल्म एनिमल से। इस गीत को लिखा है राजशंकर ने और संगीत भी है विशाल मिश्रा का।

0: एनिमल फिल्म में आपने सुना विशाल मिश्रा को, गीत लिखा था राज शंकर ने और संगीत भी था विशाल मिश्रा का। और श्रोताओं आइए अब सुनते हैं फिल्म जलेबी से ये गीत, जिसे गाया है अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल ने, गीत लिखा है प्रशांत इंगोले ने और संगीत है जावेद मोहसिन का।
1: शास्त्रीय संगीत का अमृत कलश रागम भारतीय शास्त्रीय संगीत को समर्पित आकाशवाणी का बेहतरीन चैनल रागम डीटीएच पर लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए इंटरनेट और आपके मोबाइल ऐप पर भी। रागम आनंद की अटूट रसधार।

0: अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं?
1: तो इंतजार किस बात का,
0: अभी बुक कराइए अपना विज्ञापन आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
1: विज्ञापन बुकिंग कराने के लिए आज ही संपर्क करें।
0: हमारा मोबाइल नंबर है 8865845809।
1: नंबर एक बार फिर सुन लीजिए 8865845809।
0: और हमारा ईमेल आईडी है
1: akashwaninajibabad@gmail.com।
0: तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और बुक कराइए अपना विज्ञापन
1: आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
2: आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत नई फिल्मों से, और कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है अरमान खान और अरिजीत सिंह की आवाज़ों में फिल्म धुरंधर से। गीत लिखा है इरशाद कामिल ने और संगीत है शाश्वत सचदेव का।

आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से इस समय हमारे श्रोता सुन रहे हैं फिल्म संगीत नई फिल्मों से, और कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं परंपरा और अरिजीत सिंह की आवाज़ों में फिल्म पल पल दिल के पास से। गीत लिखा है सिद्धार्थ गरिमा ने और संगीत है सचेत परंपरा का।

सुनिधि चौहान और साथियों की आवाज़ में आपने सुना फिल्म न्यूयॉर्क का ये गीत। शतरचना थी संदीप श्रीवास्तव की और संगीत प्रीतम का था। और श्रोताओं, कार्यक्रम

अभी श्रोता सुन रहे थे फिल्म संगीत नई फिल्मों से। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्स पर। अपराहन के 3 बज रहे हैं। हमारी आज की प्रातःकालीन सभा के प्रसारण अब संपन्न होते हैं। सांध्यकालीन सभा में शाम 5 बजे आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए अनुमति दीजिए।

मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज़ पर। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5 बजे हैं। अब हमारी सायंकालीन प्रसारण सभा आरंभ होती है। सभा के आरंभ में प्रस्तुत है कार्यक्रम मेरा सपना उन्नत भारत। श्रोताओं नमस्कार। कार्यक्रम मेरा सपना उन्नत भारत में आप सभी श्रोता मित्रों का हार्दिक स्वागत है। आज के इस अंक में आपके साथ मैं हूं आपका अपना रेडियो मित्र जसवंत सिंह। श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में हम बातें करेंगे भारत सरकार की दो प्रमुख कल्याणकारी योजनाओं के विषय में। एक है उड़ान योजना और दूसरी है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। तो श्रोताओं, आइए पहले बातें कर लेते हैं उड़ान योजना के विषय में। उड़ान यानी UDAN और इसका अर्थ है उड़े देश का आम नागरिक। श्रोताओं, ये भारत सरकार की एक क्षेत्रीय संपर्क योजना है। इसकी शुरुआत भारत सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा 21 अक्टूबर सन 2016 को की गई थी। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य देश के आम नागरिकों को हवाई यात्रा कराना है, यानी हवाई यात्रा का आनंद, सुख सुविधाएं आम जन तक पहुंचाना इस योजना का उद्देश्य है। श्रोताओं, आज भी करोड़ों भारतीयों का सपना यह है कि वो जिंदगी में कम से कम एक बार हवाई यात्रा जरूर करें। तो देश के मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए किफायती और सुलभ हवाई यात्रा उपलब्ध कराना ही उड़ान योजना का मुख्य उद्देश्य है। श्रोताओं, देश के अधिकांश शहरों यानी Tier 2 और Tier 3 को हवाई मार्गों से जोड़ने का लक्ष्य उड़ान योजना के अंतर्गत आता है। श्रोताओं, 27 अप्रैल वर्ष 2017 को शिमला से दिल्ली के लिए इस योजना के अंतर्गत पहली उड़ान भरी गई थी। और आपको यह भी बता दें कि शुरू में लगभग 1 घंटे की उड़ान के लिए यानी 1 घंटे की हवाई यात्रा के लिए लगभग 2,500 रुपये का किराया निर्धारित किया गया था। और ये इसलिए ताकि देश के आम नागरिकों को हवाई यात्रा का सुख या हवाई यात्रा की सुविधा मिल सके। श्रोताओं, सस्ते किराए के कारण भारतीय एयरलाइंस को नुकसान न हो, इसके लिए भी सरकार द्वारा उन्हें वित्तीय सहायता या सब्सिडी प्रदान की जाती है। उड़ान योजना से न केवल सस्ती हवाई यात्रा की सुविधा मिलती है, बल्कि शहरों में रोजगार के नए अवसर भी बढ़ जाते हैं। इस कल्याणकारी योजना के माध्यम से व्यापार और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलता है। और इस तरह से जिन क्षेत्रों में भी इस तरह की हवाई पट्टियां बनाई जाती हैं, वहां रोजगार के अवसर बढ़ जाते हैं, वहां पर्यटन को बढ़ावा मिलता है और यूं कहें कि उन क्षेत्रों का जो विकास है वो तेजी से होने लगता है। तो श्रोताओं, वास्तव में भारत सरकार की उड़ान यानी उड़े देश का आम नागरिक ये योजना कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण है। तो श्रोताओं, इस योजना का लाभ आप भी अवश्य लें। तो ये तो बातें हुई उड़ान योजना के विषय में, और आइए अब बातें कर लेते हैं पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में। श्रोताओं, 15 फरवरी वर्ष 2024 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की शुरुआत की गई। इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश के करोड़ों घरों को रूफटॉप सोलर पैनल के माध्यम से हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली उपलब्ध कराना है। और केवल बिजली ही नहीं, बल्कि इससे और भी कई अप्रत्यक्ष लाभ उपभोक्ताओं को पहुंचते हैं। जैसे यदि घर के सबसे टॉप फ्लोर पर, सबसे ऊपर की छत पर ये पैनल लगवा लिए जाते हैं तो छत ठंडी रहती है, खासतौर से जैसे इन गर्मियों के मौसम में, और सुरक्षित रहती है, लॉन्ग लाइफ रहती है। और इस योजना के अंतर्गत जो सोलर पैनल लगाए जाते हैं उन पर अधिकतम 78,000 रुपये की सब्सिडी भी उपभोक्ताओं को दी जाती है। इसके द्वारा घरों की छतें भी
ढक दी जाती हैं और बिजली के अधिकतम भार से भी उपभोक्ताओं को निजात मिल जाती है। जहां तक मुफ्त बिजली की बात है तो सोलर पैनल लगवाने वाले उपभोक्ताओं को 300 यूनिट तक की बिजली मुफ्त प्रदान की जाती है इस योजना के अंतर्गत। अब बात आती है कि पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना का लाभ लेने के लिए पात्रता क्या है, यानी वो कौन कौन सी शर्तें हैं जिनको पूरा करके इसका लाभ लिया जा सकता है। तो आपको बता दें कि आवेदक के पास अपने जरूरी डॉक्यूमेंट्स जैसे आधार कार्ड, स्थायी निवास प्रमाण पत्र होने के साथ साथ अपना एक पक्का घर होना चाहिए जिसकी छत पर सोलर पैनल लगाया जा सके। उस घर के नाम मतलब घर में बिजली का कनेक्शन होना भी जरूरी है। एक और कंडीशन ये भी है कि उस घर में रहने वाले परिवार के किसी भी सदस्य ने पहले सोलर पैनल पर कोई सब्सिडी या कोई इस तरह का लाभ ना लिया हो। तो इस तरह से यदि कोई आवेदक पात्र है तो वो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब श्रोताओं बात आती है कि आवेदन कैसे करें, तो आपको बता दें कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के आधिकारिक पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। अपनी सही जानकारी दर्ज करके अपनी छत का विवरण और बिजली कनेक्शन आदि के जो संख्या है वो भर के आवेदन को पूरा किया जा सकता है। तो श्रोताओं वास्तव में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना एक जन कल्याणकारी योजना है और ऐसी ही अनेक कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से आज वास्तव में देश की तस्वीर बदल रही है, क्योंकि अब कल की बातों को छोड़कर हमें सब को मेहनत करके नया देश बनाना है।

श्रोताओं, इसी गीत के साथ कार्यक्रम मेरा सपना उन्नत भारत अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज़ पर। शाम के 5:10 हुए हैं। अब सुनिए जानकारी आज के शेष और कल के प्रमुख कार्यक्रमों के विषय में। श्रोताओं, पहले जानकारी आज के शेष कार्यक्रमों के बारे में। आज रात 9:30 पर हम आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम पब्लिक स्पीक। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। अब से कुछ ही देर बाद यानी शाम 5:15 पर युवा श्रोताओं के दैनिक कार्यक्रम युववाणी में क्रम होंगे बूझो तो जाने, कुछ खास है आज, गपशप अड्डा, क्रैश कोर्स पैसा वसूल, और साथ ही आप फिल्मी गीतों का आनंद भी लेंगे। शाम 6:05 पर किसान श्रोताओं के दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत में आज चर्चा का विषय होगा आम के बाग में फल तुड़ाई में सावधानी। साथ ही कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे एक भेंटवार्ता जिसका विषय रहेगा आयुष्मान भारत योजना। इस विषय पर CHO नांगल सोती डॉक्टर निर्मल जी से बात करेंगे नरेश पाल सिंह। शाम 6:45 पर कार्यक्रम विविधा के अंतर्गत हम आपको सुनवाएंगे देवकी नंदन शर्मा की वार्ता हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष। सुगम संगीत कार्यक्रम में शाम 7:32 पर आज आप सुनेंगे अमिता अग्रवाल की आवाज में भजन। और श्रोताओं, आज फिल्म संगीत का आनंद आप लेंगे शाम 6:55 पर कार्यक्रम छाया गीत में। रात 8:00 कार्यक्रम गीत संध्या में रात 8:30 पर एक ही फिल्म से के अंतर्गत रात 10:00 भूले बिसरे गीत और रात 10:30 पर कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। तो श्रोताओं, ये थी बातें और जानकारी आज के शेष कार्यक्रमों के विषय में। आइए अब आपको बता दें कल के प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में। कल रात 10:00 राज्य स्तरीय प्रसारण खेल दर्पण आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से रिले किया जाएगा। कल प्रातः 9:15 पर कार्यक्रम जिले की हलचल, ये कार्यक्रम भी आप आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से ही सुनेंगे। प्रातः 6:45 पर कार्यक्रम काव्यधारा के अंतर्गत कल हम आपको सुनवाएंगे आदर्शनी श्रीवास्तव का काव्य पाठ। खेती की बातें कार्यक्रम में प्रातः 7:10 पर किसान श्रोताओं के लिए जानकारी का विषय होगा गरीब की गाय बकरी। हमारे दैनिक कार्यक्रम सूरज के साथ साथ में प्रातः 7:31 पर जानकारी के विषय होंगे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस, संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस, और साथ ही जानकारी देंगे तिथि विशेष पर। लोक संगीत के कार्यक्रम धरती गाती है के अंतर्गत कल सुबह 9:25 पर हम आपको सुनवाएंगे नीलम अग्रवाल की आवाज में रुहेलखंडी लोकगीत। NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग आप सुनेंगे कल दिन में 11:30 पर। दोपहर 1:15 पर कल कार्यक्रम महिला जगत में आप सुनेंगे एक परिचर्चा जिसका विषय होगा कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा। इस परिचर्चा में प्रतिभागी होंगी निशास असगर, आकांक्षा राजपूत और रुपेंद्र कौर, संचालन करेंगी सुनीता नेगी। कल शाम 5:00 कार्यक्रम मेरा सपना उन्नत भारत के अंतर्गत जानकारी रहेगी अपनी धरोहर अपनी पहचान योजना और राष्ट्रीय मिशन प्रसाद योजना के ऊपर। कल शाम 6:05 पर कार्यक्रम कृषि जगत में हम आपको सुनवाएंगे बासमती निर्यात विकास प्रतिष्ठान मेरठ द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम बासमती धान रेडियो कृषि पाठशाला। तो श्रोताओं, ये थी जानकारी आज के शेष और कल के प्रमुख कार्यक्रमों के विषय में। इसी के साथ कार्यक्रम विवरण संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर।
शाम के 5:15 हुए हैं। अब प्रस्तुत है युवा श्रोताओं का दैनिक प्रोग्राम युववाणी।

0: जिंदगी की राहों में मुस्कुराहटों के फूल खिलते रहें, हर नई सुबह के साथ आपके सपने मिलते रहें। जो सुन ले दिल की धड़कन, वही तो असली कहानी है। आपके अपने कार्यक्रम युववाणी की यही पहचान है।
1: नमस्कार, हेलो एंड गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे और आपके पसंदीदा प्रोग्राम युववाणी में, जिसमें आज मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी रेडियो साथी शैली,
0: और साथ ही हूँ मैं आपकी अपनी दोस्त और आज की होस्ट सना।
1: दोस्तों, आज का प्रोग्राम होगा बेहद खास, होगी दिलचस्प बातें, मजेदार जानकारी, शानदार गीत और एक ऐसा सवाल जिसका जवाब अगर आपको पता है तो समझिए फिल्मों के बारे में आपकी जानकारी कमाल की है।
0: वैसे शैली, फिल्मों की दुनिया कितनी रंगीन होती है ना। कभी कोई फिल्म हमें खुलकर हंसाती है, कभी आंखें नम कर देती है, तो कभी जिंदगी को देखने का नजरिया ही बदल देती है।
1: बिल्कुल सही कहा सना तुमने, ऐसी ही एक फिल्म है जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। दोस्ती, रोमांच, जिंदगी को खुलकर जीने का संदेश और खूबसूरत लोकेशन, इस फिल्म ने लाखों का दिल जीत लिया। इतनी खूबसूरत लोकेशंस थी इस फिल्म के अंदर कि हम सभी के दिलों में मानो उन लोकेशंस ने एक छाप छोड़ दी।
0: बिल्कुल शैली, तो क्यों ना इसी फिल्म से जुड़ा आज का पहला सेगमेंट शुरू कर लिया जाए।
1: बिल्कुल, तो दोस्तों हमारे सेगमेंट बूझो तो जाने में आज का सवाल है, बॉलीवुड फिल्म

0: जिंदगी ना मिलेगी दोबारा का निर्देशन किसने किया था?
1: और इस सवाल का सही जवाब आपको देना है हमारे फेसबुक पेज आकाशवाणी नजीबाबाद के कमेंट सेक्शन में।
0: लेकिन दोस्तों, उससे पहले हम आपको बता दें, आज है हमारा मंडे स्पेशल सेगमेंट गपशप अड्डा, जिसमें आज हमें रहेगा आपकी कॉल्स का बेहद इंतजार।
1: कॉल्स करने के लिए नोट करिए हमारा नंबर, नंबर है 9457078288।
0: जल्दी से उठा लीजिए अपना फोन और तैयार हो जाइए हमें मैसेजेस और कॉल्स करने के लिए।
1: तब तक के लिए आइए आपको सुनवाते हैं हमारा नेक्स्ट सेगमेंट क्रैश कोर्स पैसा वसूल।

नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस अमेजिंग सेगमेंट में जो है क्रैश कोर्स पैसा वसूल। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक की जो आज के डिजिटल वर्ल्ड में हर स्मार्टफोन यूजर, स्टूडेंट, एम्प्लॉय और बिजनेस के लिए सबसे जरूरी है, वो है साइबर सिक्योरिटी। सोचो, अगर आपका इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हो जाए, बैंक अकाउंट की डिटेल्स लीक हो जाए या फिर फोन का डाटा किसी अननोन पर्सन के पास पहुंच जाए तो क्या होगा? डर लगता है ना। बस इन्हीं ऑनलाइन थ्रेट्स एंड साइबर अटैक से हमें बचाती है साइबर सिक्योरिटी। आज के टाइम में हम शॉपिंग से लेकर बैंकिंग, स्टडीज से लेकर एंटरटेनमेंट, सब कुछ इंटरनेट पर करते हैं, लेकिन जितनी फास्ट टेक्नोलॉजी ग्रो कर रही है उतनी ही फास्ट साइबर क्रिमिनल्स भी नए नए तरीके ढूंढ रहे हैं लोगों को टारगेट करने के लिए। इसीलिए साइबर सिक्योरिटी सिर्फ एक टेक्नोलॉजी टर्म नहीं बल्कि हमारी डिजिटल सेफ्टी की शील्ड है। तो चलिए दोस्तों, बिना डिले के जानते हैं साइबर सिक्योरिटी के बारे में। दोस्तों, साइबर सिक्योरिटी पर्सनल डाटा को प्रोटेक्ट करती है, फाइनेंशियल फ्रॉड को रोकने में मदद करती है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन को सिक्योर बनाती है, प्राइवेसी मेंटेन रखती है, बिजनेस को साइबर अटैक से बचाती है। जाहिर सी बात है, जब साइबर सिक्योरिटी इतना काम करती है तो इसके कुछ टाइप्स भी होते होंगे, तो चलिए उन टाइप्स के बारे में जानते हैं। सबसे पहला है नेटवर्क सिक्योरिटी, जो कंप्यूटर नेटवर्क्स को अनऑथराइज्ड एक्सेस और अटैक से प्रोटेक्ट करती है। अगला है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, जो इंफॉर्मेशन को सिक्योर रखती है। फिर है एप्लीकेशन सिक्योरिटी, क्लाउड सिक्योरिटी, एंड पॉइंट सिक्योरिटी, मोबाइल सिक्योरिटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स सिक्योरिटी एंड ऑपरेशनल सिक्योरिटी। इसके काफी फायदे हैं, जैसे इससे हमें डाटा प्रोटेक्शन, प्राइवेसी प्रोटेक्शन, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, बिजनेस प्रोटेक्शन, सेफ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन एंड साइबर क्राइम से प्रोटेक्शन मिलती है। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि साइबर सिक्योरिटी आखिर काम कैसे करती है? चलिए बताते हैं। सबसे पहले ये पहचानती है कि सिस्टम में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं और कहां कहां सिक्योरिटी की जरूरत है। फिर आती है प्रोटेक्शन, खतरों को पहचानने के बाद सिस्टम को सिक्योर बनाने के लिए अलग अलग सिक्योरिटी लागू करना, जैसे फायरवॉल एक सुरक्षा की दीवार की तरह काम करती है जो कंप्यूटर और इंटरनेट के बीच होती है। जब कोई डाटा इंटरनेट से सिस्टम में आता है तो फायरवॉल उसे चेक करता है। अगर डाटा सिक्योर होता है तो फायरवॉल उसे अंदर आने देता है, और फायरवॉल को अगर लगता है कि ये सही नहीं है तो उसे वहीं पर रोक देता है। एंटीवायरस, एंटीवायरस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर में मौजूद वायरस, मलवेयर, ट्रोजन जैसे हानिकारक प्रोग्रामों को सर्च और डिलीट करता है। ये रेगुलर सिस्टम को सीन करता रहता है, जैसे ही कोई इन्फेक्टेड फाइल मिलती है एंटीवायरस उसे पहचान कर डिलीट कर देता है। इनक्रिप्शन डाटा, इनक्रिप्शन डाटा को गुप्त कोड में बदलने की एक प्रक्रिया है ताकि कोई अनदर पर्सन उसे पढ़ ना सके। जब डाटा भेजा जाता है तो वो नॉर्मली नहीं बल्कि एक कोड में कन्वर्ट करके भेजा जाता है। अच्छा दोस्तों, अब बात करते हैं साइबर अटैक के कुछ वायरसेस या मलवेयर्स की। सबसे पहले है वायरस। वायरस किसी फाइल या प्रोग्राम से चिपक जाता है, फाइल रन करने पर स्प्रेड हो जाता है, मतलब फैल जाता है, डाटा को डैमेज कर सकता है। उसके बाद है वॉर्म, खुद ही नेटवर्क में फैल जाता है, किसी फाइल या यूजर एक्शन की जरूरत नहीं होती। फिर है ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स यूजफुल सॉफ्टवेयर के रूप में दिखता है, इंस्टॉल होने के बाद अटैकर को एक्सेस दे सकता है, खुद से स्प्रेड नहीं होता। नेक्स्ट है रैनसमवेयर, फाइल्स को लॉक या इनक्रिप्ट कर देता है, अनलॉक करने के लिए पैसे मांगता है। फिर स्पाईवेयर, चुपके से यूजर की एक्टिविटी मॉनिटर करता है, पासवर्ड और पर्सनल डाटा को चुरा सकता है। नेक्स्ट है एडवेयर, बहुत सारे अनवांटेड एड्स दिखाता है,

0: कभी-कभी प्राइवेसी को भी अफेक्ट करता है। फिर है की लॉगर, कीबोर्ड पर टाइप की गई कीज रिकॉर्ड करता है, पासवर्ड और बैंकिंग डिटेल्स चुरा सकता है। नेक्स्ट है रूट किट, सिस्टम में चिपक कर अटैकर को हाई लेवल एक्सेस देता है, डिलीट करना बहुत मुश्किल होता है। ये तो बात हुई साइबर सिक्योरिटी की, अब बात करते हैं आप खुद को साइबर अटैक से कैसे बचा सकते हैं। तो दोस्तों, यूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, लंबे एंड यूनिक पासवर्ड का यूज करें, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन को इनेबल करें, सॉफ्टवेयर को अपडेटेड रखें, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर यूज करें, अननोन लिंक्स पर क्लिक ना करें, सिक्योर वाईफाई ही यूज करें और हो सके तो पब्लिक वाईफाई को अवॉइड करें। साइबर थ्रेट्स के बारे में नॉलेज रखें, अनयूजुअल जो भी एक्टिविटी होती है आपके फोन लैपटॉप में तो आप उसे मॉनिटर करें। दोस्तों, अगर आपके साथ साइबर अटैक हो जाए तो आप खुद को कैसे रिकवर करें? सबसे पहले अटैक को आइडेंटिफाई करें, अफेक्टेड डिवाइस को नेटवर्क से डिस्कनेक्ट कर दें, एंटीवायरस स्कैन रन करें, पासवर्ड चेंज करें, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट को सबसे पहले रिपोर्ट करें और फ्यूचर अटैक्स के लिए स्ट्रॉन्गर सिक्योरिटी इम्प्लीमेंट करें। साइबर सिक्योरिटी आज के डिजिटल एरा में सबसे इम्पोर्टेंट नीड में से एक है। ये इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन दोनों को साइबर थ्रेट से प्रोटेक्ट करती है। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स, रेगुलर अपडेट्स, एंटीवायरस प्रोटेक्शन एंड साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस के जरिए हम अपनी डिजिटल लाइफ को ज्यादा सेफ, सिक्योर एंड रिलायबल बना सकते हैं। तो दोस्तों, साइबर सिक्योरिटी सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि हमारे डिजिटल सेफ्टी की जरूरत है। थोड़ी सी अवेयरनेस और सही प्रिकॉशंस हमें साइबर थ्रेट से बचा सकते हैं। अगली बार मिलेंगे एक नए टॉपिक, नई नॉलेज के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे अवेयर एंड स्टे साइबर सिक्योर।
1: हम हंसाएंगे, आप मुस्कुराएंगे,
2: हो जाओगे एहसास कर लोट कोट,
1: क्योंकि ये है लाफ्टर का सॉलिड डोज।
3: और डोज में क्या है?
2: डोज में है मजा।
4: जी हाँ, मजा आ गया।
5: यार, मैंने तुम्हारे तलाक के बारे में सुना, सुन के बहुत बुरा लगा।
0: बस भाई, जैसा ऊपर वाले की मर्जी।
5: अब तो तू बहुत परेशान होगा ना, अब तो तुझे घर के काम करने में भी बहुत दिक्कत होती होगी ना।
0: नहीं नहीं, अब तो मैं ज्यादा सुखी हूँ।
5: ज्यादा सुखी? ऐसा क्यों भाई?
0: क्योंकि पहले मुझे दो लोगों का काम करना पड़ता था, अब एक का करना पड़ता है।
4: जी हाँ, मजा आ गया।

0: हेलो 9457078288।
1: कौन बोल रहा है?
2: ये है गपशप अड्डा।
1: ये है गपशप अड्डा।
3: तो सना क्यों ना अब हमारा मंडे स्पेशल सेगमेंट यानी गपशप अड्डा शुरू कर लिया जाए।
4: बिल्कुल शाली। तो दोस्तों इसी के साथ आइए देखते हैं हमारे पहले कॉलर कौन है। हेलो।
5: नमस्कार मैम।
4: हेलो।
5: नमस्कार मैम। नमस्कार मैम। हेलो मैम। नमस्ते।
4: हेलो।
5: हाँ मैम नमस्कार।
4: हेलो
5: मकसूद हुसैन बात कर रहा हूँ मैम।
3: सना लग रहा है मुझे कि किसी टेक्निकल या फिर वो हमें कॉल करके भूल गए हैं। तुम्हें क्या लगता है?
4: बिल्कुल चलिए इन दो वजहों के अलावा और कोई है ही नहीं।
3: चलो अगली कॉल को रिसीव करते हैं, देखते हैं कौन है हमारे कॉलर।
4: हेलो
5: मकसूद हुसैन बात कर रहा हूँ मैम। नमस्कार।
6: हेलो।
5: हेलो।
4: हेलो।
6: हाँ नमस्कार मैडम।
4: लगता है शैली आज अपने लिसनर्स को हमें अपनी ही पसंद का कोई गीत सुनवाना पड़ेगा क्योंकि शायद हमारे लिसनर कहीं बिजी हैं जो हमें कॉल या तो कर नहीं पा रहे हैं या फिर नेटवर्क उन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं।
3: तो चलो सुन लेते हैं अपने किसी श्रोता की पसंद का ये गीत।

0: नए जमाने की नई तस्वीर। अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें। ले आएं आज ही दूरदर्शन का डीडी फ्री डिश। इसमें है आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स। इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका डीडी फ्री डिश।
1: दोस्तों इसी के साथ आइए अब देखते हैं हमारे सेगमेंट गपशप अड्डा में कॉल किसकी लगी है। हेलो
2: जी नमस्ते।
1: नमस्ते, कौन से श्रोता से बात हो रही है?
2: प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ, ग्राम बछोड़ा तहसील नागदे जिला उज्जैन से।
1: जी प्रेम जी, तो कैसे हैं आप?
2: जी मैं बहुत अच्छा हूँ और आपसे बात करके और भी अच्छा लग रहा है। आप बताइए आप कैसे हो?
1: हम सब आकाशवाणी पूरा परिवार बहुत अच्छा है। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आज हमारे सेगमेंट गपशप अड्डा में आप फर्स्ट कॉलर बने हैं। तो
2: कार्यक्रम सुन रहा हूँ
1: जी। तो आज आप हमारे सेगमेंट में कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
2: जी फिल्म का नाम है दाग दी फायर और गाने के बोल है लकी कबूतर।
1: दाग दी फायर फिल्म है और गाने के बोल है
2: लकी कबूतर।
1: लकी कबूतर,
2: हाँ जी।
1: तो सुनवाए आपको आपका ये पसंदीदा गीत।
2: हाँ जी मैं बताना चाहूंगा, मैं मोबाइल एप से कार्यक्रम सुनता हूँ आकाशवाणी नजीराबाद के
1: जी।
2: और नियमित सुनता हूँ शनिवार मतलब शुक्रवार को जो आता ना रात में प्रोग्राम
1: जी
2: नजीराबाद, वो भी सुनता हूँ और जागरूक होता हूँ उस कार्यक्रम में भी पार्टिसिपेट करता हूँ और ये गपशप अड्डा में तो मेरा फोन आता ही आता है।
1: जी प्रेम जी, तो कह सकते हैं कि आप हमारे रेगुलर लिसनर हैं और आपको हमारे प्रोग्राम काफी पसंद आते हैं।
2: हाँ जी मोबाइल एप पे कार्यक्रम आने से हमें हर राज्य के कार्यक्रम मिल जाते हैं और प्रसारण भी स्पष्ट रूप से मिलता है।
1: चलिए तो बहुत अच्छी बात है। तो आइए अब आपको सुनवाते हैं हम आपकी पसंद का ये गीत
2: जी।

0: दोस्तों, कहते हैं कि हर इंसान अपनी एक अलग पहचान लेकर इस दुनिया में आता है, लेकिन आजकल एक आदत ऐसी है जो हमारी खुशियां और कॉन्फिडेंस दोनों छीन लेती है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे कंपैरिजन कॉन्फिडेंस को डिस्ट्रॉय कर देता है।
1: सना, गौर किया है कभी कि आजकल लोग अपनी जिंदगी कम और दूसरों की जिंदगी ज्यादा देखने लगे हैं। सोशल मीडिया हो या फिर कॉलेज, हर जगह खुद की तुलना किसी और से करते रहते हैं।
0: बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात यह है कि हम अपनी पूरी कहानी की तुलना किसी दूसरे की सिर्फ एक अच्छी तस्वीर या छोटी सी सफलता से कर लेते हैं।
1: सना, बहुत से स्टूडेंट कहते हैं मेरे दोस्त के मुझसे ज्यादा नंबर आए, मैं उससे ज्यादा कमजोर हूँ। लेकिन सना, नंबर किसी इंसान की पूरी पहचान तो नहीं होते, है ना?
0: बिल्कुल सही कहा शैली। किसी की ताकत पढ़ाई हो सकती है, किसी की खेल, किसी की संगीत तो किसी की कला। हर इंसान में कोई ना कोई विशेषता तो होती है।
1: और जब हम बार बार कंपैरिजन करते हैं तो हमारे मन में धीरे धीरे ये भावना आने लगती है कि मैं कुछ नहीं कर सकता। यहीं से हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो कम होने लगता है।
0: जबकि सच तो ये है दोस्तों कि सबसे बड़ी प्रतियोगिता किसी और से नहीं बल्कि खुद से होनी चाहिए।
1: फ्रेंड्स, कंपैरिजन आपको दूसरों जैसा बना सकता है, लेकिन कॉन्फिडेंस आपको आपकी अपनी पहचान दिलाता है।
0: और एक आखिरी बात, किसी और की कहानी देखकर अपनी किताब बंद मत कर दीजिए, क्योंकि आपकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत अध्याय अभी लिखा जाना बाकी है।
1: आज का संदेश बस इतना सा है, खुद की तुलना किसी और से मत कीजिए। अपनी खूबियों को पहचानिए, अपनी कमियों पर काम कीजिए और हर दिन खुद को बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए।
0: अब सुनते हैं सेगमेंट लव स्टोरीज, जिसमें इस वीक आप सुनेंगे कहानी चित्रलेखा, एपिसोड नंबर 1।
2: नजरों से नजरें मिली, दिल धड़कने लगे, ये धड़कने लगे, है अजब सी चाहत का असर। दिल तड़पने लगे, हम तड़पने लगे। आप सुन रहे हैं सेगमेंट लव स्टोरीज।
3: नमस्कार दोस्तों, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सोमवार से शुक्रवार तक हम लाते हैं आपके लिए नई कहानियाँ और उनके अलग अलग एपिसोड्स जो आप सुनते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक। पिछले हफ्ते आपने सुना सेगमेंट कहानी के उस पार, तो इस बार बारी है सेगमेंट लव स्टोरीज की। और इस हफ्ते हम शुरू कर रहे हैं एक ऐसी कहानी जिसने सालों से पढ़ने वालों को और श्रोताओं को सोचने पर मजबूर किया है। ये कहानी है प्रसिद्ध साहित्यकार भगवती चरण वर्मा द्वारा लिखित चित्रलेखा की। क्या कोई इंसान पूरी तरह पापी या पूरी तरह पुण्यात्मा हो सकता है? क्या परिस्थितियाँ हमारे कर्मों को तय करती हैं? और क्या जो दिखता है वही सच होता है? इन्हीं सवालों के जवाब खोजती है चित्रलेखा की ये अनोखी कहानी। तो आइए शुरू करते हैं चित्रलेखा का पहला भाग। बहुत समय पहले की बात है, एक आश्रम में गुरु रत्नांबर अपने दो शिष्य श्वेतांक और विशाल देव को शिक्षा दे रहे थे। एक दिन दोनों के मन में एक सवाल उठा। श्वेतांक ने पूछा, गुरुदेव, लोग कहते हैं कि ये पाप है वो पुण्य है, लेकिन असल में पाप और पुण्य होते हैं क्या? गुरुजी मुस्कुराए और बोले, इस सवाल का जवाब किताबों में नहीं मिलेगा। इसके लिए तुम्हें दुनिया को देखना होगा, लोगों को समझना होगा। फिर उन्होंने दोनों शिष्यों को अलग अलग जगह भेजने का फैसला किया। विशाल देव को भेजा गया प्रसिद्ध योगी कुमारगिरी के पास, जिनकी तपस्या और त्याग की चर्चा दूर दूर तक थी। वहीं श्वेतांक को भेजा गया बीजगुप्त के पास, जो राज्य का शक्तिशाली सेनापति था और ऐशो आराम की जिंदगी जीता था। कुछ दिनों बाद श्वेतांक बीजगुप्त के महल पहुंचा।

0: महल देखकर वो हैरान रह गया। चारों तरफ रोशनी, संगीत और उत्सव का माहौल था। लोग हंस रहे थे, गा रहे थे और जीवन का बेहद आनंद ले रहे थे। श्वेतांक ने मन ही मन सोचा, गुरुदेव ने मुझे ऐसे व्यक्ति के पास क्यों भेजा जो सिर्फ सुख सुविधाओं में डूबा हुआ है। तभी उसकी नजर एक ऐसी युवती पर पड़ी जिसके आते ही जैसे पूरा माहौल ही बदल गया। सबकी निगाहें उसी पर टिक गई। उसका नाम था चित्रलेखा। वो बेहद सुंदर थी, लेकिन उसकी सबसे बड़ी खूबी थी उसका आत्मविश्वास। वो किसी से डरती नहीं थी और अपनी बात बेझिझक कहती थी। बीजगुप्त और चित्रलेखा के बीच एक खास रिश्ता था। दोनों एक दूसरे का सम्मान करते थे और साथ में बहुत खुश दिखाई देते थे। लेकिन श्वेतांक को ये सब देखकर अच्छा नहीं लगा। उसे लगा कि ऐसा जीवन गलत है और जो व्यक्ति इसमें डूबा हुआ है वो कभी अच्छा नहीं हो सकता। उधर विशाल देव कुमारगिरी के आश्रम पहुंच चुका था। वहां का माहौल महल से बिल्कुल अलग था। ना कोई शोर था, ना कोई उत्सव। चारों तरफ बस शांति ही शांति थी। कुमारगिरी घंटों ध्यान करते और लोगों को ज्ञान देते। उन्हें देखकर विशाल देव के मन में उनके लिए बहुत सम्मान पैदा हुआ। उसने सोचा, अगर पुण्य किसी इंसान में हो सकता है तो वो जरूर कुमारगिरी में है। लेकिन जिंदगी हर इंसान की परीक्षा लेती है, चाहे वो साधारण व्यक्ति हो या कोई महान योगी। और जल्दी ही कुछ ऐसा होने वाला था जो दोनों शिष्यों की सोच पूरी तरह बदलने वाला था। एक तरफ था बीजगुप्त का रंगीन संसार जिसे देखकर श्वेतांक उसे पाप की राह मान रहा था। दूसरी तरफ था कुमारगिरी का शांत आश्रम जिसे देखकर विशाल देव उसे पुण्य का प्रतीक समझ रहा था। लेकिन क्या सचमुच बात इतनी आसान थी? क्या जो दिखाई दे रहा था वही सच था, या फिर इन दोनों दुनियाओं के पीछे कोई ऐसा सच छुपा था जो पाप और पुण्य की सारी परिभाषाएं बदल देता? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर चित्रलेखा कौन थी और उसकी जिंदगी का दोनों पुरुषों से क्या संबंध था? ये जानने के लिए सुनिए अगला भाग जो आएगा कल यानी मंगलवार को।
1: हम हंसाएंगे, आप मुस्कुराएंगे,
2: हो जाओगे एहसास कर लोट कोट,
1: क्योंकि यह है लाफ्टर का सॉलिड डोज।
3: और डोज में क्या है?
2: डोज में है मजा। जी हाँ, मजा आ गया।
3: हाय चिंटू, कैसा है तू?
4: मिंकू, मैं तो बहुत बढ़िया हूँ, तू बता।
3: अरे मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। आज ना मैं तेरे लिए एक नया सवाल लेकर आया हूँ।
4: चल तो फिर पूछ जल्दी।
3: ये बता कि जो बीवी होती है वो लड़ने का बहाना कब ढूंढती है?
4: अरे यार मिंकू, वो तो बस मुझे ही ढूंढती है। लड़ने का बहाना तो उसे फिर खुद ही मिल जाता है।
2: जी हाँ, मजा आ गया।
3: हेलो
4: हेलो
5: हेलो
4: जी, कौन
3: जी सर?
5: मैं कश्मीर से लतीफ अहमद रेना।
3: जी सर, कौन सर बात कर रहे हैं? हम नाम जान सकते हैं आज आपका?
5: लतीफ अहमद रेना।
3: जी जी, कैसे हैं आप लतीफ जी?
5: बहुत अच्छा मैडम, आप ठीक हैं?
3: जी जी, हम सब ठीक हैं यहाँ पर।
5: हाँ, मुझे गाना सुना है पत्थर की सना।
4: कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आज आप?
5: टाइटल सॉन्ग।
4: टाइटल सॉन्ग कौन सी मूवी का है?
5: पत्थर की फूल, पत्थर की सनम।
4: पत्थर के सनम का टाइटल सॉन्ग।
5: हाँ हाँ
3: जी जी सर, तो और बताइए कि आप कहाँ से बात कर रहे हैं?
5: मैं कश्मीर सोनामर्ग से।
3: जी जी, तो ये बताइए कि वहाँ का मौसम कैसा है?
5: बस सुहाना है मैडम।
3: अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, सुहाने मौसम को तो हम भी बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ तो बहुत गर्मी है।
5: हाँ, यहाँ पे सुहाना है, 2 बजे से लेके अभी तक तो पानी बरस रहा है।
3: जी सना, हम तो पानी को बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, हम चाहते हैं कभी बारिश हो इस बार।
4: बिल्कुल शैली, बारिश के तो बहुत ज्यादा इंतजार में हूँ मैं भी। वैसे कश्मीर की वादियाँ हो और सुहाना मौसम हो और साथ में ये गीत जो कि हमारे लिसनर ने चलवाने अभी अपनी पसंद बताई है, तो क्या ही बात हो, है ना शैली?
3: हाँ बिल्कुल सना,
4: तो चलिए आपकी पसंद पर आपको सुनवाया जाए ये खूबसूरत सा गीत।

0: सना चलो अब लेते हैं अपने अगले लिसनर की कॉल।
1: बिल्कुल शैली। हेलो,
2: हेलो, नमस्कार मैडम जी।
1: नमस्ते, कैसे हैं आप?
2: मैं बढ़िया हूँ। मैं सतीश बात कर रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट फरुखाबाद उत्तर प्रदेश यूपी से पढ़ता हूँ। पता है जो कानपुर के पास में जिला है, फरुखाबाद जिला है।
1: जी सतीश जी,
2: तो मैं आपके प्रोग्राम सुन रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा है प्रोग्राम गप शप अड्डा। और मैडम जी मेरी तो आपके इधर मौसम कैसा है?
1: हमारे इधर मौसम बहुत गर्म है, बहुत ज्यादा गर्मी है, बस
2: तो फिर
1: बारिश का
2: ओके,
1: इंतजार
2: हाँ
1: है।
2: बारिश हो जाए तो दूध, बारिश हो जाए तो गर्मी से कछु पक्षियों को राहत मिलेगी, जानवर को राहत मिलेगी, इंसानों को राहत मिलेगी, और कछु फसलों को लाभदायक मिलेगी, क्यों जो फसलें सूख रही हैं तो उनको भी जान जान पड़ जाएगी बारिश में,
1: बिल्कुल
2: कह देता
1: बिल्कुल
2: हूँ। और जैसे कल अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया, योगा दिवस कल मनाया था 21 तारीख को,
1: जी,
2: तो योगा दिवस पे कल बनाया तो बहुत अच्छा लगा। तो युवा दिवस तो कल अंतर्राष्ट्रीय दिवस था, लेकिन उसमें मनाया गया तो बहुत अच्छा लगा। लेकिन उसे युवा दिवस तो 365 दिन में बनाते रहिए तो बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि उसमें जैसे रोज बनाओगे युवा दिवस तो शरीर के लिए सब लाभदायक है, बीमारियां ना फैलेंगी, ना ना थकाव
1: जी जी
2: बढ़ाएगी,
1: सतीश जी,
2: शरीर
1: बिल्कुल
2: का
1: सही बात
2: खून
1: है आपकी।
2: दौड़ेगा।
1: आप ये बताइए कि आप करते हैं रोज योगा?
2: मैडम जी मैं तो देखो ऐसा है, मैं तो योगा तो नहीं हूँ, मैं तो किसान आदमी हूँ। तो किसान आदमी में और सुबह सुबह काम करने जाएगा, चारा काट के लाएगा, भैंस को डालेगा, वापस

0: तो हो जाता है आजू बाजू,
1: बिल्कुल
0: होता
1: सही
0: है
1: बात है
0: ना।
1: आपकी कि इतने सारे काम में, जानवरों के काम में, चारा काटने में, सब में योगा हो
0: जानवर
1: जाता
0: के
1: है।
0: जानवर के खास काम में खेती बाड़ी है, कोई फसल पक गई तो उसकी भी काटना है,
1: जी
0: कराना
1: बिल्कुल सही
0: है,
1: बात
0: सब
1: है।
0: कुछ पानी लगाना है, सब योगा तो होते ही हो जाते हैं। तो योगा योगा करने कोई मुझे जरूरत ही नहीं पड़ती है, पहले
1: हाँ
0: ही
1: सही बात है
0: इतनी
1: आपकी,
0: मेहनत
1: बिल्कुल।
0: पड़ती है। और
1: हाँ
0: भाई मेहनत करेंगे तो रोटी खाएंगे, और नींद तेज तो बहुत तेज आती है काम करके, तो योगा तो हो जाता है।
1: बिल्कुल
0: और
1: सही बात है सतीश जी।
0: जो सिटी वाले लोग होते हैं, जो रूम रहते हैं वो घर पे रहते हैं एसी कमरे में, तो फिर
1: जी
0: योगा करने चाहिए। जैसे मोटे लोग होते हैं
1: बिल्कुल
0: तो
1: सही
0: उनको
1: बात है।
0: योगा।
1: चलिए
0: तो
1: सतीश जी ये बताइए कि आज की शाम आप कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगे?
0: आज सुनवा दीजिए, नाम है दिल गाने बोलो ओ प्रिया प्रिया, ये गाना
1: जी
0: आपके लिए डेडिकेट करना चाहता हूँ। आपसे मेरी
1: जी
0: किससे बात हो रही है बता सकती हैं?
1: शैली से।
0: अच्छा, जी। और क्योंकि गर्मी का मौसम चल रहा है तो अभी तो आम के आम का तो आम
1: जी जी जी
0: मार्केट में
1: जी
0: चल रहे हैं, तो आम खाइए,
1: हाँ हाँ
0: ज्यादा
1: बिल्कुल
0: से
1: बिल्कुल
0: कम खाइए, लेकिन नुकसान जाए। हमने कल रात को आम खा ली तो बहुत नुकसान करे, लेकिन
1: जी जी
0: ज्यादा
1: सतीश
0: नुकसान नहीं
1: जी,
0: होगा।
1: ध्यान रखिए अपना, आम कम खाइए आप भी। और
0: हाँ,
1: चलिए आपको
0: और
1: सुनवाते
0: जैसे
1: हैं
0: हरे
1: आपकी
0: पत्ते
1: पसंद
0: वाली
1: पर ये
0: सब्जी,
1: गीत, है
0: हरे
1: ना?
0: पत्ते वाली
1: गीत सुन लेते
0: सब्जियाँ,
1: हैं।
0: पानी पानी पानी ज्यादा पीना चाहिए।
1: जी बिल्कुल सही बात है आपकी, पानी आप भी पीजिए, हम भी पियेंगे। और अब सुनते हैं आपकी पसंद पर ये गीत।

0: तो सना, मुझे लगता है कि अब हमें जान लेना चाहिए, बूझो तो जाने क्वेश्चन के आंसर और जिन दोस्तों ने जवाब दिए हैं उनके नाम भी। तो दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत में हमने बूझो तो जाने सेगमेंट के अंतर्गत आपसे पूछा था सवाल। सवाल था, बॉलीवुड फिल्म जिंदगी ना मिलेगी दोबारा का निर्देशन किसने किया था, जिसका सही जवाब है जोया अख्तर ने।
1: इसी के साथ जान लेते हैं सही जवाब देने वाले सभी लिसनर्स के नाम। सुरेश गगनेजा, मोहम्मद कामिल, अनिल विनोचा, गंगा सिंह रावत, धीरज भाई रबाड़ी, शकील अहमद इदरीसी, फरियाद हुसैन अंसारी, सदाशिव थौरात, अल्ताफ हुजरे, संजय डिग्निया, रवि कुमार राहुल, बबलेश पवार, कैलाश फुलमाली, मसरूर हसन, राजमूल हुदा, राधेश्याम पांडे, देवशंकर तमूरिया, मिसबा शमसी, आकाश रस्तोगी, शमसुल कमर राही, जगदीश धाकड़, दिलीप भाभर, मोहम्मद रफीक पवार, गजानन येले, हल्के जयपाल यादव, तुलसी मस्कीन, मोहम्मद दानिश सिद्दीकी, सोहन जोशी, महेंद्र मोदी, राष्ट्रपाल गजबे, लाल मोहम्मद अंसारी, दिलशाद हुसैन, इरशाद अहमद, निसार सलमानी, शाहजी भोड़के, विजय सुरलकर, नदीम सलमानी, जाकिर मंसूरी, धर्मेंद्र छीपा, विट्ठल सुरेशे, फागुराम यादव, बी आई धाकड़, राम कुमार पवार, महाराज कीर्तनपुरी, प्रवीण चौहान, नदीम बाकी, दिनेश वर्मा, मोहम्मद जावेद, ताज अंसारी, राजेश वर्मा, विष्णु टेलर, सुदर्शन शाह, हिरमानी वर्मा, पुंजाली नवरकर, जॉन डिकैस्ट्रो।
0: तो दोस्तों, ये तो था हमारा आज का प्रोग्राम। हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। हमारे प्रोग्राम्स आपको कैसे लग रहे हैं आप हमें खत के जरिए बता सकते हैं। खत के लिए हमारा पता है कार्यक्रम युववाणी अनुभाग द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी नजीबाबाद, पिन कोड है 246763। आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9457078288।
1: इसी के साथ दोस्तों, आप हमें हमारे तीनों सोशल मीडिया अकाउंट पर फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है आकाशवाणी नजीबाबाद। इसी के साथ अपनी साथी सना
0: और शैली को दीजिए कार्यक्रम संपन्न करने की इजाजत।
1: नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे युवा श्रोताओं का दैनिक कार्यक्रम युववाणी। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर शाम के 6 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आकाशवाणी दिल्ली से समाचार रिले होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के अलीगंज इलाके में आज दोपहर एक भीषण अग्निकांड में 14 छात्रों की मौत हो गई। अलीगंज के पुरानिया इलाके में एक दुकान के ऊपर चल रहे कोचिंग सेंटर में आग लग गई, जिससे छात्रों में दहशत फैल गई। कुछ लोग घायल हो गए हैं और उन्हें अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। मीडिया से बात करते हुए उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बताया कि इमारत में स्थित एनिमेशन सेंटर में मौजूद 16 से 18 वर्ष की आयु के 14 छात्रों की मौत हो गई है। उन्होंने बताया कि दमकल कर्मी इमारत के कोनों, शौचालयों और अन्य क्षेत्रों में छात्रों की तलाश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुई भीषण अग्निकांड पर शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि बचाव अभियान जारी है और अधिकारी हर संभव सहायता प्रदान कर रहे हैं। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रूपये और घायलों को 50-50 हजार रूपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज उलानबतार में मंगोलिया के विदेश मंत्री बत्सतेग पटनमुख से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. जयशंकर ने कहा कि चर्चाओं में भारत मंगोलिया रणनीतिक साझेदारी, मजबूती और संभावनाओं पर बात की गई है। दोनों नेताओं ने विकास परियोजनाओं, क्षमता निर्माण, संस्कृति, शिक्षा, सुरक्षा और बहुपक्षीय मंचों में द्विपक्षीय सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। रेलवे ने पूर्वी तट रेलवे के 631 किलोमीटर के मार्ग पर स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच की मंजूरी दे दी है। इससे सुरक्षा परिचालन दक्षता में सुधार होगा। रेल मंत्रालय ने बताया कि इस परियोजना में पूर्वी तट रेलवे के 6 महत्वपूर्ण खंड शामिल हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। रोजगार और जन कल्याण को बढ़ावा देते हुए राज्य के विभिन्न विभागों में 1 लाख खाली पदों पर नियुक्ति की घोषणा की गई है। वित्त मंत्री स्वप्न दास गुप्ता ने बजट पेश करते हुए बताया कि नौकरियों में 33% पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। अग्निवीरों के लिए आवश्यकता अनुसार 10% आरक्षण शुरू किया गया है। महाराष्ट्र विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से शुरू हुआ। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सदन में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 97,706 करोड़ रुपए से अधिक की अनुपूरक मांगे पेश की। विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने नवनिर्वाचित सदस्यों सुनीत्रा पवार और अक्षय करडिले को पद की शपथ दिलाई। कांग्रेस नेता नाना पटोले ने राज्य के कई हिस्सों में जल संकट का मुद्दा उठाया। तमिलनाडु विधानसभा में आज कर्नाटक की प्रस्तावित मेकेदातु बांध परियोजना पर चर्चा हुई। AIADMK, PMK और CPM सहित विपक्षी दलों ने आशंका व्यक्त की है कि इस परियोजना से कावेरी जल बंटवारे पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और तमिलनाडु के हित प्रभावित हो सकते हैं। राज्य सरकार ने कहा है कि वो तमिलनाडु के जल अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज लुधियाना में विख्यात कृषि वैज्ञानिक और पद्म भूषण से सम्मानित सरदारा सिंह जोहल से मुलाकात की। श्री नवीन ने उनके साथ पंजाब के कृषि संकट पर चर्चा की। बैठक के बाद श्री नवीन ने कहा कि श्री जोहल के साथ बातचीत में कृषि के मुद्दों पर अमूल्य जानकारी प्राप्त हुई।
2: मैं मानता हूं कि ऐसी शख्सियत जिसने किसानों की भावनाओं को समझा, कृषि को समझा और कृषि को कैसे एक सही रूप से आगे बढ़ाया जाए, इस चीज को उन्होंने एक रिसर्च के रूप में देखा है, तो निश्चित रूप से ऐसे शख्सियत से मिलना मेरे लिए भी सौभाग्य का विषय है।
1: ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक से इतर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आज नई दिल्ली में ईरान के सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के रक्षा मामलों के उपसचिव गदीर निजामी पुर से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों पक्षों ने पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति की समीक्षा की। श्री डोभाल ने इथियोपिया के राष्ट्रीय खुफिया सुरक्षा सेवा के विश्लेषण कार्यकारी निदेशक मिलियन लेमा तेदेसे से भी मुलाकात की। दोनों पक्षों ने भारत इथियोपिया रणनीतिक भागीदारी बढ़ाने और सहयोग के नए क्षेत्रों पर विचार विमर्श किया। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज ग्रुप जे में अर्जेंटीना का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। मैच रात 10:30 बजे से शुरू होगा। इससे पहले आज खेले गए मुकाबले में मिस ने न्यूजीलैंड को 3-1 से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। शाम के 6:05 हुए हैं। अब प्रस्तुत है किसान श्रोताओं का दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत।

0: कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान बहन भाइयों को आपके भैया नरेश पाल सिंह की राम राम। कहिए किसान भाइयों, क्या हालचाल है आपके? भैया देखिए, आपके हालचाल बढ़िया होंगे, आपका काम धाम भी अब बढ़िया चल रहा होगा, क्योंकि हमारे किसान भाई भोर में उठकर, पसर में उठकर और देर शाम तक अपने काम धाम में लगे रहते हैं, अपने पशुओं की सेवा करते हैं और भैया अपनी फसलों की देखभाल करते हैं। और भैया चाहे गर्मी हो या सर्दी हो, और तो कोई सा ही मौसम हो, किसान भाई जो है अपने कार्य को सही टाइम पर निपटाते हैं और भैया तभी वो आराम करते हैं। और इसीलिए किसान भाई को अन्नदाता कहा गया है। तो खैर भैया, इस समय हमारे किसान भाई जो है अपनी धान की नर्सरी लगाने की तैयारी कर रहे होंगे, और धान की नर्सरी वाले खेतों में कुछ किसान भाइयों ने ढेंचे की फसल को जोतना भी शुरू कर दिया है, या सनी की फसल को जो हरी खाद के रूप में हमारे किसान भाइयों ने बोई थी। और भैया कुछ किसान भाई अब जो है अपनी धान की पौध उखाड़ कर और लगाने की तैयारी में हैं, यानी कि धान की रोपाई शुरू करने वाले हैं। और भैया धान की जब हम रोपाई करते हैं और पनीर उखाड़ते हैं, इनके पौध को उखाड़ते हैं, तो ध्यान रहे कि हम सूखे खेत में कभी भी पौध को ना उखाड़ें। हमारे खेत में जो जिसमें हमारी पौध लगी हुई है उसमें हल्का हल्का पानी जरूर होना चाहिए, नहीं तो आगे चलकर हमारी फसल में धान की बकैना रोग लग सकता है। तो भैया इस बात का ध्यान रखें, और जब हम पनीर को उखाड़ लें तो उसकी जड़ों को कम से कम आधे घंटे तक कार्बंडाजिम या मैंकोजेब जैसे कवकनाशी से उपचारित अवश्य करें। यानी कि आपके खेत में जो सिंचाई की नाली होती है उसको दोनों तरफ से बंद करके जो पानी उसमें भर जाता है, तो भैया उसमें ही दवाई डाल दें और डंडे से चला दें, और जब ये दवाई पानी में घुल जाए तो आपकी जो गुच्छियाँ होती हैं, जो आपकी जो पनीर की गुच्छियाँ होती हैं, वो आप उसमें खड़ी कर दें, और स्वतः ही 20 मिनट क्या, यदि पूरी रात भर इसका उपचार कवकनाशी से होता रहा तो भैया बहुत ही अच्छे परिणाम हमें मिलते हैं, और आगे चलकर कोई भी कवकनाशी रोग हमारी फसल में नहीं आता। इसके साथ साथ हमारे किसान भाई बुआई के समय जो DAP का प्रयोग कर सकते हैं और पोटास का प्रयोग कर सकते हैं। और भाई अब जो है इस समय थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं आम के बागों की। तो भैया आम के बागों में इस समय फल तुड़ाई का काम चल रहा है, और आप जानते हैं कि भाई जो हम फल तोड़ते हैं उन्हें तोड़ने में कुछ सावधानी की आवश्यकता होती है। तो किसान भाइयों, इस समय जो हम तुड़ाई कर रहे हैं उसमें सावधानी हमें ये रखनी है कि सबसे पहले तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि सुबह और शाम को ही हमें फलों की तुड़ाई करनी है, यानी कि तेज धूप में तुड़ाई नहीं करनी। शाम को जब यदि हम तुड़ाई करेंगे तो धूप जब कम हो जाए तो तभी हम जो है आम की अपनी तुड़ाई करें। और दूसरी बात यह है कि जब आम का आकार लगभग सामान्य सा हो जाए, 4 इंच हो जाए, तो उसमें जब ही वजन अच्छा होता है तभी उसकी तुड़ाई करें। ज़्यादा छोटे आम की तुड़ाई भी करना या जल्दी करना ये भी ठीक नहीं होता। और भैया तुड़ाई करते समय एक बात का विशेष ध्यान रखें कि जो आम का डंठल होता है उसके साथ ही हमें आम की तुड़ाई करनी चाहिए, नहीं तो भाई कम से कम यदि हम बिल्कुल आम के फल का डंठल पेड़ पर छोड़ देते हैं तो उसमें से एक चिपचिपा पदार्थ निकलता है जो बड़ा अम्लीय होता है, और हमारे आम की गुणवत्ता उससे खराब हो जाती है। जब वो सूख जाता है तो वहाँ से हमारे आम काले पड़ जाते हैं। तो 3-4 इंच का अपने फलों में डंठल अवश्य छोड़ें, और जो बड़े जलखे होते हैं जो बांस में एक जाली नुमा एक आकार का थैला सा होता है, तो भैया उस जुगाड़ से ही हम आम के फलों को तोड़ें, और जो हम सीधे पेड़ को हिलाकर या सीधे नीचे हम डाल देते हैं आम को तोड़कर, तो भैया वो गलत है, उससे फलों की गुणवत्ता प्रभाव पड़ता है और फल जो है फट जाते हैं। और यदि हम ऊपर से फल तोड़ते हैं तो हमारे खेत में थोड़ी सी नमी होनी चाहिए, और खेत में हमारे बाग में नमी नहीं है तो सीधे आकर भी शाखाओं पर या ज़मीन पर आकर हमारे फल फट सकते हैं, और कुछ फल ऐसे होते हैं उनको अंदरूनी चोट लग जाती है, बाहर से तो वो सही दिखते हैं लेकिन वो आगे जब हम उनकी ग्रेडिंग करते हैं और वो पकते हैं, हमारी आम की जो भी पेटी होती हैं या जो भी हम बॉक्स रखते हैं, तो भैया उनमें आम खराब हो जाते हैं। और जो तोड़े गए आम हैं, उन फलों को लगभग 20 मिनट तक आप उल्टा करके, यानी कि डंठल वाला हिस्सा जो है उसको नीचे करके एक जालीदार टोकरी में या ट्रे में रखें। और जब तुड़ाई समाप्त हो जाए तो कुछ जरूरी सावधानी और भी हो जाती हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए। तो भैया किसान भाई इसमें भी लापरवाही बरतते हैं, तो ज़्यादा बड़ा ढेर हमें जो है आम का नहीं लगाना है, उसमें भी हमारे फल जो नीचे के दब का खराब हो सकते हैं। और जो जल्दी के कारण हमारे जो तोड़ने वाले भाई होते हैं, जो लेबर होती है, तो भैया वो अनावश्यक रूप से पेड़ के पत्तों को और टहनियों को, शाखाओं को तोड़ देते हैं। और कभी-कभी तो बड़ी शाखा पे चढ़कर जब वो आम के फल तोड़ते हैं, तो ज़्यादा वजन के कारण जब किसी पौधे पर ज़्यादा फल होते हैं, तो भैया उसमें भारी, जिसे गुद्दा कहते हैं या बड़ा शाखा कहते हैं, तो भैया वो भी टूट सकती है और बहुत नुकसान होता है। क्योंकि आम का जो है बाग बड़ी मुश्किल से पलता है और एक डाली बनने में लगभग लगभग कई साल बन जाते हैं, एक शाखा बनने में। और भैया तोड़ने के बाद आम की ग्रेडिंग आप अवश्य करें और दाग धब्बे और छोटे फलों को अलग कर दें, जिन पे धाप दाब धब्बे लगे हों और छोटे फल हों, और बड़े और औसत आकार के फल आपके हैं उनको अलग करके छांट लें। और पैकिंग करते समय ये ध्यान रखें कि साफ कागज का प्रयोग आप कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, है ना पते की बात। और भाई देखिए, अब चर्चा को यहीं पर थोड़ा सा विराम देते हैं और आपको सुनवा देते हैं कुछ जरूरी संदेश।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
3: आकाशवाणी नजीबाबाद से प्रत्येक मंगलवार को
4: शाम 6:05 पर कृषि जगत कार्यक्रम में सुनिए
3: गुणवत्ता युक्त बासमती धान उत्पादन हेतु
4: बासमती निर्यात विकास प्रतिष्ठान मोदीपुरम मेरठ द्वारा
3: साप्ताहिक प्रायोजित कार्यक्रम

0: कम लागत समृद्ध किसान, यही आज का है अभियान।
1: पोषक तत्व बचाएं, मिट्टी को स्वस्थ बनाएं।
0: यूरिया और डीएपी का संतुलित उपयोग,
1: खुशहाली का नया प्रयोग।
2: किसान भाई अंधाधुंध उर्वरकों के प्रयोग से बचें और खेती की लागत कम करके प्राकृतिक संसाधनों को बचाएं। भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान मोतीपुरम मेरठ और आकाशवाणी नजीबाबाद द्वारा जनहित में जारी।
3: तो किसान भाइयों ने सुने जरूरी संदेश, और संदेश के बाद कार्यक्रम में भैया आपका फिर से स्वागत है। और मैं हूं आज आपके साथ आपका भाई नरेश पाल सिंह। तो भैया कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए बात कर लेते हैं आज के कार्यक्रम की जानकारी के लिए, क्योंकि भाई हम प्रत्येक कार्यक्रम में आपके लिए कोई ना कोई जानकारी लेकर उपस्थित होते हैं। तो भाई ज़्यादा देर ना करते हुए आइए चलते हैं आज की जानकारी की ओर। और भैया आपने सुना होगा कि आयुष्मान भारत योजना जो भारत सरकार के द्वारा चलाई गई है, तो भाई वो योजना क्या है और कौन लोग उसमें पात्र हैं, उसका फ़ायदा कैसे लिया जा सकता है, तो इसकी और अधिक जानकारी के लिए आइए चलते हैं आज की भेंटवार्ता के विषय पर, जिसमें विषय है आयुष्मान भारत योजना। और इस विषय की जानकारी हमें दे रही हैं डॉक्टर निर्मल, जो कि CHO यानी कि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी हैं नांगल सोती जिला बिजनौर में। तो भैया आइए कर लेते हैं इनसे बातचीत। श्रोताओं आज हम आ पहुंचे हैं आयुष्मान आरोग्य मंदिर नांगल सोती जिला बिजनौर में, और वहां पर हम मिलते हैं वहां की प्रभारी डॉक्टर से, जिनको बोलते हैं सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी। तो मैं आपसे आपका नाम जानना चाहूंगा।
4: जी मेरा नाम निर्मल है और मैं यहाँ आयुष्मान आरोग्य मंदिर नांगल सोती पे कार्यरत हूँ।
3: जी मैम आपसे मैं जानना चाहूंगा
4: जी
3: कि ये आयुष्मान भारत योजना क्या है।
4: जी ये देखो आयुष्मान भारत योजना है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना।
3: जी
4: इसमें हमारे मतलब जो लोग पात्र होते हैं उनके आयुष्मान कार्ड बनाए जाते हैं, जिनसे उन्हें 5 लाख तक का इलाज फ्री मिलता है।
3: अच्छा 5 लाख तक का इलाज फ्री मिलता है। तो 5 लाख रुपए का इलाज जो फ्री मिलता है
4: जी,
3: ये कितनी अवधि के लिए होता है?
4: नहीं देखो ये तो अभी जैसे आपका कार्ड बनेगा
3: जी
4: है ना, तो वो आपके कहीं भी प्राइवेट हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कहीं भी वर्क करेगा वो
3: जी,
4: ठीक
3: जी।
4: है उसके बाद उसका रिन्यूअल होगा 5 साल बाद।
3: अच्छा ये 5 साल के लिए होता
4: है? जी जी जी।
3: अच्छा
4: वैसे तो लाइफ टाइम है ये
3: जी,
4: कभी भी आप उसे अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं।
3: जी जी जी। तो इस योजना में कौन व्यक्ति पात्र होते हैं?
4: इस योजना में हमारे जो हमारी 2011 में जनगणना हुई थी
3: जी,
4: तो उसमें जनगणना के दौरान मतलब कुछ चीजें ऐसी होती है जिनके अकॉर्डिंग उसमें एक लिस्ट तैयार की जाती है
3: जी,
4: जिनमें जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र हैं उनमें जो बेघर परिवार हैं, आदिवासी हैं और दिहाड़ी मजदूर हैं, कच्ची छतर या दीवारों वाले मकान में रहने वाले लोग हैं उनको शामिल किया गया था
3: जी, जी।
4: और जो हमारे शहरी क्षेत्र में हैं उनमें सड़क विक्रेता, मोची, कचरा बीनने वाले, घरेलू कामगार और झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग आते हैं
3: जी जी।
4: हाँ जी
3: तो कहने का मतलब है इसमें कुछ आय हाँ। प्रमाण पत्र में कुछ बाउंडेशन वगैरह है?
4: हाँ जी जी बिल्कुल है
3: जी। तो कितनी आय वाले का ये बन सकता है? जो
4: आय का जो बिल्कुल मिनिमम आय होगी जिन लोगों की उनके लिए है ये।
3: अच्छा अच्छा।
4: और बाकी अभी 2021 में हमारा ये आया है कि जिन लोगों के राशन कार्ड बने हुए हैं उन लोग, और उसमें मतलब 6 यूनिट हैं, 6 नाम है उनके राशन कार्ड में, तो उन लोगों के भी आयुष्मान कार्ड बन रहे हैं।
3: अच्छा जो राशन कार्ड में 6 सदस्य हैं?
4: हाँ जी 6 सदस्य होंगे तो उनका आयुष्मान कार्ड बनेगा।
3: और 6 से कम होंगे?
4: 6 से कम होने वाले पर नहीं बनेगा, अगर 2011 की लिस्ट में उनका नाम होगा तो ही उनका बन पाएगा।
3: अच्छा, अच्छा।
4: हाँ जी। फिर इसमें हमारे एक आता है सीनियर सिटीजन का
3: जी।
4: सीनियर सिटीजन का आता है जिन लोगों की उम्र 70 साल हो चुकी है
3: जी,
4: तो वो भी अपना आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं।
3: अच्छा ये तो अभी हाल फिलहाल में ही लागू हुआ है।
4: हाँ
3: 2 साल
4: जी,
3: पहले
4: जी, हाँ जी।
3: जो
4: उसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, जमीन का, आय का, किसी भी प्रकार का कुछ?
3: अच्छा कोई बाउंडेशन नहीं है?
4: हाँ जी वो कोई भी बनवा सकता है जिनकी उम्र 70 साल है
3: जी। तो ये जो वरिष्ठ नागरिक हैं
4: हाँ
3: उनके लिए फ्री है?
4: फ्री फ्री है,
5: चाहे वो किसी भी
4: किसी भी अपने आयुष्मान आरोग्य मंदिर पर, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, CSC PSC या फिर किसी भी जनसेवा केंद्र पर जाकर अपना कार्ड बनवा सकते हैं। हमारे एक पोर्टल है आयुष्मान भारत का, तो आप उससे वेबसाइट पर जाकर बेनिफिशियरी सेलेक्ट करके उससे खुद से भी अपना कार्ड बना सकते हैं, या अपने फैमिली मेंबर में, आस पड़ोसी किसी का भी बना सकते हैं।
5: जी जी जी। अच्छा, जो प्राइवेट अस्पताल होते हैं,
4: हाँ जी,
5: तो वो सभी में वो आयुष्मान आरोग्य ये योजना लागू होती है या कुछ ही होते हैं?
4: नहीं, सभी में तो नहीं है, कुछ सिलेक्टेड हॉस्पिटल हैं जो ये सेवा प्रदान कर रहे हैं, जिनमें हमारा ये आयुष्मान कार्ड चलता है।
5: जी, तो यदि हम अपना कार्ड बनाने लगे, या जो पात्र व्यक्ति है, जैसे आपने बताया है कि जिनकी निम्न आय है, तो निम्न आय वर्ग के लोग यदि वो चाहें, तो इसकी क्या प्रक्रिया है, किस प्रकार से बनाया जाता है, और गोल्डन कार्ड किसे कहते हैं?
4: गोल्डन कार्ड भी आयुष्मान कार्ड को ही बोलते हैं, और जो भी हमारी आशा वर्कर हैं, हमें लिस्ट प्रोवाइड की गई है ब्लॉक से, तो जो भी लिस्ट में जो भी पात्र व्यक्ति हैं, वो आशाएं घर घर जाके उन लोगों को इन्फॉर्म कर रही हैं कि लिस्ट में आपका नाम है, तो वो लोग अपना आधार कार्ड और राशन कार्ड लेकर हमारे पास आते हैं, या फिर जनसेवा केंद्र पर भी जा सकते हैं और अपना कार्ड बनवा सकते हैं।
5: अच्छा, तो जैसे हमारा आम नागरिक है, आम नागरिक को इस योजना से क्या लाभ हुआ है, या कुछ इस तरह से आप हमारे श्रोताओं को बताएं?
4: लाभ का ये है, कोई भी आपके साथ कोई इंसिडेंस हो जाए, कोई दुर्घटना हो जाए, अब सब लोग एफर्ट नहीं कर पाते हैं, इकोनॉमिकल सबकी कंडीशन अच्छी नहीं होती है, तो उससे हमें ये है बेनिफिट होगा कि सरकार हमें 5 लाख तक का मुफ्त इलाज प्रोवाइड कराएगी गोल्डन कार्ड से।
5: अच्छा, जैसे आपने कहा कि एक जो राशन कार्ड है, एक परिवार है, उसमें 6 सदस्य होने अनिवार्य होता है, तो ये 5 लाख रुपया एक व्यक्ति के लिए होता है, या पूरे परिवार के, या एक गोल्डन कार्ड के लिए होता है
4: ये इलाज? वैसे जो है परिवार के जो अगर सभी सदस्यों का बना हुआ है तो ठीक है, लेकिन जिसका कार्ड है वो इलाज उसी का ही होगा।
5: अच्छा,
4: हाँ, जिस सदस्य का कार्ड बना हुआ है।
5: जी
4: जी।
5: अच्छा, तो डॉक्टर निर्मल जी, मैं ये क्लियर आपसे करना चाहता हूँ हमारे श्रोताओं के लिए, कि जो आयुष्मान कार्ड बनेगा वो जिस व्यक्ति के नाम होगा उसी का इलाज फ्री होगा।
4: हाँ जी, जिस व्यक्ति का आयुष्मान कार्ड बना हुआ है तो उसी से, सिर्फ उसी व्यक्ति का इलाज फ्री होगा
5: जी,
4: अदरवाइज किसी और फैमिली मेंबर का उससे नहीं हो सकता।
5: जी जी जी, बस इसके लिए केवल ये अनिवार्यता है कि जो नए कार्ड बनेंगे, तो जिनका नाम राशन कार्ड में होगा और 6 सदस्य होंगे, तो उन्हीं का आयुष्मान कार्ड या गोल्डन कार्ड बनेगा।
4: जी, जी।
5: तो आयुष्मान कार्ड संबंधित मैडम कुछ और बातें हमारे श्रोताओं के लिए आप बता सकती हैं?
4: बस ये, जिन लोगों का भी नाम लिस्ट में है, या जो भी जिनके भी राशन कार्ड में 6 यूनिट है, तो वो अपना जल्दी से जल्दी आयुष्मान कार्ड बनवा ले, अपने जनसेवा केंद्र पे जाके, आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाके, जहां से भी उन्हें पता लगता है, तो अपना कार्ड अवश्य बनवा ले।
5: अच्छा, इसके लिए कोई फीस वगैरह चाहिए?
4: ये निःशुल्क है, कोई फीस नहीं है इसके लिए।
5: अच्छा, इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की या क्या क्या चीज की आवश्यकता होती है?
4: डॉक्यूमेंट तो बस हमारा आधार कार्ड चाहिए या फिर राशन कार्ड चाहिए।
5: अच्छा, इसके अलावा नहीं?
4: इसके अलावा और किसी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं है,
5: केवल आधार कार्ड चाहिए।
4: बस आप ये करा सकते हो, अपना आधार कार्ड फोन नंबर से जरूर लिंक करा ले।
5: अच्छा अच्छा,
4: हाँ जी,
5: यानी कि हमारा आधार कार्ड सीडेड होना चाहिए
4: जी।
5: हाँ, हमारे जो फोन नंबर से
4: जी जी।
5: तो ये काम तो शायद बैंक में होता है?
4: बैंक में या फिर पोस्ट ऑफिस से करा सकते हैं।
5: अच्छा, पोस्ट ऑफिस से हो सकता है, CSC से नहीं हो सकता?
4: CSC से नहीं हो सकता,
5: जनसेवा केंद्र,
4: जनसेवा केंद्र से हो सकता है।
5: अच्छा, जनसेवा केंद्र से हो सकता है। डॉक्टर निर्मल जी, हमारे श्रोताओं को कोई विशेष जानकारी आप आयुष्मान कार्ड से संबंधित देना चाहें तो जरा बताएं।
4: हाँ जी, मैं श्रोताओं को एक विशेष जानकारी देना चाहती हूँ। जो हमारा आयुष्मान कार्ड है, वैसे ही लाइफ टाइम चलता है, इसकी कोई ऐसे एक्सपायरी नहीं है
5: जी।
4: मगर अगर किसी वजह से आप भारत सरकार की लिस्ट में नहीं रहते हैं, मान लो जैसे आपका राशन कार्ड में 6 नाम है और आप आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए पात्र है, मतलब आप का कार्ड बन रहा है, बाय चांस आप उस सरकार की योजना में से हटाए जाते हैं, तो आपका कार्ड फिर काम नहीं करेगा।
5: अच्छा, ऑटोमेटिक
4: वो आपको उस मतलब स्कीम में से हटा देंगे।
5: अच्छा, अच्छा।
4: तो वो कार्ड आपका काम करना बंद कर देगा।
5: तो ऑटोमेटिक पोर्टल पे या जो नेट है उससे स्वतः ही वो प्रक्रिया बंद हो जाएगी।
4: हाँ जी, जब तक आप भारत सरकार की योजना के अंतर्गत हैं तब तक ही आपका कार्ड काम करेगा, उसके बाद वो आपका कार्ड काम नहीं करेगा।
5: जी जी जी। डॉक्टर निर्मल जी, आपने आयुष्मान आरोग्य मंदिर के बारे में हमें बताया और ये आयुष्मान योजना क्या है इसके बारे में बताया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
4: धन्यवाद।
3: आयुष्मान भारत योजना, अभी आपने डॉक्टर निर्मल से हमारी बातचीत सुनी और भैया बातचीत में आपने जाना कि भाई किस प्रकार से आयुष्मान भारत योजना का लाभ लिया जा सकता है और भाई चाहे किसी भी वर्ग के आदमी हो या कोई भी मनुष्य हो जो 70 वर्ष की आयु से ऊपर होता है तो वो इस योजना का लाभ निशुल्क ले सकता है। और भाई जो डॉक्टर साहब से आपने बात सुनी कि जो 6 सदस्य जिनका राशन कार्ड में नाम होता है, जो राशन कार्ड में 6 सदस्य होते हैं उनका ये कार्ड बनाया जा सकता है और इसका लाभ लिया जा सकता है, तो भाई देखिए लाभ एक और चीज़ से भी होता है जिसका नाम है मनोरंजन। तो भैया आइए चलते हैं गीत संगीत की ओर और सुनते हैं ये प्यारी सी रागनी जिसे स्वर दिया है सेठपाल सिंह आर्य ने।

नशा, दहेज, निरक्षरता, बढ़ती जनसंख्या भारी, और इन चारों से बच के रहना, ये बहुत बुरी बीमारी। तो भाइयों ने सेठपाल आर्य की आवाज में ये उपदेश परक रागिनी सुनी। और भैया उपदेश इसमें बहुत ही अच्छा दिया गया है कि नशा किस प्रकार से नुकसानदायक है, दहेज किस प्रकार से दिक्कत देता है, और निरक्षरता एक तरह से पाप होता है, और बढ़ती जनसंख्या भाई इस महंगाई के दौर में जो है, यदि हम सीमित परिवार रखें तो वही अच्छा। खैर चलिए, आपने मनोरंजन का आनंद लिया, और अब फिर से बात करते हैं थोड़ी खेती किसानी की। तो भाई हमारे किसान भाई इस समय जो है अपनी फसलों में सिंचाई कर रहे हैं, क्योंकि भाई आने वाले जो 5-6 दिन हैं उनमें वर्षा की कोई उम्मीद नहीं है। जो हमें ये जानकारी मिली है वो मिली है सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय मेरठ से, और इसके अनुसार जो है भाई अभी खुश्की बनी रहेगी, यानी कि हमारे किसान भाई अपनी फसलों का ध्यान रखें और भैया अपना भी ध्यान रखें, क्योंकि हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि भैया पछुआ जो हवा चलती है ना इसमें खुश्की होती है, और इसमें फसल तो फसल भैया आदमी सूख जाते हैं, यानी कि अपने आप के अंदर आप जल बनाए रखें, यानी कि अपने आप को हाइड्रेट रखें। और किसान भाई इस बात का ध्यान रखें कि भाई ज़्यादा गर्मी में भी काम ना करें, सुबह और शाम काम करें, और अपने काम को सही अंजाम दें, और भैया अपने साथ साथ अपने पशुओं का ध्यान रखें, उन्हें भी ज़्यादा गर्मी नहीं लगे, और भैया पशुओं को हो सके तो कम से कम 2 बार आप अवश्य नहलाएं, क्योंकि भैया ज़्यादा गर्मी से निजात तभी मिलती है जब हमारे पशु का शरीर ठंडा हो जाता है। इसी प्रकार से ये बात हमारे ऊपर भी लागू होती है, जब तक हम गर्मी में होते हैं और उसके बाद जब तक हम ठंडे पानी से नहाते नहीं हैं तब तक गर्मी दूर नहीं होती, चाहे आप कितनी ही छांव में बैठ जाओ। तो भैया इसी प्रकार पशुओं की बात है, तो अपने पशुओं को पौष्टिक चारा दें, दाना दें, और भैया उन्हें साफ सफाई से रखें, और उन्हें जो है मौसम के हिसाब से भी सहूलियत दें। खैर चलिए, ये बात तो होती रहेंगी, और अब हम आपको एक बात का ध्यान और दिला रहे हैं कि भैया इन दिनों हमारे किसान भाई आने वाले समय में जो बाग लगाने वाले भाई होते हैं, तो उन्होंने जो गर्मियों में थाले खोदे थे अब से लगभग 1 महीना पहले, तो भैया उसकी मिट्टी में थोड़ा सा आप उलट पुलट कर दीजिए, और उसमें आप गोबर की खाद और थोड़ा सा जो कवकनाशी और कीटनाशी है भैया उसको भी मिलाकर डाल के, और एक बार उसमें खुदाई कर दें, यानी कि मिट्टी को अलट पलट दें, तो बहुत बेहतर आगे चलकर हमारे जो फल वृक्ष हैं, जो नवरोपित बाग हैं, तो भैया उनसे जो है अच्छी बढ़वार उनकी होगी और उन्हें रोग और कीट भी ज़्यादा नहीं सताएंगे। तो किसान भाई इसका ध्यान रखें, और भैया सिंचाई करते समय यह ध्यान रखें कि भाई जल जरूर बचाएं, क्योंकि जल उपयोग क्षमता जब तक हमारी नहीं बढ़ेगी तब तक हमारी लागत भी कम नहीं होगी, यानी कि लागत कम करने का ये भी एक तरीका है कि हमारे किसान भाई कम जल से अधिक क्षेत्रफल की सिंचाई करें। और भैया सिंचाई बरसात से पहले पहले इन्हीं दिनों ज़्यादा होती है, तो भैया जल का सीमित मात्रा में ऐसा उपयोग करें कि उससे अधिक से अधिक क्षेत्रफल की हम सिंचाई कर दें। तो भैया इस प्रकार से हमारे किसान भाई जो है लाभ कमा सकते हैं, और भैया लाभ एक और सी चीज़ से होता है जिसका नाम है मनोरंजन। जी हाँ, आइए चलते हैं फिर से गीत संगीत की ओर, और सुनते हैं समूह स्वर में ये लोकगीत।

काला री बलम मुरा काला। भाइयों ने अभी ये लोकगीत सुना समूह स्वर में, और भैया लोकगीत और हमारा कृषि जगत कार्यक्रम आपको कैसा लगा ये आप हमें बताएंगे अपने पत्रों के माध्यम से। और भैया पत्र डालने का हमारा पता वही है, कार्यक्रम कृषि जगत द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी नजीबाबाद, पिन 246763। और भैया आप हमें यदि व्हाट्सएप संदेश भेजना चाहें तो व्हाट्सएप संदेश के लिए हमारा नंबर वही है 94 57 07 82 88। और भैया अब ज़्यादातर हमारे

श्रोता हमें जो है व्हाट्सएप संदेश भेजते हैं, और व्हाट्सएप संदेश के लिए आपने हमारा नंबर नोट कर रखा है, क्योंकि हमारे श्रोताओं की जिस फोन इन कार्यक्रम में कॉल आती है ये वही नंबर है, तो इस पर आप हमें अपनी प्रतिक्रिया पहुंचा सकते हैं। और भैया, प्रतिक्रिया पहुंचाने में आप ज़्यादा कंजूसी ना करें, क्योंकि आपके संदेशों के माध्यम से आपकी जो आलोचनात्मक यदि कोई शैली हो तो आप वो भी लिख सकते हैं, या हमारे कार्यक्रम की समीक्षा के रूप में आप कोई संदेश हमें भेज सकते हैं। तो आप जो है हमें 94-57-08-88 पर अपने संदेश भेज सकते हैं। और भैया, अब समय आपसे ज़्यादा बातें करने की अनुमति नहीं देता, तो आज का कार्यक्रम हम यहीं से समेटते हैं, और अपने भाई नरेश पाल सिंह को अगले कार्यक्रम तक किसान भाई अनुमति दें। राम राम।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत। ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। शाम के 6:45 हुए हैं। अब सुनिए कार्यक्रम विविधा। इसके अंतर्गत आज हम आपको सुनवा रहे हैं देवकी नंदन शर्मा की वार्ता, हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष।
1: खींचो न कमानों को न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। मशहूर शायर अकबर इलाहाबादी का यह शेर पत्रकारिता के इतिहास का मुकम्मल स्रोत है। हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष वार्ता का संदर्भ आते ही मानस पटल पर यह शेर अंकित कर देता है कि पत्रकार के लिए शब्द और सत्य ही सबसे बड़े हथियार हैं। हिंदी पत्रकारिता का आविर्भाव उस दौर में हुआ था जब उसके पास न पूंजी थी, न विज्ञापन थे और न तकनीकी संसाधन थे। उसके पास केवल सत्य बताने का विश्वास और सामाजिक दायित्व निर्वहन करने की आकांक्षा थी। इसी विश्वास और आकांक्षा को समूर्त करते हुए कलकत्ता से 30 मई 1826 को प्रकाशित उदंत मारतंड को हिंदी का प्रथम पत्र होने का गौरव प्राप्त हुआ। इसके प्रकाशक, संपादक और स्वामी पंडित जुगल किशोर शुक्ल थे। इसके 79 अंक ही निकल सके। 1827 में इसका प्रकाशन बंद हो गया, लेकिन उदंत मारतंड ने हिंदी पत्रकारिता की सुदृढ़ नींव रखी। इसी पर आगे बढ़ते हुए हिंदी पत्रकारिता ने 200 वर्षों की संघर्षपूर्ण और गौरवशाली यात्रा को पूर्ण किया। हिंदी पत्रकारिता की कथा हिंदी भाषा के विकास और राष्ट्रीयता के प्रसार की गाथा है। भले ही उदंत मारतंड ने हिंदी पत्रकारिता ने जातीयता चेतना जागृत करने में बड़ी भूमिका निभाई है, मगर इसी समय कलकत्ता के ही पंडित अंबिका प्रसाद वाजपेयी के संपादन में भारत मित्र समाचार पत्र निकला। इस दौर में लोग पत्रों को पढ़ नहीं पाते थे, तब संपादकों को ही अपने पत्र ग्राहकों को पढ़कर सुनाते होते थे। अंबिका प्रसाद वाजपेयी ने अपने संपादकीय में लिखा है, समाचार पत्र प्रजा का प्रतिनिधित्व स्वरूप होता है, मुख्य तौर पर हृदय में संस्कार उत्पन्न करने में समाचार पत्र जितना समर्थ है दूसरी कोई और विधा नहीं है। वस्तुतः इससे साम्राज्यवाद को चुनौती मिलती है। एक और समाचार पत्र सुधा वर्षण का संपादकीय 19वीं शताब्दी और सभ्यता द्रष्टव्य है। क्या इसी को सभ्यता, राजनीति, धर्मनीति और दयावृत्ति कहते हैं? जो लोग अपनी सभ्यता, राजनीति और दयावृत्ति के आगे प्राचीनों को असभ्य, मूर्ख, धर्म ज्ञान शून्य और नृशंस कहते हैं, उन्हीं लोगों का मैं ये काम है। उस कालखंड तक राष्ट्रीयता को स्पष्ट बताने, विदेशी बहिष्कार करने के लिए प्रेरित करने और स्वदेशी आंदोलन को सही दिशा देने वाले अनेक महान पुरुषों का आविर्भाव हो चुका था। हिंदी उन दिनों तक नया स्वरूप ले रही थी। हिंदी साहित्य का नेतृत्व उन दिनों पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी के हाथ में था, तो कलकत्ते ने हिंदी पत्रों की सबसे ओजस्वी स्वर बाबूलाल मुकुंद गुप्त का था। भारत रत्न नृसिंह और मारवाड़ी बंधु हिंदी पत्रकारिता को नव्य स्वरूप दे रहे थे। इसी समय हिंदी पत्रकारिता को बाबूराव विष्णुराव परांकर, दुर्गा प्रसाद मिश्र, अंबिका प्रसाद वाजपेयी, लक्ष्मी नारायण गर्दे जैसे प्रतिष्ठित लोगों का नेतृत्व प्राप्त था। 1907 में देवनागर पत्र का प्रकाशन हुआ, जिसके संपादक न्यायाधीश शारदा चरण मित्र थे। इस पत्र का उद्देश्य भारतीय भाषाओं के लिए एक लिपि देवनागरी को अपनाने पर जोर दिया गया था। इसी दौर में कलकत्ते से ही मतवाला पत्र निकला, जिसके संपादक मंडल में आचार्य शिव पूजन सहाय और महाप्राण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला शामिल थे। तब प्रसिद्ध भाषाविद सुनीति कुमार चटर्जी हिंदी को लेकर अपने पूर्व ग्रह से मुक्त होकर काम करते वाले थे। यही मूलचंद अग्रवाल, झावरबल शर्मा, पंडित नंदलाल अटल ने भी हिंदी पत्रकारिता को विकास उन्मुख बनाने में स्मरणीय भूमिका निभाई। सुस्पष्ट है हिंदी पत्रकारिता का अतीत अत्यंत संघर्षपूर्ण रहा। राजा राम मोहन राय से लेकर राम मनोहर लोहिया तक, महात्मा गांधी, गणेश शंकर विद्यार्थी, लोकमान्य तिलक, प्रभृत भारतीय राष्ट्रवाद के उस दौर के सभी बड़े नेता पत्रकार भी रहे हैं। उन्होंने हिंदी साहित्य और पत्रकारिता के प्रसार में स्मरणीय योगदान दिया है। हीलाचंद्र जोशी, भगवती चरण वर्मा, बनारसी दास चतुर्वेदी आदि ने भी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है। मुंशी प्रेमचंद ने कहा था कि साहित्य राजनीति के आगे चलने वाली मशाल है। यही बात पत्रकारिता पर भी लागू होती है। स्वतंत्रता आंदोलन में हिंदी पत्रकारिता केवल समाचार नहीं छाप रही थी, अपितु वह स्वतंत्रता का सपना गढ़ रही थी। ब्रिटिश शासन के दमन, सेंसरशिप और मुकदमों के बीच पत्रकारों ने अपने प्रेस जब्त करवा दिए, आर्थिक संकट झेले, किंतु सच बोलने का साहस नहीं छोड़ा। 1927 में भरतपुर के संपादक सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए माखनलाल चतुर्वेदी ने पत्रकारिता के प्रशिक्षण की आवश्यकता पर बल दिया था। हिंदी पत्रकारिता का जिसे स्वर्णकाल माना जाता है, वह स्वाधीनता संग्राम के काल की पत्रकारिता है। स्वतंत्रता के बाद की पत्रकारिता कैसी होगी, इसकी भविष्यवाणी 1925 में ही बाबू विष्णुराव पारंकर ने कर दी थी। वृंदावन में एक सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा था, पत्र निकालकर सफलतापूर्वक चलाना बड़े बड़े धनियों अथवा सुसंगठित कंपनियों के लिए ही संभव होगा। पत्र सर्वांग सुंदर होंगे, आकार बड़े होंगे, छपाई अच्छी होगी, मनोहर, मनोरंजक और ज्ञानवर्धक चित्रों से सुसज्जित होंगे, लेखों में विविधता होगी, कलात्मकता होगी, गंभीर गवेषणात्मकता की झलक होगी, ग्राहकों की संख्या लाखों में गिनी जाएगी, यह सब कुछ होगा, पर पत्र प्राणहीन होंगे। पत्रों की नीति देशभक्त, धर्मभक्त अथवा मानवता के उपासक महाप्राण संपादकों की नीति न होगी। इन गुणों से संपन्न लेखक विकृत मानसिकता के समझे जाएंगे, संपादक की कुर्सी तक उनकी पहुंच भी न होगी। कहने की आवश्यकता नहीं है कि पराधीन भारत की पत्रकारिता स्वाधीनता आंदोलन के पत्रकारिता से पृथक थी। स्वतंत्रता के बाद की पत्रकारिता के समक्ष एक नया प्रश्न था कि अब संघर्ष किससे होगा। विदेशी शासन तो चला गया, लेकिन गरीबी अभी भी, भ्रष्टाचार, असमानता और सामाजिक अन्याय अभी भी मौजूद थे। हिंदी पत्रकारिता ने लोकतंत्र के प्रहरी के रूप में अपनी भूमिका निभाई। उसने संसद से लेकर गांव तक जनता की बात को उठाया, सरकारों से सवाल पूछे और समाज को दर्पण दिखाया। लेकिन 200 वर्षों की इस यात्रा में इस मोड़ पर आकर 1950 के बाद मिशन से व्यवसाय में बदलती चली गई हमारी यह पत्रकारिता। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कही जाने वाली हिंदी पत्रकारिता का आर्थिक पक्ष तो मजबूत हुआ, मगर सामाजिक और नैतिक सरोकारों को अपेक्षित आधार नहीं मिल सका। 20वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में कंप्यूटर, इंटरनेट और मोबाइल तकनीकी ने हिंदी पत्रकारिता के स्वरूप को बदल दिया है। तकनीकी क्रांति ने समाचार पत्रों के साथ वेब पोर्टल, ब्लॉग, पॉडकास्ट, यूट्यूब चैनल और सोशल मीडिया को भी हिंदी पत्रकारिता के महत्वपूर्ण माध्यम बना दिए हैं। डिजिटल युग में पत्रकारिता की विश्वसनीयता अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। फलतः हिंदी पत्रकारिता आज वैश्विक पटल पर अपनी पहचान बना चुकी है। हिंदी पत्रकारिता को आने वाले समय में कई नई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, AI के युग में मानवीय संवेदनशीलता को सुरक्षित रखना, व्यवसायिक हिंदी के साथ जनहित के मध्य संतुलन बनाए रखना और युवा पीढ़ी को गुणवत्तापूर्ण पत्रकारिता से जोड़ना वर्तमान हिंदी पत्रकारिता के लिए बड़ी भारी चुनौतियां हैं। अस्तु, हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष हमें केवल गौरव का अवसर ही नहीं देते, बल्कि एक उत्तरदायित्व भी सौंपते हैं। यह उत्तरदायित्व है, हम पत्रकारिता को लोकतंत्र की आत्मा, जन चेतना का मूल आधार समझें। यह यात्रा अनवरत है, आगे का इतिहास हमें लिखना है। हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्षों की पूर्णता का उत्सव यही होगा। हम अतीत के फलक पर शुभ्र आशाओं के सितारे सजाएं।
0: हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष, इस विषय पर अभी आपने सुनी देवकी नंदन शर्मा की ये वार्ता विविधा कार्यक्रम के अंतर्गत। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर। शाम के 6:55 हुए हैं। अब पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम छाया गीत। श्रोताओं, छाया गीत कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आइए इस कार्यक्रम का आगाज करते हैं मोहम्मद रफी की आवाज में इस प्यारे से नगमे के साथ। ये गीत लिखा है कैफी आजमी ने और संगीत दिया है मदन मोहन ने। फिल्म का नाम है हीर रांझा।

हीर रांझा, इस फिल्म से अभी आपने सुना मोहम्मद रफ़ी को। और श्रोताओं, छाया गीत कार्यक्रम में आइए अब हम आपको सुनवाते हैं एस एच बिहारी का लिखा गीत, ओपी नैयर के संगीत निर्देशन में, मोहम्मद रफ़ी की ही आवाज़ में। फिल्म का नाम है कश्मीर की कली।

कश्मीर की कली इस फिल्म से अभी आपने सुना मोहम्मद रफ़ी को, और आइए इस कार्यक्रम का आखिरी गीत हम आपको सुनवाते हैं फिल्म चोरी चोरी से। गीत लिखा है शैलेंद्र ने और संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने। आवाज़ें हैं लता मंगेशकर और मन्ना डे की।

चोरी चोरी, इस फिल्म से अभी आपने सुना लता मंगेशकर और मन्ना डे को। और श्रोताओं, इसी के साथ कार्यक्रम छाया गीत अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 7:10 हुए हैं। अब सुनिए देशगान।

अभी आप सुन रहे थे देशगान, एक भारत श्रेष्ठ भारत। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर। संध्या के 7:15 हुए हैं। अब सुनिए आज के शेष और कल के प्रमुख कार्यक्रमों के संबंध में संक्षिप्त जानकारी। पहले आज के शेष कार्यक्रमों के विषय में, श्रोताओं, आज रात 9:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम पब्लिक स्पीक। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। सुगम संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत आज शाम 7:32 पर हम आपको सुनवाएंगे अमिता अग्रवाल की आवाज में भजन। फिल्म संगीत का आनंद आप लेंगे आज रात 8:00 कार्यक्रम गीत संध्या में। 8:30 पर कार्यक्रम एक ही फिल्म से के अंतर्गत और रात 10:00 कार्यक्रम भूले बिसरे गीत में। रात 10:30 पर आप सुनेंगे पत्रों और व्हाट्सएप मैसेज पर आधारित फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम आपकी फरमाइश। श्रोताओं, ये थी जानकारी आज के शेष कार्यक्रमों के विषय में और आइए अब जान लेते हैं कल के प्रमुख कार्यक्रमों के विषय में। कल यानी 23 जून 2026 मंगलवार दिन में 9:15 पर कार्यक्रम जिले की हलचल और कल रात 10:00 राज्य स्तरीय प्रसारण खेल दर्पण। ये दोनों ही कार्यक्रम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से रिले किए जाएंगे। कल प्रातः 6:45 पर कार्यक्रम काव्यधारा में हम आपको सुनवाएंगे आदर्शनी श्रीवास्तव का काव्य पाठ। किसान भाइयों के लिए जानकारी गरीब की गाय बकरी, इस विषय पर सुनेंगे खेती की बातें कार्यक्रम के अंतर्गत प्रातः 7:10 पर। सूरज के साथ साथ कार्यक्रम के अंतर्गत प्रातः 7:31 पर कल जानकारी के विषय होंगे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस, संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस और साथ ही जानकारी देंगे तिथि विशेष पर। लोक संगीत के कार्यक्रम धरती गाती है के अंतर्गत कल दिन में 9:25 पर आप सुनेंगे नीलम अग्रवाल की आवाज में रोहिलखंडी लोकगीत। NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग हम आपको सुनाएंगे कल दिन में 11:30 पर। महिला जगत कार्यक्रम में कल दिन में 1:15 पर परिचर्चा आप सुनेंगे जिसका विषय होगा कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा। प्रतिभागी होंगी निशास असगर, आकांक्षा राजपूत और रुपेंद्र कौर। परिचर्चा का संचालन करेंगी सुनीता नेगी। श्रोताओं, इसी के साथ कार्यक्रम विवरण संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। शाम के 7:18 हुए हैं। थोड़ी ही देर बाद आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी लखनऊ से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: यार कोई ऐसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बताओ जिसमें कम प्रीमियम हो, बोनस भी अच्छा मिले और भरोसे वाला भी हो।
1: TLI है ना।
2: सरकारी कर्मचारी के साथ साथ सभी प्रोफेशनल, ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर्स ले सकते हैं PLI पॉलिसी का फायदा और साथ में पोस्टल डिपार्टमेंट का भरोसा भी। अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से आज ही संपर्क करें या लॉगिन करें indiapost.gov.in पर।
3: हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक।
4: बिल भरने के पहले तो आएगी ना।
5: सो गर्ल्स, क्या हो रहा है?
6: बिल हो रहा है।
5: चल अपना कार्ड दे। पिन दे।
7: RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करे। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
8: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। लखनऊ में बहुमंजिला इमारत में चल रहे एनिमेशन सेंटर में आग लगने से 14 छात्रों की मौत, 4 गंभीर रूप से घायल। घटना की उच्च स्तरीय जांच का दिया गया आदेश। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर जताया दुख। मुख्यमंत्री, पुलिस महानिदेशक और अपर मुख्य सचिव गृह ने घटनास्थल का किया निरीक्षण। मुख्यमंत्री ने फिरोजाबाद और अलीगढ़ में विकास परियोजनाओं का किया शुभारंभ। कहा, नवाचार का नया केंद्र बना है फिरोजाबाद का ग्लास उद्योग। और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह गाजियाबाद में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान के 92वें स्थापना दिवस समारोह में हुए शामिल। कहा, 2047 तक विकसित भारत बनाने में वस्त्र मंत्रालय निभाएगा बड़ा योगदान। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र, और अब समाचार विस्तार से। लखनऊ के अलीगंज इलाके में आज एक बहुमंजिला इमारत में चल रहे एनिमेशन सेंटर में आग लगने से 14 छात्रों की मृत्यु हो गई, जबकि 4 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए KGMU के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। मरने वाले छात्रों की उम्र 14 से 18 वर्ष के बीच है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। मौके पर पहुंचे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बताया कि आग इमारत के अंदर लगी और तेजी से फैल गई, जिससे छात्र अंदर फंस गए। आग पर काबू पाने के लिए दमकल विभाग की टीमें, पुलिसकर्मी और जिला प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और बचाव और राहत कार्य में जुट गए। श्री पाठक ने बताया कि घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए गए हैं। घटना के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
9: 14 बच्चे इस घटना में हताहत हुए हैं, कुल 4 बच्चे घायल हुए हैं, जिनको KGMC ट्रामा सेंटर भेजा गया है। घटना के उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दिए गए हैं। प्रमुख सचिव गृह महोदय और DGP महोदय मौके पर हैं। और प्राथमिकता भी है घायलों को अच्छे से अच्छा इलाज मिले, और घटना कैसे घटी, क्यों हुई, इसके जांच रिपोर्ट आने के बाद ही कह पाएंगे। पीड़ित परिवारों के साथ हमारी पूरी सरकार खड़ी है, हर स्थिति में हर संभव हम मदद करेंगे।
8: प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में हादसे पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि राहत और बचाव कार्य के लिए प्रशासन की ओर से हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि और घायलों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने घटनास्थल का निरीक्षण कर पूरे मामले पर पुलिस महानिदेशक और अपर मुख्य सचिव गृह को विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। साथ ही KGMU पहुंचकर मुख्यमंत्री ने घायलों का हाल जाना और समुचित इलाज के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, बसपा प्रमुख मायावती सहित कई नेताओं ने आग की घटना में जनहानि होने पर दुख व्यक्त किया है। मायावती ने इस तरह की घटनाओं पर रोकथाम के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने पर जोर दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज फिरोजाबाद में 658 करोड़ रुपए से अधिक की 81 और अलीगढ़ में 462 करोड़ रुपए की 85 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना, शहरी के लाभार्थियों को चाभी और विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र, चेक और उपकरण वितरित किए। मुख्यमंत्री ने फिरोजाबाद के उद्यमियों और श्रमिकों की सराहना करते हुए कहा कि फिरोजाबाद का ग्लास उद्योग नवाचार का एक नया केंद्र बना है, इसने चीन को भी पछाड़ दिया है।
1: सनातन धर्म के अंदर बात होती है, हर सनातन धर्मावलंबी फिरोजाबाद की चूड़ियों की ओर देखता है और सुहाग की इस नगरी को आज यहाँ का कारीगर, यहाँ का उद्यमी एक नई ऊंचाई दे रहा है। मैं उन्हें आश्वस्त करता हूँ, ये डबल इंजन की सरकार उनके साथ मिलकर के कार्य करेगी, उन्हें हर प्रकार से प्रोत्साहन उपलब्ध करवाएगी।
8: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नागरिक अलंकरण वर्ष 2026 के दूसरे समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। कल के समारोह में 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और उत्तर प्रदेश की 4 हस्तियों समेत 56 हस्तियों को पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। पेश है एक रिपोर्ट।
6: उत्तर प्रदेश की जिन हस्तियों को कल पद्मश्री मिलेगा उनमें कला के क्षेत्र में अनिल कुमार रस्तोगी और चिरंजी लाल यादव, शिक्षा के क्षेत्र में मंगला कपूर के नाम शामिल हैं, जबकि कृषि के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए मुरादाबाद के रहने वाले रघुपत सिंह को मरणोपरांत ये सम्मान दिया जाएगा। इससे पहले पिछले महीने 25 मई को श्रीमती मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित पहले नागरिक अलंकरण समारोह में 66 प्रतिष्ठित व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार प्रदान किए थे। इस वर्ष राष्ट्रपति ने 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कारों सहित कुल 131 पद्म पुरस्कारों को स्वीकृति दी है। आकाशवाणी समाचार कक्ष से दीपाली सिंह।
8: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए प्रधानमंत्री के विजन को पूरा करने में वस्त्र मंत्रालय बड़ा योगदान निभाएगा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने आज गाजियाबाद स्थित राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान निट्रा के 52वें स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में संस्थान की उपलब्धियों पर विस्तार से प्रकाश डाला। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री पवित्र मार्गरेट भी उपस्थित थीं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि आज भारत प्रत्येक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के साथ ही अन्य देशों की जरूरतों को पूरा कर रहा है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार अनुसंधान पर जोर देने के साथ ही स्टार्टअप को भी प्रोत्साहन दे रही है, जिसमें निट्रा महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
10: 2.5 लाख स्टार्टअप हो गए हर सेक्टर में, कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जिसमें स्टार्टअप नहीं। कभी पंजाब का प्रणाली लोगों के लिए एक समस्या थी, चाहे सीबीजी प्लांट लगे चाहे निट्रा उसे फाइबर में परिवर्तित कर दे पराली।
8: पीलीभीत के सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र प्रसाद के अनुरोध पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कासगंज लखनऊ एक्सप्रेसवे ट्रेन को मंजूरी दे दी है। मंत्री जितेंद्र प्रसाद ने कहा कि इस नई ट्रेन के चल जाने से पीलीभीत के साथ ही लखीमपुर खीरी, सीतापुर सहित संपूर्ण तराई क्षेत्र की वर्षों पुरानी मांग पूरी हो गई है। उन्होंने कहा कि ये ट्रेन बदायूं, बरेली, इज्जतनगर, पीलीभीत, पूरनपुर, मैलानी, गोला गोकर्णनाथ, लखीमपुर, सीतापुर, सिधौली, मोहिबुल्लापुर होते हुए पीलीभीत को राजधानी लखनऊ से जोड़ेगी। श्री प्रसाद ने प्रधानमंत्री और रेल मंत्री का आभार जताते हुए कहा कि इस ट्रेन के संचालन से यहां का कार्य, व्यापार और पर्यटन भी बढ़ेगा। रेलवे गोंडा से गोंडा कचहरी के बीच 5 किलोमीटर लंबी तीसरी रेल लाइन को कमीशन करने के लिए अगले माह प्री इंटरलॉकिंग और नॉन इंटरलॉकिंग की प्रक्रिया पूरी करेगा। इस कारण गोंडा रूट होकर चलने वाली कई ट्रेनों को 7 से 11 जुलाई तक निरस्त किया जाएगा। वहीं कई ट्रेनों के रूट बदलेंगे। 6, 7 और 10 जुलाई को छपरा मथुरा एक्सप्रेस लखनऊ नहीं आएगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा आज से शुरू हुई। ये राष्ट्रीय स्तर की पात्रता परीक्षा कंप्यूटर आधारित टेस्ट सीबीटी माध्यम से 30 जून तक प्रतिदिन 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। यूजीसी नेट परीक्षा उन अभ्यर्थियों के लिए आयोजित की जाती है जो जूनियर रिसर्च फेलोशिप, जीआरएफ, सहायक प्रोफेसर के पदों और पीएचडी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पात्रता प्राप्त करना चाहते हैं। कुख्यात अपराधी ललन सिंह को कल रात सहारनपुर में उत्तर प्रदेश विशेष कार्यबल एसटीएफ ने मुठभेड़ में मार गिराया। उस पर 1,25,000 रुपए का इनाम था। उसके एक फरार साथी की तलाश में पुलिस की कई टीमें संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही हैं। प्रदेश में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। वहीं गोरखपुर, महाराजगंज और कुशीनगर समेत पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में गरज चमक के साथ हुई हल्की बारिश से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में देवरिया, गोरखपुर, संत कबीरनगर, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर और बलरामपुर समेत कई जिलों में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना व्यक्त की है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लखनऊ में बहुमंजिला इमारत में चल रहे एनिमेशन सेंटर में आग लगने से 14 छात्रों की मौत, 4 गंभीर रूप से घायल। घटना की उच्च स्तरीय जांच का दिया गया आदेश। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर जताया दुख। मुख्यमंत्री, पुलिस महानिदेशक और अपर मुख्य सचिव गृह ने घटना स्थल का किया निरीक्षण। मुख्यमंत्री ने फिरोजाबाद और अलीगढ़ में विकास परियोजनाओं का किया शुभारंभ। कहा, नवाचार का नया केंद्र बना है फिरोजाबाद का ग्लास उद्योग। और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह गाजियाबाद में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान के 52वें स्थापना दिवस समारोह में हुए शामिल। कहा, 2047 तक विकसित भारत बनाने में वस्त्र मंत्रालय निभाएगा बड़ा योगदान। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
11: पापा, कॉलेज की फीस ज्यादा है।
12: बेटा,
13: याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे?
12: 2 साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा।
14: तो अब बैंक जाके या वीडियो KYC से KYC अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव एकदम फ्री। चलो,
11: कहाँ
14: एडमिशन कराने? खाता हुआ एक्टिव,
15: RBI कहता है।
16: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
17: हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज़ पर। शाम के 7:32 होने को है। श्रोताओं, अब पेश है सुगम संगीत। श्रोताओं, सुगम संगीत कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं अमिता अग्रवाल की आवाज में भजन। श्रोताओं, भजन जो हमारे मन के बहुत निकट होते हैं, जो हमें आस्था के द्वार पर सीधे ले जाते हैं और हमें आध्यात्मिक स्तर से मजबूत बनाते हैं, सशक्त करते हैं। हमारा जो आध्यात्मिक पक्ष है उसे और भी सशक्त बनाने में भजन एक नई ऊर्जा का काम करते हैं। और जब भजन में मन रम जाता है तो फिर सांसारिक मोह माया से जैसे हम विरक्त होने लगते हैं। आइए ऐसे ही भजन के साथ हम आपको जोड़ते हैं। ये भजन जो हमारे मन की शांति के लिए, हमारे मन की स्थिरता के लिए, हमारे मन को वश में करने के लिए बहुत ही सकारात्मक सिद्ध होगा। सुनते हैं ये प्यारा सा भजन।

श्रोताओं, मन में जब ईश्वर की भक्ति रम जाती है तो फिर मन को कोई भी रंग इस संसार का बिल्कुल पसंद नहीं आता। और वैसे कहा भी गया है कि मन तो अनंत है और इस मन को वास्तव में कहीं चैन नहीं मिलता, बस एक जगह है, एक ठिकाना है और वो है इस जगत नियंता के द्वार पर, इस सृष्टि संचालक के दर पर जाकर ये मन अंततः शांत होता है और फिर अपने आप को ऐसे स्थान पर पाता है कि जो किसी भटकाव के बाद आकर कहीं ठहरता है। तो ऐसा ही मन की अनंतता को प्रदर्शित करता ये भजन हम आपको सुनवा रहे हैं अमिता अग्रवाल की आवाज में।

श्रोताओं, मनुष्य का मन असीमित है, अथाह है और इस मन का कोई अंत नहीं है। इस मन की जिज्ञासाओं का कोई अंत नहीं है, इस मन की चाहतों का कोई अंत नहीं है। बस इसका अगर कहीं समापन, इसका अगर कहीं कोई क्षितिज दिखाई देता है तो वो है ईश्वर की वंदना, ईश्वर का दर। और जब हम आध्यात्मिकता के रास्ते पर चलने लगते हैं तो मन एकाग्र होने लगता है, मन की एकाग्रता बढ़ने लगती है और फिर हम सांसारिक मोह माया से जैसे दूर होते चले जाते हैं। और कहा भी गया है कि ये सांसारिक मोह माया के जो जाल हैं, ये जो मोड़ हैं, ये हमें सबसे ज़्यादा कष्ट देते हैं। जिंदगी के कष्टों का निवारण अगर है तो मन की एकाग्रता, मन की शांति और ये सब मिलती है ईश्वर के चरणों में। आइए मन की शांति के लिए एक और प्यारा सा भजन सुन लेते हैं अमिता अग्रवाल की आवाज़ में।

0: श्रोताओं, सुगम संगीत कार्यक्रम में अभी आपने सुना अमिता अग्रवाल की आवाज में ये भजन।
1: अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं?
2: तो इंतजार किस बात का,
1: अभी बुक कराइए अपना विज्ञापन आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
2: विज्ञापन बुकिंग कराने के लिए आज ही संपर्क करें।
1: हमारा मोबाइल नंबर है 8865845809।
2: नंबर एक बार फिर सुन लीजिए 8865845809।
1: और हमारा ईमेल आईडी है
2: akashwaninajibabad@gmail.com।
1: तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और बुक कराइए अपना विज्ञापन
2: आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
3: प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर।

0: इसमें शामिल हैं शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग। और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
1: श्रोताओं, सुगम संगीत कार्यक्रम संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। रात के 8 बजे हैं। लीजिए, अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत संध्या। श्रोताओं, कार्यक्रम का आगाज करते हैं सैनिक फिल्म के इस प्यारे से गीत के साथ, जिसमें आवाजें हैं कुमार सानू और आशा भोसले की। गीत लिखा है समीर ने और धुन दी है नदीम श्रवण ने।

श्रोताओं, कुमार सानू और आशा भोसले को भी आपने सुना फिल्म सैनिक से। और आइए, इस कार्यक्रम का अगला गीत अब हम आपको सुनवाते हैं उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ में। गीत लिखा है देव कोहली ने और संगीत दिया है आनंद राज आनंद ने। फिल्म का नाम है क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता।

क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता। इस फिल्म से भी आपने सुना उदित नारायण और अलका याग्निक को। श्रोताओं, आइए इस कार्यक्रम यानी गीत संध्या के अंतर्गत अब हम आपको सुनवाते हैं चमत्कार फिल्म का ये गीत, कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज में। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत दिया है अनु मलिक ने।

चमत्कार फिल्म का गीत अभी आपने सुना कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज में। श्रोताओं आइए इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाते हैं मौसम फिल्म का ये गीत राहत फतेह अली खान की आवाज में। गीत लिखा है इरशाद कामिल ने और इस गीत के लिए संगीत तैयार किया है प्रीतम ने।

राहत फतेह अली खान को भी आपने सुना फिल्म मौसम से। श्रोताओं, आइए अब हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म हीरो नंबर वन का ये प्यारा सा नगमा, साधना सरगम और उदित नारायण की आवाज में। गीत लिखा है समीर ने और धुन तैयार की है आनंद मिलिंद ने।

श्रोताओं, लीजिए अब इस कार्यक्रम का आखिरी गीत हम आपको सुनवाते हैं। हम दिल दे चुके सनम फिल्म का ये नगमा उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ में है, और गीत लिखा है महबूब ने, संगीत दिया है इस्माइल दरबार ने।

श्रोताओं, इसी गीत के साथ कार्यक्रम गीत संध्या अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज़ पर। रात के 8:30 हुए हैं। अब पेश है कार्यक्रम एक ही फिल्म से। श्रोताओं, आज फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं वर्ष 1977 में प्रदर्शित हुई फिल्म परवरिश के कुछ गीत। श्रोताओं, ये फिल्म जिसके निर्देशक हैं मनमोहन देसाई और इस फिल्म में अभिनय किया था शमी कपूर, अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना, नीतू सिंह, कादर खान और अमजद खान ने। और भी बातें करेंगे इस फिल्म के विषय में, लेकिन यहां सुनते हैं इस फिल्म का ये प्यारा सा गीत आशा भोंसले, आरती मुखर्जी और शैलेंद्र सिंह की आवाज में।

श्रोताओं, एक ही फिल्म से कार्यक्रम आप सुन रहे हैं और आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं परवरिश फिल्म के कुछ गीत। और ये फिल्म अपनी कहानी के लिए, अपने गीतों के लिए आज भी लोगों की पसंदीदा फिल्म है। और इस फिल्म के लिए जो एक एक्शन क्राइम फिल्म थी, उसमें शम्मी कपूर जो मुख्य भूमिका में थे, यानी अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना के पिताजी की भूमिका शम्मी कपूर साहब ने इसमें निभाई। और इसमें दो अभिनेत्री नीतू सिंह और शबाना आजमी ने भी एक शानदार अभिनय किया और उनके शानदार अभिनय के लिए ही डायरेक्टर ने उन्हें अगली फिल्म अमर अकबर एंथोनी में भी ले लिया। श्रोताओं, अमजद खान और कादर खान ने इस फिल्म में खलनायक की भूमिका निभाई और ये फिल्म उस दौर की ब्लॉकबास्टर फिल्मों में से एक थी। इस फिल्म की कहानी खास तौर से ऐसी कहानी है जो कहीं ना कहीं ये संदेश देती है कि अंततः सच्चाई की ही जीत होती है, भले ही चाहे पालन पोषण कितने ही अच्छे ढंग से कर लिया जाए, और यदि संगत गलत हो जाए तो संतान बिगड़ जाती है। इसमें ये बात मुख्य रूप से दिखाई गई है। और भी हम बातें करेंगे इस फिल्म के विषय में, लेकिन यहाँ सुन लेते हैं इसी फिल्म का एक और नगमा किशोर कुमार और अमित कुमार की आवाज़ में।

ने और इस फिल्म के सभी गीत लिखे मजरूह सुल्तानपुरी ने। और आइए एक और नगमा इसी फिल्म से आपको सुनवाते हैं।

मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार और शैलेंद्र सिंह की आवाज़ में अभी आपने सुना परवरिश फिल्म का ये गीत, और इसी के साथ कार्यक्रम एक ही फिल्म से अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो

0: हर्ट्ज पर। रात के 8:45 होने को हैं। थोड़ी ही देर बाद आकाशवाणी दिल्ली से समाचार रिले होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। उत्तर प्रदेश के लखनऊ कोचिंग सेंटर में आग लगने से 15 लोगों की मौत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए। उद्धव ठाकरे गुट वाले शिवसेना के 6 लोकसभा सदस्य शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट में शामिल। भारतीय रेलवे ने पूर्वी तट रेलवे के 631 किलोमीटर के मार्ग पर स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच को मंजूरी दी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने लेबर पार्टी में असंतोष के बाद इस्तीफे की घोषणा की। आईएसएसएफ जूनियर निशानेबाजी विश्व कप में प्रीतम केंद्र ने स्वर्ण पदक सहित भारतीय निशानेबाजों ने 4 और पदक जीते। तालिका में भारत शीर्ष पर। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात अर्जेंटीना का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। अब समाचार विस्तार से। लखनऊ के अलीगंज इलाके में आज दोपहर एक भीषण आग की घटना में 15 लोगों की मौत हो गई। इनमें ज्यादातर 16 से 18 वर्ष के छात्र थे। अलीगंज के पुरानिया इलाके में एक दुकान के ऊपर चल रहे एनिमेशन कोचिंग सेंटर में आग लग गई। 4 छात्र घायल हो गए हैं, जिन्हें लखनऊ के केजीएमसी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक रिपोर्ट।
2: आग इमारत में अंदर से लगी और तेजी से फैल गई, जिससे लोग अंदर ही फंस गए। फायर ब्रिगेड, पुलिस कर्मी, एसडीआरएफ और जिला प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और बचाव और राहत अभियान शुरू किया। कुछ लोगों ने पहली मंजिल से कूदकर अपनी जान बचाने की भी कोशिश की। बचाव दल दीवार तोड़कर इमारत में दाखिल हुआ और लोगों को बाहर निकालने में भी कामयाब रहा। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि राज्य के डीजीपी और अपर मुख्य सचिव गृह की उच्च स्तरीय समिति मामले की जांच करेगी।
3: घटना की उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दे दिए। प्रमुख सचिव गृह डीजीपी मौके पर बुलाया गया है और उनको निर्देश दिए कि घटना के कारणों की जांच और घटना कैसे घटी, भविष्य में न घटे, इसके कड़ी कार्रवाई करें।
2: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।
4: मैं उन सभी परिजनों के प्रति जिन्होंने अपने परिवार के उन नौजवानों को खोया है, उनके प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। और इस पूरे मामले के लिए मैंने उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक और अपर मुख्य सचिव गृह को भी कहा है कि वे स्वयं मौके पे जाकर के इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करें, जिससे इस पूरे मामले की तह में हम जाकर के दोषियों को सजा दे सकें।
2: अलीगढ़ और फिरोजाबाद जिलों का अपना दौरा अधूरा छोड़कर लखनऊ लौटे मुख्यमंत्री ने घटना स्थल का निरीक्षण किया और अस्पताल में घायलों से भी मुलाकात की। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय एक निजी समाचार चैनल के कार्यक्रम ग्रेट पावर इंडिया नेशन फर्स्ट को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
5: निभाया देश के नागरिकों को मैं सलाम करता हूं। साथियों, यहां हमारे साथी सिद्धर बंबू जी बैठे हैं। जब हमारे उद्यमी नेशन फर्स्ट की भावना के साथ चलते हैं, जब वो देश की आवश्यकताओं को समझते हुए अपने लक्ष्य बनाते हैं, तो संस्थाएं भी बनती हैं और देश भी समृद्ध होता है। सिद्धार्थ वेम्बू जी ने क्या काम किया है, शायद यहां बातों में कितना निकला होगा मुझे मालूम नहीं, लेकिन अभी मैं फ्रांस में विवाटेक में गया था। करीब 1.5-2 लाख नौजवान वहां होंगे। चलने के लिए भी मैं और फ्रांस के राष्ट्रपति अलग अलग स्टॉल पे जा रहे थे, देखने के लिए भी नौजवानों ने क्या काम किया है। तो हम जोहो के स्टॉल पे गए। मैं हैरान था जी और गर्व होता था कि जोहो के स्टॉल पर यूरोप के नौजवानों की जो भीड़ लगी थी और वो समझना चाहते हैं कि ये क्या है दुनिया में नई चीज। भारत में शायद उतनी चर्चा नहीं होगी जितनी मैंने वहां फ्रांस में देखी।
1: शिवसेना नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आज घोषणा की कि शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के 6 लोकसभा सांसद उनकी पार्टी शिवसेना में शामिल हो गए हैं। श्री शिंदे ने इन सभी सांसदों का पार्टी में स्वागत किया। मुंबई में संवाददाताओं से बातचीत में श्री शिंदे ने कहा कि आज का दिन शिवसेना के लिए ऐतिहासिक है।
6: आज का दिन शिवसेना के लिए ऐतिहासिक दिन है। हमारे 6,000 शिवसेना में शामिल हुए हैं, इससे शिवसेना की ताकत बढ़ रही है। शिवसेना सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी महाराष्ट्र में हो चुकी है और ये डबल इंजन की सरकार है। महाराष्ट्र को आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी बहुत बड़े पैमाने पे सहयोग कर रहे हैं, इसलिए विकास हो रहा है।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। भारतीय रेलवे ने पूर्वी तट रेलवे के 631 किलोमीटर के मार्ग पर स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच को मंजूरी दे दी है। इससे सुरक्षा और परिचालन दक्षता में सुधार होगा।
7: रेल मंत्रालय ने बताया कि इस परियोजना में पूर्वी तट रेलवे के 6 महत्वपूर्ण खंड शामिल हैं। इनमें बागुआपाला बुद्धापंक, हरिदासपुर पारादीप, खुर्दा रोड बलंगीर, नौपाड़ा गुनुपुर, लांजीगढ़ रोड जूनागढ़ और बोबिल्ली सालूर शामिल हैं। इन मार्गों पर कवच की स्थापना से स्वचालित रेल सुरक्षा और किसी भी तरह की टक्कर से बचाव की क्षमता प्रदान करके रेलगाड़ी संचालन में उच्च स्तर की सुरक्षा प्राप्त करने में मदद मिलेगी। मंत्रालय ने कहा कि इस परियोजना से पूर्वी तट रेलवे द्वारा सेवा प्रदान किए जाने वाले ओडिशा और पड़ोसी क्षेत्रों के प्रमुख खंडों पर यात्री और मालगाड़ी दोनों के संचालन को लाभ होने की उम्मीद है। यह भीड़भाड़ और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मार्गों पर कवच का विस्तार करने के उद्देश्य से जारी रेलवे के अभियान को मजबूती भी प्रदान करेगा। सौम्या की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
1: पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। रोजगार और जन कल्याण को बढ़ावा देते हुए राज्य के विभिन्न विभागों में 1,00,000 खाली पदों पर नियुक्ति की घोषणा की गई है।
8: वित्त मंत्री डॉक्टर शपन दसगुप्ता ने आज 4,00,000 करोड़ रुपए से अधिक का राज्य बजट प्रस्तुत किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने इसे विकसित भारत के साथ विकसित बंगाल के निर्माण का बजट बताया। बजट में राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को 18% से बढ़ाकर 38% करने की घोषणा की गई। महिला सुरक्षा के लिए सभी थानों में नारी सहायता डेस्क और दुर्गा सुरक्षा स्क्वाड बनाया जाएगा। दार्जिलिंग और गंगा सागर को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। काशफी नहार, आकाशवाणी समाचार, कोलकाता।
1: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज मंगोलिया के उलानबतार में मंगोलिया के राष्ट्रपति खुरेलसुख उखना से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पिछले साल श्री उखना की भारत यात्रा ने भारत मंगोलिया रणनीतिक साझेदारी को मजबूती प्रदान की थी। उन्होंने मुलाकात के दौरान मंगोलिया के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शुभकामनाएं दी। इससे पहले दिन में विदेश मंत्री ने उलानबतार में मंगोलिया के विदेश मंत्री बत्सरतेग बचनमुख से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चर्चाओं में भारत मंगोलिया रणनीतिक साझेदारी मजबूती और संभावनाओं पर बात की गई। दोनों नेताओं ने विकास परियोजनाओं, क्षमता निर्माण, संस्कृति, शिक्षा, सुरक्षा और बहुपक्षीय मंचों में द्विपक्षीय सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में इसराइल के रक्षा मंत्रालय के महानिदेशक सेवानिवृत्त मेजर जनरल अमीर बराम से मुलाकात की। रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि श्री बराम ने राजनाथ सिंह को दोनों देशों के विशेष रणनीतिक साझेदारी में भारत इसराइल रक्षा सहयोग को बढ़ाने के लिए इसराइल की प्रतिबद्धता से अवगत कराया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आज 16वीं ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बैठक से इतर नई दिल्ली में ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार परिषद के रक्षा मामलों के उप सचिव गादिर निजामीपुर से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों पक्षों ने पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति की समीक्षा की। श्री डोभाल ने इथियोपिया की राष्ट्रीय खुफिया सुरक्षा सेवा के विश्लेषण कार्यकारी निदेशक मिलियन लेमा तेदेसा से भी मुलाकात की। श्री डोभाल ने ब्राजील के बहुपक्षीय और राजनीतिक मामलों के सचिव कार्लोस कोजेंडे से भी मुलाकात की। दोनों पक्षों ने ब्रिक्स ढांचे के तहत भारत और ब्राजील के बीच सहयोग का स्वागत किया। गृह राज्य मंत्री बंडी संजय कुमार ने कहा है कि राष्ट्रीय विकास में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF की बहुत बड़ी भूमिका है। उन्होंने कहा कि राष्ट्र के आर्थिक विकास में CISF के जवानों का बड़ा योगदान होता है। नई दिल्ली में आज CISF के नए मुख्यालय भवन की आधारशिला रखते हुए उन्होंने ये बात कही। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज नई दिल्ली में पर्यटन और आतिथ्य

0: क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के संवादात्मक सत्र में भाग लिया। श्री शेखावत ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र का विकास लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तन का साधन है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार रोजगार, विकास और समृद्धि के नए अवसर पैदा कर रही है। केंद्र सरकार ने आज सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने उन निजी छात्रों के मूल्यांकन के लिए एक नई नीति बनाई है जो हाल ही में ईरान अमेरिका संघर्ष के कारण खाड़ी देशों में कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा रद्द होने से प्रभावित हुए थे। न्यायमूर्ति SVN भट्टी और विपुल M पंचोले की पीठ को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि क्षेत्रीय संघर्ष के कारण खाड़ी देशों में परीक्षा रद्द होने से प्रभावित छात्रों की चिंताओं को दूर करने के लिए नई अखिल भारतीय नीति तैयार की गई है। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नेफेड के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। पोर्टल का शुभारंभ नीलामी प्रक्रिया में पारदर्शिता, दक्षता और सुगम संचालन को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। झारखंड में पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के विभिन्न हिस्सों में बिजली गिरने से 8 लोगों की मृत्यु हो गई और एक दर्जन से अधिक लोग घायल हुए। मृतकों में CPI के एक नेता, एक वार्ड सदस्य, एक किसान और अन्य निवासी शामिल हैं। घायलों को इलाज के लिए विभिन्न जिलों के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने प्रधानमंत्री और लेबर पार्टी के नेता पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। अपनी ही पार्टी के भीतर बढ़ते दबाव के बीच उन्होंने डाउनिंग स्ट्रीट में अपना कार्यकाल समाप्त किया। इस्तीफे का बयान देने से पहले स्टार्मर अपनी पत्नी के साथ 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर निकले, जहां लोगों ने उनका उत्साह के साथ स्वागत किया और तालियां बजाई। श्री स्टार्मर ने कहा कि सितंबर में संसद के सत्र के शुरू होने से पहले जब तक नया नेता नहीं चुन लिया जाता तब तक वे पद पर बने रहेंगे।
1: Every decision I've taken,
2: मैंने जो भी फैसले लिए हैं उनमें हमेशा अपने देश को प्राथमिकता दी है, जिससे मैं प्यार करता हूं। इसीलिए मैं लेबर पार्टी के नेता का पद छोड़ रहा हूं। मैंने आज सुबह ब्रिटेन नरेश से बात करके उन्हें अपने फैसले के बारे में बता दिया है। अगर मुकाबले की स्थिति बनती है तो निश्चित रूप से सितंबर में संसद सत्र शुरू होने से पहले पार्टी का नेता चुन लिया जाए। प्रक्रिया पूरी होने तक मैं प्रधानमंत्री के पद पर बना रहूंगा।
0: कतर के औद्योगिक क्षेत्र रसलाफान में आज हुए विस्फोट में 13 लोगों की मौत हो गई, इनमें कुछ भारतीय नागरिक भी शामिल हैं। कतर के ऊर्जा मंत्री साद बिन श्रीदा अलकाबी ने बताया कि कल शाम बरजान स्थानीय गैस आपूर्ति संयंत्र में विस्फोट के कारण लगी आग में 66 लोग घायल हो गए। जर्मनी के सुहल में ISSF जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में आज भारत के प्रीतम केंद्रे ने 10 मीटर एयर राइफल पुरुष स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। वहीं 25 मीटर पिस्टल टीम स्पर्धा में महिलाओं और पुरुषों ने कांस्य पदक जीते। प्रतियोगिता में भारतीय निशानेबाजों ने आज अलग अलग स्पर्धाओं में 4 पदक हासिल किए। भारत 5 स्वर्ण, 1 रजत और 6 कांस्य पदक के साथ तालिका में शीर्ष पर है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप जे के मुकाबले में आज अर्जेंटीना ऑस्ट्रिया आमने सामने होंगे। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 10:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं ग्रुप आई में फ्रांस का सामना इराक से होगा। प्रतियोगिता के अन्य मुकाबलों में मिस्र और स्पेन ने शानदार जीत दर्ज की। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक।
3: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 291 अंक बढ़कर 77,094 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 90 अंक बढ़त के साथ 24,103 दर्ज हुआ। और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया 35 पैसे कमजोर होकर ₹94.68 पर बंद हुआ।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के एक कोचिंग सेंटर में आग की घटना में 15 लोगों की मौत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था होने के साथ ही भरोसेमंद विश्व शक्ति के रूप में उभर रहा है। उद्धव ठाकरे गुट वाले शिवसेना के 6 लोकसभा सदस्य शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट में शामिल। भारतीय रेलवे ने पूर्वी तट रेलवे के 631 किलोमीटर के मार्ग पर स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच को मंजूरी दी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर की लेबर पार्टी में असंतोष के बाद इस्तीफे की घोषणा। ISSF जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में प्रीतम केंद्रे के स्वर्ण पदक सहित भारतीय निशानेबाजों ने 4 और पदक जीते, तालिका में भारत शीर्ष पर। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात अर्जेंटीना का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। इसके

मंजूरी दी है। इंग्लैंड के वजीर आजम कीर स्टेमन ने लेबर पार्टी में जारी टूट फूट के दौरान इस्तीफा दे दिया है। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक।

0: नमस्कार श्रोताओं, पब्लिक स्पीक में आपका स्वागत है। आज मैं हूं आपके साथ प्रियंका अरोड़ा। रोजगार केवल आजीविका का साधन नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता, सम्मान और राष्ट्र निर्माण की आधारशिला भी है। जब युवाओं को अवसर मिलते हैं तो न केवल उनका भविष्य संवरता है बल्कि देश की प्रगति को भी नई गति मिलती है। इसी सोच के साथ सरकार ने रोजगार सृजन को बढ़ावा देने और युवाओं को औपचारिक रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा से जोड़ने के उद्देश्य से पिछले वर्ष प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना की शुरुआत की। पिछले सप्ताह ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना के अंतर्गत 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित की। ये योजना विकसित भारत के संकल्प को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। क्या है ये योजना, इसे युवाओं, कर्मचारियों और नियोक्ताओं को क्या लाभ होगा, इन्हीं सब महत्वपूर्ण सवालों के जवाब आज हम तलाशेंगे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में। हमारा विषय है प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर। इस पर हमारे साथ चर्चा के लिए स्टूडियो में उपस्थित हैं कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ में अपर केंद्रीय आयुक्त पूर्णेंदु भूषण वर्मा और क्षेत्रीय आयुक्त प्रणित जोशी। आप दोनों का स्वागत है कार्यक्रम में।
1: नमस्कार
0: श्रोताओं, स्टूडियो की फोन लाइंस खुली हैं। आप हमारे स्टूडियो नंबर 011 जो दिल्ली का कोड है उसके बाद 2331-0481 या 2371-7117 या 2371-7106 और 2331-4444 पर फोन करके अपने सवाल पूछ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है 9289-09-4044। इस पर आप प्रश्न भेज सकते हैं और ट्विटर हैंडल है @AIRNewsAlerts पर #AskAIR के जरिए आपके जो भी सवाल हैं और शंकाएं हैं पूछ सकते हैं। तो आगाज करते हैं कार्यक्रम का। सबसे पहले पूर्णेंदु जी, आपसे जानना चाहूंगी कि पीएम विकसित भारत रोजगार योजना क्या है और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी?
1: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना एक ऐसी योजना है जो कि यहाँ हमारे फॉर्मल सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए, वर्कफोर्स को फॉर्मलाइज करने के लिए, सोशल सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए और फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट को इनकरेज करने के लिए एक सरकार ने एक इंसेंटिव स्कीम जारी की है। ये इंसेंटिव स्कीम इनफैक्ट 1 जुलाई 2025 से शुरू होकर अभी अगले 2 साल के लिए रहेगी और इस इंसेंटिव स्कीम में एम्प्लॉयर एम्प्लॉई दोनों को इंसेंटिव दे रही है भारत सरकार, जिससे कि एम्प्लॉयमेंट जो भी जनरेट हो रहा है उसको एक बढ़ावा मिले और जो एम्प्लॉयज किसी भी एम्प्लॉयर के साथ जुड़ रहे हैं वो वहां पे कुछ 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए सस्टेन्ड एम्प्लॉयमेंट बनी रहे।
0: जी प्रणित जी, आपसे जानना चाहूंगी कि ईपीएफओ बहुत मेजर रोल निभा रहा है, क्या है, अपने श्रोताओं को इस बारे में बताएं।
2: ये स्कीम जो है भारत सरकार ने इसकी जिम्मेदारी ईपीएफओ को सौंपा है। तो ईपीएफओ इंडिया एंड वर्ल्ड के वन ऑफ द लार्जेस्ट सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है। तो हमारे यहाँ जो फॉर्मल एम्प्लॉयज है लगभग 8 करोड़ फॉर्मल एम्प्लॉयज हमारे यहाँ कवर्ड है। तो ये स्कीम में जो भी बेनिफिट्स है वो ईपीएफओ के थ्रू हम देने की प्रयास कर रहे हैं। तो इसमें कोई द बेस्ट पार्ट इज इसमें कोई एडिशनल कंप्लायंस की रिक्वायरमेंट नहीं है आइदर फॉर एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयर्स। डायरेक्टली ईपीएफओ एनरोलमेंट से ही सारे बेनिफिट्स हम लोग ऑटोमेटिकली सिस्टम कैलकुलेट करके इनको दी जाएगी।
0: ये तो एक तरह से मध्यस्थता का काम कर रहा है ईपीएफओ नियोक्ता और जो कर्मचारी के बीच में। हमारे पहले श्रोता जुड़ गए हैं रायबरेली उत्तर प्रदेश से, रमा शंकर वाजपेयी जी।
3: नमस्कार,
0: सवाल पूछे अपना।
3: विकसित भारत के अंतर प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत कितने लोगों को रोजगार मिला और किस तरह का रोजगार मिला?
2: रमाशंकर जी, ये स्कीम 1 अगस्त 2025 से शुरू हुआ है। तो अभी तक लगभग 70 लाख युवा फर्स्ट टाइम एम्प्लॉय जो पहली बार फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट में आए हैं

0: लगभग 70 लाख से ज्यादा लोग हमसे जुड़े हैं, इसमें लगभग 13.29 लाख तक का बेनिफिट अभी हमने उनको, इन्होंने 6 महीने कंप्लीट कर चुके हैं, तो इनका पहला किस्त का जो बेनिफिट है हमने उनको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से उनके डायरेक्टली बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए।
1: जी पूर्णेंदु जी, आपने इंसेंटिव्स की बात की थी, तो इंसेंटिव्स जो, अगर मैं सबसे पहले कर्मचारी जो पहली बार जो नौकरी पाने वाले हैं तो उनको क्या मिलता है, किस तरह से मिलता है ये बताएं।
2: कर्मचारियों के लिए जो यहाँ पे बेनिफिट मिलती है इस स्कीम में, वो है जो पहले 6 महीने तक अगर कोई भी कर्मचारी किसी भी संस्थान को ज्वाइन करने के बाद वहाँ रह जाता है तो उनका जो एवरेज वेज होता है उसका आधा सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम ऑफ 15,000 रुपए, तो ये पूरा बेनिफिट हो गया। पहले 6 महीने में उनको 7,500 रुपए तक मिलते हैं और अगले 6 महीने तक अगर वो एक हमारे यहाँ पे वो लिटरेसी कोर्स उनको करना पड़ता है, 6 महीने के बाद अगर उन्होंने वो कंप्लीट कर लिया और लगातार वहीं एम्प्लॉयड रह गए तो उनको 12 महीने के बाद 15,000 रुपए तक की राशि दी जाती है।
1: तो 6 महीने के बाद और फिर 6 महीने
2: के दो बार दिया जाता है।
1: आगे भी चर्चा करते हैं, पहले अपने श्रोता का सवाल पूछ लेते हैं। हिमाचल प्रदेश के शिमला से हैं राकेश जी।
3: जी नमस्कार।
1: नमस्कार
3: जी, तो मेरा एक प्रश्न ये है कि जो प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना है तो इसमें हमें क्या क्या प्रावधान रखना पड़ता है और इसके लिए हमें फॉर्म किस तरह से भरना पड़ता है, ये मेरा प्रश्न है।
2: राकेश जी, आपको कोई भी फॉर्म नहीं भरना पड़ता, आपको केवल ईपीएफओ के साथ जुड़ना पड़ता है। ईपीएफओ के साथ जुड़ने के लिए जो ईपीएफओ में कवरेज के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट है वो आपकी कंपनी जहां पे भी आप काम कर रहे हो, जो भी संस्थान हो जहां आप काम कर रहे हैं, वो अगर ईपीएफ में कवर्ड हैं, और जो बिल्कुल नए लोग अगर आ रहे हैं उस कंपनी में जो 1 अगस्त 2025 के पहले कहीं भी हमारे ईपीएफओ से जुड़े हुए नहीं थे तो वैसे लोगों के लिए एक इंसेंटिव है, और इसलिए इसमें कोई अलग से आपको कार्रवाई करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर ईपीएफ में आप किसी भी एम्प्लॉई का कंप्लायंस हो रहा है तो वैसे लोगों को ऑटोमेटिकली इसका बेनिफिट मिल जाता है।
1: जी अगर हम नियोक्ता की बात करें तो उनको इस योजना से क्या लाभ मिलेगा और जो इसमें उनको भाग लेने के लिए कैसे प्रोत्साहित किया जा रहा है, खासकर जैसे अगर कोई कंपनी है अगर वो हाल फिलहाल में ज्वाइन किया, उसने ईपीएफओ में रजिस्टर किया है या स्टार्टअप है नया, तो उन सबके लिए क्या प्रावधान है।
2: कंपनी के लिए 2-3 चीजें आवश्यक हैं। पहला, अगर वो ईपीएफओ में कवर्ड नहीं है तो पहला तो उनका कवरेज जरूरत होगी यहाँ ईपीएफओ में, साथ ही उनके जितने भी एम्प्लॉई हैं जो नए एम्प्लॉई आके ज्वाइन कर रहे हैं उनके बेसिस पे, और जो पुराने एम्प्लॉई जो भी हैं जो कहीं और से आके उनके यहाँ जुड़ रहे हैं, इन्हें हम कहते हैं फर्स्ट टाइमर एंड रीज्वाइनिंग, तो दोनों के नंबर को जोड़ा जाता है। और जो इंसेंटिव है, अगर 10,000 रुपए तक की सैलरी है एम्प्लॉई की तो उसमें 1,000 रुपए, अगर 20,000 रुपए तक की सैलरी है 10 से 20,000 तो 2,000 रुपए, और अगर 20,000 से लेकर और 1,00,000 रुपए तक की अगर सैलरी है तो 3,000 रुपए का इंसेंटिव एम्प्लॉयर को मिलता है, और ये एम्प्लॉयर को प्रत्येक महीने जैसे मिलता जाएगा। अभी पहले 6 महीने किसी का सस्टेन्ड एम्प्लॉयमेंट हुआ, फिर अगले महीने भी किसी न किसी का 6 महीने होगा तो वैसे उनको बेनिफिट मिलता रहेगा।
1: डीबीटी के थ्रू ही
2: ये सारे बेनिफिट एम्प्लॉयर को डीबीटी के थ्रू मिलेगा। जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो केवल एक ही होती है, एक ईपीएफ में कवर्ड हो, दूसरा उनका जो पैन डिटेल्स है वो हम लेते हैं उनके, क्योंकि हम पैन से जो लिंक्ड उनका बैंक अकाउंट होते हैं उसमें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होती है, डीबीटी एम्प्लॉयज के लिए होती है।
1: हरिद्वार से जुड़े हैं रवि जी।
4: हाँ जी नमस्कार मैम जी।
1: नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में।
4: हाँ जी थैंक यू, और महानुभव विशेषज्ञ को भी नमस्कार।
2: नमस्कार
4: जी सर, मैं जानना चाहता हूँ सर, ये प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना है सर, इसके लिए जो ये एक युवा है वो मतलब क्या क्वालिफिकेशन होकर मतलब इस योजना का हिस्सा बन सकता है, मतलब इस योजना से लाभ उठा सकते हैं, इसमें एक युवा की क्या मतलब क्वालिफिकेशन होती, क्या
1: पात्रता क्या होनी चाहिए।
0: रवि जी, इसमें जैसे कि पूर्णेंदु जी भी पहले बताया कि इसमें कोई एडिशनल डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत नहीं है, आपको बस ईपीएफओ के साथ जुड़ना पड़ेगा। तो अगर पहली बार आपकी संस्था में आप ज्वाइन कर रहे हैं, पहली नौकरी में ज्वाइन कर रहे हैं, कोई युवा अगर कोई ज्वाइन कर रहे हैं तो इनको फेशियल ऑथेंटिकेशन के माध्यम से उमंग ऐप जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उस ऐप में उनको एक नंबर दिया जाएगा, उसको हम लोग यूएएन कहते हैं, और उसके बाद 6 महीने अगर उसी संस्था के साथ आप जुड़े हैं और आपका जो जो ग्रॉस वेजेस है आपके, आपका जो सैलरी है वो 1,00,000 से कम होना चाहिए, उनके लिए एक स्कीम है, तो 6 महीने के बाद

0: एडिशनल एम्प्लॉयमेंट अगर नया आ गया और अगर 50 से ज्यादा उस संस्थान के सदस्य हैं तो वैसे केसेस में 5 उनको कम से कम एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना होगा, तभी वो इसके लिए पात्रता के भागी होंगे। लेकिन साथ में एक और चीज बता दूं आपको कि जहां पे एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयर का जो टोटल हमारा कॉन्सेप्ट है वो है हमारे ECR पे, जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक चालान कम रिटर्न होता है। तो न केवल ये कितना उसका थ्रेशोल्ड पॉइंट होगा, 2 आदमी होंगे या 5 आदमी होंगे, बल्कि इन लोगों के लिए कंप्लायंस भी रिक्वायर्ड होगा 6 महीने के लिए।
1: हाँ,
0: तो लगातार अगर कंप्लायंस आएगी 6 महीने, तभी EPFO को पता चलेगा कि ये एम्प्लॉय इनके साथ जुड़े हुए थे, उनका वेज कितना था और कितने रुपए के इंसेंटिव के हकदार हैं। जो थ्रेशोल्ड का एक और दूसरा भी कॉम्पोनेंट है हमारा कि जो नेट एम्प्लॉयमेंट है कितना जनरेट हुआ, उसका हम लोगों ने एक रखा हुआ है जो जो एक पर्टिकुलर पीरियड हमने माना हुआ है, राइट। एक पीरियड है कि अगर अगस्त के पहले, अगस्त 2025 के पहले अगर कोई भी इस संस्थान हमारे साथ जुड़ी हुई थी तो उसको हम तभी मानते हैं, उसके पिछले 12 महीने का एवरेज देखते हैं कि कितने लोग थे, और वहां से फिर उसका वो एवरेज हो गया बेसलाइन जिसे हम कहते हैं। तो बेसलाइन से कितना बढ़ रहा है, अगर अगस्त 2025 के बाद कोई भी संस्थान है तो उसका बेसलाइन होगा हमारा वो 20 रहेगा मिनिमम, वहां पे एवरेज हो गया, यहाँ पे 20 हो गया, तो उस बेसलाइन के बाद फिर हम उसको आगे काउंट करते हैं।
1: छोटी छोटी चीजें देखी जाएंगी और तभी इंसेंटिव के आप पात्र बनेंगे। बिहार से जुड़े हैं हिमांशु जी। हिमांशु जी, आप आवाज सुन पा रहे हैं? आपसे अनुरोध है कि अपने जो आपका रेडियो है सेट है उसकी आवाज कम कर दें।
2: मैडम कर दिया मैंने,
1: कर दिया।
2: मैडम मेरा ये सवाल था कि क्या मैं अभी भी एम्प्लॉयमेंट में हूँ NIC मुजफ्फरपुर में, ठीक है
1: जी।
2: लेकिन थर्ड पार्टी जो मुझे पेमेंट कर रही है तो ये जो एम्प्लॉयमेंट के ये मेरा जो है EPF नहीं कट रहा है मैम, तो क्या हम लोग लेकिन पहले से जो हम कंपनी हमारी थी उनके द्वारा मेरा जो EPF कटा हुआ है तो क्या हम लोग इसमें इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं है
1: जी? पुनीन्द्र जी,
0: हाँ, इसके लिए सबसे पहली चीज है कि आपको बिल्कुल नए एम्प्लॉय होना पड़ेगा। आप चूंकि पहले से EPF से जुड़े हुए हैं तो जो एम्प्लॉयज को जो बेनिफिट मिलती है उसमें आप हकदार नहीं होते हैं, लेकिन जो एम्प्लॉयर है अगर आप कहीं भी और दूसरी जगह पे ज्वाइन करते हैं तो उसको एज रीज्वाइनी हम लोग आपके जो भी यहाँ पे ज्वाइन करने के हिसाब से एम्प्लॉयर को इंसेंटिव मिलेगा।
1: महाराष्ट्र के ठाणे से जुड़े हैं गुरुनाथ जी। हेलो
3: जी मैम, नमस्कार।
1: नमस्कार,
3: मैं गुरुनाथ बोल रहा हूँ ठाणे महाराष्ट्र से।
1: जी जी
3: मैम, मेरा क्वेश्चन है जैसे EPFO में जो नई कंपनियां होती है जैसे ज्वाइंट होते हैं लेकिन एम्प्लॉय का पैसा तो कटता है, तो कभी कभी ये देखा गया है कि सही तरीके से पैसा वहाँ पे जमा नहीं हो पाया है, फ्रॉड कभी कभी फ्रॉड भी देखा जाता है, गड़बड़ी देखी जाती है उसमें, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए। और सही मतलब जो पैसा सैलरी से कट जाता है एम्प्लॉयज का जिस कंपनी से, तो वो जमा हुआ है कि नहीं ये जो ऑर्गेनाइजेशन में, तो ये कैसे चेक करें? थैंक यू
1: जी। प्रणीत जी,
4: गुरुनाथ जी, ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। जो एम्प्लॉय से जो एम्प्लॉयर पैसे काटता है PF जमा करने के लिए, अगर वो एम्प्लॉयर PF जमा नहीं करता है तो वो एक क्रिमिनल ऑफेंस माना जाएगा एंड उस एम्प्लॉयर को एक क्रिमिनल ऑफेंस के अंदर उनको जेल भी भेजा जा सकता है। तो अभी इसमें ये सवाल है कि इसमें आप कैसे चेक कर सकते हैं, तो आपका जो पासबुक है आप अपने पासबुक में आप चेक कर सकते हैं हर महीने की जो आपका अमाउंट कट रहा है वो सही से जमा हो रहा है नहीं है, एंड उसमें पासबुक में आपको ये भी दिखेगा कि आपका इंटरेस्ट कितना जमा हुआ है और टोटल कितना अमाउंट है, तो आपके लॉगिन या फिर आप उमंग ऐप से भी आपका पासबुक आप देख सकते हैं इसमें।
1: जी, बिहार के सासाराम से जुड़े हैं अमित उपाध्याय जी।
5: नमस्कार, मेरा ये सवाल था, सभी विशेषज्ञों को मेरा नमस्कार, कि जैसे कि हम लोग जो अभी 2025 से जो अभी लागू हुआ है 1 अगस्त, उससे पहले जितने भी जैसे कि अलग अलग कंपनी में जो लोग जॉब करते हैं या बीच में कहीं छूट जाता है, तो कैसे वो मालूम चलेगा कि उनका PF जो कटता है या PF का जो इतना संभाग उनमें रहता है क्रेडिट, तो कैसे मालूम चलेगा कि वो कट रहा है?

0: अमित जी, अमित जी नमस्कार. आपको एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर दिया गया होगा, आपने जहां कहीं भी काम किया होगा, तो अपने यूनिवर्सल अकाउंट नंबर के थ्रू आप एम्प्लॉई पोर्टल पे जाके ईपीएफओ के आप लॉगिन कर लें. अगर आपके पास पासवर्ड नहीं है तो जो भी आपका आधार लिंक्ड फोन नंबर है उसके उसके थ्रू ओटीपी से आप रिसेट कर सकते हैं. और जितने जगह पे भी आपने काम किया होगा जो यूएएन से लिंक्ड होगा वहां पे आपको सारे डिटेल्स दिख जाएंगे आपके अपने पोर्टल पे ही. आपके पासबुक में भी वो दिखने चाहिए और जहां जहां से भी आपने काम किया है अगर आपने ट्रांसफर नहीं करवाया है तो आप उसको एक जगह पे ट्रांसफर करवा लें ताकि आपके लिए बाद में सुविधा होगी.
1: जी हाँ, जैसे आप कई लोगों की शंकाएं हैं, कई जो होते हैं जो कर्मचारी हैं उनको ईपीएफ खाते, यूएएन नंबर जो अन्य सुविधाएं उनके बारे में जानकारी नहीं होती, तो उस लिहाज से आप क्या बताना चाहेंगे कि किन किन बातों का ध्यान रखना है जब आप कोई ज्वाइन कर रहे हैं, आपको क्या कदम उठाने हैं?
0: अभी
2: जब भी कोई अभी जो हमने अगस्त 2025 से एक प्रावधान किया है, पहले ये होता था कि जहाँ पे जिस संस्था में कोई ज्वाइन करते हैं कोई एम्प्लॉय, तो एम्प्लॉयर खुद वो उनका यूएन जनरेट करते थे. तो अभी हमने वो हक सिटीजन को ही दिया है, एम्प्लॉय को ही दिया है, जो खुद अपने उमंग ऐप से जो आधार ऑथेंटिकेशन करके वो खुद अपना यूएन जनरेट करेंगे और फिर वो एम्प्लॉयर को देंगे. तो उससे जो उसको बेसिक तो उनके हाथ में है कि उनका ईपीएफओ का अकाउंट बना नहीं है, बना है या नहीं है, अभी एम्प्लॉयर के हाथ में नहीं है. तो उसके बाद उनको ये देखना है कि उनका हर महीने पासबुक उनको चेक करना है कि हमेशा वो हर महीने उनका एवरीमंथ डिपॉजिट हो रहा है नहीं हो रहा है.
1: ठीक, ओडिशा से जुड़े हैं देशदीप दास जी. दास जी आप आवाज सुन पा रहे हैं? हेलो दास जी, आपको हमारी आवाज मिल रही है?
3: जी नमस्ते.
1: नमस्ते
3: शर्मा जी और अरोरा जी, नमस्ते.
1: जी
0: नमस्ते.
3: जी मेरा सवाल है, क्या नियोक्ता को अलग से रजिस्ट्रेशन करना होगा और योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए कौन से दस्तावेज आवश्यक है?
0: हाँ, नियोक्ता को अलग से मैं नहीं कहूंगा कि रजिस्ट्रेशन करना है, उनके पोर्टल पे जाकर और आपको केवल नियोक्ता को अपना पैन देना होता है और जो एक बैंक अकाउंट उनका देना होता है जो पैन लिंक्ड होता है, उसी को हम इनफैक्ट इस स्कीम के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन मान सकते हैं. सेपरेट रजिस्ट्रेशन बस उसी तरह का होता है. उसके बाद नियोक्ता का जो भी बेनिफिट होता है, बिकॉज पैन के साथ हम इसको लिंक करते हैं, तो अगर मान लीजिए एक ही पैन के साथ बहुत सारी संस्थाएं जुड़ी हुई हैं, तो हम उन सबों को पैन एग्रीगेट करके जो बेनिफिट देते हैं वो पैन लिंक्ड बैंक अकाउंट में देते हैं. तो बेसिकली आपको पैन टैन का डिटेल्स होगा, नियोक्ता का जीएसटी नंबर आप दे सकते हैं वहां पे, और साथ में बैंक अकाउंट नंबर जो कि पैन के साथ लिंक्ड हो वो एम्प्लॉयर पोर्टल पे ही देना होता है. उसके लिए आपको और कहीं अलग रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं होती.
1: और इन्होंने दस्तावेज के बारे में पूछा था,
0: और कोई दस्तावेज नहीं चाहिए,
1: जरूरत नहीं है, बार बार बता रहे हैं आपको इस कार्यक्रम के जरिए. ये जो योजना है, अगर आप फॉर्मल नौकरी के हिसाब से, रोजगार सृजन के हिसाब से बात करें, तो बहुत बड़ी 99,000 करोड़ रुपए से इसका आउटले है. मेजर अगर बात करें जो असंगठित क्षेत्र से जो आते हैं लोग, उनको संगठित क्षेत्र में लेकर जाना, तो उनके लिए योजना किस तरह से आप लाभकारी होते देखते हैं?
0: इसमें दो तीन तरह से हम इसको देख सकते हैं. सबसे पहला, जो एम्प्लॉयज पहली बात की 6 महीने तक वो रहेंगे एक जगह तभी उनको बेनिफिट मिलेगा, तो उनके लिए एक बहुत बड़ा इंसेंटिव है कि वहां रुकें. एम्प्लॉयर के लिए एक बहुत बड़ा इंसेंटिव है कि कोशिश करें कि उनके एम्प्लॉई वहीं पर रह जाएं. एम्प्लॉई को एक अच्छा एक्सपीरियंस होगा. आपको पता होगा कि जैसे नए एम्प्लॉई अगर कोई भी ज्वाइन करते हैं तो लैक ऑफ एक्सपीरियंस एक बहुत बड़ी चीज है. तो यहाँ एक ऐसी स्कीम है जहां पे एम्प्लॉयर को भी फायदा हो रहा है, एम्प्लॉई को भी फायदा हो रहा है. जनरली अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जनरली एक कॉन्सेप्ट था इंडिया में कि अगर एम्प्लॉयर है तो एम्प्लॉई के अगेंस्ट है, एम्प्लॉई है तो एम्प्लॉयर के अगेंस्ट है. यहाँ इन दोनों को साथ में लेके चलने की बात हो रही है.
1: और ये होता था कि आपके पास कितना एक्सपीरियंस है, भाई आप हमें नौकरी पे रखोगे तभी एक्सपीरियंस मिलेगा,
0: और जब तक नौकरी में आएंगे नहीं तब तक एक्सपीरियंस होगा नहीं. तो एक बहुत अच्छी स्कीम है जहाँ उनको एक्सपीरियंस गेन करने के लिए भी सरकार प्रोत्साहित कर रही है और एम्प्लॉयर को भी प्रोत्साहित कर रही है कि आप ऐसे लोगों को रखेंगे और सस्टेन करें वहाँ 6 महीने 1 साल के लिए, तो आपको भी इंसेंटिव मिलेगा.
1: जी दिल्ली से जुड़े हैं धर्मवीर जी.
4: नमस्कार मैडम, मैं धर्मवीर गांधी का दिल्ली से बोल रहा हूँ सर। नमस्कार।
0: नमस्कार
4: सर, मैं ये पूछना चाहूंगा कि हमारे देश की जनसंख्या 140 करोड़ है, तो कुछ जो एम्प्लॉयर होते हैं जो उनकी एज लिमिट निकल जाती है, तो क्या सरकार को चाहिए नहीं कि उनकी एज लिमिट को थोड़ा बढ़ा के रखना चाहिए, जिसको जरूरत है वो ही इसमें भी आ सके, और इसमें जो एम्प्लॉयर है वो कितनी इसकी सैलरी इसको डिसाइड कर सकता है।
2: तो इसमें दो पार्ट आपने पूछा है, एक तो एज का पूछा है, तो स्कीम तो जनरली युवा एम्प्लॉयज को प्रोत्साहन मिलता है, बट ऐसा कोई एज क्राइटेरिया नहीं है। तो अगर कोई 40 साल में भी पहली बार संगठित क्षेत्र में नौकरी पा रहा है तो वो इस बेनिफिट के लिए एलिजिबिलिटी है। एंड दूसरा
1: सैलरी का पूछा उन्होंने।
2: सैलरी, हाँ, तो इसमें मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये था कि जो हाई अर्निंग हाई इनकम ग्रुप है तो उनको ये बेनिफिट ना दिया जाए। तो 1 लाख से जो नीचे उनका जिसका ग्रॉस सैलरी है वो इस स्कीम के लिए एलिजिबल है।
1: अक्सर हम देखते हैं कि जैसे लोगों को सामाजिक सुरक्षा के बारे में जानकारी नहीं होती, तो इस योजना के जरिए सामाजिक सुरक्षा कवरेज को किस तरह मजबूत किया जा रहा है?
2: तो इसमें जो सामाजिक सुरक्षा ईपीएफओ हम लोग 3 स्कीम चलाते हैं, तो जो भी ये पीएमवीबीआरवी के तहत हमसे जुड़ते हैं तो उनको ये तीनों स्कीम के बेनिफिट मिलते हैं। तो इनमें से प्रोविडेंट फंड है जो कि आपके लाइफ टाइम अर्निंग्स को वेरी गुड इंटरेस्ट रेट के साथ हम लोग रिटर्न करते हैं, और इसमें बहुत सारे पार्शल विड्रॉल्स के प्रावधान है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट पेंशन एक बहुत बड़ा चीज है इसमें, ना केवल उनका सुपर एनुएशन पेंशन बल्कि उनके डेथ केस, इन केस ऑफ डेथ एंड डिसेबिलिटी उनको फैमिली को भी पेंशन मिलता है, एंड इंश्योरेंस का भी एक कॉम्पोनेंट है लाइफ इंश्योरेंस का।
1: पुणेंद्र जी, जैसे अक्सर शायद किसी ना किसी के मन में ये प्रश्न होगा कि जो ये योजना है रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से बनाई गई है, लेकिन ऐसे में यदि कोई जो नियोक्ता योजना का लाभ प्राप्त करने के बाद कर्मचारी को नौकरी से हटा देता है या उसे लंबे समय तक कार्य में नहीं बना के रखता है, तो क्या ऐसी स्थिति से निपटने के लिए कोई प्रावधान या निगरानी व्यवस्था है?
0: इसमें एक सिस्टम का ही इनबिल्ट मैकेनिज्म है, जैसे ही अगर कहीं भी एम्प्लॉयमेंट कम होती है जो बेस लाइन से, या थ्रेशोल्ड अगर उसका डाउन होता है, तो एम्प्लॉई तो चलो 6 महीने के बाद अगर वो नहीं रहते हैं वहां एम्प्लॉयमेंट में तो उनको नहीं मिलेगा बेनिफिट, लेकिन साथ ही एम्प्लॉयर को भी अब बेनिफिट कम हो जाती है। तो एम्प्लॉयर के लिए काइंड ऑफ डिसइंसेंटिव है कि अगर लोगों को निकाल रहे हैं हटा रहे हैं अगर वहां पे रिटेन नहीं कर रहे हैं, तो राधर एम्प्लॉयर को अभी ज्यादा इंसेंटिव इसमें है कि लोगों को रखें, रिटेन करें और उनको ट्रेन करें। तो केवल रिटेन करना ही नहीं होगा, जितने दिन लोग रहेंगे उनके लिए एक्सपीरियंस बढ़ेगा, एम्प्लॉई के लिए भी फायदा, एम्प्लॉयर के लिए भी फायदा।
1: जी, विन विन सिचुएशन है दोनों।
0: विन-विन है, जी।
1: बिहार से जुड़े हैं मोहन पासवान जी।
5: नमस्कार सर।
0: नमस्कार,
5: मैं बसतपुर दरभंगा बिहार से बोल रहा हूँ सर। सर, मैं जानना चाहता हूँ कि छोटी छोटी कंपनियां लोगों के रोजगार के लिए क्या क्या योजना बनाई है सर नए स्तर से। दूसरा है सर,
0: जी पूछे
1: जी मोहन जी,
5: जो सर भारतीय प्रधानमंत्री जी का विकसित भारत का जो सपना है 2017 तक, इसके लिए कौन से सूत्र तैयार किए गए हैं सर, एवं इसमें युवाओं के रोजगार के लिए क्या क्या योजना बनाए गए हैं सर?
1: जनरलाइज सवाल पूछाना नहीं उन्हें।
0: एक जनरलाइज सवाल है, बहुत सारी योजनाएं तैयार की गई है भारत सरकार के द्वारा, उनमें से एक योजना ये प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना है जो 2047 के विजन को ध्यान में रखकर किया गया है। इसमें एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई दोनों को बेनिफिट देते हुए, इंसेंटिव देते हुए ये कोशिश की गई है कि ज्यादा से ज्यादा रोजगार को जो सृजित कर रहे हैं उनको इंसेंटिवाइज किया जाए, वर्कर जो ज्यादा से ज्यादा काम कर रहे हैं उनको इंसेंटिवाइज किया जाए। तो एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को ओवरऑल इंसेंटिव करने के लिए, इंसेंटिवाइज करने के लिए एक बहुत अच्छी योजना है।
1: जी, अक्सर मैं एक सवाल जो रहता है जहन में एमएसएमई क्षेत्र को लेकर, जो छोटे छोटे जो रोजगार सृजित करते हैं, तो देश जो एमएसएमई क्षेत्र को रोजगार का जो प्रमुख हम स्रोत मानते भी हैं, तो इस योजना को एमएसएमई क्षेत्र को क्या लाभ मिलने की संभावना है इस योजना से?
2: तो इसमें एमएसएमई के ऊपर जो जो इसके ऊपर प्रोविजन है, तो नॉर्मली ईपीएफओ जो लॉ है वो केवल एस्टैब्लिशमेंट्स विद एटलीस्ट 20 एम्प्लॉयज जो है उनके लिए मैंडेटरी है, बट आज के डेट में हमारे पास जो डेटा है उसे बहुत सारे ऐसे एमएसएमई हमसे जुड़े हुए हैं जिसका स्ट्रेंथ 20 से भी कम है, तो उनके लिए भी बहुत बड़ा लाभ है क्योंकि उनके लिए उनके छोटा साइज को ध्यान में रखते हुए, उनके कंस्ट्रेंट्स को ध्यान में रखते हुए उनको

0: केवल दो एम्प्लॉयज एडिशनल एम्प्लॉयज जनरेट करने का उनको कंडीशन रखा गया है. तो 2 साल के पीरियड में उनको एटलीस्ट 2 नए एडिशनल एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना है और उनको सस्टेन करना है. तो सारे एमएसएमई इसमें बहुत बेनिफिट मिले के आ सकता है.
1: तो विनिर्माण क्षेत्र को भी इस जो योजना से बहुत लाभ मिल रहा है और आगे भी मिलता रहेगा, तो वो किस प्रकार मिलेगा?
0: तो विनिर्माण क्षेत्र में एम्प्लॉयर जो है उनके लिए एडिशनल बेनिफिट है इसमें. सो जो नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन का कॉम्प्लीमेंट्री तरीके से ये स्कीम चलता है, तो बाकी संस्थाओं को जो 2 साल तक जो बेनिफिट मिलता है हर एक महीने हर एक नेट एडिशनल एम्प्लॉयमेंट के अगेंस्ट, जो मैन्युफैक्चरिंग में है उनको 4 साल तक इसके स्कीम के बेनिफिट्स मिलते हैं.
1: यदि कोई जो युवा है पूर्णेंदु जी, पहली बार नौकरी शुरू कर रहा है, तो उसे ईपीएफओ से जुड़ी कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना होगा?
2: जो भी नए लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सबसे पहली बात तो उनका एक फेस ऑथेंटिकेशन के थ्रू उमंग ऐप पे जब भी वो यूएएन जनरेट होता है तो वहां पे उनकी हम आइडेंटिटी को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं. तो वो बहुत जरूरी है, जो पार्ट ए का जो बेनिफिट मिल रहा है इस स्कीम में, कि फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू उनका होना पड़ेगा. सेकंड, उनका एक डीबीटी इनेबल्ड बैंक अकाउंट होना चाहिए जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के लिए. सो आधार के साथ लिंक होता है, लेकिन आपको बैंक में साथ ही साथ अपना डीबीटी के लिए भी इनेबल करवाना पड़ता है. तो ये दोनों चीजों को अगर ध्यान में रखेंगे, फिर जैसे ही ईपीएफओ में अगर आप जुड़ते हैं, ऑटोमेटिकली आप 6 महीने तक अगर आ रहे हैं यहाँ हमारे साथ, सस्टेन कर गए एक एम्प्लॉयर के साथ, आपका सारा रिटर्न यहाँ आ रहा है, आपका कंप्लायंस हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली आपके बेनिफिट कैलकुलेट होके आपके अकाउंट में चले जाते हैं.
1: छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं इंद्र भान जी.
3: जिला छत्तीसगढ़ से इंद्र भान सिंह बोल रहा हूँ. प्रश्न ये है,
1: सवाल पूछे,
3: भारत रोजगार में कौन कौन से सेक्टर है?
1: कौन कौन से
2: इसमें
1: सेक्टर?
2: इसमें सारे सेक्टर्स इंक्लूडेड हैं जो भी ईपीएफओ के साथ जुड़े हुए हैं. ये स्कीम ईपीएफओ के थ्रू भारत सरकार चला रही है, वो भी इसलिए यहाँ पे हमारा आइडेंटिफिकेशन यूएएन के थ्रू करते हैं, कंपनीज कवर्ड हैं, तो बेनिफिट बिकॉज आइडेंटिफाइड लोगों को जाती है. तो जितने भी ईपीएफओ के साथ जुड़े हुए संस्थान हैं उनके थ्रू ये सारा कुछ ये सारी बेनिफिट जाती है.
1: जी, अगर किसी के मन में प्रश्न है कि कोई कर्मचारी है नियोक्ता इस योजना के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहता है, तो कोई ऐसा पोर्टल या हेल्पलाइन नंबर है जिस पर सीधा संपर्क किया जा सकता है?
0: हाँ, तो ये स्कीम के लिए एक डेडिकेटेड वेबसाइट है हमारा pmvbrv.labor.gov.in. इसमें सारे स्कीम रिलेटेड सारे आपको विशेष उसमें मिल जाएंगे. अपार्ट फ्रॉम दैट आपको अगर कॉल करके पूछना है तो टोल फ्री नंबर है 1-44-80-1-44-80. इसमें आप मंडे टू सैटरडे 10 to 6 आप कॉल करेंगे तो आपको किसी भी तरह की डाउट है तो आप क्लैरिफाई कर सकते हैं.
1: जी हाँ, 1-44-80 हेल्पलाइन नंबर है, टोल फ्री नंबर है, आप इस पर संपर्क कर सकते हैं और अपनी शंकाओं का जो भी है निवारण पा सकते हैं. पूर्णेंदु जी, आपसे एक जाते जाते यही आखिरी प्रश्न पूछना चाहूंगी कि ईपीएफओ के आंकड़ों के आधार पर देखें तो पिछले कुछ वर्षों में औपचारिक रोजगार में क्या परिवर्तन देखने को मिले?
2: मैम, हमारे साथ काफी लोग जुड़े हैं और ईपीएफओ के आंकड़े बताते हैं कि भारत में एक बहुत मेजर चेंज आ रहा है.
1: जी.
2: वो जो इनफॉर्मल इकोनॉमी हुआ करती थी वो काफी फॉर्मलाइजेशन की ओर बढ़ रही है और हमें उम्मीद है कि अगले कुछ दिनों में बिकॉज ऑफ दिस स्कीम हम ऐसे उम्मीद करते हैं कि काफी ज्यादा बढ़ेगी और हम सबों को एक फॉर्मल इकोनॉमी एक विकसित भारत देखने को मिलेगा.
1: जी हाँ, हमें विश्वास है कि आज की चर्चा से युवाओं को रोजगार, सामाजिक सुरक्षा और प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के बारे में उपयोगी जानकारी मिली होगी. धन्यवाद आप दोनों का, पूर्णेंदु जी और प्रणित जी, आप स्टूडियो में आए और हमारे साथ चर्चा की. श्रोताओं, आपका भी धन्यवाद करते हैं जो हमारे साथ जुड़े. अगले सप्ताह फिर से मुलाकात होगी सोमवार को एक नए मुद्दे के साथ. तब तक प्रियंका अरोड़ा को दीजिए अनुमति. नमस्कार.
2: नमस्कार.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार।
1: हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज पर। रात के 10 बजे हैं। अब पेश है कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। श्रोताओं, फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में आप

सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रात का है ये समा और इस मौसम में आप सब सारे दिन की भाग दौड़ के बाद अब बैठे हैं अपने अपने उस आराम स्थल पर जहां आपको गुजारनी है रात। तो आइए इस रात को गुजारने में हम भी आपका साथ देते हैं कुछ भूले बिसरे गीतों के साथ। जी हाँ, कार्यक्रम का आगाज करते हैं रुदाली फिल्म के इस प्यारे से नगमे के साथ। आवाज है भूपेन हजारिका की, गीत लिखा है गुलजार ने और संगीत भी इसमें है भूपेन हजारिका जी का ही।

श्रोताओं, अभी आपने सुना रुदाली फिल्म का ये गीत, और अब हम आपको सुनवा रहे हैं एक ऐसा नगमा जो बहुत कम लोगों ने सुना। और चूंकि कार्यक्रम का ही नाम है कि ये कार्यक्रम है भूले बिसरे गीत, वो गीत जो जब भी कभी आपने सुने हो बस आपके जहन से वो उतर गए हो, आज फिर से उनकी यादों को ताज़ा करते हैं। आइए, ऐसा ही एक नगमा मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म नई उम्र की नई फसल से। गीत लिखा है नीरज ने और संगीत दिया है रोशन ने।

जी हाँ श्रोताओं, ज़िंदगी का एक ऐसा मोड़ आता है जब सब कुछ गुजर जाता है और फिर हम सब बस जैसे खड़े खड़े देखते रह जाते हैं। बहरहाल कार्यक्रम को बढ़ाते हैं आगे और अब आपको सुनाते हैं मुकेश की आवाज़ में देवर फिल्म का ये प्यारा सा गीत, जिसे लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत दिया है रोशन ने।

मुकेश की आवाज़ का नगमा अभी आप सुन रहे थे देवर फिल्म से। यकीनन जब कभी भी गुज़रा ज़माना याद आता है तो फिर उस ज़माने की हर याद जैसे दिल में ताज़ा हो जाती है, चाहे वो सुख की हो या दुख की। मुकेश की ही आवाज़ का एक और नगमा यहूदी फिल्म से हम आपको सुनवा रहे हैं। ये गीत लिखा है शैलेंद्र ने और संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने।

मुकेश की आवाज़ का अभी आपने ये गीत सुना यहूदी फिल्म से, और श्रोताओं आइए अब आपको सुनाते हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ का ये नगमा ठोकर फिल्म से। गीत लिखा है साजन दहलवी ने और इस गीत के लिए संगीत दिया है श्याम जी घनश्याम जी ने।

आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से आप इस समय सुन रहे हैं भूले बिसरे गीत। श्रोताओं, आइए इस कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवाते हैं हेमंत कुमार की आवाज में ये नगमा। मजरू सुल्तानपुरी का गीत है और SD बर्मन ने इसको संगीत दिया है। फिल्म का नाम है 16वां साल।

भूले बिसरे गीत, इस कार्यक्रम का आखिरी नगमा हम आपको सुनवा रहे हैं गाइड फिल्म से। इस गीत की खास बात यह भी है कि ये गीत एसडी बर्मन साहब ने खुद गाया और एसडी बर्मन जी ने ही इसे संगीत दिया। ये गीत लिखा था शैलेंद्र ने।

गाइड फिल्म के इसी गीत के साथ श्रोताओं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत अब यहीं संपन्न होता है। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। रात के 10:30 बजे हैं। अब प्रस्तुत है पत्रों और

व्हाट्सएप मैसेज पर आधारित फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम आपकी फरमाइश। श्रोताओं, आपकी फरमाइश कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से जुड़ जाइए हमारे साथ, हम हैं तैयार आपकी पसंद के गाने सुनवाने के लिए। जी हाँ, आप हमें जल्दी से व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। हमारा व्हाट्सएप भेजने के लिए नंबर है 9457078288। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, 9457078288। ये है वो नंबर जिस पर आपको करना है व्हाट्सएप मैसेज और हम सुनाएंगे आपको आपकी पसंद का कोई भी गीत। चलिए, इधर हमने बताया है नंबर और देखिए इधर हमारे श्रोता मैसेज भेजने शुरू कर चुके हैं। ये मैसेज हमारे पास आ गया है, ग्राम जुझला थाना शिवाला कला जिला बिजनौर से, और लिखने वाले हैं राशिद अंसारी, परवीन जहां, निषाद, आयशा, आलिया, साइना, महविश, मोहम्मद अफान और अदीना नूर। और ये मैसेज हमारे पास आ गया है, ये जो पत्र बनाकर भी बहुत से हमारे श्रोता मैसेज भेजते हैं, MLB रोड ग्वालियर से ये मैसेज हमारे पास भेज रहे हैं, सुरेश खुराना, पप्पी, किरण खुराना, लव्या, आरव खुराना और SK पप्पी साहब। और ये अनुराधा पौडवाल की आवाज़ का कोई नगमा सुनने की फरमाइश कर रहे हैं, गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर, जस्सी, सीता और गीता, ये भी हमें मैसेज भेज रहे हैं। और ये मैसेज हमारे पास आया, ज़िला अमरोहा नई बस्ती पतई खालसा से बारुल हसन सिद्दीकी, मोहम्मद आलम सिद्दीकी, मोहम्मद शिफान, मोहम्मद यूसुफ, अनाबिया, बीटी आलिशा सिद्दीकी, शकील और फहीम सिद्दीकी। ये मैसेज हमारे पास मोहल्ला हलवाईयान शेरकोट ज़िला बिजनौर से है, मोहम्मद वक़ार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोज़ी परवीन, बिट्टू भैया, साजदारानी और हिना कौसर ने भेजा है। और ये फरमाइश करने वाले हैं आसिफ चौधरी, बेगम रिहाना, आराफात, अदीब और कादिर चौधरी, शाही मार्केट सियारा ज़िला बिजनौर से। और ये मैसेज हमारे पास आ गया है, जवाहर नगर दुर्ग से RC कांबड़े, अरुणा, मीना, अश्वनी और विपुल कांबड़े का ये गीत सुनने की फरमाइश, सूर्या फिल्म का गीत सुनने की फरमाइश चंडीगढ़ से सतीश अनेजा, बिमला अनेजा ने की है। और इसी गीत को सुनने की फरमाइश कर रहे हैं बठिंडा खेड़ा पंजाब से मिंटू टॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा। इस गीत को सुनने की एक और फरमाइश जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर से हमारे पास भेज रहे हैं, लिखकर मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार और नरगिस खातून, अनवर साबरी, शन्नो साबरी, मुदस्सिर साबरी, मुजक्किर साबरी और ज़रीफ अंसारी जी ने भी इसी गीत को सुनने की फरमाइश की है, दाऊद सराय सहारनपुर से। तो लीजिए श्रोताओं, आप सबकी फरमाइश पर हम आपको सुनवा रहे हैं सूर्या फिल्म का गीत मोहम्मद अजीज और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में। गीत लिखा है संतोष आनंद ने और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

श्रोताओं, सूर्या फिल्म का गीत अभी आपने सुना और इसी गीत को सुनने की फरमाइश संघ मित्रा श्रोता संघ वार्ड नंबर 1 पोफाली जिला यवतमाल से की थी, जयराम सिंघणकर, दिशांत कुमार सिंघणकर और अर्पिता ने। और श्रोताओं, अब इस कार्यक्रम में हम जो गीत आपको सुनवा रहे हैं, इस गीत को सुनने की फरमाइश लिखकर हमें भेज रहे हैं पूनम चौहान, नीलम चौहान, आशीष चौहान, गीता चौहान और शैलेंद्र सिंह मुरादाबाद से। और सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गायवा मल्होत्रा, भाई सुच्चा सिंह पाठक, विनोदपुरी जायवाल और अनारकली बाजार जगराव पंजाब से आपका पूरा परिवार ये मैसेज हमें भेज रहे हैं। दबंग फिल्म का गीत सुनने की फरमाइश कर रहे हैं जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया, दिशानी और निमित आहूजा। इसी गीत को सुनने की फरमाइश कर रहे हैं झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया, रजत भाटिया और मयंक भाटिया। कोली नांदेड़ महाराष्ट्र से मैसेज हमारे पास आया है नारायण गायकवाड़, दयानंद गायकवाड़, ओमकार गायकवाड़ और साई गायकवाड़ का। ये भी राहत फतेह अली खान की आवाज़ का कोई नगमा सुनने की फरमाइश लिखकर भेज रहे हैं। और ये मैसेज हमारे पास आया है सदर बाजार कुरावली से, लिखने वाले हैं अनिल कुमार वर्मा, माया देवी वर्मा, राहुल कुमार वर्मा, विनीत कुमार वर्मा और सोनम वर्मा।

रेलवे कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन राजस्थान से ये मैसेज हमें भेज रहे हैं जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जे एस नायक, शोभा नायक और समस्त डागला परिवार। एक फरमाइश हमारे पास ये आई है, इन्होंने भेजी है ये फरमाइश, नवाब खान, इशरत जहां, मास्टर अजहर खान और अजीम खान, आपने अपना एड्रेस अभी भी

और शोएब खान करोला मुरादाबाद से इसी गीत को सुनने की फरमाइश कर रहे हैं। राहत फतेह अली खान की आवाज़ का गीत सुनने की फरमाइश लिखकर भेजिए। धनौरा तेलीवाल से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बीबी आलिया और आयान बाबान की आवाज़ में, और आपके साथ हैं श्रेया घोषाल। गीत लिखा है जलीस शेरवानी ने और धुन तैयार की है साजिद वाजिद ने।

श्रोताओं, आइए अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कौन कौन श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो ये हमारे श्रोता हैं, सेफ वाटर सेफ लाइफ का संदेश देते हुए गंज डोंडवारा उत्तर प्रदेश से, मास्टर खिल्लू परवेज़, बेगम इमराना नाज, नवाजिश शेख, दानिश अमन अफरीदी और राधा नामदेव। आज कुमार सानू की आवाज़ का गीत सुनने की फरमाइश कर रहे हैं। ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से, और दुबिहा नेवादा जिला गाजीपुर से हैं प्रतीक राय, रोशनी राय और प्रांजल राय। ये मैसेज हमारे पास मनोज छिपी, दीपक नामदेव, वैभव नामदेव, रसूलपुर नंगला जिला बिजनौर उत्तर प्रदेश से हैं। और एक और मैसेज हमारे पास पहुंचा है नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से, लिखने वाले हैं पीएस नवाकर, निर्मला नवाकर, विशाल नवाकर। और ये मैसेज हमारे पास आया है मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर और रतन माला सुरलकर का, ये भी सुनना चाहते हैं कुमार सानू और साधना सरगम की आवाज़ का कोई युगल गीत सुनने की फरमाइश कर रहे हैं। ज़िला मुरादाबाद ग्राम महेशपुर खेम से तौफीक अहमद सिद्दीकी, अतीक अहमद सिद्दीकी और मोहम्मद दानिश सिद्दीकी। आपके साथ हैं हमजा सिद्दीकी, गुलशन साहिबा और आपका पूरा परिवार। और ये मैसेज हमारे पास बीजना मुरादाबाद से लिखकर भेज रहे हैं राजवीर सिंह यादव, कुणाल यादव, हर्ष यादव, मनीष यादव, अंशिका, यूनुस खान और सोफिया खान। ये मैसेज हमारे पास आया है फाजिल का पंजाब से, भूषण खेड़ा, विशु खेड़ा, विशाल, शालिनी टिवांशी और आपका पूरा परिवार मैसेज को भेज रहे हैं। और ये मैसेज हमारे पास परी महल कासगंज से आदाब खान, नबील खान, आरफा खान, असलम सैफी, मास्टर जाहिद अली और मीरा सराय बदायूं से आफरीन खान और जमीर खान। तो लीजिए, आप सब की फरमाइश पर हम आपको सुनवा रहे हैं दम लगा के हिंसा फिल्म का ये प्यारा सा नगमा कुमार सानू और साधना सरगम की आवाज़ में।

आपकी फरमाइश कार्यक्रम में आइए। अब हम आपको सुनाते हैं कार्यक्रम का आखिरी नगमा, और इस गीत को सुनने की फरमाइश हमें भेज रहे हैं पंकज अग्रवाल जी और पुत्री अग्रवाल अनमोल अग्रवाल, राघव अग्रवाल, गोविंद नगर कोटद्वार से ये मैसेज हमारे पास इन्होंने भेजा है। एक और मैसेज हमारे पास ये आया है बहारुल हसन सिद्दीकी, मोहम्मद आलम सिद्दीकी, मोहम्मद यूसुफ सिद्दीकी, बिटिया अलीशा सिद्दीकी, शकील फ़हीम, मोहम्मद यासीन अंसारी और सुदेश चौहान साहब का। ये मैसेज ज़िला अमरोहा नई बस्ती पतई खालसा से इन्होंने हमें भेजा है। और श्रोताओं एक और मैसेज हम शामिल कर लेते हैं, मोहाली पंजाब से बब्बल मल्होत्रा, ओम प्रकाश मल्होत्रा और आपका पूरा मल्होत्रा परिवार, सोहनी महिमाल फिल्म से गीत सुनने की फरमाइश कर रहे हैं। नई बस्ती गंज डुंडवारा से मोहम्मद यासीन हाशमी, नाजमा बेगम हाशमी, नाजमा बेगम हाशमी, तौसीफ तैमूर और मोहम्मद कलीम अंसारी ने भी गीत सुनने की फरमाइश की है। और श्रोताओं इसी गीत को सुनने की फरमाइश हमारे पास लिखकर भेज रहे हैं मोहम्मद जैन, जन्नत अलमीर और अब्दुल गनी साहब है मोहल्ला अफगानान शेरकोट ज़िला बिजनौर से। और ये मैसेज हमारे पास भेजा है गांव फ्रांसी ज़िला हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी, पुष्पेंद्र कुमार डूडी और आपका पूरा परिवार। ये मैसेज हमारे पास आया है मास्टर जाहिद अली, इल्मा खान, आरफा खान, नबील खान, मीर सराय बदायूं से। और इसी गीत को सुनने की फरमाइश लिखकर हमारे पास भेज रहे हैं ग्राम मीरपुर ज़िला बाराबंकी से ओम प्रकाश, ब्रजेश कुमार वर्मा और आपका पूरा परिवार। तो आइए आप सबको आप सब की फरमाइश पर हम सुनवा रहे हैं सोहनी महिवाल फिल्म का ये प्यारा सा नगमा आशा भोसले और शब्बीर कुमार की आवाज़ में।

0: सोनी महिवाल फिल्म का गीत अभी आपने सुना, आशा भोसले शब्बीर कुमार की आवाज में। गीत लिखा था आनंद बख्शी ने और संगीत दिया था नू मलिक ने। श्रोताओं, इसी गीत के साथ कार्यक्रम आपकी फरमाइश अभी यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज़ पर। रात के 11 बजने वाले हैं, कुछ ही पलों में आकाशवाणी दिल्ली से समाचार रिले होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर।

0: सांसद उनकी पार्टी शिवसेना में शामिल हो गए हैं। श्री शिंदे ने इन सभी सांसदों का पार्टी में स्वागत किया। मुंबई में संवाददाताओं से बातचीत में श्री शिंदे ने कहा कि आज का दिन शिवसेना के लिए ऐतिहासिक है।
1: आज का दिन शिवसेना के लिए ऐतिहासिक दिन है। हमारे 6,000 शिवसेना में शामिल हुए हैं, इससे शिवसेना की ताकत बढ़ रही है। शिवसेना सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी महाराष्ट्र में हो चुकी है और ये डबल इंजन की सरकार है। महाराष्ट्र को आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी बहुत बड़े पैमाने पे सहयोग कर रहे हैं, इसलिए विकास हो रहा है।
0: पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। रोजगार और जन कल्याण को बढ़ावा देते हुए राज्य के विभिन्न विभागों में 1,00,000 खाली पदों पर नियुक्ति की घोषणा की गई है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज नई दिल्ली में पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के संवादात्मक सत्र में भाग लिया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शेखावत ने कहा कि पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र का विकास लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तन का साधन है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार रोजगार, विकास और समृद्धि के नए अवसर पैदा कर रही है। भारतीय रेलवे ने पूर्वी तट के रेलवे के 631 किलोमीटर के मार्ग पर स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच की मंजूरी दे दी है। इससे सुरक्षा और परिचालन दक्षता में सुधार होगा। रेल मंत्रालय ने बताया कि इस परियोजना में पूर्वी तट रेलवे के 6 महत्वपूर्ण खंड शामिल हैं। इन मार्गों पर कवच की स्थापना से स्वचालित रेल सुरक्षा और किसी भी तरह की टक्कर से बचाव की क्षमता प्रदान करके रेलगाड़ी संचालन में उच्च स्तर की सुरक्षा प्राप्त करने में मदद मिलेगी। केंद्र सरकार ने आज सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने उन निजी छात्रों के मूल्यांकन के लिए एक नई नीति बनाई है जो हाल ही में ईरान अमेरिका संघर्ष के कारण खाड़ी देशों में कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा रद्द होने से प्रभावित हुए थे। न्यायमूर्ति SVN भट्टी और विपुल M पंचोली की पीठ को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि क्षेत्रीय संघर्ष के कारण खाड़ी देशों में परीक्षा रद्द होने से प्रभावित छात्रों की चिंताओं को दूर करने के लिए एक नई अखिल भारतीय नीति तैयार की गई है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने प्रधानमंत्री और लेबर पार्टी के नेता पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। अपनी ही पार्टी के भीतर बढ़ते दबाव के बीच उन्होंने डाउनिंग स्ट्रीट में अपना कार्यकाल समाप्त किया। श्री स्टार्मर ने कहा कि सितंबर में संसद के सत्र के शुरू होने से पहले जब तक नया नेता नहीं चुन लिया जाता तब तक वे अपने पद पर बने रहेंगे।
2: Every decision I've taken,
3: मैंने जो भी फैसले लिए हैं उनमें हमेशा अपने देश को प्राथमिकता दी है जिससे मैं प्यार करता हूं। इसीलिए मैं लेबर पार्टी के नेता का पद छोड़ रहा हूं। मैंने आज सुबह ब्रिटेन नरेश से बात करके उन्हें अपने फैसले के बारे में बता दिया है। अगर मुकाबले की स्थिति बनती है तो निश्चित रूप से सितंबर में संसद सत्र शुरू होने से पहले पार्टी का नेता चुन लिया जाए। प्रक्रिया पूरी होने तक मैं प्रधानमंत्री के पद पर बना रहूंगा।
0: जर्मनी के सोहल में ISSF जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में आज भारत के प्रीतम केंद्रे ने 10 मीटर एयर राइफल पुरुष स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। वहीं 25 मीटर पिस्टल टीम स्पर्धा में महिलाओं और पुरुषों ने कांस्य पदक जीते। प्रतियोगिता में भारतीय निशानेबाजों ने आज अलग अलग स्पर्धाओं में 4 पदक भी जीते। भारत 5 स्वर्ण, 1 रजत और 6 कांस्य पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अभिनीत शुक्ला। Fifteen people, most of them students, lost their lives in a tragic fire incident in the Aliganj area of Lucknow in Uttar Pradesh this afternoon. The tragedy occurred when a massive fire broke out at an animation coaching center located inside a commercial complex. Several injured persons have been admitted to nearby hospitals. Chief Minister Yogi Adityanath has said a high-level committee comprising the Director General of Police and the Additional Chief Secretary Home will investigate the incident and those found responsible would face strict action. President Draupadi Murmu, Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra